ओम शांति। बाबा इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हुए, आत्माओं का कल्याण करने के लिए उसने हम सभी को सत्य ज्ञान दिया, शक्तियां दी, वरदान दिए, रोज शिक्षक बनकर पढ़ाया। अब ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम सबका कल्याण करें। एक है ज्ञान देकर सबका कल्याण करना, प्रभु मिलन का मार्ग बताना, ताकि उनका भाग्य वो कितना इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन दूसरा है प्रकृति को और सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनकी सोई हुई चेतना को जगाना। प्रकृति भी संपूर्ण सत्वप्रधान बनेगी, जीव जंतुओं को भी हमें वाइब्रेशंस देकर उनका कल्याण करना होगा। इसलिए ये एक बहुत गुह्य बात सभी को याद रखनी है कि हमारी विश्व कल्याण की भावना भी सबका कल्याण करती रहेगी। इसे अंडरलाइन कर दें। इसलिए अपने स्वमान को बहुत बढ़ा दें कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरा हर बोल विश्व कल्याण के लिए, मेरा हर संकल्प दूसरों के कल्याण के लिए, मेरा व्यवहार वार्तालाप सबको सुख देने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मुझे अपनी मनसा को भी शुभ भावनाओं से भर लेना है। अब सोच लें जिन्हें सबका कल्याण करना हो, वो किसी का कल्याण कैसे कर सकते हैं, किसी को नीचे कैसे उतार सकते हैं, किसी से घृणा नफरत कैसे रख सकते हैं। हम यदि दूसरों को तंग करेंगे तो आखिर फिर जब वो तंग हो जाएंगे हमें ही तो उनका कल्याण भी करना पड़ेगा। तो अपने चित्त में ये भावना बहुत प्रबल रूप से बढ़ा दें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे ये महान कार्य सौंपा है। जरा अपने भाग्य को देखकर गौरवान्वित तो हो जाएं, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। इस संसार में कोई बड़ा आदमी, धनवान व्यक्ति अपने कार्य की सारी जिम्मेदारी आपको दे दे, चेयरमैन बना दे आपको एक बड़े डिपार्टमेंट का, आपका गौरव कितना बढ़ जाएगा, सैलरी भी कितनी ज्यादा मिलेगी। भगवान ने हमें अपना साथी बना लिया और एक बहुत बड़ा कार्य युग परिवर्तन का, सब आत्माओं को बदलने का, निर्विकारी बनाने का, उसमें हमें अपना साथी बना लिया और कहा मैं तो हूं ही, लेकिन तुम्हें ये कार्य विशेष रूप से करना है। तो हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करें कि भगवान ने स्वयं हमारी योग्यताओं को देखकर हमें सेलेक्ट किया कि यही मेरे बच्चे इस महान कार्य के लिए उपयुक्त हैं, योग्य हैं, कैपेबल हैं, इनके द्वारा ही मुझे सबका कल्याण कराना है। और जो इस कार्य में निमित्त बनते हैं, चाहे वो ग्रस्त में रहते हों, चाहे समर्पित हो गए हों, उनको बाबा विशेष शक्तियां भी प्रदान कर देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो कार्य बाबा हमें देते हैं उसको संपन्न करने के लिए वो हमें अपनी शक्तियां भी बहुत दे देते हैं। हम इस सत्य को रियलाइज कर लें कि हमारे साथ परमात्म शक्तियां हैं, उसका वरदानी हाथ भी हमारे सिर पर है। और हम ये भी याद रखें, जितना हम योगयुक्त रहेंगे, जितना हम अपनी पवित्रता के बल को बहुत बढ़ाएंगे, जितना हमारे चित्त में सबके लिए शुभ भावनाएं बढ़ेंगी, उतना ही हमारे द्वारा विश्व का कल्याण होगा। इसलिए इन भावनाओं को भी बढ़ाएं। और इसके पीछे जो ये तीन विशेष मान्यताएं हैं, योग, पवित्रता और शुभ भावनाएं, इन्हें भी जीवन में तेजी से अपनाते चलें। तो आइए आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और अपना उनका हाथ रखाएंगे अपने सिर पर और इस फीलिंग को बढ़ाएंगे
मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा का आह्वान करें, आप सब जानते हैं, वतन में जाकर से बाबा को निमंत्रण दें, बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमारे पास आ जाएंगे। फील करें वो हमारे सामने खड़े हैं, उनका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और याद दिला रहे हैं, बच्चे जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ तुम भी मेरे समान विश्व कल्याणकारी हो। इस फीलिंग को बढ़ाएं और सबको वाइब्रेशंस दें। ओम।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों, सुबह के इस सुंदर समय पर हर कोई बहुत प्रसन्न होता है, फ्रेश होता है, और कहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो प्रकृति भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में चिंता होती है, वो व्यक्ति सुबह हो या शाम हो, चिंता में ही डूबा रहता है। उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर कोट्स है। कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता

0: कभी नहीं सताती है। कितनी सुंदर बात है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है होनी को हम अनहोनी नहीं कर सकते, और इसीलिए ही श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सुंदर वचन भी हम हर प्रकार से अपने मन को उभारने के लिए, अपने मन को बहुत अच्छा उत्साह दिलाने के लिए कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन क्या सचमुच उससे हम कुछ सीखते हैं? अमृतधारा प्रोग्राम में हम इन बातों का भी सदा वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं। और चिंता कहते हैं ना, एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी सामने से तो नहीं दिखती, चेहरे से भी कभी कभी नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर मनुष्य को बहुत बहुत दुर्बल बनाती है। तो दोस्तों चलिए चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए। और इसी चिंतन के सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है ज्ञानेश्वर जी।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने जो सुविचार में सुनाया चिंता, अभी चिंता और चिता कितना अंतर है? एक बिंदी का अंतर है, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत अलग है, विरुद्ध है। ऐसे कहते हैं कि चिंता जो है वो जिंदा आदमी को जलाती है, और चिता जो है वो मृत आदमी को या मुर्दे को जलाती है, लेकिन दोनों जलाते हैं। मुर्दे को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुर्दा ही है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जब जिंदा आदमी को जब चिंता जलाती है वो बड़ी दुख की बात है, और इसलिए ये चिंता को मिटाने के लिए ऐसे सुविचार बहुत ही उपयुक्त है, उपयोगी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि जब हम भरसक प्रयास करते हैं और पूरे प्रयास करने के बावजूद अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, तो फिर दुखी और मायूस होने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि वो जो मेरा भाग्य में था वो मिल गया, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया। और फिर क्या होता है, हम अपने मन को तसल्ली देते हैं। लेकिन अगर उमंग उत्साह बढ़ाना है, अपने खुद का और दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाना है, तो यही गीत मुझे याद आता है, अनहोनी को होनी कर दे। ये अनहोनी को होनी भी हम कर देते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, मन और बुद्धि से मिलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो अनहोनी लगती है, लेकिन हम होनी में उसे बदल देते हैं। तो जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप अगर हमारे विचार है तो हमेशा हमें सुखदायी होते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सुबह के इस सुंदर समय पर हम कुछ ऐसे सुविचार सुनते हैं ताकि पूरे दिन में ऐसी कोई नौबत आई, ऐसी कोई बात आई जिसने मुझे चिंतित कर दिया, तो अगर इस प्रकार के विचार सुनने से हम पहले से ही जागरूक हो जाते हैं और मायूस होने से बच जाते हैं। दोस्तों कहानी भी हमें कुछ न कुछ सीख देती है, तो चलो आज कौन सी कहानी हम सुनने वाले हैं? ये है एक राजा की कहानी। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर ये फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंप कर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री जरूर थी और उसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। तो राजा ने क्या किया, अपने मंत्रियों को बुलवाया और उन्हें कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को देखा तो उसको ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा ने जैसे पहले ही निर्णय लिया था, उस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह भी उस युवक के साथ कर दिया, उसको सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और स्वयं वन में प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से संभालना सीखा। एक अच्छे राजा की तरह वह राज्य की सेवा में लग गया। उसी महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। दोस्तों, वो कोठरी में ऐसा क्या विशेष था जो राजा अपने कमर में उसकी चाबी को लटकाए रखता था? जरूर सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकड़े चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: और पहाड़ भले ही न टूटे लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। और इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। चलिए, आपकी उत्सुकता तो बहुत बहुत ऊंचे आसमान पर गई होगी कि क्या बात है। तो राजा का उस छोटे से कोठरी में जाना और उसकी चाबी हमेशा अपने कमर में लटकाए रहना, ये क्या बात है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा घंटा अंदर रहता, फिर बाहर निकल आता और बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता, अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस प्रकार राजा के बार बार उस कमरे में जाने से अब सेनापति को थोड़ा सा अचंभा होने लगा। अरे, राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए वो सारा तो खजांची के पास है और सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य जो बहुमूल्य कागजात है उसकी चाबी तो मंत्री के पास है। फिर हमारा राजा इन छोटे से कोठरी में जाके करता क्या है ऐसा जो यहाँ राजा आधा घंटा रुकता भी है, फिर हर सप्ताह हो जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आता है, चाबी फिर से अपने पास रख देता है। सेनापति को रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके एक दिन राजा से पूछ ही लिया, हे राजन, यदि आप क्षमा करें तो एक बात पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूछिए। सेनापति ने कहा, आप एक कमरे में हर एक दिन सप्ताह के जो जाते हो और आधा घंटा के बाद वापस आते हो, कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा ने गुस्से से बोला, सेनापति, ये तुम्हारा पूछने का विषय है ही नहीं, दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसने सारे मंत्री और राज्य के मुख्य सभासद जो है उनको ये बात बताई और इसकी चर्चा होने लगी। फिर उन सभासदों ने भी राजा से एक दिन इसकी वजह पूछने का प्रयास तो किया, पर राजा ने किसी भी व्यक्ति को उस कमरे का रहस्य बताना नहीं चाहा। अब बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया। उस कोठरी की सच्चाई जानने के लिए वो बार बार जिद करने लगे। आखिरकार विवश होकर राजा अपने सेनापति, सब सभासद और रानी को लेकर कोठरी के पास गया, दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका हुआ था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहां तो कुछ दिखाई नहीं देता। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, अरे भाई, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा अहंकार आता है कि मैं तो कितने बड़े राज्य का राजा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, तो तुरंत मैं यहां आकर इन कपड़ों को देखता हूं और तब मुझे याद आता है कि जब मैं इस राज्य में आया था, इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। और कुछ चिंतन के बाद मेरा मन शांत हो जाता है और जो घमंड है, अहंकार है, वो तुरंत समाप्त हो जाता है। तभी मैं बाहर आता हूँ। दोस्तों, सचमुच संत महंतों ने भी कहा है कि अहंकार है वो अग्नि के समान है, जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है, वो कभी भी अहंकार जैसे अवगुणों को, दोषों को अपने पास नहीं रखता। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। और इसीलिए जब कभी भी हमारे से कोई बड़ा कार्य होता है तो आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है, कराने वाला करा रहा है, हम केवल करनहार बनकर कर रहे हैं। जैसे कोई गुड़ियों का खेल होता है ना, उन गुड़ियों के खेल में भी उनको नचाने वाला, जिसके पास उसकी डोर है, वो तो अलग होता है और गुड़िया तो बहुत सुंदर नाचती है। वैसे ही दोस्तों, हम सब भी जो भी एक अच्छा कार्य करे तो जरूर इस अहंकार का त्याग करें।
4: बहुत ही सुंदर कथा है भक्ति जी, और मुझे ये बात बहुत सही लगी कि अहंकार जो है वो इंसान को बहुत धोखा देता है, इंसान की जो तरक्की है उसे रुकावट डालता है। और अगर इंसान गरीब है और उसके बाद जब अमीर हो जाता है तब ये गरीबी की भावना मन से निकल जाती है, लेकिन जब वो याद करता है कि मैं कभी ऐसा था, तब गरीबों का दुख और दर्द वो बहुत अच्छी रीति समझता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे बहुत धनाढ्य उद्योगपति है, लखपति है, करोड़पति है, जो पहले कुछ नहीं, पहले गरीब थे, सामान्य थे, लेकिन फिर भी वो करोड़पति अरबपति बन गए। लेकिन उनके मन में गरीबों के प्रति बहुत दया भाव है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर अपने गरीबी के संस्कार ही है और वो नहीं बदले, भीख मांगने के संस्कार ही है वो नहीं बदले, तो क्या होता है, मनुष्य को सुख भी दुख लगता है। ऐसी और एक कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं, मुझे याद आ गया कि राजा है और वो भिखारन है, उसके साथ शादी करता है, उसे महारानी बनाता है। लेकिन महारानी बनने के बावजूद उसकी तबीयत, महलों में रहती है लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। बहुत सारे वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, दवा देते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। तो एक वैद्य आता है और वो कहता है मैं महारानी को ठीक कर दूं। तो बोलते ठीक है, लेकिन बोलते है मुझे एकांत चाहिए, और उसके कान में कुछ मंत्र पढ़ाता है। ये मंत्र पढ़ने के बाद एक महीने के अंदर महारानी बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे क्या मंत्र पढ़ाया। और फिर राजवैद्य उनके कान में बोलता है किसी को बताना नहीं, लेकिन महारानी भिखारन थी और भीख मांगने की आदत उसमें थी, उसमें वो संस्कार थे, वो बदल नहीं रहे थे। और इसलिए मैंने कहा कि गांव के बाहर रात के 12 बजे चले जाओ, फटे कपड़े पहनो और मुझे भिक्षा दो माई, भिक्षा दो, ऐसे चिल्लाओ। तो जैसे चिल्लाने लगी उसकी तबीयत अच्छी हो गई। तो कथा का भाव यह है कि हमारे बुरे संस्कार जो है उसे हमें मिटाना है, गरीबी के संस्कार, भीख मांगने के संस्कार, चाहे बड़े हो या छोटे हो, उसे मिटाना है। लेकिन हम कभी गरीब थे उसे याद रखना है, क्योंकि उसमें उससे क्या होगा, गरीबों का जो दुख और दर्द हमें हमारे समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है।
3: बिल्कुल दोस्तों, चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भागवत कथा में भागवतकारों ने आगे कौन सा वर्णन किया है जरूर सुनेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंध का जो 19वां अध्याय है, जिसमें बहुत सुंदर रास लीला का वर्णन है, यहाँ शुकदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि गोपियाँ जो थी वो श्री कृष्ण के लिए बहुत ही उसको मिलने के लिए आतुर थी और अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया और इसके बाद तुरंत ही उनका ध्यान लग गया और ध्यान में उनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया और उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक ही साथ क्षीण हो गए। दोस्तों, पुण्य के संस्कार क्षीण हो जाना और परमात्मा से आलिंगन करने के बाद ये अवस्था होना, कभी कभी हमारे मन में कुछ शक होता है। तो ज्ञानेश्वर जी, यहाँ पहले तो बताया है कि श्री कृष्ण से मिलने के बाद उनको बहुत सुख हुआ, शांति मिली और इतना ही नहीं, ये भी बताया है कि अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष जो था वो भी भस्म हो गया और उनका ध्यान लग गया। तो फिर उनके सबके सब पुण्य के संस्कार एक साथ क्षीण हो गए, ये थोड़ा विरोधी लगता है। भागवतकार हमें इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं?
2: भक्ति जी, सचमुच ही अगर किसी ने ये पढ़ लिया तो उसको आश्चर्य तो लगेगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति जब होती है, भगवान से जब मिलन होता है, तब पुण्य बढ़ जाता है। लेकिन पुण्य के संस्कार क्षीण हो जाना, इसका मतलब क्या है? ये मन में प्रश्न आ गया। जैसे आपने मुझे पूछा तो मेरे मन में भी ये प्रश्न आया और एक क्षण, एक पल भर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया और सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि भागवतकारों ने ये अगर लिखा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। और उसके ऊपर जब मैं सोचने लगा तब मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत विचार है, कि पुण्य के संस्कार क्षीण हो जाना, क्या होता है, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तब पुण्य कर्म के साथ कुछ ना कुछ अहंकार आ जाता है। जैसे अगर मैंने किसी को दान धर्म किया, किसी को दान दे दिया, तो जाने अनजाने में मेरे मन में ये विचार आएगा कि इसे मैंने दान दिया है और इसलिए उसकी तरक्की हो गई। तो ये मैंपन की भावना जो है वो पुण्य के संस्कार है, ऐसा मुझे लगता है। और ये पुण्य के संस्कार जो है वो जब क्षीण क्यों होते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति होती है, भगवान से मिलन होता है, तब ये अहंकार जो है बिल्कुल ही क्षीण हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और इसी भावना से उन्होंने लिखा होगा कि पुण्य के संस्कार क्षीण हो गए।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, मुझे भी यही लगता है कि पाप और पुण्य, ये जो परिकल्पना है या ये जो दोनों भी हमारे अंदर उसका जो संस्कार है, वो संस्कार से परे वो हो गई, क्योंकि भगवान के लिए हम कहते हैं कि उनमें वो संस्कार नहीं होते। तो एकरूपता का भी ये एक बहुत सुंदर मिसाल है, ऐसा मुझे लगता है।
2: क्योंकि देखिए, पुण्य के संस्कार, जैसे अभी हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और इसलिए अगर किसी को हमने दान धर्म किया, किसी का कल्याण किया, तो अहंकार की भावना मन में आ सकती है। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो विश्व का कल्याण करने वाला है, और इतना विश्व का कल्याण करने के बावजूद उसे कोई अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो सबसे परे है। और अगर हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा कि उसके जैसा बनने की हम कोशिश करेंगे, और जब उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे तब खुद की जो आइडेंटिटी है, खुद की जो पहचान है, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि एक बूंद जो है जब सागर में समा जाती है तब वो सागर बन जाती है, वो बूंद बूंद नहीं रहती।
1: बिल्कुल, और गणेश्वर जी इसीलिए उन्होंने आगे यही बात का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने भगवान का आलिंगन किया था, चाहे किसी भी भाव से हो, लेकिन वो स्वयं परमात्मा तो थे ही, इसीलिए पाप पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग हो गया। और दोस्तों, बहुत ही ऊंची बात है, उसके साथ साथ समझने की बात है कि मनुष्य के देह के आगे की जो एक, जैसे कह सकते हैं कि ऑरा, उस प्रकार से ये भगवान की लीला यहाँ बताई है कि अप्राकृत शरीर प्राप्त होना, क्योंकि हमें शरीर के भोग, शरीर के कर्म बंधन जो है वो जरूर चुक्त करने पड़ते हैं, लेकिन जब भगवत प्राप्ति होती है, एक रूपता आती है, तो हम इन सबसे परे हो जाते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित भी पूछते हैं इसके बाद कि गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम मानती थी, उनका उनमें कोई ब्रह्म भाव तो नहीं था, इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसे स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? मुझे भी यही प्रश्न है ज्ञानेश्वर जी, कि अगर हम इस संसार में रहते हुए उससे निवृत्त हो गए, तो फिर हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और साधारणतः मनुष्य इन्हीं बातों को सोचता है, और इसीलिए ऐसे लगता है जैसे आपने कहा कि सागर का बुदबुदा पानी में अगर वो चला गया तो वो उसका ही स्वरूप धारण करता है। दोस्तों, इन सब बातों का बहुत ही सुंदर चिंतन श्रीमद् भागवतकार हमारे सामने रखते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में ला सकते हो। चलिए दोस्तों, इनका भी हम जरूर स्पष्टीकरण पाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण भागवतकारों ने हमें दिया है, लेकिन उसका भी और सुंदर स्पष्टीकरण जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी आपका क्या विचार है?
3: देखिए भक्ति जी, जैसे भागवतकारों ने श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन बहुत ही सुंदर रीति से किया है, जैसे वर्णन किया है उस समय उन्होंने सारे भक्तगणों को ध्यान में रखा है। भक्ति अनेक प्रकार की होती है, नवविधा भक्ति होती है, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ गुणवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण जी के देह का भी वर्णन किया है और गोपियों का भी वर्णन किया है कि गोपिकाएं कैसे श्री कृष्ण के ऊपर लुब्ध हो गई, लेकिन वो करते समय उन्होंने ये भी दिखाया है कि श्री कृष्ण जी उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि श्री कृष्ण जी जब गोपिकाओं को कहते हैं कि आप रात के समय मेरे पास आए हो, आगे जब वर्णन हम पढ़ेंगे तब बहुत ही सुंदर है और भागवतकार क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी हमें सुनने लायक और सोचने लायक है। देखिए श्री कृष्ण जी जैसे राजा परीक्षित ने

0: देव जी को पूछा कि ये श्री कृष्ण जी के पास गोपिकाएं चली गई, वो जार कर्म तो नहीं है, क्योंकि अपने पतियों को छोड़ के श्री कृष्ण जी के पास गई थी। तब सुखदेव जी कहते हैं कि वो ब्रह्म भाव था, देह भाव नहीं था। जब किसी के प्रति देह भाव नहीं है और प्यार होता है, प्रेम होता है, वो अप्राकृतिक होता है, और इसलिए कहते हैं आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम कभी व्यभिचार नहीं करता, लेकिन देहिक प्रेम जो है, शारीरिक आकर्षण जो है, वह व्यभिचार करता है। और इसलिए मीरा, संत श्रेष्ठ मीराबाई, उनके भी पति थे। गायन भी है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी, ऐसे कहते हैं कि वो नाचने लगी है, उसको विष दिया, विष का प्याला दिया, लेकिन वो भी पिबता पिबता मीरा नाची रे। अभी वो मीरा जो है उसके पति है, शरीर के पति है, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण जी के ऊपर निछावर है, तो उसको व्यभिचारी नहीं कहते, उसका तो गायन होता है, उसे संत श्रेष्ठ मीराबाई कहते हैं, क्योंकि वो आत्मिक प्यार है। और जब हमारा किसी के साथ आत्मिक प्यार होता है तो भले देह हो, लेकिन देह से परे वो प्यार होता है दोनों तरफ से, चाहे वो जिससे प्यार हो गया उसका और जिसको प्यार हो गया उसका, दोनों का भाव अगर आत्मिक भाव है तो हमेशा श्रेष्ठ रहता है। और यही भागवतकार कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्म भाव जब होता है तब वो जार कर्म नहीं होता।
1: बिल्कुल। तो ज्ञानेश्वर जी जैसे कहते हैं कि प्लेटोनिक लव, जो आत्मिक प्यार है, देह से परे जो प्यार है, उसमें उस व्यक्ति की आत्मा का ही केवल वर्णन है, और जो देखने वाली सुनने वाली जो है वो भी आत्मा ही है। और इसीलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इन बात को समझने के लिए ये श्री कृष्ण और गोपिकाओं का मिसाल दिया है। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि सुखदेव जी यह भी परीक्षित को समझाना चाहते हैं कि जैसे 7 दिन में परीक्षित का भी भगवान से इतना प्यार हो जाए, जो वो मृत्यु के डर से भयभीत था, वो डर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि भक्त

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए जानते हैं आज के पंचांग के अनुसार दिन विशेष के बारे में। आज शक संवत 1948 भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा शनिवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 12 सितंबर सन 2026। सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु है। राहुकाल सुबह 9:00 से 10:30 तक है। प्रतिपदा तिथि प्रातः 7:46 तक, उपरांत द्वितीय तिथि का आरंभ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:55 तक, उपरांत हस्त नक्षत्र का आरंभ है। शुभ योग दोपहर 3:09 तक, उपरांत शुक्ल योग का आरंभ है। भवकरण प्रातः 7:46 तक, उपरांत बालवकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात कन्या राशि पर संचार करेगा। और इसके साथ साथ इस्लामी हिजरी है 1448, 29 रवि उल अव्वल हफ्ता सरफा है आज के दिन। बलदेव प्रसाद मिश्र जी का जन्मदिवस है आज। फिरोज गांधी जी का भी आज के दिन जन्मदिवस है। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के पंचांग के साथ।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। राजधानी जयपुर में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है और वहीं पर उदयपुर में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना 75% तक है उदयपुर में। दिन के समय आबू रोड में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा के समय संभावना है 80%, रात्रि के समय और दिन के समय आज 50% तक बारिश होने की संभावना है। माउंट आबू में 20 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 25 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर 50% चांसेस से बारिश होने की सुबह के समय भी और रात्रि के समय भी। पाली जिले में 50% चांसेस से बारिश होने की सुबह भी और शाम को भी। 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। जोधपुर में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बारिश होने की संभावना 40% तक है सुबह और 50% से ज़्यादा संभावना है रात्रि के समय। बात करें सूरत के बारे में तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की संभावना दिन के समय 60% से ज़्यादा है, रात्रि के समय 99% तक है। मेहसाना में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, यहाँ पर बारिश होने की संभावना कम है दिन के समय, रात्रि के समय 50% से ज़्यादा है। राजकोट में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना नहीं है। और वहीं पर गांधीनगर अहमदाबाद में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है और बादल छाए रहेंगे आसमान पर। रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है, दिन के समय बारिश होने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद के अंचल में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने के समय रात्रि के समय 74% से ज़्यादा है। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना कोलकाता में है आज के दिन, लगभग 91% तक बारिश होने की संभावना है दिन के समय, रात्रि के समय 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। बेंगलुरु में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना फिल वक्त नहीं है। मुंबई के बारे में बात करें, 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना दिन के समय 66% तक है, रात्रि के समय 96% तक बारिश होने की संभावना है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें, 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना नहीं है। जिला सिरोही में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ 50% से ज़्यादा संभावना है दिन के समय बारिश होने की और रात्रि के समय भी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे मौसम के अनुसार। आइए सुनते हैं ये।

का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं आबूरोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाले गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है 1, 2, 5, 4, 7 आगरा कैंट से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:25 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। अरावली एक्सप्रेस 1, 4, 7, 0, 2 8:30 पर पहुंचने वाली है और इसके साथ साथ गाड़ी संख्या है 04174 04174, और ये गाड़ी वेरावल से प्रयागराज तक जाती है। ये गाड़ी आबूरोड रेलवे स्टेशन पर 8:45 पर पहुंचेगी। ट्रेन ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन है। अजमेर एक्सप्रेस 1620 9:10 पर पहुंचने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस 21 देरी से चल रही है। आज 1, 2, 4, 6 संख्या वाली गाड़ी जोधपुर से ये गाड़ी साबर

तक जाएगी 9:26 पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 1924 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 9:45 पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2069 3:10 पर पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2049 हरदासपुर से जोधपुर तक जाने वाली ये गाड़ी 10:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 2295 11:05 पर पहुंचेगी। दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 1942 11:30 पर पहुंचेगी। गांधीग्राम से जोधपुर तक जाने वाली मेल एक्सप्रेस 1482 11:40 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 1 घंटा देरी से चल रही है 11:51 पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या है 19032 संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचेगी। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारी हमने जाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 121 अंक गिरकर के बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,400 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। दिन के कारोबार में गहरे लाल निशान में फिसलने के बाद बाजार ने थोड़ी वापसी की, लेकिन अंततः नुकसान में रहा। शुक्रवार को सेंसेक्स 74,781.76 अंक पर बंद हुआ, वहीं पर 120.83 अंक यानी कि 0.16% की गिरावट आई। वहीं निफ्टी 23,398.10 अंक पर रहा, जिसमें लगभग 79.71 अंकों की 0.34% की कमी दर्ज की गई है। आयशर मोटर्स और टाटा स्टील के शेयरों में लगभग 2% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में इस कमजोरी के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल एक प्रमुख कारण रहा है। और शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कई कारण थे। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी। इसके साथ ही बढ़ती बॉन्ड ऑयल ने भी बाजार के माहौल को नकारात्मक बनाया। और इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर मौजूद अनिश्चितताएं भी भारतीय शेयर बाजार में असर डाला है। इसके साथ साथ बाजार में व्यापक कमजोरी के बाद कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। धातु और रियल्टी शेयरों को सबसे तेज दबाव का सामना करना पड़ा। वाहन और वित्तीय सेवाएं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं भी गिरावट वाले क्षेत्र में शामिल रहे। और सीमेंट, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय बिकवाली दिखाई दी। तो ये कुछ बातें हमारे शेयर जगत के साथ जुड़ी हुई थी। आइए चलते हैं, सोने चांदी के ऊपर नजर डालते हैं। 22 कैरेट गोल्ड है, प्योर गोल्ड इंडिया में 178,300 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से, और 22 कैरेट है 163,454 रुपये, 18 कैरेट है 133,771 रुपये, 22 कैरेट 163,000, 24 कैरेट 178,300, 18 कैरेट 133,771 रुपये। और चांदी है 1 किलोग्राम के हिसाब से 244,900 रुपये, लगभग 100 रुपये कम हुआ है चांदी में। आइए पेट्रोल और डीजल के कीमतों के ऊपर भी नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डीजल का क्या कुछ हाल चाल है। नई दिल्ली में 102.12 रुपये हैं और राजधानी जयपुर में 112.66 रुपये हैं, 84 पैसे कम हुआ है। और वहीं पर डीजल की बात करें तो डीजल राजधानी दिल्ली में 95.20 रुपये है और हमारे राजधानी जयपुर में 97.78 रुपये 72 पैसे कम हुआ है। एलपीजी सिलेंडर का भी क्या कुछ रेट्स है वो भी हम जान लेते हैं। राजस्थान में रेट्स चल रहे हैं 941.50 रुपये 14.2 किलो, और इसके साथ साथ कमर्शियल है 2,701 रुपये। और अगर देखा जाए हमारे राजधानी जयपुर में 945.50 रुपये है यहाँ पर, और 2,776 रुपये है कमर्शियल वाला 19 केजी वाला। और वहीं पर सीएनजी 97.50 रुपये हमारे राजधानी जयपुर के हिसाब से। पेट्रोल डीजल एलपीजी और सीएनजी के बारे में हमने जाना। आइए मुद्रा जगत की ओर चलते हैं। एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन रुपीज है 95.56 रुपये, और एक रियाल के हिसाब से 25.44 रुपये हैं, एक एईडी के हिसाब से हैं 26.02 रुपये।
यूरो के मुकाबले 110.85 रुपये। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी एक्सचेंज रेट्स के साथ भी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं हम आबू रोड के आसपास की ओर, जानते हैं क्या कुछ सूचनाएं हैं, क्या कुछ बातें हैं हमारे सिरोही आबू रोड में। और ये बात हम आपको पहुंचा रहे हैं सिरोही आबू रोड भास्कर के जरिए। तीनों निकायों के मतदान केंद्रों पर पहुंचे पर्यवेक्षक। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव 2026 के संबंध में नियुक्त पर्यवेक्षक भागीरथ विश्नोई जी ने शुक्रवार को द्वितीय चरण के मतदान दिवस को नगर परिषद सिरोही, नगर पालिका पिंडवाड़ा, नगर पालिका अबू पर्वत के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही सारी व्यवस्थाएं भी देखी। सिरोही में 4.84% गिरा मतदान, पिंडवाड़ा में 4.69% कम, माउंट आबू में 80.09% के साथ 1.43% तक बढ़ा मतदान। जनता रो फैसला ईवीएम में 14 ने खुलसी तस्वीर, यानी कि सिरोही नगर परिषद समेत माउंट आबू और पिंडवाड़ा नगर पालिका में हुआ मतदान। तो वार्ड नंबर 18 में भाजपा कांग्रेस समर्थकों में नोकझोंक, 12 में भी विवाद। सिरोही में कम वोटिंग के साथ बदलेगा वार्ड का गणित, और मतदान के दौरान सिरोही में ईवीएम 5 मिनट के लिए बंद। तो ये सारी बातें भी सामने आई हैं। माउंट आबू में युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी दिखाया उत्साह। आधे से ज्यादा वार्डों में 80% के पार मतदान हुआ है। 95 साल की मोरीबाई और गर्भवती सुंदरा ने भी दिखाया जज्बा और दोनों ने वोटिंग की। सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, मंडार, माउंट के लिए 5-5 टेबल तो आबू रोड के लिए 8 टेबल लगेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर जी ने नगर निकाय आम चुनाव 2026 के लिए मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम घोषित किए हैं। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से मिले साइट प्लान और प्रस्तावों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। सिरोही नगर निकाय की मतगणना राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नवीन भवन सिरोही के हॉल में होगी। यहाँ 5 टेबल तय किए गए हैं और स्ट्रांग रूम के लिए इसी स्कूल के नवीन भवन का कमरा नंबर 2 भी तय किया गया है। शिवगंज की मतगणना राजकीय कॉलेज शिवगंज के कमरा नंबर 8 में होगी और यहाँ 5 टेबल रहेंगी। स्ट्रांग रूम के लिए राजकीय कॉलेज शिवगंज का कमरा नंबर 9 तय किया गया है। पिंडवाड़ा की मतगणना राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरा नंबर 7 में होगी। यहाँ 5 टेबल तय किए गए और स्ट्रांग रूम के लिए इसी स्कूल का कमरा नंबर 6 तय किया गया है। वहीं पर सिरोही में निकाय चुनाव में पार्षद के लिए मतदान खत्म होने ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। मतदान के बाद प्रत्याशियों को जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला। दोनों दलों ने स्थानीय कार्यालयों में बैठ करके प्रत्याशियों की हाजिरी ली और इसके बाद उन्हें तय स्थानों की ओर रवाना कर दिया। दोनों दलों को अब सबसे ज्यादा चिंता सभापति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। कई वार्डों में मुकाबला करीबी होने के कारण निर्दलीय की भूमिका भी अहम रहने की संभावना है, जिसके चलते सभापति जी का गणित साधना भी चुनौती बन गया है। और वहीं पर सिरोही में बुजुर्गों को गोद में उठा करके बूथ भी पहुंचाया गया है। और वहीं पर बात करें पाली जालो सिरोही की, रेवदर में पेयजल संकट, लीकेज से सड़कों पर बह रहा है पानी। रेवदर में एक तरफ लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं, तो वहीं पर दूसरे ओर जलदाय विभाग की लापरवाही से रोजाना हजारों लीटर साफ पानी सड़कों पर बह रहा है। पाइपलाइन लीकेज के कारण सप्लाई के समय पानी का प्रेशर कम हो जाता है और पर्याप्त पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। इस मोड़ पर एक हमारे साथी जो रेडियो से जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर आपका स्वागत है, लेकिन फिलहाल उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई है। और अगर बात करें हम रेहड़ी ठेले वालों को मिलेगा 50,000 रुपए तक का कर्ज। शहरी क्षेत्र में रेहड़ी ठेला फेरी लगाने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ये 50,000 रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। इसके आगे की जानकारी हम जानेंगे विस्तार रूप से। इस मोड़ पर एक दोस्त है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ। दीदी जी कैसे हैं आप?
0: जी जी मदन भाई मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ, मगर 2-3 दिन से बढ़िया नहीं हूँ।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: क्या हुआ, मैंने तो बहुत बढ़िया किया, मगर रेडियो है ना अपना मधुबन ही चलता है, मगर वो दूसरा किसी ने मतलब यहाँ से बजता ना वो पिन डाल दिए या कुछ न कुछ है
0: तो नहीं चलता है।
1: हाँ तो मैंने बोला, मगर उन्होंने बोला रोहित भाई को फोन करना, मगर उनका नंबर नहीं है मेरे पास, और 3-4 दिन से वही बज रहा है।
0: क्या बज रहा है? रेडियो मधुबन नहीं बज रहा है?
1: रेडियो मधुबन जो आप अभी प्रोग्राम चला रहे हैं ना वो नहीं बज रहा है।
0: अच्छा ओके।
1: हाँ दूसरा जो खेती है ना वो बज रही है, सुख में संसार बनाए गए वो सब बाबे के गाने।
0: अच्छा ओके ठीक है। ठीक है मदन भाई,
1: ओम नमस्ते, ओम शांति सबको, और
0: नमस्ते ओम शांति। मैं रोहित भाई तक आपकी बात पहुंचा दूंगी। नमस्ते, नमस्ते, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई फोन करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि रेहड़ी और ठेले वालों को मिलेगा 50,000 रुपए तक का कर्ज। शहरी क्षेत्र में रेहड़ी ठेला फेरी लगाने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इस योजना के तहत पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत रेवदर का चयन हुआ है। योजना में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यवसाय के लिए 15,000, 25,000, 50,000 तक का ऋण मिलेगा, और ऋण के लिए सामान्य तौर पर किसी जमानत की जरूरत नहीं होगी। समय पर ऋण चुकाने वाले को अलग चरण में ज़्यादा ऋण का मौका मिलेगा। रेवदर पंचायत समिति के विकास अधिकारी सांवला राम चौधरी जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि ग्राम पंचायत रेवदर क्षेत्र में रोहिड़ा ठेला फेरी लगाने वाले सब्जी फल विक्रेता और चाय नाश्ता विक्रेता, क्षमा करें, रेहड़ी और ठेला और फेरी लगाने वाले सब्जी फल विक्रेता, चाय नाश्ता विक्रेता और अन्य पात्र छोटे व्यवसाय योजना का लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें। पात्र लोग योजना की जानकारी आवेदन प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत रेवदर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और वहीं पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर परिसर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन जारी है। जिले के मीरपुर स्थित जहाज मंदिर श्री मुनि सुब्रत स्वामी जैन जिनालय में पर्युषण पर्व के तहत शुक्रवार को मुनि सुब्रत स्वामी की आकर्षक आंगी रचना की गई है। इसके साथ आबू रोड रेलवे स्टेशन पर खान पान व्यवस्था बदली, ट्रॉलियों से पुराने आइस बॉक्स हटाए गए, रबड़ी और ठंडे पेय सुरक्षित तापमान में रखने के लिए दिए गए नई इंसुलेटेड बॉक्स, यात्रियों को स्वच्छ और ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने, अजमेर मंडल ने आबू रोड रेलवे स्टेशन पर खान पान व्यवस्था में सुधार किया है। स्टेशन पर कार्यरत अधिकृत खान पान वेंडरों की ट्रॉलियों से पुराने आइस बॉक्स हटाकर नए इंसुलेटेड बॉक्स लगा दिए हैं। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतरा जी के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव जी के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पेरवा के विद्यार्थियों ने समाज और अन्य छात्रों के सामने अनूठा उदाहरण पेश किया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यार्थियों को 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली, 3,500 रुपये की पॉकेट मनी भी मिली, लेकिन बच्चों ने ये पूरी राशि स्कूल के लिए संगीत उपकरण जुटाने में लगा दी। तो उन बच्चों के लिए शाबाशी और इसके साथ साथ शुभ भावनाएं, मंगल कामनाएं कि उनके भविष्य उज्जवल हो। और पोसालिया के पास गांव बुड़ेरी में करीब 10 दिनों से लगातार पेंथर दिख रहा है। गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। टीम ने कई बार गांव में गश्त की। पेंथर का गांव में आना जारी रहा। उपवन संरक्षण सिरोही के निर्देश पर शुक्रवार को वन विभाग की टीम बुड़ेरी पहुंची। टीम में ACF दारा सिंह रणावत और सिरोही रेंजर वेरुलाल और बीट प्रभारी राजेंद्र सिंह देवड़ा शामिल रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से जानकारी ली, मौके का निरीक्षण किया और जोताराम मेघवाल जी के घर के आसपास भी मौका देखा। ग्रामीणों को सावधानी रखने के निर्देश दिए गए। पेंथर पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। और वहीं पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। 470 गांवों में योजनाओं की समीक्षा। 330 गांव बड़ी परियोजना से जुड़े। इस मोड़ पर एक और रेडियो साथी हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
2: गुड मॉर्निंग। जय माता दी, कैसे हो?
0: मैं बढ़िया, आप कैसे हो सुरेश भाई?
2: हम भी बढ़िया है
0: जी। तबीयत वगैरह सब ठीक?
2: हाँ, सब ठीक है, बाबा की कृपा है
0: जी। और पिंडवाड़ा का क्या हाल है?
2: बस पिंडवाड़ा में कल नगर पालिका इलेक्शन हुआ है।
0: जी जी जी, ओके। और गणपति जी को लाने के लिए कितने उमंग उत्साह है? क्या आज रामदेवरा जी की भी पूजा की जाती है?
2: लोगों के अंदर उमंग उत्साह है और कल रामसा वीर भी है, तो उसका भी मतलब सबके मन को उमंग और उत्साह के साथ में पालकियां निकलेगी वो भी।
0: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। बाकी आपकी फैमिली में सब ठीक ठाक?
2: हाँ, सब ठीक ठाक है। और बस देखिए, गणपति महोत्सव तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप प्योर मिट्टी की मूर्तियाँ लाइए ताकि गले, नहीं तो भगवान का अपमान होता है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, तो इस बात और का ध्यान रखेंगे जो सुनने वाले हैं।
2: हाँ, और उससे पॉल्यूशन होने से भी बचते हैं, मतलब दोनों तरफ से अपन को बेनिफिट ही है ना।
0: जी जी, राइट राइट।
2: और हमारे तो मंडे को ही मतलब गणपति उसी दिन आएंगे और इलेक्शन का रिजल्ट भी उसी दिन खुलेगा।
0: जी, देखते हैं कि किन किन के विघ्न दूर होते हैं उस दिन।
2: सही बात है, आपने बहुत अच्छा दर्शाया। तो बस कोई रामसा वीर का भजन सुना दो ना फिर।
0: ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।
2: जय माता दी,
0: जय माता दी। तो ये थे हमारे सुरेश भाई फ्रॉम पिंडवाड़ा से। और यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, अल्पविराम के बाद तुरंत मिलते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग अब कार्यक्रम। वक्त हो गया आप सभी से अलविदा लेने का। लेकिन जाने से पहले कुछ जॉब्स की बातें। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी BGSSL में 2049 पदों पर भर्ती है। 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट पर। और वहीं पर IIT BHU में नॉन टीचिंग के 55 पदों पर भर्ती होगी। आमंत्रित किया गया है आवेदन और लास्ट डेट है 24 सितंबर। और वहीं पर MPASI भर्ती 504 पदों पर भर्ती निकली है। 9 सितंबर से आवेदन है, लास्ट डेट है 23 सितंबर 2026। दक्षिण रेलवे में 10वीं और ITI पास के लिए 4471 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है और 27 सितंबर लास्ट डेट है। और वहीं पर रक्षा मंत्रालय में आर्मी ऑर्डिनेंस के लिए भी और 2615 रिक्तों पर भर्ती निकली है, तो 23 सितंबर 2026 लास्ट डेट है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स के लिए। अभी आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्ते।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही

0: संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते निराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम फेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
3: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
5: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच बढ़ाने बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरें। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आशियाना आयो रे बड़ा ठाट सू जुड़ जाई जो श्रोता बड़ा ही प्यार सू आशियाना आयो रे बड़ा ठाट सू जुड़ जाई जो श्रोता बड़ा ही प्यार सू हे विचार सगला कर ले जो नुस्खा भी तो सुन ले जो विचार सगला कर ले जो नुस्खा भी आजमाई ले जो अंताक्षरी में धूम मचाई ले जो जुड़ जाई जो श्रोता बड़ा ही प्यार सू आशियाना आयो रे बड़ा ठाट सू जुड़ जाई जो

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है, दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा आवश्यक है मन की शांति। यह आज का सुंदर सा विचार है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है, दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा आवश्यक है मन की शांति। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और पहले अरबपति थे। 25 साल की आयु में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के स्वामी बने और 31 साल की आयु में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 38 साल की आयु तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाली और 50 की आयु तक वे देश के सबसे धनी व्यक्ति हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, मतलब सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे। एक युवा के रूप में वे अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 साल की आयु में वे बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल झड़ गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के स्नैक्स को पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा, वे न तो सो सकते थे न मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की कि वह एक वर्ष ही जी पाएंगे। उनका वह वर्ष बहुत धीरे धीरे बहुत मतलब पीड़ा में बदल गया। पहले बहुत खुश रहते थे लेकिन भाई मृत्यु का सुना है तो स्वाभाविक है वो दर्द पीड़ा में बदल गया। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों, अकाउंटेंट और प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति को अस्पतालों में अनुसंधान के कार्यों में और धर्म दान के कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत अंततः पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक और डिथीरिया के रोग की दवा की भी खोज हुई। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे 53 साल की आयु तक ही जी पाएंगे, लेकिन वे 98 वर्ष तक जीवित रहे। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपने अधिकांश संपत्ति समाज को वापिस कर दी और ऐसा करने से वे ना केवल ठीक हो गए बल्कि एक परिपूर्णता के एहसास में भर गए। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया और उत्तरोत्तर वे एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका यह परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है। काम और आनंद से भरपूर मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर दिन एक अच्छाई से भर दिया। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा आवश्यक है मन की शांति। आप वो काम भले ना करें जिससे ईश्वर मिले, पर वो काम अवश्य करें जिससे आशीष मिले। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो
मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पुनः आप सभी का स्वागत है आशाना कार्यक्रम में। और आइए, बहुत ही सुंदर अब आपको मैं घरेलू नुस्खे देने वाली हूँ। अगर मसूड़े के रोग हो तो क्या करेंगे भाई? शरीर में कोई भी तकलीफ हो, रिंचक मात्र भी तकलीफ सहन नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है। किसी से बोलना, बातचीत करना, बैठना, उठना, कहीं आना जाना, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि बार बार हमारी बुद्धि उधरी जाती है। कोई बात कर रहे होते लेकिन उस बात से हमें इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे दर्द की तरफ हमारा बुद्धि जाती है कि हाँ ये दर्द कर रहा है, हाँ वो दर्द कर रहा है। तो आइए, मैं आपको बहुत ही सुंदर मसूड़े पर आपको देने जा रही हूँ। मसूड़े के रोग हो जाए तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, ताजे पानी में नींबू निचोड़ करके कुल्ला करिएगा या फिर पीजिएगा। इससे मसूड़े फूलना, मुंह की दुर्गंध आना, ये सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मसूड़े फूलना भी बंद हो जाएगा, दुर्गंध आती होगी तो भी नहीं आएगी। जब आप ताजे पानी में नींबू निचोड़ करके कुल्ला भी करेंगे और पियेंगे तो भी। ठीक है, अगला उपाय है एक भाग नमक, दो भाग फिटकरी, बारीक पीस करके मसूड़ों पर रोज 3 बार मलिए। फिर एक गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी मिला करके कुल्ला करिए। इससे मसूड़े में दांत मजबूत होंगे, रक्त, मवाद, ये सब आना बंद हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, एक भाग नमक लीजिए, दो भाग फिटकरी आपको बारीक पीस करके मसूड़ों पर 3 बार आपको क्या करना है, लगाना है, मलना है हल्के हल्के उंगली से। ठीक है, फिर एक गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी मिला करके कुल्ला करिएगा। इससे मसूड़े और दांत मजबूत होंगे, खून आना, मवाद आना, ये सब बंद हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, बहुत सुंदर घरेलू उपाय। गर्म पानी में नमक मिला करके रोज दिन में 2 बार कुल्ला करिएगा। इससे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। गर्म पानी में क्या मिलाना है, नमक, और फिर पूरे दिन में 2 बार आपको कुल्ला करना है। इससे मसूड़े मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। दांत गलते हो, छेद हो, मसूड़े फूलते हो, खाना खाने के बाद रोज आप सेब खाइए, मतलब एप्पल खाइए। इससे दांत और मसूड़े ठीक हो जाएंगे और खराब नहीं होंगे। तो क्या करना है, अगर दांत गलते हो, छेद हो मसूड़े में, मसूड़े फूलते हो, तो खाना खाने के बाद 1 एप्पल रोज खाइएगा। इससे दांत और मसूड़े ठीक हो जाएंगे और फिर खराब नहीं होंगे। और भी सुंदर उपाय आपको बता रही हूँ। 70 ग्राम गाजर का रस रोज पीजिएगा। इससे मसूड़े और दांत के रोग पैदा नहीं होंगे। 70 ग्राम गाजर का रस आपको रोज पीना है। इससे क्या होगा, मसूड़े और दांतों के रोग पैदा नहीं होंगे। मसूड़ों के ऐसे असाध्य रोग जो दूसरी औषधियों से नहीं मिटते हो, तो मेहंदी के पत्तों के उबले हुए पानी से कुल्ला करिएगा। इससे तो ये रोग मिटना ही है। मसूड़ों के ऐसे असाध्य रोग जो दूसरी औषधियों से नहीं मिटते हो, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, तो मेहंदी के पत्ते को उबालिए और इस पानी से कुल्ला करिएगा, यह असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा। और लास्ट उपाय भी बहुत ही अच्छा है। मसूड़े फूल जाए तो 3 ग्राम सोंठ दिन में 1 बार गर्म पानी से फाकी लीजिएगा। इससे दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मसूड़े फूल जाए तो 3 ग्राम सोंठ दिन में 1 बार गर्म पानी से फाकी लीजिएगा। इससे दांतों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो मसूड़ा फूल रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। और अब क्या करेंगे, अब आप सभी को पता है आज शनिवार है, आज अंताक्षरी कार्यक्रम रहेगा। आज की थीम है बाबा रामदेव पीर के भजन और गणपति जी के भजन, क्योंकि कल है बाबा रामदेव पीर जयंती और परसों है गणेश चतुर्थी। तो इन दोनों ही त्योहारों का आनंद भी लेंगे और आज अंताक्षरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके जरूर आप अंताक्षरी का भी आनंद लीजिएगा। तो यहाँ पर एक गीत सुना करके पुनः लौटेंगे, तो आप जरूर जुड़ने के लिए रेडी रहिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ करके आज के अंताक्षरी कार्यक्रम का पूरा ही आनंद ले सकते हैं। तो ये सुन लेते हैं गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: हाँ जी नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हो आप?
1: बस आज घर पे हूँ, क्या दुकान पे आज तो
0: जी जी जी
1: अंताक्षरी है ना, तो मैंने खेत में जाने का।
0: अच्छा क्या बात है,
1: और बारिश का भी दाना थोड़ा थोड़ा ऐसा वातावरण किया है, देखते हैं अब दो दिन की आधा ही है तो
0: जी जी जी जी जी जी
1: भगवान अच्छा करेंगे। गणपति महाराज का जो त्योहार आ रहा है और रामदेव पीर का बीच भी कल है।
0: हाँ जी, तो अंताक्षरी की शुरुआत आपसे कर लेते हैं कंचन भाई, भले आप गणपति जी पर सुनाइए भले रामदेव पीर पर सुनाइए।
1: हाँ जी, तो शुरुआत गणपति जी के भजन से करते हैं।
0: ठीक है, हाँ जी,
1: क्योंकि अच्छे कार्यक्रम के लिए तो गणपति जी को ही याद करना।
0: जी जी जी, सबसे प्रथम तो उन्हीं को बधाएंगे, गणपति जी को सुना दीजिए।

0: रीति जी दीना दातार देवता, रीति जी दीना या देवान मारा देवता, मेर करो ने महाराज रे, मेर करो ने महाराज रे।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार कंचन भाई, बहुत ही सुंदर आपने शुरुआत की है गणपति जी के भजन के द्वारा, आभार आपका। तो जुड़ते रहिएगा जी जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर आपने सभी ने गणपति जी का इनके द्वारा भजन सुना है। अब मधु जी जुड़ चुके हैं आबू रोड से। नमस्ते मधु जी।
2: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: हाँ जी मधु जी, आप क्या सुनाएंगे?
2: हाँ, मैं गणपति जी का सुना रही हूँ।
1: हाँ जी
2: जी। मारा कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ गजानंद आओ,

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मधु जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी आप रोड से, और हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। नमस्ते
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शांति,
0: हाँ जी सुरेश भाई नमस्ते, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: बस आंटी जी अच्छे हैं, आज 2 घंटे का छुट्टी दी है लाइट वाले ने, बिजली वाले।
0: अच्छा अंताक्षरी, तब तक आप अंताक्षरी में जुड़िए।
1: 2 घंटा लाइट बंद है हमारे यहाँ से, 11 बजे 11:30 बजे आएगी, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छा रहेगा।
0: जी जी जी, तो आज बहन जी को भी जोड़िएगा, बहन जी को भी बहुत टाइम हो गया।
1: हाँ देखो अभी घर पे ही आया हूँ, तो चलो आज बैठता हूँ करते और बात कर रहा हूँ आपसे, और एक दे दो गणपति जी का गाना।
0: हाँ जी,
1: सबसे पहले तुम्हें मनाऊ गणपति सुत महाराज,

0: भगवान गणपति देव माँ भगवान, सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गणपति सुत महाराज, तुम हो देवों का सरदार, तुम हो देवों का सरदार जी। नमस्ते, मैं देता हूँ उसको।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, बहुत सुंदर आपने सुनाया, आभार।
2: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते रेणुका जी, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छे ही है।
1: क्या बात है, बहुत समय के बाद जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में।
2: लाइन में इतना आया।
1: हाँ हाँ, बाकी नहीं, बाकी
2: मैं करना। हाँ हाँ
1: हाँ, बहुत चीटिंग कर रहे थे नहीं।
2: समरू गणपति देवा पीतन ले जो काफी, पीजे समरू साधक माता पिताना वाणी निमण आपी, पहला समरू गणपति देवा विदन ले जो काफी रे, समरू जनवरम भूत पुणे आपो रे, तो ते समरू माता पिता ने मानव वैद्य आपो रे, पाचमे समरू परवे तोरणि पावन दीरु पापा रे, पहला समरू गणपति देवा विघ्न दे जो काफी रे। नमस्ते दीदी।
1: बहु सरस बोला तमे रेणुका बेन, बहु बहु आभार तमारो ना आजे जोड़ा जो हो।
2: अच्छा ने।
1: हाँ ओके, तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से और इनकी युगल रेणुका बहन, दोनों ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन छूटते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। आज की थीम बहुत ही सुंदर है, रामदेव पीरसा का भजन और गणपति के भजन, हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में सुना सकते हैं। प्रथम आने वालों को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आना होगा, ये शर्त है, कंडीशन है, ठीक है? बाकी जरूर आप जुड़िएगा। हेलो
3: हेलो बहन जी, कंचन भाई।
1: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते। हाँ जी सुना दीजिए।
4: रुनु जाना रामा पीर तुम्हारा हाथ माच

0: जी बहुत बहुत आभार कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं आबूराज में, वो भी जुड़ सकते हैं। भाई अंताक्षरी कार्यक्रम आपका अपना है, जो चाहे जुड़ सकते हैं, बहनें जुड़ सकते हैं, भाई लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर थीम है, कल रामदेव पीर जयंती है तो रामदेव पीर पर आपको भजन सुनाना है, परसों गणेश चतुर्थी है तो गणपति बापा पर भजन सुनाना है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते मधु जी।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार मधु जी, कैसे हो?
1: हाँ जी बहुत बढ़िया जी।
0: अच्छा सुना दीजिए आप अपने पसंद का।
1: हाँ रामा पीर का सुना रही हूँ।
0: हाँ जी सुनाइए।
1: चम चम चम के रे बाबा थारो देव रो, चम चम चम के रे

0: பெருக்கு அது மாலருணி ஜாவாழே.
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मधु जी, बहुत सुंदर आपने राम सा पीर का भजन सुनाया है। जुड़ते रहिएगा। तो ये थे मधु जी आबू रोड से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। थीम आज की बहुत ही सुंदर है, रामदेव पीर के भजन और गणपति बापा के भजन। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हाँ जी सुरेश भाई नमस्ते, रेणुका बहन नमस्ते।
2: हाँ जरूर मैं देता हूँ।
1: हाँ जी
2: मैं पहले बोलाता हूँ गाना एक।

0: पूजारी अंगवे तुलोदय स्वामी जय गणेश जय गणेश देवा मातापुरी पार्वती पिता महादेव। नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका रेणुका बहन। अब देखते हैं अंताक्षरी कार्यक्रम में कौन जुड़ते हैं और भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, तो आप जुड़िएगा और गणपति जी के और रामदेव पीर जी के भजन सुनाइएगा। हेलो।
2: हाँ जी।
1: हाँ जी मधु जी, नमस्ते, सुना दीजिए।
2: नमस्कार जी।
1: हाँ जी।
2: हाँ जी,
1: सुना दीजिए, सुना दीजिए।
2: सुना लू?
1: हाँ, सुना दीजिए।
2: हाँ जी।

0: करना।
1: बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी आबू रोड से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। चलिए, हेलो, तो आप जरूर जुड़िएगा। हे रूणी जाना राजा अजमल जीरा कमरा माता मेणा देरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो।

0: पीर जियो, तो बहुत ही सुंदर सुंदर भजन है बाबा रामदेव पीर जी के, गणपति बापा के, तो आप जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो
1: जी
0: मधु जी, आपके बाद अभी कोई जुड़े नहीं है, किसी एक को जुड़ने दीजिए, फिर आपको लेते हैं, ठीक है?
1: जी,
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार। आज मधु जी बड़े खुश हो रहे हैं कि उनका फोन लग रहा है, बाकी वो कहते हैं अक्सर उनकी कंप्लेंट रहती है फोन ही नहीं लगता है, बहुत बिजी चलती है लाइन, अब क्या करे, तो आज मधु जी का फोन लग रहा है, तो देखिए मधु जी तुरंत जुड़ गए, फिर आप क्या सोच रहे हैं? अरे इसके बीच आप भी जुड़िएगा। हेलो,
1: हाँ जी दीदी, नमस्ते, ओम शांति।
0: नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो?
1: बहुत अच्छे है, आपका इंतजार में बैठे थे कब चालू होगा हमारा कार्यक्रम।
0: अरे चालू तो हो गया, आप कौन सी दुनिया में थे?
1: अभी तो हो गया लेकिन लाइट नहीं थी, अभी हाल आ गई लाइट।
0: अच्छा,
1: लाइट नहीं थी
0: तो चलिए आप सुना दीजिए, भले बाबा रामदेव पीर पर सुनाइए, भले गणपति जी पर सुनाइए।
1: वाला हो गया।

0: वाला।
1: बहुत सुंदर सगुना बेन, बहुत बहुत आभार जी। ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। हेलो, तो आप जरूर जुड़िएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि आज की थीम बहुत ही सुंदर है। हेलो
2: बहन जी, कंचन भाई।
1: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते।
2: नमस्ते। ऑनलाइन
1: ऑनलाइन है
2: तो गणपति जी कौन
1: जी
2: गणपति आया।

0: सेवा कोई मळे संत उपदेशी। गुरु जी को भी याद करना चाहिए, गणपति जी को भी याद करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी जी
0: ठीक है,
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया है। अब देखते गुरुदेव और गणपति जी पर, तो बहुत ही अच्छा है। अब देखते कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414-1515-1415। हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जिताना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
2: सुनाता हूँ।
1: हाँ जी,
2: फूल से भरा है दरबार, गजानंद आ जाना महाराज, गजानंद आ जाना। फूल से भरा है दरबार,
1: गजानंद आ जाना। बहुत सुंदर, बहन जी जुड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, समय मिले तो जरूर जुड़िएगा। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अंताक्षरी कार्यक्रम, हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि लास्ट तक ये उमंग उत्साह बना रहे। और जो अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
3: हाँ मैडम नमस्ते।
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं बोला पहला देवासी बोल रहा हूँ, पहलाद देवासी।
1: अच्छा पहलाद देवासी, कहाँ से बोल रहे हैं पहलाद जी?
3: जी मैं वीरेंद्र के पास पीरवा गांव से।
1: ये कहाँ आया, राजस्थान में ही है?
3: हाँ जी जी जी, राजस्थान के सिरोही जिले में जो रिवदर तहसील है ना उसमें गाँव है।
1: अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहलाद जी। आप क्या काम करते हैं?
3: मैं कुछ नहीं, अभी पढ़ाई करता हूँ, भजन गाता हूँ मैं।
1: अच्छा, अरे वाह क्या बात है, भजन गाते हैं आप?
3: हाँ जी मारवाड़ी गाता हूँ।
1: हाँ बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
3: मैं पढ़ाई अभी टेंथ कर रहा हूँ मैं।
1: अच्छा चलिए अच्छी बात है। और रेडियो मधुबन सुनते हैं आप?
3: हाँ जी मैं सुनता हूँ मैं।
1: अरे वाह, फिर जुड़े तो आप पहली बार इस कार्यक्रम में तो।
3: जी जी जी,
1: कैसा लग रहा है?
3: अजीक मैं भजन सुनाना चाहूंगा।
1: हाँ जी सुना दीजिए।
3: अरे गुण बधे आया नर से दिलाया, नर बहनों में सुनाया वो मले ओ बना दीदी। अरे नर बहनों में सुनाया वो मले ओ बना दीदी। गुरु कमरी बात के दियो संत मले उब दीदी।
1: बहुत सुंदर प्रहलाद जी।
3: हल्दी केसर रो गण गीज केसर।

0: ਅਲੀ ਗੁਣ ਗੀਜੀ ਓ ਹਲੇ ਬਣਾ ਦੀ ਜੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਸਰ ਗੁਣ ਗੀਜੀ ਓ ਹਲੇ ਓ ਬਣਾ ਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਮਰੀ ਵਾਦੋ ਗੀਜੀ ਓ ਸੰਤ ਮਾਲੇ ਉਬਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਤਲ ਹੋਏ ਗਣ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਗੁਣ ਕੀਤੀ ਓ ਹਲੇ ਓ ਬਣਾ ਦੀ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਕੀਤੀ ਓ ਮਲੇ ਓ ਬਣਾ ਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਮਰੀ ਵਾਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਓ ਸੰਤ ਮਲੇ ਉਬਦੀ ਸੀ
1: ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ
0: ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ ਓ ਮਲੇ ਓ ਬਣਾ ਦੀ ਸੀ ਆੜਨੇ ਕੇ ਕਾ ਗੁਣ
1: चलिए प्रहलाद जी पहली बार जुड़े हैं, उन्हें पता नहीं है कि पूरा बोलना है नहीं बोलना है, बहुत लंबा भजन है तो बस खाली मुखड़ा बोलना है। सभी से यही कहना चाहेंगे मुखड़ा सुनाएं। ठीक है, कभी कभार एक आध अंतरा सुना दे बात अलग है, बाकी अंताक्षरी कार्यक्रम का नियम होता है कि सिर्फ मुखड़ा सुनाना। ठीक है, और थीम का ध्यान रखें गणपति जी और बाबा रामदेव पीर। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी मधु जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: हाँ जी सुना दीजिए।
2: हाँ जी, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे ग्वाले, छोटे छोटे गणपति टोले छोटे छोटे ग्वाल, गणपति आवे मारा कीर्तन में राजे, गणपति आवे मारा के तन मेरा जे, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे ग्वाल, रुणक झुणक आवे कीर्तन मेरा जे, रुणक झुणक मेरे कीर्तन मेरा।
1: बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जोशी आबू रोड से, बहुत ही सुंदर आपने भी भजन सुनाया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमारे सभी श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं। अब यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे। आप ऑफ एयर भी जुड़ सकते हैं, ऑन एयर भी जुड़ सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
3: जय माता दी, जय श्री हरि।
2: जी जय श्री हरि।
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी भक्तों को बाबा दूज और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
2: जी,
3: और अंताक्षरी चल रही है, बहुत ही बढ़िया है। एक तरफ बाबा दूज आ रही है, दूसरी तरफ अपने गणेश चतुर्थी भी आ रही है। तो मैं तो यही कह, देखिए चारों तरफ मतलब हर्षोल्लास, मतलब एक बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है। और गणपति जी को घर लाने की सभी जगह एक खुशी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप गणपति जी को घर पे लेके आए, मगर प्योर मिट्टी की लेके आए, ताकि आप आधी गली हुई मूर्ति को आप कहीं छोड़ो ना और उनका अपमान ना हो।
2: ये हम बात करेंगे आशियाना कार्यक्रम में। अभी गणपति जी का आने दीजिए। हाँ, पहले तो ये अपन बोलते ही रहते हैं।
3: अरे आने दीजिए, पहले से बोलते हैं ना तो ठीक रहता है ना।
2: हाँ हाँ, वो
3: बात तो क्या होगा।

0: पक्का। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम। हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं। थीम बड़ी अच्छी है, रामदेव पीर के भजन और गणपति जी के भजन। हेलो हेलो नमस्ते। चलिए जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। तो चलिए फिर से हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी सगुना बहन, आप थोड़ा सा अपने रेडियो सेट को दूर रख के फिर बात करिए तो ये आवाज नहीं आएगी
1: जी।
0: हाँ जी
1: हाँ जी।
0: अच्छा मधु जी।
1: हाँ जी
0: हाँ सुनाइए सुनाइए।
1: हेलो।
0: हाँ जी मैं सुन रही हूँ सुन रही हूँ।
1: खम्मा खम्मा।

0: आखों गुजरा तरो अज माल जीरा कंवरा खम्मा खम्मा ओ बाबा रूणी जेरा धनिया साने तो जावे आखो मारवाड़ो आखो गुजरा तरो अज माल जीरा कंवरा।
1: बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी आबू रोड से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। संग चलिए हम बाद में सुनाएंगे, पहले हम अपने श्रोता बंधुओं का सुनेंगे। हेलो, फिर से कोशिश करिएगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। हेलो
2: दीदी, नमस्ते। सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
2: रामदेव जी का एक भजन सुनाता हूँ दीदी।
1: हाँ जी।
2: हेलो मारो साबुड़ो ने रणु जाना राज, हेलो मारो साबुड़ो ने रणु जाना राज,
3: हुकम करो तो जात राय जाए मारो। हेलो साबुड़ो ओ जी
2: के धीरे मारो,
3: हेलो साबुड़ो ओ जी।
2: नमस्ते दीदी
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहन जी जुड़ेंगे?
2: नहीं, वो तो मैं थोड़ा बाहर हूं इसलिए।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवा जोटाना से, और आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं।

0: यारा। हेलो।
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
1: बाबा गवरी जे बारा गले मोती माला हाथ में भरके बाला हम सबो तारे तेरी आरती हो रामा रिमझिम तारे
0: मेरी
1: तेरी आरती।
0: आरती।
1: थैंक यू बना।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम। आप हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में सुना सकते हैं रामदेव पीर के भजन, गणपति जी के भजन। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। आज की थीम भी बहुत ही सुंदर है, राम सा पीर के भजन और गणपति जी के भजन। हेलो।
2: हाँ ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति सगुना बहन।
2: हाँ एक गाना सुना।
0: हाँ जी।

0: ओम शांति।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सगुना बेन झोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। बहुत सारे श्रोता बंधु जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं और वो भी अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि।
2: लीलो लीलो घोड़ो रामा हंस लो रे रामा हंस लो रे उबो सरवरिया वरी पार पार ओ राम पाप धरो तीर जी देवड़े हो रामा देवड़े हो
1: जी। बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। देखिए कल ही रामसा पीर जयंती है। यह पर्व क्या है? हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया माने भादवा सुदी बीच को मनाया जाता है और इस बार कल है वह आप सभी को पता है। जन्म और परिचय भी मैं आपको देना चाहूँगी कि बाबा रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी लगभग विक्रम संवत 1409 में। चलिए आगे की जानकारी बाद में। हेलो
3: जी, नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
3: सुनाता हूँ गाना।
1: हाँ जी।
3: देवा हो देवा
1: गणपति देवा तुमसे बढ़कर को समी तुमसे

0: जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर गणपति जी का भजन सुना है। और आपको बता रही थी रामसा पीर का, पोकरण के पास रूणीचा जो राजस्थान में आया है, जैसलमेर जिले में पड़ता है ये, तो वहाँ पर हुआ। उनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और माता का नाम मैनावती था। स्वरूप मान्यता ऐसी है, हिंदुओं द्वारा उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार और मुसलमानों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। हेलो,
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, नमस्ते मधु जी,
1: नमस्ते जी,
0: सुना दीजिए जी।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी।
1: रोज में उठा ले मेरी माँ गजानंद छोटो सो, गोद में उठा ले मेरी माँ गजानंद छोटो सो, मेरे गजानंद से छोटे छोटा मुख है, मेरे गजानंद का छोटा छोटा सिर है, मुकट पहना दे मेरी माँ गजानंद छोटो सो, मुकट पहना दे मेरी माँ गजानंद छोटो सो।

0: नंद
1: जी बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, तो ये थे मधु जी आबू रोड से। बहुत ही सुंदर हमने गणपति जी के ऊपर भजन सुना है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। यहाँ पर कोई अक्षर नहीं, कोई शब्द नहीं, आप अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। थीम भी बहुत अच्छी है, रामसा पीर के और गणपति जी के। तो बहुत सारे भजन है, आप याद करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। हेलो,
0: जय माता जी, जय श्री
1: हाँ
0: हरि।
1: जी, जय श्री हरि।
0: भादर वेरी दूज ने, हाँ भादर वेरी दूज ने, चंडो करे प्रकाश, राम देव बने आवे सी थोड़ो, मन में राख विश्वास, अजमल मन में राख विश्वास।
1: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। देखिए, रामसा पीर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। वैसे ही कोई किसी को याद नहीं करता, ठीक है। कहते हैं ना, गुणों की महिमा होती है, अच्छे कर्मों की महिमा होती है। बाकी तो इस दुनिया की भरी भीड़ में कौन किसको याद करेगा। हेलो,
0: हाँ जी दीदी, ओम शांति।
1: हाँ जी, ओम शांति सगुना बहन।
0: हाँ,

0: गजानंद गणपति बापा आवे छे। ओम शांति।
1: ओम शांति जी, बहुत सुंदर। तो ये थे सगुना बहन। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो, फिर से आप कोशिश कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो आपको बता रहे थे कि ऐसे कोई नहीं याद करता किसी को, है ना। कोई जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हम दुनिया को अच्छा देते हैं तो वहाँ पर महिमा होती है। बाकी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आ करके चले जाते हैं, पता ही नहीं होता है कि कब जन्मे और कब गए। हेलो।
2: हाँ जी।
1: हाँ जी मधु जी, नमस्ते। सुना दीजिए
2: जी,
1: सुना दीजिए।
2: हाँ जी,
1: हाँ जी, सुना दीजिए, सुना दीजिए।
2: हाँ जी,

0: बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी आबू रोड से, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो, चलिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। तो आपको बता रहे थे कि देखिए विशेषताओं के बिना कोई किसी को याद नहीं करता, तो रामसापीर में बहुत सारी विशेषताएं थी। सामाजिक उत्थान उन्होंने बहुत किया था, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, दलितों और जरूरतमंदों की सेवा और उत्थान के लिए समर्पित किया। सांप्रदायिक सद्भाव उन्होंने बनाए रखा, वे बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म और जातियों के लोगों का सम्मान करते थे, उनका मानते थे। हेलो,
1: माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।

0: थैंक यू बहन।
1: आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और देखिए रामसापीर में बहुत सारी विशेषताएं थी, उसी वजह से आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। हेलो,
2: हाँ नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई जी, मुझे जाने।
1: हाँ जी सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
2: मैं प्रोग्राम सुन रहा था और कल भी मैंने प्रोग्राम सुन रहा था दीदी। मैं मुंबई गया हुआ हूँ।
1: अच्छा।
2: जो मेरी बहने वहाँ रहती है ना, वहाँ पर कुछ काम के लिए।
1: अच्छा।
2: तो चलो मैं अंताक्षरी में तो भाग नहीं ले सकता क्योंकि मुंबई में तो इतनी ज्यादा व्यस्त लोग, भीड़ भाड़ सब है। तो बस यही मैंने गणपति बाका बापा का जो अंताक्षरी का है ना विषय, इसलिए चलो याद कर लो। और दीदी मैं 2 साल के बाद मुंबई आया हूँ
1: जी।
2: तो मैंने सब देखा कि इतना डेवलप विकास हुआ है ना दीदी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे ना हुए ना, तो अगर हम नीचे खड़े होंगे तो ऊपर देखे तो चक्कर जैसे आने लगे, मतलब बहुत बहुत भीड़ हुआ। और कई ऐसी मुझे यादें हैं, तो चलो ज्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ठीक तो याद करोगे। चलो
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। और आप जुड़ ही गए तो एक भजन सुना दीजिए। हाँ कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे।
2: देवा गणपति
1: देवा, ये तो हो गया। तुरंत ही चेंज कर दीजिए, तुरंत ही आप दूसरा सुना दीजिए। ये सुना दिया सुरेश भाई जोटाना वालों ने।
2: जी, मैं याद करके दीजिए, अगर मैं जुड़ पाऊँ तो मैं पीछे में।
1: जी जी, भले आप ऑफ एयर जुड़िए, ऑन एयर जुड़िए, एक भजन जरूर सुनाइएगा। ठीक है
2: ठीक है ठीक है
1: ठीक है, चलो सभी को याद दीजिएगा। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। बाकी रामसापीर की बात चल रही थी, तो उनके तो चमत्कार जग जाहिर है, तभी दुनिया उनको याद करती है। बहुत सारे दुखों के दुख उन्होंने दूर किए हैं। आंधा ने आखड़िया दीनी, लूला ने है पाँव, तो मतलब हर एक प्रकार के लोगों की उन्होंने मदद की है। जैसे महाराष्ट्र में सिड्डी वाले साई बाबा फेमस है, ऐसे राजस्थान में राजस्थान के लोक देवता रामसापीर फेमस है। हेलो,
3: राजस्थान और गुजरात में
1: जी, वैसे तो मध्य प्रदेश वाले भी आते हैं, महाराष्ट्र वाले भी आते हैं, गुजरात के तो बहुत सारे आते हैं,
3: गुजरात और राजस्थान में ज्यादा है
1: जी।
3: ये तो ये और एक वीर तेजा
1: जी,
3: मैं रामसापीर का एक जो आज सुनाता हूँ
1: जी।

0: ಮದಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ. ಜಯ ಮಾತಾ ಜಯ.
1: जी बहुत बहुत आभार. तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से. अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं. तो आपको बता रहे थे कि इस तरह बहुत ही चमत्कारी कार्य भी उन्होंने किया है. और हेलो.
2: हाँ जी नमस्ते.
1: हाँ जी नमस्ते. नमस्ते सुरेश भाई.
2: हाँ
1: जी.

0: चले कोई बात
1: नहीं। नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। रूणी छारी धरती धन्य, जटे राम सा पीर बिराजे, भक्तारी हर आस पूरी, बाबा सबने गले लगावे। जात पात रो भेद मिटायो, मानवता रो पाठ पढ़ायो, सेवा प्रेम और भाईचारा रो सुंदर संदेशो जग में फैलायो। हेलो हेलो, नमस्ते। अरे बोलिए तो सही, जुड़ते हैं तो बोलिएगा जरूर, ठीक है? बाकी तो फिर जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपका फोन बड़ी मुश्किल से लगता है, तो आप जरूर बात करिएगा। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि।
2: धन राम दे परनावी परनी जो स्वाती है रे जी, धन रा बाबा राम दे परनावी परनी जो स्वाती है रे जी। इन रे जुगड़ा में उस गाई मत कर बाप जी, बाबा राम दे परनावी
0: जी। बहुत बहुत आभार। भात भारी ग्यारह सावा मेलो रंग बिरंगो लागे, राम सा पीर री जय बोलता हर भक्ता रोमन हर के। हेलो हाँ जी मदन भाई, नमस्ते
3: जी, कैसे हैं?
0: हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ मैं, और टाइम की तरफ नजर डाला मैं कि हाँ आज तो कौन सा वार है, शनिवार है, क्या पता क्या चल रहा है, अंताक्षरी है या
0: अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है, और आप जुड़ सकते हैं रामसा पीर और गणपति जी के भजन सुनाने हैं।
3: भजन सुनाने?
0: हाँ जी,
3: कोई भी
0: नहीं, रामदेव पीर और गणपति बापा पर।
3: रामदेव पीर का
0: जी,
3: बाबा रामदेव जीओ ताने है कम्मा गणी, अजमाल जी का कवरा ताने है कम्मा गणी, बाबा रामदेव जीओ ताने है कम्मा गणी।
0: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मदन भाई।
3: जी जी जी,
0: हाँ जी। दूर दूर सु भक्त पधारे, माथे श्रद्धारी धोक लगावे, रूणी चारा धनी रामदेव जी सबने सुख शांति देवे, बाबा थारी महिमा न्यारी, थारो नाम अमर रेसी, थारी कृपा झटे पड़ जावे, घर उन घर में खुशहाली रेसी, उन घर में खुशहाली रेसी। हेलो
4: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते, सुना दीजिए।
4: हाँ

0: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सगुना बेन छोटाना से, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। चलिए यहाँ पर हम हमारे श्रोता बंधु लगातार जुड़ रहे हैं, इसलिए हम ब्रेक भी नहीं ले पा रहे। हेलो, अच्छी बात है। हाँ जी सुरेश भाई, नमस्ते।
1: जुड़ रहे, अच्छी बात है सभी।
0: जी जी जी।
1: चलो मैं एक रामदेव जी का वचन सुनाता हूँ।
0: हाँ जी।

बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया है भजन। और अब यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के लौटते हैं पुनः, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि।
1: नहीं, खम्मा गणेशा, आज तो रामदा फिर चल रहा था।
0: खम्मा गणेशा, खम्मा गणेशा।
1: हाँ तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है?
0: हाँ जी।
1: हलो हर जी दे बड़े ने मिल के रामा पीदे, सुखिया ने सुखिया करे बाबो साजा करे रे शरीर।

0: ಗಣಿ ಗಣಿ
1: ಕಮ್ಮಾರೆ जी, बहुत बहुत आभार। जहाँ गणपति का नाम लिया जाए वहाँ हर संकट दूर हो जाए, बुद्धि मिले विवेक मिले, जीवन में सुख सौभाग्य खिले। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं और अंताक्षरी में भाग ले रहे हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़िएगा और अंताक्षरी में भाग जरूर लीजिएगा। आज की थीम बहुत ही सुंदर है, रामदेव पीर भजन और गणपति जी के भजन। और हमारे श्रोता बंधु देखिए कितने अच्छे अच्छे भजन सुना रहे हैं, शेर शायरी सुना रहे हैं। तो आप भी साइलेंट मत बैठिएगा, अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको भी जो आता है आप जुड़ के सुना सकते हो, ठीक है? तो जरूर आप कोशिश करिएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार।
0: क्या बात है, आज मौसम बड़ा सुन शाम लग रहा है और बारिशों का चारों तरफ सुगंध आ रही है
1: जी। सुनाइए मदन भाई।
0: सुनाऊं गाना? सुनाऊं?
1: हाँ जी।

0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और देखिए, सामाजिक संदेश भी रामसा पीर से बहुत मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत सारे कार्य किया और गरीबों व वंचितों की सेवा भी की। हेलो
1: जी, नमस्ते। सुरेश भाई बोलता हूँ जोटाना से।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई।
1: लीला पीड़ा तराने जाफर के, लीला पीड़ा तराने जाफर के, मिले मेरे पधारो मारा वीरा, दे राम दे।
0: सुरेश भाई, ये सगुना बेन ने सुना दिया, तुरंत ही चेंज कर दीजिए, दूसरा सुना दीजिए। हाँ जी,
1: बाबा राम दे परणावे, कन परणो भाती हर जी, परणो भाती हर जी। नमस्ते जी।
0: ये भी हो गया।
1: अच्छा चलो,
0: ये भी हो गया। आप
1: उतारो आरती गणपति घेरे आ गया, उतारो आरती गणपति घेरे आ गया, आ गया ने मा बोध के बनाया, लाया नमना बोध के बनाया, उतारो हाथी गणपति घेरे आ गया। नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। देखिए, रुणीचा धाम मेला लगता है जो जैसलमेर के रामदेवरा, जिसको रुणीचा कहते हैं, ठीक है, वहां पर बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर हर साल विशाल मेला लगता है। और यहाँ पर दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पैदल चल करके दर्शन करने पहुँचते हैं। पूजा अर्चना इस दिन भक्त बाबा के पंगलिया की, वो कहते हैं ना के आंधा ने आकड़िया देनी पांगलिया ने पाँव, तो मतलब पंगलिया यानी चरण चिन्हों की पूजा करते हैं और उन्हें कपड़े से बना घोड़ा चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। राजस्थान में इस दिन कई जगहों पर सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
2: मैं सुना रहा हूँ, ठीक है।
0: हाँ जी,
1: तुम्हारा सुर की पदारे अजमल अवतार लियो, लाछ गणाओ तारे हंडिया, हर जी भाती शमर दोड़ो, वे कुंतो मेरा माँ और हरिया,
0: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, पिंडवाड़ा से। कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप समझ सकते हैं, आवाज़ से आप पहचान जाते हैं कि कौन है सुरेश भाई, पिंडवाड़ा वाले और जोटाना वाले कौन है। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम। और देखिए, समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आपके पास अब समय कम बचा है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते सगुना बेन।
3: ओम शांति।
0: ओम शांति जी।
3: हे गणपति आयो बापा, दिसी दिला, एक बार हो गया दीदी?
0: नहीं हुआ, सुना दीजिए।
3: हे गणपति आयो बापा, दिसी दिलायो, भजन आयो दुसी दिलायो, गणपति आयो बापा दुसी दिलायो। ओम शांति
0: जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका सगुना बहन। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और समय देखिए तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत कम समय आपके पास बचा है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। हेलो,
2: जय हो शंकर
0: जी।
2: जय माता दी,
0: जय श्री हरि। हाँ जी,
2: रूणी जी का धनिया, माल जी का कवरा रानी, अरे ਨੈਣਾ ਦੇਰਾ ਲਾਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਲਵਾ ਪਸਾਰ ਮਾਰੇ ਹੇਲੋ ਸਾਂਬੜੇ
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सभी ने भजन सुना है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से उनके द्वारा। और देखिए समय आगे बढ़ता जा रहा है तो आप जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो, नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी मधु जी सुनाइए।
4: हाँ जी, न तो सुमरूंगी देव जाने शारदा तो सुमरू, मैं तो सुमरूंगी देव गणेश शारदा तो सुमरू, और पहले सुमरू सरस्वती और पीछे देव गणेश, उनके पीछे गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु माले, शारदा तो सुमरू, मैं तो सुमरूंगी देव गणेश शारदा तो सुमरू, गंगा नाव सरस्वती यमुना से देव गणेश, त्रिवेणी से गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, शारदा तो सुमरू, मैं तो सुमरूंगी देव गणेश शारदा तो सुमरू।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी, बहुत ही सुंदर आपने गणपति जी का भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। प्रथम मनाय गणेश को ध्याउ शारदा मात, मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमाऊ मात। हेलो,
5: शांति।
0: हाँ जी सगुना बहन, ओम शांति।
5: कैलास की गाड़िया मी रे गणपति बापा, कोने कोने साथ लाई रे गणपति बापा, बापा ने साथ लाई रे गणपति बापा, कैलास की गाड़िया मी रे गणपति बापा, ओम शांति।
0: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से।

आ रही है। हेलो हाँ जी कंचन भाई नमस्ते। हाँ जी सुनाइए सुनाइए।

પેલો પરચો પીરે પારણિયા માં પૂરો કંકુ ના પગલે પધાર્યા

0: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मधु जी, और देखे फिर भी तुरंत याद आ गया और आपने सुना दिया। तो भाई इस तरह आप भी जुड़ सकते हैं, और अब आपके पास 2 मिनट है। जो नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जरूर जुड़े। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जेताना।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
1: सुना दीदी गणपति जी का गाना।
0: हाँ जी।
1: गणपति बापा मोरिया अगले जल्दिया, गणपति बापा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया, मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे, मेरे दुख ये तू कैसे अनजान रहे, मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे, मेरे दुख ये तू कैसे अनजान रहे, गणपति बापा मोरिया
0: अगले बरस तू जल्दिया। जी आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब लास्ट में कोई भी आप एक जुड़ सकते हैं और एक गीत सुना सकते हैं, उसके बाद बस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। वो भी आप 10 सेकंड में जुड़ जाएंगे तो, नहीं तो फिर हम कार्यक्रम यहीं समाप्त कर देंगे। तो हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी जय श्री हरि।
2: सुनो।
0: हाँ जी।
2: अजमल भगती किनी हदबारी रे, अजमल भगती किनी हदबारी रे, तन मन तपस

0: ठीक है, जब आगे और सुनाओ
1: जी। नहीं बस, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और बस अब कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, अब कोई भी फोन कॉल्स नहीं करेंगे, ठीक है। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर चला है, जो आप सभी ने सुना है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे मिले हैं आप सभी को कि अगर मसूड़ों का रोग हो जाए तो क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर उपाय आज आपको बताया है, तो आप आजमा सकते हैं। और फिर अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह चला, हमारे श्रोता बंधुओं ने बहुत ही उमंग उत्साह से भाग लिया, जुड़े और अच्छी तरह भजन सुनाए हैं। तो नाम सुनाना चाहूंगी, फिरोज भाई पालनपुर से आप एक बार जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से आप 5 बार जुड़े हैं, सुरेश भाई जोटाना से आपने 9 बार प्रस्तुतियां दी है, रेणुका बहन जोटाना से आप 2 बार जुड़े हैं, सगुना बहन जोटाना से आप 7 बार जुड़े हैं, पेलाद देवासी आप 2 बार जुड़े हैं, सुरेश भाई धानेराव से आपने भजन नहीं सुनाया, ऐसे ही बातचीत की, मदन भाई मेहसाना से आप 3 बार जुड़े हैं, और मधु जोशी आबू रोड से आपने 11 बार प्रस्तुतियां दी है, और आज के विनर है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने 13 बार प्रस्तुतियां दी है। तो पहले तो हम सुरेश भाई के लिए तालियां बजाना चाहेंगे, ढेर सारी तालियां आपके लिए। फिर देखिए आप सभी भी जुड़े, बहुत सुंदर सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां दी है। कहते हैं ना, जीतना हारना ये कोई मायने नहीं रखता है, मैदान में कोई उतरे ही नहीं तो क्या मतलब है ना, इसलिए जीत हार ये कोई कोई डिफिकल्ट तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी उमंग उत्साह से जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि अरे हमारा नंबर नहीं आया तो हम नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं नहीं, एंजॉय करिए आप अंताक्षरी में, ठीक है। तो बहुत सुंदर आपने प्रस्तुतियां दी, तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, जिंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतर तब होती है जब दूसरे लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, आप सभी को रामसा पीर जयंती की इन एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब मिलेंगे आप सभी से सोमवार को, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया होंगे आशा करते हैं। एक के बाद एक त्यौहार मना रहे होंगे, रक्षाबंधन गया, जन्माष्टमी गई, है कि नहीं? बहुत सारे त्यौहार गए, ये मेहनत तो सब त्यौहार ही त्यौहार है। और घर में सब कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा करते हैं और शुरू करते हैं। परवा पंडिताइन आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत, आपका अपना प्रोग्राम पंडिताइन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं, शराब की पार्टी। सूरज, सुरेश, रमन तीनों दोस्तों ने अलग से समीर को पार्टी करने के लिए कहा रहा। देख समीर, तेरा जन्मदिन पर शराब की बोतलें खुलेंगी, जमकर डांस होगा। सूरज के दो फलेट हैं, एक फलेट खाली पड़ा है, सूरज वही पार्टी की व्यवस्था कर देगा। दोपहरिया को 12 बजे पार्टी शुरू करेंगे और शाम तक पार्टी चलेगी। ये बात समीर को 2 दिन पहले ही सुरेश ने बता दी थी। समीर ने घड़ी में देखा तो दोपहरिया के 11 बज चुके थे। समीर माँ के नज़दीक आकर कहे लगा, मैं जानता हूँ शाम को पापा मेरे लिए केक लेकर आएंगे। हर साल आप मेरा जन्मदिन मनाते आ रहे हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे दोस्त भी बड़े हो चुके हैं। माँ ने समीर को खुश रखने के लिए कहा, तुम अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हो, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे रही हूँ, दोस्तों के साथ तुम पार्टी कर सकते हो। समीर का चेहरा उतरा देख माँ ने 1,000 रुपये और देते हुए कहा, अब तो ठीक है, पूरे 2,000 रुपया तुम्हें मिल चुके हैं। समीर को याद आया सुरेश ने कहा था, पूरे 5,000 रुपये मांगना अपनी माँ से, तभी हम खुलकर पार्टी कर सकते हैं। समीर ने जिद करते हुए माँ को बताया, मुझे पूरे 5,000 रुपया चाहिए, हम सब दोस्त खुलकर एंजॉय करेंगे, खूब खाना पीना होगा। तब माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, समीर बेटा, शाम को पापा भी तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए तोहफा लाएंगे। समीर ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे 5,000 रुपया दे दो, ये बात पिताजी को मत बताना। माँ ने 5,000 रुपये देते हुए समीर से कहा, इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माँ का चेहरा थोड़ा उतर सा गया था, लेकिन समीर का ध्यान कहीं और ही था। समीर ने घड़ी में देखा तो 12 बजे वाले हैं। समीर ने बाइक निकाली, हेलमेट पहना, इतने में सुरेश का कॉल आया। सुरेश ने कहा, हाँ समीर, कहाँ पर हो, घर से 5,000 रुपया मिले कि नहीं मिले? समीर ने सुरेश को बताया, मैं पहले ठेके जाऊँगा, वहाँ से शराब की बोतलें, खाने पीने का सामान लेकर तुम्हारे पास अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ। 1 घंटे के बाद सुरेश ने सूरज से कहा, दोपहर 1 बज चुका है, समीर अभी तक नहीं आया। रमन ने कॉल मिलाया मगर समीर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। सुरेश ने घड़ी में देखा तो दोपहरिया के 2 बज गए। रमन ने सुरेश को कहा, शराब की दुकान तो पास

नहीं है। इतना समय समीर को कैसे लग रहा है, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। घड़ी देखते देखते तीनों दोस्तों की शाम हो गई। तीनों आपस में बोले, समीर ने हमें धोखा दिया है। शाम के 6 बज चुके थे। समीर के तीनों दोस्त समीर के घर चल पड़े ये पता लगाए के लिए कि समीर घर पर है कि नहीं। समीर के घर आस पड़ोसी जमा हो चुके थे। कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे। केक की तैयारी हो चुकी थी। तभी समीर की माँ ने सूरज, सुरेश, रमन तीनों दोस्तों को आते देखकर कहा, समीर शायद तुम तीनों के पास गया था पार्टी के लिए, अभी तक समीर घर नहीं आया। रमन ने बताया, आंटी जी 12 बजे समीर का कॉल आया था। वो कह रहा था रास्ते में हूँ, फिर उसके बाद कॉल स्विच ऑफ आने लगा। ये बात सुनकर घर में एकदम सन्नाटा छा गया। फ्लैट में खड़े लोग कुछ और सोचने लगे। होता है ना भाई, इससे पहले तभी समीर दरवाजे पर आता नजर आया। सब ने समीर को घेर लिया। समीर के पिता समीर का हाथ पकड़ के केक के पास ले आए। सब लोगों की मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुरेश ने पूछ लिया, समीर तुम घर से 12 बजे निकले थे, अब शाम के 6 बजे आए हो, 6 घंटे से कहाँ लापता थे? माँ ने भी गुस्से से पूछ लिया, मैंने दोपहर को 5,000 रुपये दिए थे, तुमने उन रुपयों का क्या किया, सबको बताओ। तब एक पड़ोसन बोली, तुम्हारा बेटा समीर अब बड़ा हो गया है, गलत जगह पैसा खर्च करके आया है, इतनी बड़ी रकम तो हमने भी अपने बच्चों को नहीं दी, समीर बिगड़ चुका है, हमें तो शक है किसी लड़की बाजी में पैसे उड़ा कर आया होगा। कुछ रिश्तेदार तो मनी मन आनंदित हुए जा रहे थे। आस पड़ोसी भी यही चाहते थे कि समीर से गलती हो। तभी दरवाजे से एक अधेड़ आदमी झांकता दिखा, फिर घर के भीतर आ गया। समीर के पास खड़ा होकर बोला, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। दोपहर 12 बजे सड़क किनारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मेरा एक हाथ जेब में था। आते जाते लोग मुझे देखते फिर चले जाते। ना तो मैं बोल पा रहा था ना सुन पा रहा था, लेकिन दिखाई दे रहा था। तभी एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। उसने तुरंत पास की दुकान से पानी की बोतल खरीदी और मुझे पानी पिलाते हुए कहा, अंकल जी सड़क किनारे क्यों बैठे हो, का घर बार नहीं है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तब मैंने कहा, घर जाकर का करूँगा, कबाड़ी का काम करता हूँ, मेरे पिताजी का आज देहांत हो गया, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए जहाँ मैं कबाड़ी का सामान बेचता था वहाँ से बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये उधार लिए थे कि पिताजी का अंतिम संस्कार कर दूंगा, लेकिन बस में चढ़ने से पहले ही किसी ने मेरी जेब काट ली। अब वो कबाड़ी वाला भी दोबारा पैसे नहीं देगा, बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, आस पड़ोसी सब जमा हो चुके हैं, मैं खाली हाथ किस मुँह से जाऊँ। मैं बिलक बिलक कर रोए लगा। हम गरीबों के पास दौलत तो नहीं होती साहब, लेकिन बस एक सम्मान ही होता है। तब उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और मुझे मेरे घर ले गया। लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मेरे घर आते ही मेरा छोटा बेटा दीपू बोला, पापा तुमने रुपए लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? पड़ोसी तरह तरह की बातें बना रहे थे। तब उसने 5,000 रुपये निकाल कर मेरी बीवी कुसुम देवी को देते हुए कहा, अंकल जी को बस नहीं मिल रही थी इसलिए अंकल जी को मैंने बाइक पर बिठा लिया, और उनके रुपए रास्ते में गिर ना जाए इसलिए मैंने अपनी जेब में रख लिए थे, ई लो अंकल जी के 5,000 रुपये। तब मेरी बीवी ने कहा, इन रुपयों को तुम अपने पास रखो, जहाँ जहाँ खर्च होंगे करते चले जाना। 450 रुपये की अर्थी लेकर सजाई गई। उसने मेरे बूढ़े पिता को कंधा देते हुए शमशान तक आया। वहाँ 2,500 की लकड़ियाँ खरीदी। पंडित जी ने देसी घी मंगवाने के लिए कहा
तो 2 किलो देसी घी 1,000 रुपये का मंगवाया। 5,000 रुपये में से जो रुपये बचे वो पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दिए। शाम को वो शमशान से हमारे घर आया, मोटरसाइकिल पर बैठा और कहा, कुछ दूरी पर हमारा घर है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें घर आना है। उसने अपना पता बता दिया, तब मैं इस समीर को जन्मदिन की बधाई देने चला आया। माँ की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी, मैंने कहा था समीर, इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आज एक बेटे ने माँ की लाज रख ली। समीर के तीनों दोस्त आज बहुत खुश थे कि हमें समीर जैसा मित्र मिला। रिश्तेदारों के तो गाल फूल चुके थे समीर का ये पुण्य का काम सुनकर। समीर के एक दूर के रिश्तेदार ने कहा, अपनी खुशियों से बढ़कर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। फलेट में खड़े मौजूद सभी लोगों ने एक साथ कहा, समीर जैसा बेटा भगवान सबको दे। केक कटा और सब में बटा। समीर ने एक बड़े से डिब्बे में बहुत सा खाना पैक करके उन अंकल जी के हाथ में थमा दिया। अंकल जब घर पहुंचे, बच्चों से कहा, तुम सुबह से भूखे हो, लो मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूं। बच्चों ने जब डिब्बे खोले तो एक डिब्बे में नोट रखे हुए थे, साथ में एक लेटर भी। लेटर में लिखा था, मैं समीर का पिता आपको 5,000 रुपये और दे रहा हूं। इस समय तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और आपके पिता की 13वीं का पूरा खर्चा भी हम उठाएंगे। मैं आज आपको धन्यवाद दे रहा हूँ इसलिए कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा एक गुनाह करने से बच गया। वो गुनाह है कौन सा? शराब की पार्टी। वो करके तो झूमते कहीं गिरते, लेकिन कितना बड़ा पुण्य किया। तो देखिए भाइयों बहनों, कई बार हम किसी को का समझते हैं और वो का निकलता है, लेकिन आजकल ऐसे लोगों की सही में बहुत कमी भी दिखती है। ऐसे कितने लोग होंगे, हम नहीं समझते कि बहुत लोग ऐसे होंगे, लेकिन अगर ये लोग हैं, इसके लिए दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत जिंदा तभी रहती है जब एक दूसरों के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं मदद की भावना रहती है। और वही काम तो वो बच्चे ने किया था। बर्थडे की जगह उसने उनके संस्कार के ऊपर लगा दिए थे वो पैसा। कहे का मतलब, अगर इंसान थोड़ा सा भी समझदार हो तो आज भी चाहे तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति फिर से अपने स्वरूप में आ जाएगी और भारत फिर से जगत गुरु बन जाएगा। जब कर्म में परमात्मा की याद समाई होती है तो साधारण कार्य भी ईश्वरी सेवा बन जाता है और थकावट कभी नहीं आती। बहाने आपको रोकते हैं, कोशिशें आपको आगे बढ़ाती हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब हम पाने की इच्छा से ज़्यादा मिले हुए का धन्यवाद करने लगते हैं। खुश रहने के लिए वजह का इंतजार मत कीजिए, खुशी बांटिए और वजह खुद बन जाएगी। पैदा हुए हैं तो मन में बुद्धि में संकल्प में और बाजियों में दम होना चाहिए। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती, पर प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अस्तित्व की छाती फाड़ दें। अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे अंदर है। हम जिसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे वही उभरती और निखरती जाएगी। आशा करते हैं इन बातों से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ तो सीख रहे होंगे, कुछ तो अपने मन ही मन संकल्प कर रहे होंगे कि नहीं, 5,000 तो कहीं 5 रुपये से भी किसी की मदद हो सकती है। कोई भूखा बच्चा है उसको 5-10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दीजिए, कोई को
हम देखते हैं स्टेशन पे, कहते हैं कि 20 रुपया दे दो, एक चाय पियेंगे, सुबह से चाय नहीं पिए हैं। हम कहते जाओ चाय पी लो, पैसा हम दे देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, बहुत बड़े बड़े पैसों की जरूरत नहीं होती। मन में वो होना चाहिए कि वो भी तो एक आत्मा है, वो भी तो परमात्मा का बच्चा है, हमको भगवान ने दिया है तो इतना तो कर ही सकते हैं, और करेंगे तो जानते हैं आपको जितनी खुशी होगी उतनी किसी और को नहीं होगी। खुद खाने की जगह जब आप दूसरे को खिला देते हैं तो खुशी दो गुना हो जाती है। चलिए भाई यही बात पे एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहे मुस्कुराते रहे। सुनिएगा गीतवा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सलोनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था, एग्जाम के कारण उन्हें अपना स्मार्टफोन से दूरी बना ली रही। फेसबुक ओपन हुआ तो देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया, तभी उनकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राज शर्मा था, बला का स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था अपनी डीपी में। सलोनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करे के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ पर उसने एक बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशनिंग के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो राज का मैसेज रहा। उन्हें उसे खोल कर देखा तो उसमें राज ने लिखा था थैंक यू वेरी मच। उस समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक कह रहा है, फिर भी उसने मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई करा थैंक किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए, और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राज के मैसेज नज़र आए। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी, उन्हें पढ़कर उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राज का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसके हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। उसने राज को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के लिए राज ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो बीए कर रहा है और जल्दी उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सलोनी को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जॉन दिन उसकी राज से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरा बन सा है। राज उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सलोनी राज से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बात करते रहेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सलोनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं काहे उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था। सलोनी ने यही बात राज से कह दी, रे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए, जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राज ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। सलोनी बड़ी मुश्किल से उससे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, राज ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा। और फिर उस सलोनी को उस जगह के बारे में बताए लगा उसे जहाँ आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर से प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत के कारण राज ने सलोनी को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहाँ पहुँच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती रह गई। वो अपनी फोटो से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सलोनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा करा। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे यार क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी, अब कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर राज ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बड़ी। जैसे उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। सलोनी के बढ़ते कदम ठिटक गए। वो पलट कर राज से पूछने ही जा रही थी कि कौन है, कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कस कर दबा दिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को राज ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए राज से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है, शबनम बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर उर्फ राज मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबेच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। छत्तीसगढ़ की सलोनी जो मुंबई से छुड़ाई गई है, ये सलोनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती है और अपनी ज़िंदगी गंवा लेती है। देखिए भाई, कोई भी बात बताई जाती है सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन तो हमारा लक्ष्य होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको दुनिया की उन बातों से भी अवगत कराया जाता है जो आज दुनिया में घटित हो रही है। आप अपने बच्चों को चेक करिए, अपनी बच्चियों को ज़्यादा चेक करिए। अगर छोटी हैं, जब तक कॉलेज पास नहीं कर लेती, उनको मोबाइल दीजिए, लेकिन वो का कहते हैं इंटरनेट, फेसबुक, इस सब की सुविधा मत दीजिए। गलत रास्ते पर ना चल पाए, अपने विचारों को सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टता और ईश्वरीय प्रेम के अनुभव में समाया है। किस्मत ने क्या नहीं दिया, ये सोचकर उदास मत होइए। उसने जो दिया है वो भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो, उनके दरवाजे पे खुशियाँ खुद चलकर आती हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वो स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं, और वही सबसे बड़ी दौलत है इंसान की। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए, आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी मुस्कान की वजह बनते हैं। ज़्यादा सोचोगे तो दुखी रहोगे, सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे तो सुखी रहोगे। जो अपने व्यवहार से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही लोग सच में दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होते हैं। अगर समुंदर का पानी मीठा होता तो दुनिया उसे भी बोतल में भर कर बेच देती। अगर समुंदर का पानी मीठा होता तो दुनिया उसे भी बोतल में भर कर बेच देती, लेकिन उसका खारापन ही उसकी आज़ादी है। कई बार जिंदगी में कई लोगों का नेचर थोड़ा सा कहते कड़वा है, अकड़ा है, लेकिन वही उसको बचा के भी रखता है। इसका मतलब भी नहीं अकड़ होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, लेकिन जहाँ नम्रता है वहाँ पे दूसरों को पहचानने की नज़र भी होना चाहिए। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। आपका सकारात्मक चिंतन ही आपकी सफलता का मुख्य सूत्रधार है। कदम छोटे रखो, लेकिन दिशा हमेशा मंजिल की ओर रखो। शिकायत करने के लिए 100 कारण मिलेंगे, शिकायत करने के लिए 100 कारण मिलेंगे, लेकिन शुक्रिया करने के लिए सिर्फ एक शांत मन ही काफ़ी है। जब हम दूसरों की कमियों के बजाय उनकी विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं, तब रिश्ते मधुर और जीवन शांत बन जाता है। यही बात पर चलिए भाई एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे और बतियाएंगे। 12 बजे तक तो अपॉइंटमेंट फिक्स है आपका, हमारा सुनिएगा ये गीत।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सबसे सस्ती राखी और सबसे अनमोल रिश्ता, अभी अभी राखी गई है, हम सब जानते हैं, तभी ने रक्षाबंधन मनाया होगा। इस पर से बहुत सुंदर कहानी सुना रहे हैं। कहानी का सत्य घटना है। रक्षाबंधन के दिन एक बहन ने अपने भाई को सिर्फ 20 रुपये की राखी भेजी थी, लेकिन उस राखी के पीछे छिपी उसकी पीड़ा जब भाई को समझ आई तो उसने जो फैसला लिया, उसने पूरे परिवार को रिश्तों की असली कीमत समझा दी। सतारा के पास एक छोटे से गांव में पुराने घर की ओसरी पर मंदा चुपचाप बैठी थी। तन पर पुरानी और कई जगह से घिस चुकी साड़ी थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, इस बार तो मेरा भाई मुझे नहीं भूलेगा ना। रक्षाबंधन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मंदा ने घर की पुरानी पेटी खोली और उसमें से 3 रेशमी राखियां निकाली, साथ में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और 20 रुपये की एक पुरानी नोट रखी। सब कुछ एक साधारण सफेद लिफाफे में रखकर उसने बंद किया। लिफाफा बंद करते समय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरे भाई की कलाई पर मेरी राखी पहुंच जाए, बस इतना ही काफी है। उनको पता रहा कि उनके भाई के घर में अब पैसों की कोनो कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास भाई को दे के लिए न महंगी घड़ी थी न महंगी मिठाई। उसके पास था तो सिर्फ प्यार से बंधा एक रेशमी धागा और 20 रुपये का आशीर्वाद। उधर पुणे में मंदा का बड़ा भाई माधव अपने बड़े से घर में रक्षाबंधन की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कई बड़े बड़े पार्सल रखे थे। नागपुर में रहने वाली बहन वंदना ने महंगी मिठाई और सुंदर घड़ी भेजी थी। कोल्हापुर में रहने वाली सविता ने सुंदर साड़ी और महंगी राखी भेजी थी। तभी माधव की पत्नी स्नेहा चाय लेकर आई और सहजता से बोली, माधव, बाकी दोनों बहनों की कितनी सुंदर चीजें आई हैं, लेकिन मंदा ताई का हमेशा की तरह साधारण सा लिफाफा आया है, उसमें सिर्फ राखी और 20 रुपये हैं। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वो लिफाफा धीरे से हाथ में लिया। लिफाफे पर बहन की जानी पहचानी लिखावट देखते ही उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो जानता था उन 20 रुपयों की कीमत बाकी सभी महंगी चीजों से कहीं ज्यादा थी। मंदा की शादी 10 साल पहले सांगली के पास एक परिवार में हुई थी। शुरुआत में उसका संसार ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसके ससुर के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। फिर संपत्ति को लेकर भाइयों में झगड़े हुए और मंदा के पति को घर छोड़ना पड़ा। इन सब परेशानियों के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। वो एक छोटी सी किराने की दुकान पर जो काम मिलता करे लगा, पर मंदा ने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे ओंकार को पढ़ाया, पड़ोसियों के घरों में काम किया, कभी खेतों में मजदूरी की तो कभी दूसरों के घर बर्तन साफ किए, लेकिन उसने अपने मायके वालों को अपनी परेशानी कभी नहीं बताई। उसे डर था मेरी वजह से मेरे भाई पर बोझ न पड़ जाए। माधव को ये सब पता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काम की व्यस्तता के कारण वो भी अपनी बहन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया था। आज उन 20 रुपये की नोट ने उसे अपनी गलती का एहसास करा दिया। उसने स्नेहा की ओर देखा, स्नेहा, इस बार रक्षाबंधन हम यहाँ नहीं मनाएंगे। तो फिर, माधव बोला, इस बार हम सब मंदा के घर जाएंगे और उसे बिना बताए जाएंगे। स्नेहा कुछ पल चुप रही, लेकिन अचानक पहुंचेंगे तो हमारी खातिरदारी की चिंता करने लगेगी। माधव मुस्कुराया, वो हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेगी, इस बार हम उसके लिए कुछ करेंगे। रक्षाबंधन की सुबह माधव, स्नेहा और उनका बेटा अर्थव सतारा के उस गांव में पहुंचे। घर के सामने पहुंचकर माधव कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मंदा आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तन पर वही पुरानी साड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। भाई को सामने देखते हुए उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। दादा आप, उसकी आवाज में खुशी से ज्यादा आश्चर्य था। जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में उसके दरवाजे पर खड़ा है। माधव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हाग वेड़िया, इस बार मुझे तेरे हाथ से राखी बंधवानी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दादा, पहले बताया होता तो घर थोड़ा ठीक कर लिया होता। माधव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मुझे तेरा घर देखने नहीं बहना, तुझे देखने आना था। नेहा मंदा को बाजार ले गई, उसके लिए नई साड़ी खरीदी, ओंकार के लिए नए कपड़े लिए, घर के लिए मैंने भर का राशन, दवाइयाँ, चादरें, पर्दे और जरूरी सामान खरीदा। मंदा बार बार कहती रही, भाभी इतना सब क्यों, इतना सब क्यों। स्नेहा हंसकर बोलती, चुप रह, आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। कई बरसों बाद उस घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। मंदा की आंखों में खुशी थी, लेकिन माधव ने एक बात नोटिस की, मंदा बार बार अपने सीने पर हाथ रखती और कुछ देर चुप हो जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं दादा, थोड़ी थकान है, वो मुस्कुरा दी। माधव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई, मंदा ने राखी की थाली सजाई, उसने माधव के माथे पर कुमकुम लगाया और राखी उठाई। तभी माधव बोला, रुको जरा। मंदा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्यों? माधव मुस्कराया, तेरी दोनों बहनें अभी आई नहीं हैं। मंदा को कुछ समझ नहीं आया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, दरवाजा खुला। सामने वंदना और सविता अपने परिवार के साथ खड़ी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दोनों बहनों से लिपट गई। कुछ दिन पहले माधव ने दोनों बहनों से कहा था, हम हर साल घूमने जाते हैं, इस बार कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। फिर वो मुस्कुरा कर बोला था, इस बार हमारी चार धाम की यात्रा हमारी मंदा का घर होगा। दोनों बहनों ने उसी समय हाँ कर दी थी। उन्होंने तय किया था कि मंदा की आर्थिक मदद तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले उसे ये एहसास कराएंगे कि तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। उस रात सभी पास के होटल में खाना खाने गए। मंदा बहुत कम बोल रही थी, वो बस सबको देख रही थी, कभी भाई को, कभी बहनों को, कभी अपने बेटे को, और कभी फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, वो आंसू थे इस एहसास के, मेरे अपने आज भी मेरे अपने हैं। रात को सभी घर के आंगन में गद्दे बिछा कर सो गए। बचपन की पुरानी बातें निकल आई, सब हंस रहे थे। मंदा चुपचाप माधव के कंधे पर सिर रख कर लेटी थी। दादा क्या, आज बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा मायका वापस मिल गया। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मायका कभी खत्म नहीं होता, बस हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मंदा ने आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर संतोष था। रात काफी हो चुकी थी। अचानक माधव को महसूस हुआ कि मंदा का हाथ बहुत ठंडा हो गया। मंदा, उसने उसे हुलाया, मंदा उठना। कोई जवाब नहीं आया, सब घबरा कर उठ बैठे। दिया जलाया गया, लेकिन मंदा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत संतोष भरी मुस्कान थी। तभी सबको एहसास हुआ कि वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शायद उसे दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लोगों की, और शायद इसलिए वो उस दिन तक इंतजार करती रही थी जिस दिन उसके भाई की कलाई पर उसकी राखी बंधने वाली थी, जिस दिन उसके आंगन में फिर से बहनों की हंसी गूंजने वाली थी, जिस दिन उससे एक बार फिर महसूस होना था मेरा मायका आज भी मेरे साथ है। मंदा इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई। उसके आखिरी पलों में उसके अपने लोग उसके आसपास थे। उसके सिर पर भाई का हाथ था और उसके चेहरे पर संतोष था। कभी कभी महंगी भेंट वस्तुओं से ज्यादा किसी इंसान का समय, उसका साथ और उसके ये चार शब्द अनमोल होते हैं, मैं हूं ना। इसलिए रिश्तों को सिर्फ त्योहारों पर याद मत कीजिए, किसी अपने से मिलने के लिए बहुत देर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी एक मुलाकात का इंतजार कर रहा हो और आपको इसको खबर भी ना हो। आशा करते हैं ये कहानी से आपने बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ कहीं ना कहीं। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ जोटाना से, कैसे हो दीदी?
1: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे दीदी, और अभी जो आप बात बता रहे थे बहनों की दीदी, बहुत अच्छा लगा। हमारे भी एक थोड़ा सा जो ऐसा हो गया कि सही बात है दीदी, मायका तो मायका होता है बहनों के लिए, कि हमको भी भाइयों की भी बहनों की जो जाना जरूरी है, बहन के घर जाएंगे, ऐसे बात करेंगे, इसको उसको अकेला दिन नहीं लगेगा
1: जी।
2: तो कभी कभी बहनों के भी घर जाना चाहिए और उसको ऐसा दिन आना चाहिए कि आप अकेले नहीं,
1: हम भी साथ में हैं।
2: तो इससे कोई ऐसा अकेला दिन बन नहीं लगेगा दीदी। तो बहुत अच्छी बात आपने सबसे बात बताई दीदी
1: जी।
2: आज ऐसा है, आज कई लोग ऐसा है कि बहनों की तरफ देखते भी नहीं है।
1: एक बार शादी करनी तो सोचते कि हमारा जो कर्तव्य था वो पूरा हुआ, नहीं खून का रिश्ता है तो कहीं ना कहीं हर कोई अपनापन चाहता है जी।
2: जी तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट तक उसको संभालना है
1: जी।
2: तो अपने हैं और अपने नहीं है तो फिर भी रखते हैं तो अपने होते हैं।
1: बिल्कुल
2: ऐसा नहीं करना है दीदी, बहुत अच्छी बात बताई, हम भी थोड़ा दिलगिर हो गए कि बात आपकी सुन के
1: जी।
2: अच्छा लगा दीदी हमको, हमारी तरफ से आपको और सभी हमारे साथियों को, मित्रों को नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।
2: नमस्ते।
1: लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है, अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो। स्कूल की परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, स्कूल की परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, पर जिंदगी में परीक्षा कभी भी आ सकती है, इसलिए दुआओं का स्टॉक रखें, कहे कि आड़े वक्त में दुआएं ही काम आती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपने मन को बदलें, परिस्थितियाँ अपने आप बदलती हुई दिखाई देंगी। कभी अपनी जिंदगी को किसी जरूरतमंद की नज़र से देखना, कभी अपनी जिंदगी को किसी जरूरतमंद की नज़र से देखना, बहुत सी शिकायतें उसी पल धन्यवाद में बदल जाएगी। शिक्षक का अर्थ है, अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस गया है, शिक्षक का अर्थ है सी से शिखर तक ले जाने वाला, श से क्षमा की भावना रखने वाला और क से कमजोरी दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसे शिखर यानी सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। है कि नहीं, आप भी सोच के देखिएगा, अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं। कुम्हार जानते हैं ना, जो मिट्टी का सब बर्तन बनाता है, तो अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं। कोई भी हमें बना और बिगाड़ नहीं सकता, हम बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, हम ही खुद के कुम्हार हैं। ईश्वर से बुद्धि की लगन लगाना ही ईश्वर का सहारा लेना है। किसी ने खूब कहा है कि आनंद वहाँ नहीं मिलता जहाँ पर धन मिलता है, सच्चा आनंद तो वहाँ मिलता है जहाँ पर मन मिलता है। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन शांत मन से सब आसान लगने लगता है। कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा किया हुआ कर्म सामने आएगा। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इसकी कीमत अपनी नींद, सुकून और कभी कभी अपनों से दूर रहकर चुकानी पड़ती है। ये भी दुनिया का कड़वा सच है। दूसरों को बदलने की कोशिश में समय न गवाएं, स्वयं को स्वीकारें और दूसरों को जैसे हैं वैसे ही अपनाएं, यही सच्ची शांति है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सके उस परमात्मा का। सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे शांत मन के भीतर होती है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा होता है उसका अर्थ लंबे समय के बाद समझ में आता है। मेरे किसी भी कार्य पर शक मत किया करो। अपनी चिंताओं का बोझ अपने ऊपर लेकर घूमने की बजाय मेरे को दे दिया करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बैठा हूँ ना। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो और दोनों में अंतर समझो। कई बार हम जीवन के अर्थ को ही नहीं समझ पाते। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना नहीं बल्कि समझना पड़ता है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा है ये देखना ही ज्ञानी आत्मा की पहचान है। खुशी चीजों की अधिकता में नहीं संतोष की गहराई में मिलती है। आपकी असली पहचान उन शब्दों में झलकती है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में कहे जाए। मुंह पर तो सभी तारीफ कर लेते हैं। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए हुए जालों में, मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए हुए जालों में, जितना इंसान उलझता है अपने बुने ख्यालों में। चिंता नहीं प्रभु चिंतन करे। जन्म के समय नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती है। ध्यान से सुनिएगा, जन्म के समय नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच के सफर को ही जीवन कहते हैं। अब जीवन के इस सत्य को जिसने समझ लिया, बाहर को कोई तकलीफ नहीं है। और अंत में यही कहेंगे, जिंदगी एक आईना है, इसमें वही दिखाई देता है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। इसलिए दिल में प्रेम, वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता रखिए, क्योंकि जो खुशी, सम्मान और अपनापन हम बांटते हैं वही कई गुना होकर एक दिन हमारे पास लौट आता है। कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा किया हुआ कर्म सामने आएगा। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख गया उसने कम में भी भरपूर जीना सीख लिया। और अंत में यही कहेंगे, मन शांत हो तो परिस्थितियाँ भी आसान लगने लगती है। जीवन में हमेशा नेक कार्य करते रहे, कोई सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेंगे। हमारे मन के पास हमारी सभी समस्याओं का हल है, पर मुश्किल यही है कि हम सारी समस्याओं का हल अपने भीतर नहीं बल्कि बाहर ढूंढते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभा पंडिताइन अपनी वाणी को विराम देती है। कल 11 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अजमल जीरा कवरा माता मेणा तेरा लाल रानी ने तलरा बरतार मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जियो आज मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जियो।
1: ओहो उषा दीदी राम
0: ओहो
1: राम।
0: राम राम भाई राजकुमारी, आओ भाई आओ, राम राम। और तबीयत तो बढ़िया?
1: ओ सब बढ़िया, आप की करो ठीक?
0: ओ मैं भी बढ़िया हूँ। देखो रविवार का दिन रामदेव पीर जयंती है, तो थाने गणी गणी खम्मा।
1: आपने भी गणी गणी खम्मा।
0: और अपना सगला श्रोता बंधुओं ने रामदेव पीर जयंती री ढेर सारी शुभकामना। आप सुन रहा गावरी बाता कार्यक्रम, सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो,
0: रेडियो मधुबन।
1: 107.8 FM।
0: तो अपना श्रोता बंधु देख रहा भाई कि उषा जी जी तो रोज नई नई सहेलिया ने लेन आवे। पर अनी बहाने तो अपा मला है ना भाई। मारे तो देखो कदी कंचन आवे तो कदी कौन आवे, कदी कौन आवे। आज मैं क्यों, आज तो राजू ले ला ला रहे। तो
1: तो यूं सख्या रो साथ बुनियोडो रहना चाहिए, छोटी
0: हाँ
1: मोटी बहना साथ
0: बिल्कुल
1: रहना चाहिए जानी।
0: हाँ। अरे बिछुड़ी सके सहेला पाची मिल गई तो एक बड़ी खुशी और कई है। तो भी भाई कदी आपा एडो समय हो कि आपा साथ में रहता थोड़ा दिन, आपा थोड़ी दूरी होगी पाचा मल्या तो मैं क्यों भाई राजू तो आई जाएगी।
1: तो देखो आप बुलाए और मैं आएगी।
0: बिल्कुल राजू देखो भाई रामदेव पीर जयंती है, एक कई तो तैयारी की दी भाई जा रही कई मेला में।
1: हाँ, मेला में जा रहे हैं। आनी
0: अच्छा हाँ भाई तो पचल आ रही चाला
1: चालो,
0: और कई। अबे तो आपा तो अपना गाड़ी जावा, अभी पैदल तो कौन नहीं जावा।
1: पैदल तो नहीं चाली जाए।
0: पैदल तो कहिए डेढ़ डेढ़ दो दो महीना पहले हूँ, श्रद्धालु लोग जावारो चालू कर दी दो। तो वे तो जहां जहां दर्शन कर कर पाचा घरे भी पहुंच गया।
1: हाँ काफी जना अपने स्थान माते वापस पहुंच चुका है।
0: हाँ और घना जना तो चाल रहा है रास्ता में, जो भादुड़िया की दूज का दिन जो अपने रविवार का दिन है, क्योंकि भादुड़िया की दूज का दिन रामदेव पीरसा को जन्म होवे है। और हाँ अणी दन डाली भाई समाधि लेवे,
1: हाँ
0: और दसम का दन जो पाची दसम आई न जदी रामसा पीर समाधि ले।
1: एकदम सही बात है, आपने तो खूब खूब ध्यान है जी।
0: देख भाई तू जोधपुर की है और मैं मेवाड़ की, मारवाड़ और मेवाड़, पर नॉलेज तो अपने एक दूसरा को राजस्थान की मिट्टी में जन्मे उड़ावा तो नॉलेज तो होना ही चाहिए जाए। और वो नॉलेज है ही है क्योंकि राजस्थान की मिट्टी से घणो प्रेम है।
1: है वीरारी भूमि है।
0: शहीदारी भूमि है, अणी भूमि ने तो जत्रो नमन करा वत्रो ही कम है। तो कतरे श्रद्धालु तो दूज का दिन पहुंची, कोई एकम ने भी पहुंची, कोई तो आज ही पहुंच गया जो अबे थोड़ा आराम करी भाई। चाल चालन थक जावे, छाला पड़ जावे पग में, है केड़ी स्थिति हो जावे।
1: बहुत गंभीर स्थितियां चले और भगवान साक्षात दर्शन देवे नहीं, यानी मनोकामना पूर्ण करे। हर कोई आपरी मन्नत रे साबू भी, कोई पैदल चाले, कोई आपने ध्याने घुटनारे बल चालने जाए, कोई लेटिया लेटिया जाए, दंडवत
0: अरे
1: करता
0: हाँ
1: जाए।
0: दंडवत प्राणायाम करता सका जावे, कोई तो हाँ घुटना का बल पे भाई तरह तरह की साधना है। आप जैसे अनवे वस्यान करो आप तो अपने सिंपल तरीकों गाड़ी हुई जावा, और अपना तो मन बस ईश्वर के अर्पण के प्रभुवाणी मन ने हमेशा निर्मल राख जाए।
1: तो रणु छे जोधपुर दो ही जगह चालना है कि सिर्फ रणु जे
0: अरे
1: चालना
0: भाई
1: है?
0: जोधपुर भी तो क्या भूला, जोधपुर वेन पचे, क्योंकि जोधपुर में जटा तक गुरु महाराज का दर्शन नहीं करा तो रणुजा का दर्शन हो भी को नहीं, मतलब किदा नहीं किदा एक हो जावे।
1: सही
0: और
1: बात,
0: जोधपुर में तो कई पहाड़ी पे आपा चाला,
1: मसूरिया
0: मसूरिया पहाड़ी पे, और गुरुदेव
1: बालीनाथ जी महाराज।
0: बालीनाथ जी महाराज का दर्शन करा, और पचे आपा रामदेव पीरसा का दर्शन करा, रामदेव रे चाला।
1: बहुत सा भक्त पहले करे, बहुत सा भक्त बाद में करे, पर दर्शन करना बहुत जरूरी है। यानी गुरु ना जीरी समाधि है, रामदेव जी रे गुरु जीरी समाधि है मसूरिया पहाड़ी।
0: देख मैंने अट दो लाइना याद आ रही, कह रही दो

0: फर के जोई मारो मन हर के रे, हो जोई मारो मन हर के राम पीर सा। तो धोली दजाय छड़े ना रामदेव पीर के, तो
1: हाँ
0: एड़ा एड़ा गीत भी बने उड़ा है। खैर भाई वो कहवे का अपना राजस्थान रा लोक देवता है, और अपना राजस्थान रा लोक देवता री जत्री महिमा करा वतरी कम है, क्योंकि ये कर्म एड़ो करे।

0: है कि दुनिया देखो, कोई दंडवत प्रणाम करता जा रही, कोई चालती जा रही, कोई साइकिल पे बैठन जा रही, कोई कस्यान पर आप आप कर रही, तो साधना कर करन पहुंच रहा है। तो वह रामदेव पीरसा ने याद नहीं कर रहा, वहां का कर्म ने, वहां का गुणा की महिमा वेरी, और वहां का गुणा ने याद कर रहा, और यह हर की का बस में को नहीं।
1: हर की कई बस में नहीं है।
0: या के वे देखो, ये भी खूब भक्ता को कारज सार्यो, और या ने घना ही समाज वाला यहाँ ने प्रेम करे, बाकी तो कतरे त्योहार एडा हो कि भाई यो समाज करे तो दूसरा समाज ठीक है, वे वहां का अपने आप में मस्त रहे वे, पर वे को नहीं माने, पर याने तो लगभग सब समाज माने।
1: सब समाज, सब समुदाय।
0: हाँ, तो यह एक बड़ी बात है ना, और नाम भी लगा है रामदेव पीर, पाचे पीर।
1: तो वो भजन में एक लाइन है नी, पांच पीर मक्का सु आया, और वे वटे बर्तन भूल गया, वे राम सा पीरी परीक्षा लेऊन आया, तो वे उड़ता उड़ता बर्तन हवा में मक्को रणुजे मंगाई लिया,
0: हाँ, अबे भोजन पे बैठा है तो वे कह नहीं भाई, भोजन तो माँ माँ का
1: खुद का
0: तो,
1: बर्तन
0: हाँ,
1: में
0: खुद का
1: करा
0: बर्तन
1: लो।
0: में करा, नहीं तो माँ तो भोजन को नहीं करा। अणी रितु परीक्षा ले दी, और राम सा पीर कटु वहां का बर्तन लान माँ का पास में आ गया, तो माँ ने आश्चर्य भोग है, ये तो माँ का ही है, ये कटु आई गया
1: मिश्री रो
0: तो।
1: लूण बनाई दियो।
0: हाँ, तो एड़ा एड़ा चमत्कार है अपने राजस्थान रा मायने की, आपने यू लागे पर देखा तो घना जना कई सुने सुनो, आपने थोड़ा विश्वास को नहीं हो, पर आंखें देखा ने तो भी ना आप कैसे नकार सको।
1: खूब लोगा ने परचो दियो आराम सा पीर तो।
0: हाँ, राम सा पीर का तो वो कहे के अतरा तो गीत भजन बने उड़ा है, और लोग अपने राजस्थान रा तो जावी जे गुजरात का कतरा आवे, और मध्य प्रदेश आवे, महाराष्ट्र आवे, कट्टू कट्टू लोग आवे भाई। अरे तन कई क्यों हूँ, लाखों लोगों की भीड़ पड़े, और थारू बटे कई कह रही है ना कि बटे कई 1 लाख जो इकट्ठा हो जावे तो
1: 1 लाख पब्लिक अगर 24 घंटा रे मायने वटे पहुंचे दीदी, तो वटे राक्षस भक्स लिया करे। 1 लाख व्यक्ति माते एक री मृत्यु निश्चित है,
0: हाँ, तो यह सच्ची बात है,
1: एकदम साची बात है।
0: 1 लाख तो गणती कस्यान करे।
1: लौट चलिया करे क आपने इतना लोगा ने ऊपरू सब मोनिटाइज होया कर आज री डेट में, तो पहली तो लोग आंखों पता चल जाता कितनी पब्लिक आई है। अब इतनी पब्लिक ने ओसिया तक इस रोक दो, तिवरी तक इस रोक दो, जो आजू बाजू गांव लागे नहीं वटे मियां ने रोक दिया करे,
0: अच्छा, अबे नहीं रोके, अबे
1: पब्लिक नहीं माने।
0: पब्लिक नहीं माने तो कई कर सको, देखो।
1: प्रशासन तो आपरी तरफ बहुत कोशिश करे कि भाई अगर कोई आई गयो पूरे दिन दर्शन हो गया, तो रात्रि विया ने वटे विश्राम करने वास्ते मना करिया करे, भाई जितो हो सके आप इन एरिया बारे निकल जाओ।
0: सही बात है, फिर भी नहीं माने तो पचे कई कर सको।
1: आपने एक चीज बताऊ, रणुजे आवे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट रे मायने, तिवरी
0: हाँ,
1: मथानिया वगैरह आ रिया जोधपुर डिस्ट्रिक्ट रे मायने, तो सिर्फ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ही दूरी माते ही जैसलमेर और जोधपुर बॉर्डर अलग हो जाया करे, तो वे बोले कि आप इन बॉर्डर बारे निकल जाओ। प्रशासन बहुत अलर्ट रहा करे, पर पब्लिक अगर सहयोग नहीं करे तो प्रशासन भी कई कर सके।
0: बच्चे तो कहीं नहीं कर सके, सही बात है। तो कश्यान ठा पड़े के भाई ये राक्षस भक्षण कर रहे हो।
1: कुछ न कुछ हादसा हो जाए, या तो पब्लिक भागम दौड़ी मचाने, कोई दब जाएला। एक बावड़ी है जटे कुष्ठ रोग यारो कुष्ठ मीटे, उन बावड़ी में हर कोई स्नान करिया करे, तो कदी बावड़ी में इंसान भंवर में फंस जावे,
0: अच्छा,
1: बावड़ी ना महीने डूब जावे, क्योंकि पब्लिक धक्का धूम ज्यादा वे नहीं। अब 1 लाख पब्लिक वेला तो धक्कम
0: हाँ,
1: धूम कितनी वेला, वो चक्कर मायने वे। बाकी भगवान तो एडो नहीं चाहे, पर जद राक्षस रो वध करियो तो रामदेव जी जद वो व्याण कनु वचन लियो तो कभी मैं भूखो रह जाऊला तो मारी कई मारी व्यवस्था भी तो करो आप। जब रामदेव जी के जिन दिन 1 लाख ऊपर पब्लिक पहुंचेला तो एक
0: एक
1: मनुष्य थारे वास्ते
0: एक को भक्त ले लीजिए,
1: एक रो भक्त ले लीजिए,
0: तो अनि वजह आज भी वह बात पत्थर की लकीर है।
1: पत्थर की लकीर है।
0: वाह भाई राजू, या तो तू अच्छी जानकारी दी थी, या कि वन दी थी, तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पर चलो पाचा अपना सगला श्रोता बंधु ने रामदेव जयंती की ढेर सारी शुभकामना देवा, और एक अच्छो गीत सुना दा, तो सुनता रहो
1: मुस्कुराते रहो।
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: माता गोरा पुत्र गणेश वारी जाऊं।

0: कई बातें कई बातें, आज तो वाणना ली रीज रिया गणपति जी रा।
1: कदी कदी वाणना ही लेना चावा ना।
0: लेना पड़े।
1: बिल्कुल। तो गावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा। हाँ, आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM।
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराते रहो।
1: तो राजू आपा देखो, राम सा पीर की बात की दी, अब दूसरा ही दिन पाचे गणेश चतुर्थी है। तो पहला तो आपा गणेश चतुर्थी के भी सगला श्रोता बंधुआ ने खूब खूब आपा शुभकामना देवा। हाँ, हार्दिक अभिनंदन करा। हाँ, आनी त्योहार री भाई कश्यान मना रही तू गणेश चतुर्थी, कई तैयार है कि दी राम सा पीर आपा तो रणुजा जा रहा, तो आता आता गणेश चतुर्थी तो अपनी रास्ता में ही रह जाए।
0: रस्ता में रह जाए। आया रे पचे लावा सा गणपति जी ना, व्याणा बिना तो सारा काम अधूरा है।
1: हाँ,
0: मंगल
1: और
0: मूर्ति रूप है।
1: बिल्कुल, और यो त्योहार भी 10 दिन तक धूमधाम मनावे,
0: 10 दिनों धूमधाम मनावा, आनंद
1: अनंत।
0: चौदस तक।
1: हाँ, अनंत 14 तक तो यो त्योहार चाले ही चाले। आने वास्ते कई बात नहीं, आपा रोनी जा जान आ जावा, पचे आपा गणपति को मनावा। तो गणपति में भी भाई पहले की बात मने याद आवे, घनी चीजा है यूं तो आपा केवा तो घनी चीजा है। ठीक है, थोड़ो सिस्टम चेंज हो गयो, पर राजस्थान रा मायने पहला कोई हो तो छोटा छोटा टाबर, 8-10 साल का, ज्यादा ज्यादा 12-13 साल का टाबर तक, वाके गणेश चतुर्थी का एक दिन पहली वाकी मम्मिया अच्छे अच्छे हाथ मांड देती, मेहंदी लगा देती, पगा के ही लगाते हाथ, तो एड़ा अच्छा छोरिया के मांडे। देख भाई, हर त्योहार छोरिया का, 30 त्योहार छोरिया की, पर यो त्योहार छोरा को है। ये त्योहार पे तो छोरा छापरा के वणी दिन छोरिया के नहीं मांडे, तीज पे मांडुड़ा हुए, और फिर घना ही त्योहार आवे।
0: घना त्योहार है।
1: हाँ, पर गणेश चतुर्थी आव जी का एक दो दिन पहली मम्मिया ने चाव बढ़ जाओ भाई, अब तुम्हारे छोरा का त्योहार आ रहे हो, या के हाथ मांड दो, तो पगा के डोरियो करी, मेहंदी लगाई और हाथ दो या छा मांड दे। और दूसरा दिन ये टाबर कई करे, गणेश चतुर्थी की छुट्टी होवे, सब टाबर भेला होवे, मोहल्ला का है, पटबा वाला है, खटा वे ये दुकाना पे जावे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलता जाए, गणपति बापा मोरिया मंगल मुहूर्त मोरिया बोलता जाए, और वे डांडिया बजाता जाए, कन्या जाने राजस्थान में कन्या के वे, जो अपने बड़ी तीज का अदरत्यो आवे, पहली बार शादी बेटी की हो जावे, पहली बार अदरत्यो रखे बेटी का ससुराल, और बेटी का ससुरालू भी पाछो बेटी का लिया आवे, पर भाई ज्यादा क्वांटिटी की वे बेटिया वाला की। तो मतलब पहला तो छोटा छोटा बच्चा डांडिया बजाता, हाँ, पर अबे एड़ो रिवाज आवे चालू हुए गयो, डांडिया बड़ी तीज का अदरत्या पीस रख दे, एड़ा है कन्या के वाके जो डंडी पे,
0: घुंगरू लागोड़
1: हाँ, के चांदी की टोपी पे रहा, विका ऊपर 3-3 घुघरिया लगावे, कोई कोई तो 3-3 सेरा 5 सेरा के घुघरिया, आसियान डांडिया मस्त सजान पाचो पूरा पे कोर लपेटन भेजे, कहिए भाई डांडिया भी देखो, आपने रिवाज देखो। चूरमा का लाडू भेजी, वो सब वणी पीस भेज देवे बड़ी तीज पीस, पहला तो गणेश चतुर्थी पे अलग भेजता, पर अबे कहिए एक फास्ट जमानो के का पास टाइम कौन नहीं है, अबे थुई नौकरी कर मुई नौकरी करूँ, न थाने टाइम है न मने टाइम है, तो बच्चे थोड़ा से शॉर्टकट कर दी दो, तो बड़ी तीज पे सब भेज देवे। अब ये टाबर कई करे, वे डांडिया दुकाना पे बजावे, दुकाना वाला ने ठाए, क्योंकि परंपरा है अपने राजस्थान री, तो वे पैसा दे ही बच्चा ने।
0: तो इन सब चीजा ने पहली बुजुर्ग बहुत शुभ मानता।
1: हाँ,
0: जेदे वे मतलब पुराना लोग बोले, घुंगरू जित्ता बाजेला लक्ष्मी उत्ती खन खन करेला।
1: बच्चा डांडिया बजाता बोलता जाता, और वाने पैसा देता, खावा को भी देता गणा जना, भूंगड़ा देता, पहले तो यही ज्यादा देता, भूंगड़ा ज्यादा देता के नारियल सुखा नारियल की गिरी है, पैसा तो देता ही देता टाबर ने, तो हर एक दुकाना पे बजाता, तो बच्चा के पैसा खूब भेड़ा वे जाता, पचे सब राजी होता, अरे आपने तो अतरा पैसा भेड़ा वे गया, पचे वे पैसा को प्रसाद खरीदता, पेड़ा है, मावा की बर्फी है, कलाकंद है, मिश्री मावा है, कहीं भी खरीदन, पचे गणपति जी का मंदिर जाता, यानी गाइड करवा वाला तो बड़ा होता, क्योंकि छोटा छोटा टाबर होता, यानी कहीं ठा पड़े तो बड़ा गाइड करता, तो पचे गणपति का मंदिर ले जाता, पचे बटे प्रसाद चढ़ाता, वत्ता पैसा मलता, तो सब टाबर का लिए समोसा कचोरी कहीं भी खरीदता, कलो बेटा मीठो ही खाओ नमकीन ही खाओ, और बालक पूरा दिन खुशी खुशी, घर में तो टकता ही कोनी, अरे वाह दुकान बाकी है, अरे वो ऑफिस बाकी है, ऑफिस में जाता, बैंक में तक जाता टाबर।
0: पहले ये बच्चा ने बहुत शौक हो तो हर त्योहार मनाऊ ना। अबे बच्चा अपनी पढ़ाई है मोबाइल है ऊंचा नहीं आ रहा।
1: अबे वो सिस्टम ही नहीं खत्म ही हो गया। अबे कौन जावे ना, अबे तो आजकल टाबर के मेहंदी भी नहीं लगावे, छोरा के तो लगा भी कोनी,
0: छोरा तो लगवाने भी नहीं चाहे। हाँ। बोला क्यों हम लड़की है क्या? पहली ना बच्चा ने शौक आ तो पापाना भाई छोटा था मियाँ ने शौक आ तो
1: पहले का बच्चा देखो कोई खिजो वाला नहीं हाथ। दूसरी बात यह है सरकारी स्कूल में कोई नटता को नहीं, टीचर लोग भी समझता। अबे प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गयो भाई, बच्चों को भी मेहंदी लगानी नहीं आई। अरे भाई अपने परंपरा है तो है, अपनी परंपरा तो आप ही जीवित रहा का नहीं तो कौन राखी।
0: पहले गुरुजन भी समझता का परंपरा इन वास्ते वे रोक टोक नहीं
1: हाँ
0: करता।
1: हाँ रोक टोक नहीं करता, और कोई भी देखा चिड़ो दो कोई भी नहीं चिड़ोता, क्योंकि भाई थुई रानी मुई रानी कुंड भरी पानी तो थुई लगा रखी मुई लगा रखी
0: आज
1: मेहंदी
0: तो
1: कौन किने
0: गजब
1: खिजोवे
0: खाना आ रहा आपने।
1: तो कौन किने टोके, मैं भी लगा रखी तू भी लगा रखी किने टोके, तो सब टाबर के लागती और सब टाबर लगाना था, और आज तो कोई लगा भी कोई नहीं। तो ये आज के बच्चा ने तो ठाई को नहीं कि गणेश चतुर्थी को त्योहार पे कई हो तो
0: अबे तो सिर्फ बच्चा नो ध्यान है गणेश जी लाना बिठाना और डीजे बजवाना है।
1: डीजे बजवाना है, गरबा करना है, वोठा है। खैर बढ़िया है, यो भी बढ़िया है, पर वो भी बढ़िया ही है ना भाई मेहंदी। देखो नहीं तो टाबर के क्या मेहंदी लागे, और मेहंदी तो शरीर ने ठंडक प्रदान करे।
0: एकदम सही बात
1: हाँ
0: बताई, एक आयुर्वेदिक औषधि है शरीर में ठंडक करने
1: हाँ
0: वास्ते।
1: और आज भी अपने राजस्थान में ही ना तो रिवाज है शादी ब्याह में तो चाहे दूल्हो वो चाहे दुल्हन वो दोया के हाथ पग मांडी मांडी मेहंदी मांडी मांडी। और अपने यो भी रिवाज है कि चलो बहन की शादी है ठीक है तो भी भाई भी मेहंदी लगवाई, सब पाचे पड़ जाए भाई तू तो भाई हो है, चल थारे भी मेहंदी मंगवा।
0: भाई पापा
1: हाँ
0: मामा चाचा ताऊ सब
1: हाँ
0: मेहंदी
1: सबके
0: लगवावे।
1: मेहंदी लगाई। हाँ तो यो भी एक अच्छा रिवाज है, अपने राजस्थान में मेहंदी को थोड़ा ज्यादा ही है। आपने तो एक एक ब्याह में 10-10, 12-12 किलो मेहंदी उपड़ती पे पहली पूरी वे जाती। आपने तो हर छोटा त्योहार ने भी एड़ आपा मतलब खुशियों मनावा वो त्योहार ही मोटो लाग दो।
0: मोटो लागे
1: आज तो मोटा त्योहार ही नॉर्मल वेन जा रहा ठाई नहीं पड़ रही, और पहले एक छोटो छोटो त्योहार वे तो वे पे अतरी रौनक लिया था आपा के जाने दिवाली आ गई वे।
0: खूब सारी औरता साथ ते मिलना भजन करना मंगल गीत गावना।
1: बिल्कुल, अरे भजन ही करता मंगल गीत गाता लुगा 4 बजा ऊट उठन गट्टी पीसते काम सब करते घर को तो भी रौनक वाह की वाह। और फिर त्योहार पे तो चीजा भी हाउ हाउ बनानी, दाल बाटी चूरमा है, पहला कटे घेस आ चूल्हा सलगाता चूल्हा पे सब बनाता तो भी सब बना देता, पाचा एक दूसरा का घर आता जाता। अने छोटी जो वेती बउआ लाड़िया वे बड़ा के पग लागवा जाते के गांव में कोई बहन बेटी को घर है गांव में, और मोटा कोई है अपना आकली पाकली का तो सबका घर में पगे लागवा जाता। देरणिया जेठानिया का घर में जाती, बउआ है जो भाई काकी सास चाची सास यहाँ का
0: सब
1: सबका घर
0: बड़ा ने
1: जाता।
0: धोख देवा जाता
1: हाँ
0: था, बच्चा
1: कुटुम
0: भी जाता
1: कबीला।
0: था
1: हाँ
0: और बुआ भी जाती
1: हाँ
0: थी।
1: तो बेटा मनवार करता लो बेटो बिंदनी था कहीं रोज थोड़ा ओलो। पहले तो चाय नहीं पिलाता, पहले तो छाछ के बच्चे कई बनाई रखे हो तो विमो खिलाता। पहले तो ये कहता चाय तो अंग्रेजी है, पहले चाय अतरी नहीं पीता, छाछ है दही है माखन है यो रखता। भाई अब त्योहार की तापा बाता करा अतरी कम है, पर पाची तने गणेश चतुर्थी और राम सपीर जयंती की ढेर सारी शुभकामना देवा। हाँ और सगला श्रोता बंधु ने भी पाचे खूब अभिनंदन, ये त्योहार के ढेर सारी बधाइया। और आवजे भाई राम राम राजू।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि कल हमने एक विषय लेकर बात किया था, मैं ही सफलता हूं, तो इसी विषय को लेकर आगे पार्ट टू में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी बातें और रह गई थी जो हम कल नहीं बता पाए, तो आज हम फिर से उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के हमारे खास मेहमान राजेश सर हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चलिए, मैं चाहूंगा कि सफलता मैं ही हूं ये विषय हमने कंटिन्यू करना है, तो कुछ कल की बातें जो रह गई थी आज हम फिर से उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जी।
1: जैसे आपने बताया, कल हमने जाना था कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही आनंद हूँ। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये समझा कि सफलता माना कि हम खुश रहें, आनंद में रहें, प्यार में रहें, प्यार हमको मिले, हम शांति में रहें। तो जब मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैथ में कहते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो इसका मतलब मैं ही सफलता हूँ। लेकिन इसको एक गेम से समझेंगे। जैसे हम बहुत कॉलेजेस में गए और स्टूडेंट्स को जब गेम खिलाई कि आप पेन को पास करो, उनको सिर्फ बोला कि आपको पेन को खुशी से पास करना, सिर्फ इतना ही बताया गया, उनको बोला गया। फिर उनको बोला शांति से पास करो, फिर उनको बोला इसको हंसते हंसते पास करो, तो केवल उनको बोला गया। तो जब उनसे पूछा कि जब आपको ये बोला गया कि आप खुशी से पेन पास करो, तो वो खुशी कहाँ से आई? क्योंकि जब हमने उनको पेन दिया पास करने के लिए, हमने उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, उनको कोई कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स स्कोर नहीं किए, माना उन्हें कुछ बाहरी या कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिला। लेकिन जब कहा गया खुशी से पेन पास करो, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अंदर में खुशी का भाव आ गया और खुशी से वो एक दूसरे से बात करने लगे। तो पूछा खुशी कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा अंदर से आई। जब आपको बोला शांति से पेन पास करो, तो शांति कहाँ से आई? बोले शांति अंदर से आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुशी कहाँ है, शांति कहाँ है? जब बोला प्यार से पेन पास करो, तो प्यार कहाँ से आया? अंदर से आया। इसका मतलब ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो केवल और केवल एक विचार, जब हम अपने आप को विचार देते हैं कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो हमारे अंदर जो है वो बाहर आ जाता, इवोक कर लेते हम उनको। जैसे अगर किसी को कहीं कुछ, मान लीजिए कोई किसी के परिवार में कुछ बुरी घटना हो जाती है और व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही टेलीफोन पे उसको मैसेज मिलता है कि आपके घर में ये हो गया, तो उसका मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। तो एक विचार उसको उदास कर देता है और एक ही विचार हमको क्या कर देता है? वो खुशी दे देता है, शांति दे देता है, लेकिन वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया, हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब हमको खुशी मिलेगी। हमने कंडीशन कर दिया, मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन अगर, जैसे अभी हमने जाना कि मैं ही खुशी हूँ, खुशी मेरे अंदर है, लेकिन उस खुशी का हम पहले ही अंदर से आह्वान कर लें, तो क्यों नहीं अगर हम खुश होकर काम करें? जब हम खुश होकर काम करेंगे तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हम काम से एक्सपेक्ट ना करेंगे, काम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपने आप को कंडीशन कर दिया, एक आधार बना दिया, एक शर्त रख दी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर लें कि खुशी तो मेरे अंदर है, प्यार मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, मुझे बाहरी चीज़ों से नहीं मिलने वाली, क्योंकि खुशी, शांति, आनंद ये मुझे स्वयं को चाहिए। ठीक है, मुझे अपने शरीर को भोजन देने के लिए या बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन देने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविकता मेरा जो जन्म हुआ है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ ही हुआ है। तो इस संकल्प के साथ कि मैं खुशी का सितारा हूँ, मैं शांति का सितारा हूँ, अगर रोज हम सुबह इसका अभ्यास कर लें, जैसे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा भी था कि रोज आप 10 बार लिखें सुबह कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले लिखें, और दिन में भी अभ्यास करें, तो कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम ये आह्वान कर लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, आनंद का सितारा हूँ, प्यार का सितारा हूँ, तो खुशी हमारे अंदर आ जाएगी। और जब वो आएगी तो फिर आप कुछ भी करें, कोई भी काम करेंगे, है ना, या कोई भी आपको कुछ किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो मैं ऑलरेडी खुश हूँ, लेकिन उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जब आप वो काम करेंगे तो क्या होगा, और ही बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी अभिलाषा ही काम होगा तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं हुए तो दुखी हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अंदर मैं पहले खुश हूँ तो फिर जो मेरी अभिलाषा होगी कि काम होगा तो ठीक है, अच्छा होगा तो बहुत, क्योंकि आप खुश हैं तो काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अगर बाय चांस आप में किसी स्किल की कमी है, अगर वो नहीं भी अच्छा होता है तो आप दुखी नहीं होंगे, उस काम को छोड़ नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप में मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे और उसको अच्छे तरीके से करना है और उसको बढ़िया तरीके से करना है। जैसे गीता में लिखा गया है, गीता के 18वें अध्याय में लिखा है कि निष्काम कर्म करो, लेकिन वो हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या विधि है, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए यही तरीका है कि पहले हम संकल्प कर लें कि मैं ही खुश हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, प्रेम का सितारा हूँ। अगर हम इस विधि से करेंगे तो हम में वो निष्काम भाव, निष्काम जैसे सेवा कहा गया है या निष्काम कार्य करने का भाव कहा गया है, उसको हम आसानी से अपने जीवन में ला सकते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
0: चलिए राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने बताया, अगर मैं ही खुश हूँ इस भाव को लेकर हम लोग कार्य करेंगे तो उसमें समझो हमें सफलता तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप खुश हैं। बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि चलो और थोड़ा सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण जिज्ञासा ये होगा कि हाँ ये सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए आप टाइम देंगे, खुशी से सीखेंगे और खुशी से आगे बल्कि करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर मार्जिन ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओ किसी काम के लिए नहीं हो रहा है तो आपको मार्जिन ये मिलता है कि आप नहीं भी काम होगा तो आप लर्निंग माइंड से आगे बढ़ेंगे, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, तो ये भाव को आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजेश जी। चलिए मैं चाहूँगा कि मैं ही सफलता हूँ, इस विषय को आपने बहुत ही अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया है, तो इसका प्रैक्टिस भी हमने जैसे कि कल हमारे सभी विद्यार्थियों को बताया था, और कितना टाइम तक हमें यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा?
1: कहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना, हम सारे जीवन में सारी उम्र तक सीखते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो जितना आप अभ्यास करेंगे, कहते हैं ना करत करत अभ्यास होत चिकने पात, जैसे
0: जड़मत होत
1: सुजान। जैसे अभी आपने, अभी एशियन गेम्स चल रही हैं।
0: जी जी जी जी,
1: है ना, उसमें वो कहते हैं तीर कमान लोग चलाते हैं, तो एक आम व्यक्ति भी तीर कमान चलाता है, और जिसमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है वो भी तीर कमान चलाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक लक्ष्य के साथ करता है,
1: एक लक्ष्य के साथ करता है, दूसरा अभ्यास करता है। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप कितनी लगन से, कितनी तमन्ना से, कितने विश्वास के साथ करते हैं। जितना ज़्यादा आपको विश्वास होगा, जितनी लगन होगी, जितनी प्राप्ति की इच्छा होगी, उतनी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको कम से कम कंटिन्यूसली 3 महीने तक करें, वैसे प्राप्ति आपको कईयों को, हमने देखा है कई स्टूडेंट्स को एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कईयों को 2 दिन में मिलता है, कईयों को 10 दिन में मिलता है। लेकिन जब आप इसको अभ्यास करेंगे तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं, अलग अलग व्यक्तित्व जो है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप इसको 3 मास तक करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ हो सकता है। ये एक्चुअली हम कहेंगे कि हमारे मन का भोजन है, जिसके हम कहते हैं शरीर का भोजन तो हम रोज करते हैं, दिन में 3 टाइम करते हैं, लेकिन हमारे मन को भी तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो खुशी, आनंद, प्रेम क्या है, ये हमारे मन का भोजन है, तो ये भी हमें भोजन रोज ही करना चाहिए।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रोज ही प्रैक्टिस करना है, रोज ही इसका प्रयोग करना है, तो आपके जीवन में ये सतत जो है निरंतर खुशी बनी रहेगी। और निरंतर खुशी में आप रहकर अगर आप काम करते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी रहेंगे। तो आशा करूंगा कि आज हमने जिस विषय को लेकर, यानी कल का विषय ही कंटिन्यू किया था, मैं ही सफलता हूँ, तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा राजेश जी एक छोटा सा मैसेज कोट करें।
1: मैसेज आज एक, मैं अगेन प्रैक्टिकली बात करूँगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हम अपने आप में संकल्प लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, लेकिन कई बार जैसे डेली कोई ना कोई हमें चैलेंजेस आते हैं, रोज हम उठते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जीवन नाम ही चैलेंजेस को फेस करने का है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जो कि हमें इस संकल्प में टिकने नहीं देंगे। आप ये चैलेंज पाएंगे,
2: बिल्कुल,
1: कि जैसे आप लिखेंगे या अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बुरे विचार हैं, या दूसरों ने आपसे बुरा व्यवहार किया या काम नहीं हुआ ना, तो वो आपको आपके उस संकल्प में टिकने नहीं देगा। तो उसके लिए एक विधि है कि रात को सोने से पहले आप 10 बार ये संकल्प तो करें ही करें, जो आप लेंगे, मैं शांति का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ, इसको लिखें। लेकिन साथ साथ अगर आप डायरी पे या किसी कागज पर जो आपके साथ आज हुआ, जो आपको कुछ चैलेंज आया या प्रॉब्लम आई या किसी ने आपको तंग किया, दुख दिया, या क्या कारण था आपकी परेशानी का, उसको आप डायरी पर लिख देंगे। जब आप डायरी पर लिखेंगे, लिखने के बाद अपने आप में उस खुशी का आह्वान करके उस आत्मा को जिसने मिसबिहेव किया या जो कारण था चिंता को, उसको माफ़ कर दीजिए, या अगर आपने गलती की तो स्वयं को माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि अगले दिन फिर आप उसी संकल्प में टिक पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगले दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आप कोशिश करेंगे उस संकल्प में टिकने की, लेकिन वो जो नेगेटिव बातें जो कल आपके साथ हुई थी वो याद आ जाएंगी। लेकिन कागज़ पे लिखेंगे तो रात को फिर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ब्रेन में नहीं जाएगा। तो ये भी मैं चाहूँगा अपने श्रोता गणों से कि इसका भी अभ्यास करें।
2: बिल्कुल,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास को कैसे बढ़ाना है, ये सुंदर बात आपने बताया। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर। तब तक आप मैं हूँ खुशी, मैं हूँ सफलता, इसका प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

वक्त गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है सोने को।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: करते हैं
1: दीदी।
2: हाँ दीदी।
1: ओके तो चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज करते हैं बातों के बारे में बातें और देखते हैं कि बच्चों की दुनिया आखिर है कैसी और क्या क्या होता है इसमें। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और कौन कौन है आज हमारे साथ?
3: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
5: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
6: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
1: तो क्या बातें हो रही थी भाई? अच्छा कौन कौन यहाँ पे, सबको लगता है कि मैं तो बहुत बातें करती हूँ या करता हूँ, और किसको लगता है मैं मुझे इतना बातें करना नहीं आता?
3: दीदी हम सबको ही बातें करनी आती, कभी चुप ही नहीं होते हम तो।
6: हाँ
5: मैं क्लास में इतनी बातें नहीं करता हूँ, मतलब जब मेरे को किसी काम की जरूरत होती है मैं तभी मांगने जाता हूँ, ऐसे मैं बातें नहीं करता ज्यादा।
1: अच्छा और शिक्षा?
4: मैं भी क्लास में किसी से बात नहीं करती, बस घर पे या अपने है ना रूहानी शिवानी इन्हीं लोगों से ज्यादा बात करती हूँ, बाकी मैं भी शांत रहती हूँ।
1: अच्छा
4: हाँ।
1: तो क्लास में आप लोग बातें कम करते हो, ऐसा क्यों? मतलब फ्रेंड्स तो होंगे आप लोगों के?
5: हाँ पर जब क्लास चल रही होती हम तब नहीं करते।
1: हाँ क्लास चल रही होती तब तो बातें नहीं करनी होती है,
5: और बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं और हंसते रहते हैं तो उन बच्चों को तो पनिशमेंट मिलती है।
1: अच्छा हाँ वो तो बात ठीक है, जब क्लास चल रही होती है उसके बीच में बातें तो बिल्कुल नहीं करना होता है। और बाद में बातें करते हो लंच टाइम में?
5: हाँ लंच टाइम में करते हैं।
1: शिक्षा?
4: हाँ लंच टाइम में बात करते तो है पर तब भी इतना नहीं करते क्योंकि टीचर क्लास में होते हैं।
1: ओके हाँ तो मतलब आप बातें करते हो बस टीचर पढ़ा रहे हैं इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ध्यान रखते हो।
4: हाँ
1: ओके। हाँ रूहानी?
6: दीदी हम तो क्लास में भी बातें करते हैं लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं करते कि टीचर डांटती है, जब टीचर पढ़ाती है तब हम ध्यान देते हैं और जब टीचर कुछ फ्री बैठ जाती है तब हम बातें करते हैं।
1: ओके शिवांशी?
3: दीदी मैं तो पूरे दिन ही चुप नहीं होती, बस मम्मी को ये बोलना पड़ता है कब चुप होएगी तू कब सोएगी।
1: और स्कूल में?
3: स्कूल में भी कई कई बार तो मैंने टीचर्स के सामने बातें करी है।
1: तो फिर डांटनी पड़ी?
3: नहीं डांटनी पड़ी, फ्रेंडली टीचर्स क्या करी है ना। एग्जाम्स में भी उनके साथ बहुत बातें करी है, कभी एग्जाम हो गया टाइम पास नहीं हो रहा तो हाँ टीचर से ही बातें करनी शुरू कर देते हैं फिर
1: एग्जाम होने के बाद।
3: हाँ जी
1: हमारे लेकिन दोस्त तो होते हैं, हम दोस्तों से तो बातें करते ही हैं, है ना।
6: हाँ
1: कि जो हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं और बड़ों से बातें करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या बातों में अंतर आ जाता है बताओ?
6: दीदी जब हम दोस्तों से बातें करते हैं तब हर सीक्रेट शेयर करते हैं जो हमने शैतानी करी है वगैरह वगैरह, और जब बड़ों से करते हैं मम्मी पापा से तब शैतानी नहीं बताते ना क्योंकि वो डांट लगाएंगे फिर।
1: राघव?
5: दीदी मेरा एक दोस्त था उसने मुझे सब सीक्रेट बताए थे अपने पर उसने स्कूल ही छोड़ दिया।
1: होता है स्कूल छोड़ना पड़ता है कभी कभी ना।
4: जब बड़ों से बातें करते हैं हम तब है ना डर लगता है कि उनको ये बात बताएंगे तो वो गुस्सा तो नहीं करेंगे, और अगर अपने दोस्तों को बताते हैं तो उनको पूरा खुल के बताते हैं बिल्कुल डर नहीं लगता है, वो हमें बताते भी हैं कि हाँ हमको ऐसा करते तो सही रहता, और मम्मी को बताते हैं तो वो गुस्सा भी करते हैं तो डर लगता है, इसीलिए दोस्तों को बताने में अच्छा लगता है कि हाँ उनको बता दिया, पर मम्मी पापा को बताते हैं तो डर लगता
1: है। मम्मी पापा को बताते हैं तो कभी कभी डर लगता है क्योंकि हाँ। हमने मस्ती की होती है ना। और आपको क्या लगता है शिवांशी?
3: दीदी दोस्तों के सामने कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानते, पर अगर पेरेंट्स के सामने कोई ऐसी शैतानी पता लगी जो मतलब स्कूल में लड़ाई होगी तो फिर घर पे डांट पड़ती है, इसलिए पेरेंट्स के सामने थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है।
1: हाँ बस इतना अंतर होता है ना बातों में। ओके तो फ्रेंड्स के साथ जब बातें करते हो तो किस बारे में बातें करते हो? सीक्रेट्स तो बताते हैं, शैतानियां बताते हैं, और किस बारे में बात करते हो?
3: पूरे दिन क्या क्या हमने करा, क्या खाया, क्या किया,
1: ये बातें करते हो?
4: हम स्कूल से जब आते हैं तो मम्मी पूछती है आज स्कूल में क्या हुआ, जैसे कि टेस्ट था आज, पूछेंगी मम्मी क्या आज तुम्हारा टेस्ट था, कितने मार्क्स आए, और स्कूल में क्या हुआ, तुम्हें पनिशमेंट मिली, ऐसे मम्मी को पूरा बताते हैं स्कूल से आने के बाद। फिर वो खाना लेके आती है, हम खाते हैं और उनको बताते जाते हैं देखो मम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ था स्कूल में, फिर वो हंसती भी है, अगर हमारी लड़ाई हुई होती है ना तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है ऐसा नहीं करना शांत रहना चाहिए, वो समझाती है फिर हमें।
1: मतलब दिन भर की पूरी सब बातें बता रहे हैं। ओके और रूहानी?
6: दीदी मैं तो अपने पापा को ना कुछ अच्छी चीज हुई वही बताती हूँ क्योंकि जो शैतानी होती है वो तो मैं ही हैंडल कर लेती हूँ इसलिए पापा को नहीं बताती, ताकि सिर्फ शाबाशी ही मिलती है, वाह 10 में से 10 मार्क्स लाई आज

0: ये शाबाशी मिली।
1: अरे वाह, मार्क्स अच्छे आते हैं तो बताते हैं ना।
2: दीदी हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो ना जैसे उनके कम मार्क्स आते या फिर जीरो मार्क्स आते तो वो बोलते हैं वो पेज ही फाड़ देते हैं वो वाला, और घर जाके मम्मी को बोलते हैं आज तो कोई टेस्ट ही नहीं हुआ था मैम भूल गए थे।
1: अच्छा, तो बाद में तो पता चलता होगा घर वालों को कि टेस्ट हुआ था।
2: नहीं वो पेज ही फाड़ देते हैं ना।
1: पेज ही फाड़ देते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पता चल जाता है ऐसे में, और जब पता चलता है फिर तो क्या हो सकता है।
3: दीदी मैं तो मम्मी को ना जब वो कुछ ज्यादा जिसमें को कभी अवार्ड मिला या कोई टीचर से कोई शाबाशी मिली मैं तो गली में से मम्मी मम्मी चीखती घर पे आके मम्मी को बताती हूँ। फिर तो
1: इतनी खुशी होती है ना शेयर करने में।
3: जिस टाइम मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती है उस टाइम जैसे शांति से आती हूँ कि हम मेरे से तो कोई शांत कोई और है ही नहीं। जब खुशी होती है तो गली में से चीखती चीखती आती मम्मी मम्मी
1: पहले से
3: मम्मी कहते घर पे आके बता लिया कर।
1: इतनी खुशी होती है ना फिर हैंडल करनी मुश्किल होती है, पहले से ही बोलते हुए आते हैं
3: ज्यादा ही खुशी बाहर निकल जाती है।
1: अच्छा आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम बात करते हैं, मतलब किसी से बोलते ही नहीं है, एकदम बात नहीं करते हैं।
0: हाँ दीदी मेरी स्कूल में है।
1: है ना, सबके क्लास में
3: होंगे? मेरी क्लास में भी है।
1: तो क्या लगता है आपको कुछ बच्चे बातें इतनी करते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करते, ऐसा क्यों?
0: पता नहीं उनके मुंह से ही ऐसा लगता है बहुत सीधे है, बैठे रहते हैं ना पढ़ाई में ऐसे ना कुछ बोलते हैं। वो बच्चे ऐसे होते कि ना उनको देख के ही मुंह से लगता है कि कुछ नहीं बोलते, कुछ पढ़ते भी नहीं है, कुछ नहीं करते, सारे टीचर्स से भी मार खाते तब भी कुछ नहीं बोलते। उनको बोलते हुए देखना ही बहुत रेयर होता है।
1: अच्छा मतलब वो सीरियस बैठे रहते हैं बस।
0: हाँ
1: ओके। हाँ राघव
2: दीदी वो है ना जब एक साल उनको हो जाते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा क्लास में वही मस्ती करते हैं।
1: अच्छा मतलब शुरू शुरू में जब नए आए होते हैं तब चुप होते हैं।
2: हाँ।
1: उसके बाद मस्ती करने लगते हैं ना।
2: हाँ।
1: ओके।
4: है? मेरी क्लास में तो दीदी है ना बहुत बच्चे ऐसे हैं पर अभी वो है ना प्रिंसिपल से भी शिकायत कर देते हैं इस क्लास में ना बहुत ऊधम होता है, ये बच्चे ऊधम करते हैं और वो शांति से रहते हैं तो मुझे लगता है कि उनको है ना उधम नहीं पसंद होगा इसीलिए शांत रहते हैं वो।
1: अच्छा तो मतलब खुद भी नहीं करते और
4: दूसरों को भी नहीं करने देते।
1: हाँ, शिकायत भी कर देते हैं।
4: हाँ
3: दीदी हमारी क्लास में थी बट वो जब अकेली बैठती थी ना मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि हाँ अकेली बैठती, किसी से भी नहीं बोलती, टीचर से भी नहीं, तो मैं उसके पास जाती थी ना तो मतलब मेरे को कहती थी तो जाए यहाँ से जाए यहाँ से। फिर मैंने ऐसे उसके साथ रहना शुरू करा तो मतलब वो थोड़ी फ्रेंडशिप करी फिर अब वो हमारे साथ ही है, अब हमारी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता कोई इतना शांति से बैठे अकेला अकेला, उसके कोई फ्रेंड ही नहीं है।
2: हाँ
3: अब उसको फ्रेंड बना लिया।
2: हाँ दीदी मैं भी ऐसे दोस्ती कर लेता हूँ जैसे जो अकेला बैठा होता है
1: उसे दोस्ती कर लेते हो आप भी जाके।
2: हाँ
1: ओके अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी देखो कुछ बच्चे होते हैं जो शांत रहना पसंद होता है जिनको, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बातें करना पसंद होता है, लेकिन दोस्त तो सबको चाहिए, चाहे बातें ज्यादा करने वाले हो चाहे कम करने वाले हो। तो फ्रेंडशिप तो हम कर ही सकते हैं है ना, सबसे कोई अकेला क्यों रहे। और कभी कभी क्लास में नए बच्चे आते हैं तो उनको तो कैसा लगता होगा ना, किसी को भी नहीं जानते, अपने पुराने दोस्त भी छूट गए।
3: हाँ जी
1: है ना।
2: हाँ जी।
1: तो उनसे तो बातें करनी चाहिए।
3: मैं जब अपने मतलब फर्स्ट स्कूल गई थी ना अभी एट्थ में स्कूल चेंज हुआ था तब मतलब मैं फर्स्ट सीट पर बैठी थी और सारे बच्चे ऐसे मेरे को देख रहे थे, फर्स्ट सीट पर बैठी थी और पीछे से सारे देख रहे थे, ऐसे इतना अलग फील हो रहा था कि वैसे तो एक्सट्रोवर्ट हूँ बट इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम।
1: उस टाइम अलग ही फीलिंग होती है ना।
3: हाँ जी
1: बुरा तो लगता है क्योंकि पुराने दोस्त भी नहीं मिलते और
3: स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि कोई दोस्त भी नहीं है किसी के साथ बात करूं, अकेली बैठी हूं। पिछले वाले स्कूल में तो पूरे दिन चुप ही नहीं होती थी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो हुआ था कि हाँ वापिस उधर चल जाती हूँ, फिर बाद में सब सेट हो गया,
1: बाद में हो गया।
4: हाँ जब नए स्कूल में जाते हैं तो वह ना डर लगता है कि पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा लगता है कि कोई बोल नहीं रहा, सबके अलग अलग दोस्त होते हैं अपने ग्रुप में बैठ के वो और हम अलग घूम रहे होते हैं तो अजीब लगता है, फिर कोई ना कोई वैसे मिल ही जाता है, दोस्त बनते हैं, फिर ऊधम शुरू हो जाता है क्लास में, वही खेल कूद, टीचर्स के सामने बात नहीं करते, बाकी हम भी बात करते हैं फ्रेंड्स में
1: तो बातें करते हैं है ना।
2: दीदी जो बच्चे ना वो ज्यादा बातें नहीं करते वो मतलब वो ना जब फ्री पीरियड होता है तो वो सबसे आके पूछते हैं तुम मेरे साथ खेलोगे,
1: फिर
2: मतलब उनको बातें करना अच्छा नहीं लगता, उनको सिर्फ खेलना अच्छा लगता है।
1: हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको खेलना ज्यादा पसंद होता है, बातें क्या करें समझ में ही नहीं आता, तो उनके साथ खेलते हैं फिर बच्चे?
2: हाँ खेलते हैं, फ्री पीरियड होता है तो
1: जब टाइम मिलता है तो। ओके तो मतलब हमने देखा कि बातें कुछ लोग करते नहीं है, कुछ लोग को खेलना पसंद है, और कुछ लोग नए होते हैं इसलिए बातें नहीं करते हैं, और कुछ लोगों का तो नेचर ही होता है कम बात करना, है ना?
4: हाँ।
1: लेकिन दोस्त तो सबको चाहिए लाइफ में, है ना?
4: हाँ।
1: फ्रेंड्स तो सबको अच्छे चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स से और क्या शेयर करते हो, अपने ड्रीम्स के बारे में या कुछ
2: दीदी
1: कुछ गलत हुआ कभी तो शेयर करते हो दोस्तों से सब कुछ?
2: दीदी मेरा ना मतलब पहले जब मैं फोर्थ क्लास में था तो ना एक बच्चा था जो हमारे दूसरे सेक्शन में था, तो फिर वो हमारे सेक्शन में आया था, जब नीचे फंक्शन होता था तो उसके क्लास के बच्चे उनसे कोई भी बात नहीं करता था और सब उसको चिढ़ाते रहते, तो जब वो हमारे सेक्शन में आया ना तो मैंने उसको सबसे पहले दोस्त बना लिया।
1: ओके बहुत अच्छा काम किया राघव ये तो आपने, क्योंकि नए जब आते हैं ना तो उनको दोस्तों की जरूरत होती है, उनको कोई हेल्प करे इसकी जरूरत होती है।
2: दीदी वो जो दूसरे सेक्शन थे ना उसके बच्चे ना उसको चिढ़ाते थे, कुछ मदद भी नहीं करते, वो कॉपी मांगने जाते तो वो देते भी नहीं थे, फिर वो मैम को बोलता तो बोलते थे कि हमसे मांगने ही नहीं आया था,
1: झूठ बोल देते थे।
2: हाँ
1: गलत बात है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? इस बारे में भी हम बातें आप लोगों से करेंगे। अच्छा और किस किस बारे में बातें करते हो आप लोग, स्कूल के बारे में बात करते हो, पढ़ाई के बारे में बात करते हो, क्या हुआ सीक्रेट शेयर करते हो, मस्ती शेयर करते हो, और कुछ शेयर करते हो, कोई चीज़ जो अच्छी नहीं लगी कभी, कोई हर्ट हुई या बुरा लगा वो बातें करते हो या नहीं करते हो, वो किसी से नहीं बताते हो?
3: वो कई कई बार जब ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है तब करते हैं।
1: तब करते हो?
3: हाँ जी, जैसे कभी कोई ऐसा टीचर जो बहुत फ्रेंडली है आपसे और आपको डांट दे उस टाइम बहुत बुरा लगता है, फिर वो बात बताते हैं थोड़ा दिल हल्का हो जाता है।
1: दोस्तों को बताते हैं?
3: हाँ जी।
1: ओके शिक्षा?
4: हाँ ऐसा होता है कि कोई टीचर आपको पसंद है, वो टीचर अच्छा है, आपके साथ हमेशा अच्छे से बात करता है, लेकिन किसी दिन उसने आपको डांट दिया तो बुरा लगता है, फिर अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो बोलते हैं अरे अगर गलती होगा तो डांटेंगे ही सर, कब तक अच्छे से ऐसे बोलेंगे, गलती पे सबको डांटना चाहिए, अब गलती करेंगे तो डांटेंगे, तो वो दोस्तों को बताते हैं तो अच्छा लगता है, फिर वो बताते हैं कि हाँ तुमने ये गलती की थी तो सर ने इसीलिए डांट दिया होगा, तो उनको बताने के बाद अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मेरी गलती थी इसलिए सर ने डांटा, बाकी सर नहीं डांटते, तो अच्छा लगता है ऐसा बताने में।
1: सही बात है, दोस्तों को बताते तो वो समझा भी देते हैं फिर। राघव आप शेयर करते हो कभी बुरा लगा होता है कुछ तो, दोस्तों को बातें करते हो, बड़ों को बातें करते हो?
2: मेरे को तो कोई टीचर ही नहीं डांटता।
1: और किसी बात का बुरा लगता है कभी आपको?
2: हाँ लगता है।
1: तो वो किससे बताते हो फिर?
2: किसी से नहीं बताता।
1: किसी को नहीं बताते?
2: मैं थोड़ी देर बाद खुद ही भूल जाता हूँ।
1: ओके हाँ ये तो अच्छी बात है कि आप भूल जाते हो, ऐसे बातें भूल भी जानी चाहिए, है ना? वो गाना है ना छोड़ो कल की बातें, सुने? तो आप तो आज की बातें भी छोड़ देते हो।
3: दीदी हमने तो बता दिया हम कैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप बताओ अब।
1: देखो हम दोस्तों से तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं अब तो दूर, क्योंकि भाई स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाता है ना, डेली मिलना तो होता नहीं है, फिर तो कभी फ़ोन पे बात होती है तब तो फिर सब कुछ बताते हैं, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, कुछ बुरा लगता है तो वो भी शेयर करते हैं, कुछ खाने में नया बनाया होता है तो वो भी शेयर करते हैं, है ना? और कुछ प्लान कर रहे होते हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ जॉब करूँ या ऐसा करूँ, वो भी शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को फिर हम सजेस्ट भी करते हैं अच्छा ये आप कर सकते हो ये कर सकते हो, तो फ़ोन पे तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि डेली मिलने पे क्या होता है आपको उनका पूरा दिन दिख रहा होता है, है ना? लेकिन फिर स्कूल ख़त्म भी तो हो जाता है ना, डेली नहीं मिल पाते हैं फ्रेंड्स, तो फिर तो ढेर सारी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन रोज़ नहीं हो पाती हैं।
2: दीदी शिवांशी है ना वो अभी मतलब 9th और 8th से टेंशन ले रही है, जब मेरा फेयरवेल होएगा तो मैं बहुत रोऊंगी, तो ये सोचते सोचते रोने लग जाती है कि मेरे दोस्त छूट जाएंगे।
1: लगता तो है
3: दीदी बुरा लगता है कि इतने साल अपने फ्रेंड्स के साथ रहे फिर एकदम ऐसे छोड़ दिया तब।
2: दीदी फिर ये मेरे से पूछती है कि तुझे बुरा नहीं लगता, मैंने बोला अभी तो मैं 6th में हूँ तो अभी क्या करूँ मैं,
1: अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, है ना?
2: हाँ इसके पास भी बहुत टाइम है पर ये सोचती नहीं है।
1: नहीं आपसे कम टाइम है ना? हाँ शिक्षा
4: मेरे दोस्त तो पास में रहते हैं हमारे, मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह, हम जैसे कि स्कूल की छुट्टी हुई तो एक दिन एक कोई दिन हमें ना अपना सब लोग मिलने का है ना प्लान बनाते हैं, फिर जो सबसे पास में होता है उसके घर पे हम सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट्स वगैरह कार्ड वगैरह देते हैं, उसके घर पे जाते हैं, ऐसे पास में हमारे तो दोस्त बस एक ही है जो दूर रहती है, बाकी हम सब लोग पास में तो डेली है ना आना जाना होता है घर पे क्योंकि इतना पास है घर, तो हम तो हमें तो कोई डर ही नहीं है दोस्त खोने का क्योंकि दोस्त हमारे पास में है
1: एकदम नजदीक है।
4: हाँ
1: नहीं भाई लगता तो है, आप लोग शुरू से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, सेम स्कूल में?
4: नहीं
1: अलग चेंज हुआ है?
3: नहीं दीदी अलग चार पांच बार चेंज हो गया,
1: चेंज हो जाता है। हाँ तो फिर आप लोग समझ सकते हो है ना, फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो फिर हर्ट होता है, लेकिन नए फ्रेंड्स बन भी तो जाते हैं।
4: हाँ
1: है ना,
3: पर दीदी जल्दी नहीं बनते, हर एक का नेचर बहुत अलग होता है,
4: थोड़ा टाइम लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है स्कूल छोड़ने के बाद क्योंकि ना शिवांशी है ना वो सबका नंबर ले आती थी, मेरे को तो उस टाइम पता ही नहीं था फोन कैसे करते हैं, नंबर क्या होता है, तो इसलिए मैं किसी का नंबर ही नहीं ले पाया।
1: कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे बड़े हो गए तो और अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, फिर उनके नंबर ले लेना ठीक है
4: दीदी। फ्रेंड्स तो बन जाते हैं पर है ना बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन पाते जो हम पहले बनाते हैं, अभी जैसे कि स्कूल चेंज किया तो नए दोस्त बनते हैं पर वो नहीं बन पाते जो हमारे पुराने बेस्ट होते हैं।
1: ये तो है, बेस्ट फ्रेंड्स तो कम ही होते हैं ना।
4: हाँ
1: वो लेकिन फिर आपकी लाइफ के लिए होते हैं, वो आपके अभी साथ में नहीं भी होना तो भी आप देखना ऐसे जो दोस्त हैं उनसे आप लाइफ भर कनेक्टेड रहते हो, फिर चाहे फोन से हो चाहे कभी मिल पाओ कभी कभी मिल पाओ, लेकिन वो आपकी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर वो स्कूल में आपके साथ नहीं भी हैं वो लाइफ में आपके साथ ज़रूर रहेंगे है ना, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो रहते हैं, और कभी कभी कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो छूट भी जाते हैं, लेकिन जब आप आगे जाओगे लाइफ में तो आपको और अच्छे दोस्त मिलेंगे है ना।
4: हाँ।
1: दोस्त तो मिलते रहेंगे, अभी देखो शिवांशी स्कूल में है, आप शिक्षा स्कूल में है, आप लोग बड़े हो गए, जैसा आप बोल रहे था राघव फेयरवेल होगा तो फिर तो आप लोग कॉलेज में जाओगे और कॉलेज में भी और फ्रेंड्स मिलेंगे है ना। तो बुरा तो लगता है लेकिन फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से जैसा हमने बोला थोड़ा हल्का भी हो जाता है मन है ना।
4: हाँ।
1: तो इस बारे में बातें करते हो आप लोग को, मतलब जो अच्छा नहीं लगा या फिर कोई बात है जो आपको ठीक नहीं लगी, कोई सीरियस बातें भी शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ या मस्ती मजाक ही करते हो हमेशा?
4: सीरियस बातें भी शेयर करते हैं, जैसे कि किसी मेरी दोस्त ने कोई मजाक किया मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बता देती हूँ उसको, तो बोलती है ठीक है अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी गलती थी। हाँ तो इसीलिए मुझे है ना अच्छा लगता है कि उनको सीरियस भी अगर होके कुछ बोलूं तो मान लेते हैं।
1: मान लेते हैं।
4: हाँ
1: शिवांशी
3: दीदी मैं तो कभी सीरियस बात करती नहीं, मेरी सारी बात ही मजाकिया होती है।
1: और कभी आपके फ्रेंड्स कोई सीरियस बात करते हैं?
3: कभी करियो तो मैं तो उसको भी मजाकिया मूड में लेके जाती हूँ, इतने सीरियस वर्ड लेके टेंशन में ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ फिर। हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो इसलिए मैं सब बात ही मजाक में लेती हूँ,
1: लाइटली लेते हो फिर।
3: हाँ मतलब कुछ ज्यादा मतलब एकदम से पूरी हाई वाली सीरियस होगी फिर तो सीरियस लेना पड़ता है।
1: हाँ भाई किसी तबीयत खराब है या कोई और बात है तब तो सीरियसली बात करनी पड़ेगी।
3: नहीं वैसे मैं पूरी मजाक मूड में होती हूँ पूरे दिन।
1: और उनको भी लाइट कर देते होगे फिर?
3: हाँ पूरा हंसाती हूँ उनको पूरे दिन।
1: ओके
3: वो कहते तू ही हमारा सारा खून बढ़ाती है, हमें कभी खून की कमी नहीं होगी।
1: हाँ मतलब हमें जो बातें हम करते हैं ना हर तरह की बातें करनी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है हम जो अच्छी बातें हैं वो तो कर लेते हैं, मस्ती वाली बातें तो कर लेते हैं, मगर कोई सीरियस बात है कोई किसी फ्रेंड को मान लो हमारे कोई हर्ट हो रहा है, कोई बात है जो वो किसी से नहीं बोल पा रहे या कोई भी उनके मन की बात है ना, तो वो भी शेयर करना आना ज़रूरी है ना। अपने अंदर अंदर कोई बातें रखते हैं ना तो फिर वो बहुत फिर परेशानी होती है, इसलिए बातें शेयर करना चाहिए और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी एंकरेज करना चाहिए कि वो अपने दिल की बात शेयर ज़रूर करें है ना, ताकि वो अंदर अंदर नहीं रखें कोई भी प्रॉब्लम हो तो। प्रॉब्लम हो तो शेयर करनी है, ये रूल बना लेना है हमको है ना, और अपने दोस्तों से भी प्रॉमिस कराना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप शेयर ज़रूर करोगे, अपने अंदर अंदर नहीं रखोगे, चाहे आपको अच्छा लगे बोलना या नहीं लगे फिर भी आपको बोलना ज़रूर है ना।
4: हाँ
1: कभी कभी हम अच्छी बातें तो करते हैं बट कोई बुरी बात लगी तो शेयर नहीं करते है ना।
2: दीदी शिवांशी है ना मतलब मैं कोई उसको सीरियस बात बोलता तो भी है ना वह ऐसे बोलती है चल चल छोड़ इसको चल अपन मजा करते हैं चल खेलने चलते हैं,
1: क्या सीरियस बात करते हो आप?
2: मतलब जैसे मैं बोलता हूँ चल के बुला रहा है तुझे, तो बोलती है छोड़ ना कोई, ऐसे मैं अनजानी मिलती, ऐसे बोलती है। मतलब अब नहीं बोलती, पहले बोलती थी वो,
1: अब नहीं बोलती। तो शिवांशी जानती नहीं होगी ना जो बुला रहे हैं, इसलिए नहीं जा रही।
3: दीदी अनजान बुलाएगा तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं जान पहचान वाले के पास जाऊंगी।
1: अनजान लोगों से तो बात नहीं करनी चाहिए ना राघव।
2: नहीं मैं अगर मैं बोलता हूँ तेरे को कोई बुला रहे तो भी हाँ। नहीं बोलती है, नहीं मैं नहीं जाती।
1: अनजान लोगों से बात नहीं करती है, जिनको जानती है उनसे तो करती है ना।
2: नहीं मतलब अगर किसी को जानती होगी तो मैं बोलता हूँ तेरे को कोई बुला रहा है, वो मना कर देती है। फिर
3: शिवांशी को भी एक बायोग्राफी बना लेंगे, कोई बात नहीं, शिवांशी की बातें बाद में कर लिया।
2: शिवांशी की बातें,
1: चलो ठीक है। बहुत सारी बातें हैं भाई बहनों के बीच, फ्रेंड्स के बीच, मम्मी पापा से, छोटों से, जो हम करते ही रहते हैं। बस बच्चों ये जरूर ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई हर्ट हो, कोई आपको ऐसे डराए भी कभी कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, या फिर कोई आपको डर लगे बात बताने से, या आपको ऐसा लगे कि मुझे तो मैं बुरी दिखूंगी अगर ये बात पता चल जाएगी लोगों को, तभी भी आप दिल खोल के अपनी बात को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करना हमेशा अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी और हर आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके प्रेजेंट के लिए भी। तो बातों को शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल देते हैं इजाज़त और अपने फ्रेंड्स को कहते हैं बाय बाय।
5: बाय बाय।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

भाग आठ। बाबा ने परमपिता परमात्मा और परमधाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात के रूप में दिया। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें भरा हुआ जो गीत था वो इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। जब लोगों को यह पता लगा कि मुखी को यह रिकॉर्ड मिला है तो उन्होंने मुखी को कहा कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ न लगाना, न घर वालों को इसे हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को भी जादू लग जाएगा। हम एक जादूगर को बुला लाते हैं, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है। मुखी जी डर गए। वे बोले, अच्छा जाओ जादू टोने वाले को लेकर आओ। इसके बाद लोग एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो झाड़ फूक तावीज आदि बनाने का काम किया करता था। वह आकर बोला, अरे इस रिकॉर्ड पर जादू का तो खूब असर है, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना न जाने क्या हो जाता। बस फिर क्या था, लोगों ने ईंट पत्थर रोड़े उठा उठा कर उस रिकॉर्ड को मारे ताकि उसमें भरा हुआ जादू अच्छी तरह उससे निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके किसी हिस्से में छिपा हुआ जादू निकलकर किसी और को लग जाए। दोस्तों देखिए तो इस संसार की हालत कैसी हो चुकी है। एक व्यक्ति जिसका धंधा ही लोगों को तावीज देना है और जिसे यही बताकर लाया गया है कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो। उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया, वे पत्थर मार कर जादू को भगाने में लग गए। कभी कभी समझदार और सियाने लोगों को भी क्या हो जाता है। इतना समय ज्ञान सुनने से जिन लोगों का जीवन बदला था, क्या वह जादू से बदला था? इतने लोगों को ज्ञान मिलने से जो शांति मिली थी, क्या वह जादू से मिली थी? बच्चों बच्चियों की शिक्षा आदि का यह सब प्रबंध जादू के लिए किया गया था। वाह रे अभागे मानव, ईश्वरीय ज्ञान तो प्राय लुप्त हो चुका था, परंतु क्या तूने सामान्य विवेक भी खो दिया? रस्मों कर्म कांडों और जादू टोनों की भरमार में तू ऐसा भटक गया कि बुद्धि पर लोहे का पर्दा पड़ गया। सोचिए कि ओम मंडली के तपस्वियों के पास कोई ऐसा जादू होता तो वे देश के नेताओं तथा प्रतिष्ठित लोगों को लगाकर उनको अपने वश में न कर लेते। दोस्तों सच है कि यदि कोई व्यक्ति बनावटी हीरों की दुकान वाले बाजार में सच्चे हीरों की दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी झूठे ही माने जाएंगे। वह चाहे कितने भी प्रमाण अपनी सच्चाई के लिए दे दे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बल्कि कोई विरला ही पारखी जो अपने विवेक का निष्पक्ष प्रयोग करता होगा, उसके हीरों का सौदा करने के लिए तैयार होगा। ठीक यही वृतांत परमपिता परमात्मा के साथ होता है। जब वे ज्ञान रत्नों को ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते हैं जिनके यहाँ टोने झाड़ फूक और झूठे जादू प्रचलित हैं, वे क्या जाने कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा जादू है। वह जिसको लग जाता है वह अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ देता है, परंतु लोग उसे बदला हुआ देखकर सोचते हैं कि इस पर कोई जादू हो गया है। सचमुच ऐसा खुदाई जादू तो सब पर होना चाहिए जिससे आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य बदलकर देवता बन जाए। हाँ तो एंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काए जाने का वृतांत हम आगे सुना आए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्मपत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खिटपिट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी यानी दादाजी के यहाँ चली आई थी और मुखी मंगाराम जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी बहू पर दबाव डालें और वह वापस सेठ के घर जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया क्योंकि एक तो उनका यह अपना निजी और घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और दूसरे उस बहू को जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था।
परंतु उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा जो उसके अपने पुराने मित्र थे उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधान्वित हुआ और मुखी मंगाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोच ली। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञानामृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्रों में प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाने की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और उसके परिणाम स्वरूप जो कन्या या माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थीं, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने 5-5, 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले और किसी नई विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी रूढ़िवादिता तथा बर्बरता का पाठ दोहराते हैं। अभी 100 वर्ष ही हुए हैं कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता, अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए, उन्हें डराया धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें शूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जड़ बुतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो लोगों से उन्हें कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। ऐसे ही जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार आदि का उपदेश किया, तो उनके चचेरे भाई और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया कि आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया तो सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या बीती। सिख लोग भी अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। आरिया नाल चिरवाए गए, रेता विच तपाए गए, खलना नुचवाइया गईया, चरखियां ते चढ़ाए गए, पर उन्होंने सी भी नहीं कित्ती। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के जमाने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी का काम करने पर लगा दिया गया था। तेग बहादुर जी का भी शीश काट दिया गया था। वीर वैरागी की भी खाल उतार दी गई। गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने जमाने की बात तो छोड़ दो, अभी 50 वर्ष ही तो हुए हैं कि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी तथा प्रचारक और स्वतंत्रता के लिए देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली। केवल धर्म की बलि वेदी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों ना हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार वाली है, तो पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर उन पर बहुत सितम ढाए। दोस्तों, ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहां तक इसका वर्णन किया जाए। वास्तव में बात यह है कि जनता का यह स्वभाव है कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है, स्त्री की काया के मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है, कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है, भरथरी की तरह राज्य भाग्य छोड़कर भी वैराग्य व्रति को धारण कर सकता है, बाल्यावस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर
हकीकत राय जी की तरह और गोविंद सिंह जी के पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुख पूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे तो भी जनता को संकोच होता है। इसलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसलिए समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफी विरोध और कष्ट सहन ही करने पड़ते हैं और उन्हें कड़ी आलोचना के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है कि वह किसी द्वारा दी गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उसके द्वारा किए गए उपकार को भी शीघ्र ही भूल जाया करती है और उसे दूसरे की पलकों में तिनका भी शहतीर की तरह दिखाई देने लगता है और वह स्वार्थी, पुराने पंथी तथा आतंक ढाने वाले लोगों का जल्दी ही साथ दे दिया करती है अथवा उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस ठीक ऐसा ही ओम मंडली के साथ हुआ। लोगों ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक ग्रस्त और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे यह पवित्रता तथा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा है और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारी में पिंजरे के पक्षी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया था और उनको इतना आत्मिक बल किसने दिया था। दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश और सतयुगी श्री कृष्ण की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था और उस पूर्व दृष्टि के अनुसार अब व्यक्ति तथा समाज का क्या कर्तव्य था। लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वे देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मंतव्यों और आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वे प्राय सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो। इसका भाव यह था कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खामखा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ। यानी दादा तो पहले ग्रस्त तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने ही तो उनमें दिव्य प्रवेश करके उन्हें पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ही ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ, इन्हें यह मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयं ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा का अपना तो कोई तन है नहीं, इसलिए जब वे मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देख कर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं। इसमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चीर हरण किए। ऐसे ऐसे अनेक आख्यान तथा कथानक सुनकर उन्होंने मान लिया कि संसार में यह काम विकार की रीति रसम तो सदा से चलती आई है, काम महाशत्रु है, यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं। अतः कोई बात नहीं, बाबा यह भी कहा करते थे कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ये लोग जानते ही नहीं है कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने वाले नरनारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते थे, शाहे जहान शुद्ध सेवा करने दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। ज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच विकारों में रोते थे सब, देह अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मतवालों को उस प्रभु ने आज जगाया, ज्ञान से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है, देख देख अतिंद्रिय सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया, शाहे जहान शुद्ध सेवा करने दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया।
परंतु दूसरी ओर एंटीओ मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता था और वे कन्याओं और माताओं पर अधिकाधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे कि इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। दोस्तों, उस समय लोगों ने कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार किए उसकी ऐसी दर्दनाक कहानी है कि यदि जिसका उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बह निकलेगी। वे सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए।

दोस्तों, जीवन में जब भी हम उतार चढ़ाव की बात करते हैं, कई बार हमने सुना है कि जीवन संगीत की तरह है, क्योंकि संगीत में भी उतार चढ़ाव होते हैं। सुरों को कभी ऊपर से गाया जाता है, कभी नीचे से, कभी सुर तेज लगाए जाते हैं, कभी धीमे से। इन सुरों के खेल को जब हम समझ जाते हैं तो संगीत हमारा मधुर हो जाता है। ऐसे ही सुरों के एक साधक के साथ आज हम मिलने जा रहे हैं। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यशस्वी भारत।

0: हो गया है। ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों, आइए मिलते हैं उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी से, जिन्हें वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जानेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में, संगीत के बारे में, और संगीत के इस अनोखे पहलू के बारे में जिसका नाम है ध्रुपद। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं वसीफुद्दीन डागर जी का हमारे स्टूडियो में। वसीफुद्दीन जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है रेडियो मधुबन में जुड़ने की आप लोगों के साथ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: और हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य हम कहेंगे कि आज का ये हमारा एपिसोड आप सजा रहे हैं अपने चमक से, अपने हुनर से और अपने तजुर्बे से भी, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा अवसर मिलता है कि हम ऐसे भी वीकली वंस एन एपिसोड आता है। और जनरली जितने भी हमारे मेहमान होते हैं वो बहुत व्यस्त होते हैं, क्योंकि उनका चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो इतने डीप लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं अपने फील्ड से कि उनका समय निकाल के आप आना एक तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर हम उनसे एक घंटा मांगते हैं। तो इसीलिए आपने वो एक घंटा हमें दिया, इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है।
1: It's all my pleasure.
0: तो वसीफुद्दीन जी, हम हमारी आज के बातचीत की जर्नी शुरुआत करेंगे पहले आपकी कहानी आपकी जुबानी से, क्योंकि आज आप एक जाने माने ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद के जो इतिहास को आज आप वर्तमान में लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप बचपन में आपने अपने आसपास में शायद ध्रुपद के सुरों में खुद को पलते हुए देखा है, लेकिन कभी आपके मन में क्या आया होगा, क्यों आपने इसको सेलेक्ट किया, या आप कुछ और फील्ड में भी जा सकते थे, या आपकी जर्नी क्या रही, ये हमको जानना है। अक्सर जब हम किसी मेहमान के बारे में बात करते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है, सुना होता है, हम उसके जरिए उनका जिक्र करते हैं, लेकिन जब वो खुद अपने बारे में कहते हैं तो वो कहानी जानना और भी मजेदार हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी।
1: जी, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट मैं 20वीं पीढ़ी में हूँ, 20th जनरेशन इन द फैमिली। So my father, my grandfather, my great grandfather, my great great great grandfather had all been musicians. So of course it's a blessing. भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है कि मतलब आप अगर खानदान में पैदा होना ही काफी नहीं होता है, ईश्वर की प्रभु की बहुत कृपा होनी चाहिए एक म्यूजिशियन बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए। तो वो परमात्मा ने कर्म किया कि उसको, उसने मेरे में भी म्यूजिक की तरफ बहुत ही प्यार और बहुत ही स्नेह रखा, और मैं उससे म्यूजिक के प्रति मैं हमेशा ही मुझे अच्छा ही लगा बचपन से अभी तक। तो ये है कि मतलब आज साइंस भी बोल रही है, मतलब बहुत पहले से ही हम लोग भारत में तो माना ही जाता है कि पैदा होने पहले से ही सुन रहे होते हैं। तो आई बीन लिसनिंग बिफोर आई वॉज बॉर्न, सो म्यूजिक वॉज वेरी मच इन द एटमोसफियर। माई अंकल, my tauji ustad zahiruddin dagar sahab was there, my father ustad fayazuddin dagar sahab, both of them were my teacher, my hero, you can say. I was looking at main unko hi hamesha dekhta rehta tha ki bhai ye ho raha hai, ye performances hai. To journey mein yahi target yahi tha, aur phir school mein my teacher bhi bolte the, I got encouragement from my principal and my school and my teachers, they all encouraged that, you know, आप करो आप करो। और फिर एक बात ये भी बोलते थे, एक टीचर ने मुझसे ये भी बोला, देखो आसिफ, आपका आपको मालूम है आपको क्या बनना है, लेकिन आपके जो दोस्त है ना, इनको कुछ नहीं मालूम इनके कहाँ पे इनकी लाइफ किधर लेके जाएगी। तो वन थिंग इज वेरी वेरी गुड कि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, और आपकी इच्छा भी आपको आप ये करना चाहते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। और मैं भी इसको मानता हूँ, हमारे परिवार वाले भी इसको मानते हैं कि उसकी कृपा रही कि मैं म्यूजिशियन बन गया। और फिर बहुत आसान तो होता नहीं है, बहुत कठिन डगरपन घटकी जो है ना, वो डगरपन घटकी मैं ये बोलता हूँ, ये जगह जो है ना, ये है ये डगरपन घटकी, इसे खाना भी है, पीना भी है, गाना भी है, बोलना भी है, सारे यही नेक जो है कंट्रोल करता है पूरे के पूरे, इसको भी मस्तिष्क को भी वो कनेक्ट करता है। तो लेकिन यही है डगरपन घटकी, तो इसको पूरा का पूरा इसको पूरा का पूरा साधना, स्वरों की साधना, उसको रियाज किस तरीके से करना है, साधना किस तरीके से करना है, कैसे आपको वक्त लगाना है।

0: है, क्योंकि जब इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गला भी खराब होता है, गला बैठ जाता है, जिस चीज की ज्यादा इस्तेमाल होती है तो खराब भी तो होने लगता है ना। तो गले की किस तरीके से केयर की जाती है, गले को किस तरीके से रफ एंड टफ बनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो मैं पहले पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अचार नहीं खाऊंगा, मेरे एक अंकल नहीं खाते थे और कोई और नहीं खाते थे, तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, एक खट्टा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अपने गले को डेलिकेट नहीं बनाने की जरूरत है, नहीं इतना उसको छुई मुई नहीं बना देना, छुई मेरे थोड़ा सा ये हो गया तो हो जाएगा, वो हो गया तो हो गया, तो रफ एंड टफ होना चाहिए। अचार भी खाओ, आइसक्रीम भी खाओ, सब कुछ करो, सब कुछ वो करो। तो मेरी आदत अभी भी है, अभी अब सब लोग यू विल वेरी सरप्राइज सुनो, आई ईट गोलगप्पा ऑल्सो, आई ईट चाट ऑल्सो, मैं सब कुछ खाता पीता हूँ। मतलब उसको गले को रफ एंड टफ बनाने की जरूरत होती है। तो साधना फिर ताऊ जी से और पिताजी ने साधना शुरू करवाई। बच्चे को क्या जरूरत है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, जो भी हमारी आदतें जो सम ऑडियंस उसके बीच में मुझे बुला लिया जाता था कि हाँ, हमारा बच्चा भी कर रहा है और वो भी है बहुत बहुत अच्छा करता है। हाँ बेटा बेटा सुनाओ, तो बच्चा वो क्या चाहिए, बीच में आके आई टू सिंग और थोड़े थोड़े स्कूल भी शुरू हो गया था, स्कूल के साथ फिर वो भी था, पहले पहले थोड़ी देर की एक क्लास होती थी शाम को या कोई स्कूल से आने के बाद, या फिर और समय होता था जब छुट्टी होती थी, तो उसमें जो है वो ज्यादा लंबे सेशंस होते थे, सुबह से शुरू हो जाते थे, सुबह 6 बजे से या 6:45 5:30 जब भी उनका जब भी शुरू हो जाता था रियाज, तब से वो लग जाते थे। वो तब से 10 11 12 बजे तक जो है 4 3 4 5 घंटे उसमें लग जाते थे। तो शाम को छुट्टी के दिन ये होता था, ये फॉर्मेट होता था, वरना स्कूल डेज में तो फिर वही शाम को 1 1.5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें वो होता था, फिर उसमें प्रैक्टिस करते करते जो है फिर उसके अंदर, क्योंकि ग्रेजुअली ओनली स्टैमिना बिल्ड होता है, स्टैमिना तो एकदम ऐसा आता नहीं है ना, स्टैमिना को भी तो वक्त समय देना पड़ता है। तो इसी तरीके से उसमें फिर ग्रेजुअली उसके वो बढ़ता ही चला गया। तो एट द एज ऑफ 20 आई गेव माई फर्स्ट परफॉर्मेंस इन भारत भवन, अब पहला मेरा परफॉर्मेंस भारत भवन में हुआ था, और बहुत सी चीज़ें उसमें भी घटी थी। मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई थी जब हमको जाना था, और मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो पूरे पूरे टाइम 6 घंटे ट्रेन मतलब लेट होना, एक जगह पे खड़ी हुई थी 6 घंटे, हमने कुछ खाया भी नहीं, और हम पहुंचे 4:30 बजे और 5:30 बजे परफॉर्मेंस था, तो बस तैयार होने का ही टाइम था। बस उसमें भी भागा दौड़ी करके फिर तो ताऊ जी ने पूछा भी आपको भूख लग रही है, तो मैंने कहा उन्होंने अरे तुमने खाया नहीं ट्रेन में, मैंने कहा जी नहीं खाया। वो भी थे अलग अलग उसमें थे, हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में थे, टिकट नहीं मिली थी आसानी से, तो अलग अलग आए थे। तो उसमें कहने अरे क्यों नहीं खाया, मैंने कहा आप उधर थे तो मैंने नहीं खाया। तो फिर मुझे पहुंचे कहे भूख लग रही है, कहा जी बहुत जोर से भूख लग रही है, बेटा खाना नहीं हैव टू कीप योर स्टमक एम्प्टी। हम लोग को बहुत पहले से ही हम लोग नहीं खाते हैं उसमें, क्योंकि उसको उसमें आवाज जो लोअर आवाज और मंदिर की आवाज और वो सब कुछ उसको बिल्ट अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उसमें भारत भवन में मेरा प्रोग्राम हुआ था 88 में। और फिर उसके बाद फिर मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो फिर मैं ताऊ जी के साथ जुगलबंदी में उनके साथ बैठा मैं, तो फिर वही उसी तरीके से ही चलता रहा वो मामला। सो नाउ आई एम हियर एंड आई एम ऑनर्ड टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली, इतने सारे ग्रेट म्यूजिशियंस यहाँ पे रहे हैं, एंड आवर टीचर्स आर फार सुपीरियर देन अस, वी कैन नॉट अचीव दैट, वी ट्राई टू डू लिटिल थोड़ा बहुत उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे सारे बड़े बहुत बड़े हैं, उनको किसी तरीके से भी छू नहीं सकते, इतने बड़े हैं वो लोग।
1: यही सिखाती है भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा कि हमेशा नम्र रहना है और हमेशा झुक करके चलना है, इसमें ही महानता है, इसलिए हम समझते हैं। लेकिन मैं इस पे वापस आऊंगा, लेकिन मैं पहले सवाल वहां पूछना चाहता हूँ कि बचपन में जब आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ घिरे होते हैं जिनकी आकांक्षाएं या इच्छाएं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, और गाड़ियां होनी चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारा अलग अलग किस्म का सपनों से घिरा हुआ मन होता है उस समय। इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं हम, और कई चीजों का हम पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो वो जो यंग वासिफुद्दीन थे, उन्होंने खुद को कैसे इस इन्फ्लुएंस से बचा के रखा और कैसे खुद को बताया कि मेरा लक्ष्य जो है वो ये है, और उसके लिए आपने उस समय क्या किया? मतलब क्या आपने खुद को सुनाया, समझाया, या वॉज देयर अ गाइड हु वॉज मेंटरिंग यू?
0: माय फादर वाज माय बिग गाइड, माय अंकल वाज आल्सो देयर, वेरी मच देयर, बट फॉर कंसल्टिंग थिंग्स इट वाज माय फादर विथ हुम माय ही वुड ऑलवेज सजेस्ट समथिंग. तो एक्चुअली माय फ्रेंड्स आल्सो सपोर्टेड मी, दे न्यू हु आई एम एंड व्हाट फैमिली आई बिलोंग टू. बट वो जैसे वो संडे मैंने बताया ना, छुट्टी के दिन जो है वो बड़ा मुश्किल दिन होता था वैसे, क्योंकि उस दिन ही सबसे लंबा हमारा सेशन होता था. और उस दिन ही सुबह छुट्टियों में जब है ना, वो सुबह क्रिकेट हमारी अब 7 बजे खेला जाता था, सारे कॉलोनी के ना सारे इकट्ठे होते थे और अलग अलग क्लब्स के साथ खेलते थे, अलग अलग कॉलोनी के साथ मैचेस होते थे. उसमें मेरे छुट्टी के दिन वाले जो है मेरे मैचेस छूट जाते थे, बिल्कुल नहीं खेल पाता था क्योंकि मेरा इसमें सेशन में ही चला जाता था. तो उस पर नाराज भी होते थे वो लोग, क्या आई मैं बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग करता था, तो दे नीडेड मी इन द टीम, बट मैं उसको नहीं कर पाता था मैं उस पर. तो वो नाराज वाराज हो के वो कितना कितनी देर नाराज होंगे, जो मुझे उनको मालूम है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगा. तो आई हैड अ लव फॉर क्रिकेट आल्सो, मतलब था, लेकिन मेरे दिमाग में कभी और कुछ बनने का, क्रिकेटर बनने का जरूर है. तो हर बच्चे को कुछ खेल स्पोर्ट्स के ऊपर ही दिमाग लगता है कि स्पोर्ट्स ही में कुछ आगे वो करेंगे. तो दोज वर द डेज, वो एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर किसी पे भी वो नहीं था. हमारे पहले के वो माहौल भी चला गया, जैसे कॉलोनी के लोग खेला करते थे, सब कुछ खेला करते थे. आज तो बगैर किट के जो है कोई बच्चा क्रिकेट ही नहीं खेलने के लिए आता है, बगैर सही सही शूज नहीं हो फुटबॉल के तो वो नहीं खेलना चाहते, सही रैकेट नहीं हो तो वो. हम लोग तो एक दूसरे के शेयर करके खेल लेते थे, रैकेट एक या दो के ही होते थे, उन्हीं से पूरा का पूरा बैडमिंटन भी खेल लेते थे, और फुटबॉल शूज जो है वो चाहे कैसे भी खेल लेते थे, चप्पल थी या कैसा भी जूता था वो खेल लेते. आजकल जो है ना बहुत ही अपनी किट, अपना पैड, अपना विकेट, किसी के पास 2 विकेट थी, किसी के पास 2 विकेट थी, तो You can imagine what I'm saying. तो एक वो माहौल एकदम ही डिफरेंट था, और डिफरेंट मतलब हम उसी में ही पैदा हुए कि एक साथ ही सबको जितने भी हैं, सब दोस्त वोस्त जो भी मिलजुल के जैसा भी है, तो वी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. तो जरूर अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा. मेरा अपना पर्सनल वो है कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लोग पसंद करते हैं, तो मिडल ऑफ द सब्जेक्ट, मिडल ऑफ द कोर्ट, वो आपको हमको ये एक बार जरूर मन में आता है, अरे मुझे कैसे पसंद आ गया ये वाला सब्जेक्ट, ये तो इतना बेकार, इतना बुरा है और कितना वैसा है. कोई टेक इट एनीथिंग, फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, ज्योग्राफी ले ले, जो भी कुछ ले ले, व्हेन यू गो इनटू डेप्थ ऑफ द एजुकेशन, वो अपना भयानक रूप दिखाता ही है वो सब्जेक्ट जो है. तो म्यूजिक में भी ऐसा ही ऐसा ऐसे क्षण आते हैं जो बहुत बहुत डिफिकल्ट चीजें, समय आता है कि आप गला नहीं चल रहा है, गला सपोर्ट नहीं करता है, वो है, फिर ऊपर से और टास्क मिल जाता है और डिफिकल्ट वो चीजें की हो जाती है. तो इट हैपेंस विद एवरी सब्जेक्ट, कि मतलब बीच में जो है जरूर ये लगता है कि अरे मुझे म्यूजिक कैसे पसंद आ गया, ध्रुपद है बड़ा मुश्किल है, मैं तो कुछ और ही कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन हर चीज मुश्किल है. तो ये जरूरी है कि आपको यू हैव टू हैव ट्रस्ट, आपको अपने पे यकीन रखना है, और आपके टीचर्स के ऊपर यकीन रखना, अपने बड़ों पे आदर सम्मान बहुत जरूरी है, जो आजकल जो है गायब होता जा रहा है. लेकिन फिर भी हमको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा कि उन लोगों पे, उन नई यंगर जनरेशन को हमको ये प्रोत्साहित करना है कि आप यू नो इससे भी कुछ होता ही है. आजकल हमें सवाल पूछने की कोई इजाजत नहीं थी, आजकल हर हर टेक्निक के भी के बाद वो पूछ बोलते इससे मुझे क्या फायदा होगा, उससे मुझे क्या फायदा. अरे भैया करो तो करना जरूरी है, करत करत अभ्यास जो है, आपको अभ्यास करना जरूरी है, फिर उसके बाद फिर आपको अपने आप अपने दृष्टिकोण ही बनेंगे. पहले से सवाल पूछ लेते, कुछ लोग अपना अपना आपको इंटेलिजेंस समझते हैं सवाल पूछने का, उसमें जवाब मिल भी चुका होता तो उनका सवाल जो है ना पहले से टेक्स्ट तैयार होता है, तो फिर भी वो सवाल पूछते हैं. तो पहले तो हमको सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं थी, तो जवाब मिल जाते हैं, जवाब सवाल अगर पूरा सवाल बन जाए तो सवाल में ही जवाब होता है. तो यू हैव टू गिव अ
1: टाइम.
0: जैसे आपने
1: बताया कि करते करते ही आपको जवाब मिलता भी है, मतलब पहले
0: जी
1: करने
0: जी
1: की
0: बिल्कुल
1: आवश्यकता है. जब आपने कहा करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले के लोग थोड़े से सुजान पहले से ही होते थे और इसलिए उनको जड़मती से सुजान होने में कम टाइम लगता था। अभी शायद जड़मती वाला हिस्सा ज्यादा है जिसके वजह से सवाल भी ज्यादा है या डाउट। सवाल मैं समझता हूँ गलत नहीं है, लेकिन जो संशय है, जो डाउट है ऑन द प्रोसेस, ये प्रोबेबली बुद्धि को करप्ट कर देता है कि ये जो मुझे बता रहे हैं इसमें जो डाउट आ रहा है गुरु के प्रति या शिक्षा के प्रति, ये बहुत खतरनाक होता है। और जैसे आपने बताया कि हर सब्जेक्ट में ही एक लो पॉइंट आता है जहां पर आपको लगता है कि मैंने क्यों ले लिया ये सब्जेक्ट, मैंने अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन ऐसे समय पे ये संशय और ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो व्यक्ति अपने बुद्धि को संशय से कैसे बचाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो? मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा कि आज का युवा या कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर पारंगति लेना चाहता है और उसमें अगर उसको संशय आ रहा है या वो जूझ रहा है, तो संशय से खुद को कैसे बचाए?
0: संचय से वो किस तरीके से बचे हैं, उसे बचना तो मुश्किल है, लेकिन उसमें फिर यही है कि यू हैव टू डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर। आप उन पर ट्रस्ट करिए, यू हैव टू डेवलप अ ट्रस्ट। और वो भी गायब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों में वो भी गायब हो जाता है, बट यू हैव टू हैव ट्रस्ट। आपको यकीन रखना पड़ेगा कि इसी इसी सिया समंदर से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा। तो ये तो बहुत बड़े लोगों का ये कहना है, लेकिन मैं एक उस बचपन में जो है उसको बहुत मुश्किल से वो चीजें समझती है, तो माँ माँ और बाप जो है ना वो, या कभी भाई बहन भी जो है, बड़े भाई या बड़े बहन या कोई भी, दे कैन इंस्पायर यू, दे कैन गिव यू अ रिप्लाई। उसमें से अगर आप उसमें से अगर उस क्षण में अगर आप उसको ट्रस्ट करके उसको उसी विधि को, उसी विधा को, उसी विद्या को अगर आप ट्रस्ट कर लें, तो यू विल गेट द रिप्लाई। तो इसी तरीके से मैं उस डाउट्स में जब मैं आया था, जब मुश्किल मुश्किल क्षण थे, जब डिफिकल्ट प्रैक्टिस हो रही थी और वो आई एम नॉट एबल टू डू, तो उससे ये लग रहा है यार कि क्या मतलब है, फिर देन यू हैव टू गिव अ टाइम, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो बेस्ट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ द रूम ऑल्सो, आप थोड़ा थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाओ थोड़ा सा। अगर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो उस जगह को छोड़ना अच्छा रहता है। जब जगह छोड़ते हैं तो फिर वो जगह याद आती है, जब थोड़ी देर आप जगह छोड़ हट जाओ तो फिर आपको वो जगह फिर याद भी आती है, आपको दिखती भी है, जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, जहाँ पे आप अभ्यास कर रहे थे, थोड़ा सा उस जगह को छोड़ने से आपको ये लगता है कि हाँ चलो छोड़ो दिमाग में। थोड़ी देर आप जब बाहर अपने अपना व्हेन यू टेक वो सब निकाल देते हैं, तो उसके बाद फिर वही जगह वापस आपको याद आती, फिर आपको वापस वो खींच के लेके आ जाती है, तो कहीं ना कहीं तो आप अट्रैक्शन तो आपका उसी पे ही था ना, तो इसीलिए आप वो कर रहे थे, तो इसलिए देन यू यू गेट इन टू दैट। तो उस टाइम जो है मैं अभी है कि आपको समय को भी समय देना पड़ता है, यू हैव टू गिव अ टाइम, समय को समय देना पड़ता है। जब आप अच्छा समय आप किसी की क्वालिटी टाइम कहीं पे आप देते हैं, तो वो दैट क्वालिटी टाइम गिव्स यू बैक, फिर आपको वो समय अच्छा समय दिखाता है। तो ये समय एकदम ऐसे तो आ नहीं जाता है, तो सन्मयता के साथ उस समय का आपको आपको परिश्रम करना चाहिए, आपको और आपको उसको उसका इंतजार करना चाहिए। आजकल जो है समय उड़ क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ना, हमारे अध्यात्मिकता में हम लोग का यही वो रहता है कि भाई जो चीज अच्छे श्लोक क्यों पढ़ने को लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अच्छी बातें बोलो, क्यों बोलते, इसलिए बोलते हैं कि वो अच्छा जो है उससे अच्छा ही होता है, जो बुरा होता है तो उससे बुरा ही होता है। तो इसीलिए ही जो है हम लोग पिछले 30 साल से हम लोग या ज्यादा से 30-40 साल हो गए हमको ये समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। कितनी जल्दी समय उड़ गया, समय कितनी जल्दी उड़ जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग को तो अब ये मंत्र भी जाप करना चाहिए, समय है, समय है, समय है, जब समय है, समय है करेंगे तो समय भी थमेगा, समय भी रुकेगा। क्योंकि हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो हम लोग संगीत जो गाते हैं, जो मेडिटेशन करने वाले, तो वो क्या है, सबसे सुंदर समय कौन सा है, सबसे सुंदर समय कौन सा है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कहता है सूर्य उदय है, कोई कहता है सूर्य अस्त है, कोई कहता है यही यही समय है, कोई कहता है सुबह का समय है, तो ज्यादातर सुबह को ही बोलते हैं कि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। तो उन्हीं को मैं ये सवाल पूछता हूँ कि रात अच्छी नहीं है क्या, रात कुछ नहीं देती क्या, तो रात भी कुछ देती है, हर समय कुछ ना कुछ आपको देता ही है, लेकिन सबसे सुंदर समय वो समय है जब आपको समय का ही आभास नहीं हो। क्योंकि समय को तो वो जो 5 मिनट का गाना कभी 5 मिनट में खत्म हो जाता है, कभी 5 मिनट में नहीं खत्म होता, कभी 5 मिनट से पहले खत्म हो जाता है। ये होता है, ये हम सबके साथ हो चुका है जो हमको पसंद है। कभी हम वो गाना पूरा का पूरा सुन पाते हैं, कभी वो टॉक जो है बहुत अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते कितनी अच्छा प्रवचन हो रहा होता है नहीं सुन पाते हैं, कभी पूरा का पूरा सुन लेते हैं अच्छी तरीके से। तो वो क्षण जब आ जाता है, समय जब एक क्षण में प्रवेश कर देता है, तो फिर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान जो है, ये संगीत है जो है, ये ध्यान जो है वो आपको उस क्षण में ले जाता है, आपको समय को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मतलब अपने आप को आप रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट, या फिर धारणा क्या है, ध्यान क्या है, किस किस तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेजेस है। तो आपको आपको किस तरीके से अपने आप को वो करना है, मतलब कमिट करना है। कमिटमेंट के बाद फिर आपकी धारणा भी चाहिए।
1: मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि समय को भी समय देना बहुत जरूरी है, और जब समय आपको आभास ही ना हो वो समय आपका बेस्ट समय है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप अपने, इसे ही हम योग कहते हैं, कि आप अपने कर्म से या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे आप इतना जुड़ जाए कि आपको जो थर्ड एलिमेंट है समय उसका ख्याल ही ना रहे। और इसके लिए ही जो आपने बताया कि अभ्यास धारणा ये बहुत मायने रखती है। मुझे एक और सवाल इसमें ध्यान आता है कि व्यक्ति जब अपने विधा में इस प्रकार से जुड़ जाता है कि वो और विधा अलग नहीं हो, उसका एक इमेज बन ही जाता है उस विधा के साथ, तब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के ऊपर ये बोला जा रहा है कि भाई आप तो बस यही करते हैं, आपको तो बस यही आता है, लेकिन एक ह्यूमन स्पिरिट जो है, एक मनुष्य जो है, वो लगभग सब कुछ करने में पारंगत हो सकता है, लेकिन कोई एक विधा को चूज करता है। कभी आपको ऐसे सुनने में आया है अपने लिए कि भाई आप तो केवल ध्रुपद गायकी में ही आगे हैं, या आप कुछ अलग प्रकार के गायकी में नहीं कर सकते, या कईयों के लिए ऐसा बोला जाता है भाई ये तो लोक संगीत ही कर सकते हैं, ये शास्त्रीय संगीत नहीं कर सकते, या ये वेस्टर्न म्यूजिक ही कर सकते हैं, इनसे ये म्यूजिक नहीं होगा, ये तो इस तरीके की बातचीत बहुत सुनने में आती है, इसमें कितना तथ्य है?
0: भाई एक चीज आ जाए वो कोई आसान तो है नहीं। एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। तो एक कभी अगर आप साधक बन जाते हैं और संपूर्ण साधक बन जाते हैं, so that should give you blessing, that blesses, this is a blessing you get. और आप में अगर उत्तेजना है तो आप उत्तेजित कहीं पे भी रह सकते हैं।
1: बहुत अच्छा है।
0: तो आप में अगर आप उत्तेजित हैं तो आप उत्तेजित रहेंगे ही रहेंगे। तो लेकिन उसी को तो रिलैक्स करने के लिए ये माध्यम है, ये योग क्यों है, योग को धीरे करने के लिए क्यों बोला गया है, ये ठहरने को क्यों बोला गया है, मेडिटेशन को, ध्यान को क्यों कहा गया है कि आप ठहरो। सबसे सबसे पहले मतलब जो हम लोगों ने अंगुली माल का वो जो सुना ना, वो पहली बार जो उन्होंने वो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उसने कहा उनको कहा ठहरो, तो उन्होंने कहा कि तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो पहले तो ये बहुत जरूरी है कि ये ठहरने का मतलब क्या है, आप रुकने का मतलब क्या है, थमने का मतलब क्या है, अपनी अपनी जो भी अपनी उत्तेजना है आपकी, जो इधर उधर जो आपकी इंद्रियां जो आपकी सब जगह पे लेके जा रही, तो उसको एकाग्रत का मतलब क्या है। अब जैसे एक मुझे पता नहीं, मैं ध्यान का तो मुझे ना क्या मैं बोलूं, लेकिन ध्यान मेरे लिए वो है कि शोर में भी अगर आप अपने सेंटर प्राप्त करें तो वो ध्यान है। एक एम्बियंस क्रिएट करके ध्यान किया तो ध्यान अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जहाँ पे ऑलरेडी पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पे ध्यान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको वहां पे प्रैक्टिस करवानी चाहिए जहाँ पे बच्चे छिड़कूद कूद कर रहे हैं, वहां पे आप अपने ध्यान प्राप्त करें, वो ध्यान है। और देखो ध्यान आया कहाँ पे, कौन से मुल्कों में आया, भारत से, भारत में आया, चीन में है, जापान में है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। शोर तो आजकल बहुत हो गया ना, आजकल तो आज जो पंखा है वो भी शोर करता है, पंखे का भी शोर है, कूलर का भी शोर है, एसी का भी शोर है। उस शोर में से आपको आवाज अपनी बचानी है, निकालनी है, संभालनी है। तो ध्यान का मतलब ये इतनी डेंसली एरिया में क्यों क्यों ध्यान दिया गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में वहां पे पंखे की जरूरत नहीं है, उनको एसी की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी ठंडे हैं मुल्क, उनको वो वैसी उनके जो हमारे हमारे टोन में, उनकी टोन में इसलिए भी फर्क है क्योंकि वो उनको

0: एसी और से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमको अपनी आवाज निकालने के लिए एसी से भी लड़ाई करनी है, पंखे से भी करनी है, ये से भी करनी है, सब चीजों से करनी है। तो ये भी एक वजह है कि वो मतलब उनके टोन और इधर के टोन में क्यों फर्क हो जाता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान देखना पड़ता है ना। तो ध्यान एक ऐसी जगह है कि मतलब आपकी यू हैव टू फाइंड योर सेंटर, जब थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड फाइंड इट, फाइंड योर सेंटर, ये है ध्यान। अब जैसे स्वर जो है, स्वर जैसे हिंदी में लिखते हैं स्वर, तो आधे सा और वह र है। एक और बात बोलता हूँ मैं, और मैं आजकल बस ये दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो मैं ढाई अक्षर किस चीज का है?
1: प्यार का कहते हैं,
0: प्यार का, लेकिन आ की मात्रा है। प्रेम का भी बोलते हैं, उसमें हलंत है, प्रे प में हलंत है, फिर ए की मात्रा है, फिर माँ है ना। तो फिर कितने हो गए? हलंत को हलंत, हाँ ढाई से ज्यादा हो गया। प्यार में आ की मात्रा भी लगी, पा या
1: फिर आ की मात्रा,
0: तो प्यार नहीं है, प्यार है, तो आ की मात्रा है, तो तो ढाई अक्षर जो है वो है। फिर अगर अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ढाई अक्षर स्नेह का भी बन सकता है फिर तो, और ढाई अक्षर स्वर का है
1: जिसमें कोई एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है। तो ये स्वर जो है प्रभावित करता है, हर मनुष्य को प्रभावित करता है, अच्छे स्वर बोलने के लिए बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर ध्यान भी इतना वो है, इतनी कोमल चीज है, स्वर इतना कोमल है कि एक अक्षर का भी भार नहीं सहन कर सकता, उसी तरीके से ध्यान किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान का अध्ययन क्या है, अध्याय पढ़ने का, अध्ययन करने का, ध्याय ध्यान, ध्यान क्या है? आधा धा या और ना, आ की मात्रा के साथ ध्यान है, वो भी मैं ढाई नहीं बोल रहा उसको, लेकिन वो भी इतनी डेलिकेट चीज है कि उसको भी पूरा धा नहीं दिया, धारणा में पूरा दिया हुआ धा, धारणा में पूरा धा है, धारणा के साथ बैठो फिर ध्यान उसके अंदर, जब आप धारणा के साथ बैठते तो वो फिर ध्यान की प्राप्ति होती है, फिर वो डेलिकेट हो जाता है, वो
1: बहुत सुंदर,
0: फिर ध्यान मिलता है। ध्यान प्राप्त करने के बाद फिर समाधि है। अब समाधि क्या है? समाधि, लेकिन मैं उसको समाधि बोल रहा हूँ, समाधि नहीं बोल रहा मैं, जब आप सम का मतलब बराबर आ गया, सम
1: बराबर, आदि मतलब शुरुआत, फिर
0: इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अब जिसको ध्यान प्राप्त होता है वो ही बता सकता है, जो समाधि जिसको मिली है, कि वो क्या होता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट या सुपर अनकॉन्शियस स्टेट, कुड बी सिमिलर, क्या पता, जिनको मिला है वही जानते हैं।
1: ये ब्यूटी है कि हमारे जो पारंपरिक विधाएं हैं, जो शास्त्रीय संगीत है या नृत्य है या कोई भी विधा जो परंपरा से भारत में चली आ रही है, वो अपने आप में बहुत आध्यात्मिक है। और कोई व्यक्ति अगर केवल उसको ऊपर ऊपर से सीखता है, समझता है, या उसको मैं कहूँगा रोजगार का साधन ही समझता है, तो वो कभी इतने गहराई में उसके आध्यात्मिक रस को नहीं ले पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसके गहराई में पहुंचता है, जैसे कि हमारे श्रोता आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं वासिफुद्दीन जी आपको, कि एक आध्यात्मिक पथ जो है वो इजीली कोई भी विधा दे देती है। और कई बार जो हमारे स्पेशली मैं यंग जनरेशन के लिए कहूंगा, क्योंकि पहले शायद जब 1988 में आपने 20 वर्ष की आयु में भारत भवन में पहला अपना परफॉर्मेंस दिया, उस समय शायद कोई जो आजकल के टीवी रियलिटी शोज होते हैं और जो ये चकाचौंध होता है वो नहीं होता था। तो इसलिए जो तपस्या है, जो आध्यात्मिक पथ है, वो चल पाना एक सहज, मैं सहज तो नहीं शब्द यूज करना चाह रहा, लेकिन एकमात्र उपाय होता था। आज इतना ज्यादा प्रलोभन है कि भाई हम इधर स्टार बन जाएंगे, इधर हमारे फॉलोवर्स बन जाएंगे, इधर हमको एक सिंगिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, इधर हमारा एक परफॉर्मेंस हो जाएगा, इन सब के बीच में व्यक्ति भूल ही जाता है कि इन सभी विधाओं का उद्देश्य था कि आत्मा को आध्यात्म से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। चाहे आप संगीत के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे आप नृत्य के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो पर्पस ही कहीं गुम हो गया। कैसे हम उसको ठीक करें, क्या करना चाहिए हमें?
0: भारत एक ऐसी जगह है, देखो सबसे पहले तो एक भारत क्या, विश्व जो है पूरा, हमारा शरीर जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है धरती का, पृथ्वी का, मतलब एक मोटा मोटा एक उदाहरण ले तो जितना पानी उसको जरूरत है उतना हमारे शरीर को जरूरत है, एग्जैक्टली सेम परसेंटेज, ये तो मोटा मोटा है। फिर और भी चीजों को अगर मिलाए तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल जाती है। तो फिर शरीर इज अ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान की बनाई हुई वीणा है, गायत्री वीणा है, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट. सारे इसी ने बनाए ना, सारे इंस्ट्रूमेंट, सितार है, सरोद है, सारंगी है, हारमोनियम है, जितने भी है वो इसी ने बनाए. साउंड पहले उसमें बैम्बू से पहले साउंड उसको सुनाई पड़ी, उसने कहा कि भाई थोड़ा सा इसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा. तो मनुष्य इज कंटेम्पररी ऑफ ऑल टाइम, सदा से वो है. तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट. सब्जेक्ट बनाने वाला कौन है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला कौन है, नहीं समझने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है. तो मनुष्य ही है, सब चीजों के पीछे मनुष्य है. तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारे यहाँ जो है हर चीज में, भारत में, साउथ एशिया जो है, जो मैं आई इंक्लूड पाकिस्तान आल्सो एंड बांग्लादेश आल्सो, ये साउथ एशिया जो है,
1: अखंड भारत,
0: नेपाल जो ये है, अखंड भारत जो है, इधर ये आध्यात्मिक जो एक स्वरूप है और जो हर चीज में आत्मा डालने की जो वो है, एक ख्वाहिश है. फूल में भी फूल की भी आत्मा को तलाश करने की कोशिश करता है, किसी और चीज को भी, पत्थर जहाँ पे पत्थर, जहाँ पे बूंद गिर रही है जिस पत्थर पे, उसकी भी आत्मा तलाश करने की कोशिश करता है. उसमें क्यों बूंद कहाँ पे पड़ के, वो जो पत्थर जो इतना साफ हो गया है, कभी आपने उधर हाथ तो लगाए होगा वो जहाँ पे बूंद पड़ती है, वो पत्थर कितना सॉफ्ट हो जाता है, कितना अच्छा लगता है उस पत्थर पे हाथ लगाना
1: जी.
0: और बूंद की औकात क्या है पत्थर के अगेंस्ट, लेकिन उसके अंदर भी वो छेद कर देता है, उसको भी सॉफ्ट कर देता है. तो भारत का, भारतीयों का, या भारत इंडियन थॉट में यही है कि हर चीज में आत्मा डालता है. बगैर आत्मा के वो अपनी चीजों में भी अपने आत्मा ही तलाश करता है, अपने सांस में तलाश करता है, जो बजा रहा है या तानपुरा है या जो भी है, उसके अंदर जो गाड़ी से कमाता है उसके अंदर भी वो गाड़ी से भी वो वार्तालाप करता है, जो टैक्सी से जो करा है वो भी उससे भी बात करता है अपनी गाड़ी से भी. भारत में होता है ये सब, और जगहों में भी होता है, ये नहीं बोलता और जगहों पे नहीं होता, होता होगा कहीं पे, लेकिन हम लोग अपनी चीजों में आत्मा डालने की हमको शुरू से ही वो है, चाहे फूल हो, पुष्प हो, कुछ भी हो, हर चीज है. पुष्प फिर वो आ जाता है कि वो क्या है. तो मनुष्य इज ब्लेस्ड टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी ओर से सोचने की उसमें क्षमता है. और जो जीव है, जो भी आते हैं, जानवर आते हैं, मरते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूसरे को मारता है, दूसरा वो करता है, वो करता है, वो आके वो खत्म हो जाते हैं. सर इसी कीड़े मकोड़े भी आते हैं, वो करते हैं अपने अपना काम वाम करते हैं, अपना कीड़े मकोड़ों का भी अपना काम है, पानी का भी अपना काम है, उसका भी अपना काम है, वो अपने साइकिल में आते हैं और चले जाते हैं. अच्छा भाई, मनुष्य भी यही सोचता है कि आपको कैसे पता वो एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं करते जानवर
1: जी.
0: तो ये मनुष्य इज ब्लेस्ड टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड. तो ये सिर्फ मनुष्य में ही ये एबिलिटी है कि दूसरी तरफ से भी सोचने की उसमें क्षमता है. तो इसलिए वो सबसे चॉइसेस परमात्मा का वो इसीलिए बन जाता है, दूसरे की तरफ से भी सोचने की कोशिश करता है, दूसरे के भाव को भी लेने की कोशिश करता है, दूसरे के दुख को समझने की भी कोशिश करता है, दूसरे की खुशी को भी महसूस करने की कोशिश करता है. अब वो किसी की खुशी में ज्यादा दुख होते हैं तो वो बात दूसरी है, वो तो एक दूसरा मामला हो जाता है. लेकिन किसी के साथ खुश होने का, खुशी के साथ खुश होते हैं तो खुश है, किसी की डेथ हो गई, किसी के दुख है तो उसके साथ दुख में मनुष्य देखता है, बैठता है. तो मनुष्य इज ब्लेस्ड, द मोस्ट ब्लेस्ड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग.
1: एग्री. और इसलिए जो आपका कहना है कि फोकस भी हम ही क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी हम ही खुद को कर सकते हैं, तो ये जो मैंने सवाल पूछा था कि ये जो प्रलोभन है चारों तरफ, ये भी हमने ही क्रिएट किया है. और
0: बच्चों को सिर्फ बच्चों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई.
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते. प्रोवाइडर्स शुड बी क्रिटिसाइज्ड, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नेट पे और ये हर हर जगह पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सबसे बेतुकी बेहुदा साइट्स हैं, अगर बाय मिस्टेक इफ यू क्लिक इट डजंट गो, सैकड़ों क्लिक के बाद भी वो नहीं जाती है वो. और जो आम साइट्स हैं और जो वो है, आराम से बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है, बंद भी हो जाती है. लेकिन जो सबसे बेतुकी बेहुदा जो साइट्स हैं, अगर बाय मिस्टेक इफ यू हिट दैट, वो हटती नहीं है, कितनी देर तक नहीं हटती है. तो दिस इज टू बी हु टू बी ब्लेम्ड. अब एआई इज देयर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो नीड टू बी commanding. You have to command. You have to command. ह्यूमन एरर दे देते हैं, ह्यूमन एरर कंप्यूटर में, कंप्यूटर को आप टाइप करते रहे, एक हल्के सी भी गलत टाइप हो जाता है तो वो शो कर देता है
1: जी।
0: तो ह्यूमन एरर्स आर देयर, लेकिन यू कांट जस्ट ट्रस्ट के मशीन हमको संभाल लेगी। मशीन तो हमको नहीं संभाल सकती ना।
1: ये जो आपने बात कही कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि युवा पीढ़ी जो है इस तरफ भाग रहा है भाग रहा है, लेकिन जो आपने बात कही कि जो प्रोवाइडर्स हैं उनको इन चीजों को पहुंचा कौन रहा है, ये मेकर्स जो हैं उनको ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार की चीजों का इन्वेंशन किया जाए या प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लोगों में ये भागम भाग की होड़ कम हो, इनफैक्ट उनके अंदर ये चीज ज्यादा बढ़े कि भाई एकाग्रता। या जो आपने पहले बात कही कि भले आपके पास 100 सब्जेक्ट्स हो लेकिन एक को भी अगर आप सध लेते हैं तो इट्स अ बिग डील, इट्स एनफ फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। कंटेंटमेंट, संतुष्टता उसमें आ ही जाती है।
0: बिल्कुल,
1: मुझे याद आता है मैं बचपन
0: में, takes you into bliss.
1: जी आनंद, ब्लिस
0: जी, जी.
1: मुझे याद आता है कि मैं बचपन में तबला सीखता था और मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आपको अभी कहीं परफॉर्म नहीं करना है, ना किसी स्टेज पे जाना है, ना ही कुछ करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको आप कब रेडी हैं। बट हम जैसे आप बता रहे वैसे हम रविवार को, क्योंकि छुट्टी रविवार को ही होती थी, आजकल तो 2 दिन छुट्टी मिलती है बच्चों को भी स्कूल में, हमें तो एक ही दिन मिलता था, तो हम एक दिन जाते थे सुबह से और गुरुजी के साथ और सभी शिष्य मिलकर के हम तबला सीख रहे होते थे, घंटों निकल जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। और कब एक समय आया जब उन्होंने बोला आपको यहाँ बजाना है। तो ये जो पेशेंस पकड़ के रखना है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बताना है लोगों को कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैंने कितना सीख लिया है या मुझे क्या आता है नहीं आता है, ये चीज जो है वो गुरु के ऊपर जो ट्रस्ट था एंड जो वर्च्यू ऑफ पेशेंस, धैर्यता, ये कहीं ना कहीं अभी कम होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इससे आपको थोड़ा ये चीज, मेरा सवाल थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे कोई परिचित थे जिन्होंने अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छे संगीत शिक्षक के पास शिक्षा के लिए भेजा था और वो जो संगीत शिक्षक थे उनको हमने ही रेकमेंड किया था और वो संगीत शिक्षक जो है हमें फिर फोन करके कहते हैं भाई इनके पेरेंट्स ने आकर के हमें पहले दिन ही पूछ लिया मेरा बच्चा कब रेडी हो जाएगा, फलाना प्रोग्राम आने वाला है, ऑडिशन के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे से गलती
0: parents, parents, parents also has to be blamed. एक बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन करवा रख लेते हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले वो भी कर ले। एक तो हर को अपना बच्चा ना प्रोजेक्ट ही लगता है वैसे, ये भी एक हो गया है। तो एक एक बात ये भी है कि टैलेंट, वी नीड टैलेंट एंड यू हैव टू बी टैलेंटेड टू अचीव व्हाटएवर फील्ड यू आर इन, बट एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। विद एक्सपीरियंस व्हाट यू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, एक्सपीरियंस रिप्लेसमेंट नहीं है टैलेंट का। टैलेंट से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा
1: और हुनर हुनर
0: है और उसके अंदर अनुभव भी जब आता है, जब आप तप जब आप उसके अंदर होता है, आप समय जब बिताते हैं अपनी चीज के साथ, अपने लगाव के साथ, आप वो चीजों के साथ स्पेंड करते हैं तो फिर उसके साथ लगाव पैदा होता है। तो लगाव जब पैदा होता है तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है।
1: तो ये जो कल्चर है, ये जो भागम भाग का कल्चर है, तुरंत हमको जल्दी फेमस होना है, हमें जल्दी पैसा कमाना है, इसमें हम वो तपस्या का पार्ट छोड़ देते हैं। एंड डू यू थिंक इट रिस्ट्रिक्ट्स आवर लॉन्जेविटी इन द फील्ड ऑफ आवर म्यूजिक और आर आर्ट फॉर्म?
0: एक्चुअली जो है वो तो करवाए ना फिर, वरना उनको इतनी सब चीजें हैं, देयर इज रिप्लाई ऑफ एवरीथिंग। अब वो क्या गूगल कम था, वो एक और भी आ गया, वो GPT पता नहीं कौन सा है, वो चैट
1: GPT
0: है, वो है, पता नहीं कौन कौन से आ गए जो आप ही को आपका जवाब दे रहे। तो मतलब वो तो पागल हो रहे हैं लोग। लोगों का क्या है, लोगों का मत जो है ना बिल्कुल मारी गई है। वो तो खैर चलो ठीक है, दिस दे आर गोइंग आफ्टर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यू नीड ह्यूमन टच। ह्यूमन टच के बगैर कुछ हो नहीं सकता। या अगर मतलब एक कंप्यूटर के साथ भी जी सकते थे लोग, लेकिन क्यों फिर पेट के साथ क्यों जीने लगे? क्योंकि वो सांस ले रहा है, वो जवाब दे रहा है। तो इसलिए वेस्ट में जो है बुढ़े लोगों के पास वो पेट पेट वो कर देते हैं, क्योंकि वो उससे वो बात करते रहते हैं, वो गिव वो अपना रिएक्शन भी देता है, पेट जवाब भी देता है। तो कंप्यूटर को जब तक आप कमांड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर पेट जो है वो रिएक्शन दे देगा, अगर उसको कुछ सही नहीं लग रहा तो कहीं पर उसको वो रिएक्शन दे देगा, लेकिन कंप्यूटर बगैर कमांड के नहीं देगा ना। तो ये आर्टिफिशियल वो भी थी ना, कौन सी, वो जो पूरे घर का जो कंट्रोल करती थी कि ये वाला भजन सुना दो, ये राग सुना दो, वो सुना दे, एलेक्सा। हाँ, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अब कहाँ गई वो एलेक्सा, जितनी बात हो रही थी अब वो आर्टिफिशियल दूसरी इंटेलिजेंस आ गई। तो ये प्रोवाइडर्स वो उनको चाहिए, आपके एप्पल फोन है या एंड्रॉइड फोन है, वो थोड़े थोड़े दिन में वो कोई एक और चीज इसके अंदर इजाफा कर देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो वो मार्केटिंग है। तो सबसे पहले मार्केटिंग तो इसी की मार्केटिंग होनी चाहिए कि आपके जो आत्मा की क्योर कैसे है, आत्मा को क्या चीज अच्छी लगती है, आत्मा किससे रिझती है। आत्मा आत्मा में तम है, तम मतलब अंधेरा है। आत्मा तभी तभी जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं तो आत्मा तम की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तम देन वी क्या, हाँ यही, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं, हम तो सबसे ही बुरे हैं। वंस यू स्टॉप टू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ तो वो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते। तो इसलिए रोशनी की तलाश जरूरी है। सो यू हैव टू नो हाउ टू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ।
1: और
0: मतलब औरों की भी प्रशंसा जरूरी है। आप फिर मतलब इसके अंदर भी तो इम्बैलेंस हो जाए ना, सिर्फ आप अपनी अपनी अपनी को ही अप्रिशिएट करते रहे और किसी और को नहीं अप्रिशिएट कर रहे, दैट इज आल्सो बैड। तो फाइंड द राइट बैलेंस के मतलब औरों से भी प्रशंसा जरूरी है, आपको अपने भी अपने को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए स्वर स्वर क्यों लगा के जो हमको आनंद जितना आता है वो लोगों को पता नहीं आता है या नहीं आता है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो है। अब आप जो जो, जो क्रम कर रहे हैं आज, आज जो टीवी मतलब इसमें जो रेडियो जॉकी जो है या जॉकी है जो भी है, तो इसमें पहले जॉकी तो पहले एक तो शब्द मुझे मुझे सही नहीं लगता है वैसे तो, क्यों पता नहीं क्यों रेडियो जॉकी बना दिया है, मुझे समझ नहीं आता जॉकी क्यों नाम दे दिया है। जॉकी का मतलब है, जॉकी जो है पहले से उसमें इस्तेमाल, आई एम सॉरी अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना।
1: नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट।
0: जॉकी किसके लिए बोलते थे, आप सुकून से बैठे हुए फिर भी जॉकी क्यों बने हैं। जॉकी तो बैठता ही नहीं है, उसको तो रिब्स दबाने होते हैं, तो इसलिए वो मुकर रिब्स दबाते दबाते वो हो जाता है वो, तो सुकून से वो कहाँ बैठता है वो।
1: ये आपकी बात एकदम राइट है कि लोगों ने जो चीज बोलना शुरू कर दिया बगैर सोचे समझो उसको आगे बढ़ाते भी गए, वो आगे बढ़ाते भी गए, कभी सोचा भी नहीं कि इसको क्यों बोला जा रहा है, बस एक धुन सी थी कि भाई हमको उस होड़ में पार्ट लेना है। एकदम एक्यूरेट है आपका कहना।
0: तो अब बुरे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा जो मैं बात कह रहा हूँ, भाई आई एम सॉरी, मैं पहले से उसके लिए अपोलॉजी कहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। मतलब जो और जो हम आप सुकून से सुन रहे हैं ना, और लोग सुकून से सुनते ही नहीं है, सवाल गाने से पहले भी बात करने लगते हैं, गाना खत्म होने से पहले भी बात करने लगते हैं। तो भाई संभालो, संभालना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक धैर्य लाना भी बहुत जरूरी है। आपने शब्द इस्तेमाल किया तो धैर्य जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, और अपने पे विश्वास भी जरूरी है। हम किसी औरों पे ज्यादा देखने लगते हैं, अपने से ज्यादा कुछ और लोगों को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको सुकून नहीं मिल पाता है। हम दूसरों की तरफ इतने अपने रुझू कर लेते, इतना उनके बारे में सोचने लगते या इतना उनके लिए वो करने लगते कि हम अपने अपने आप को देखना बंद कर देते। तो उनको भी देखिए, अपने आप को भी देखिए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, हर राग में हमारे सा जरूर होता है, सा के बगैर कोई भी राग नहीं। सा से संगीत है, सा से संगति है, सा से सूक्ष्म है, सा से सारांश है, सा से संचार है, सा से संस्कार है, सा से संस्कृति है, सा से सृष्टि है, सा से सूर्य है, सा से समंदर है, सा से समक्ष है, कितनी चीजें हो गई सा से। सा से स्वर है, सा से सरस्वती है, सा से स्थापना है, सा से स्थापित है, सा से स्थान है, कितनी सारी चीजें ऐसे। तो संतुलन भी सांस है, संघर्ष भी सांस है, और सरेंडरनेस को क्या बोलते हैं,
1: समर्पण।
0: समर्पण, समर्पण भी सांस है, समर्पण करना पड़ता है, आपके श्वास को समर्पण करना पड़ता है, तब आपको सही तरीके से स्वर भी स्वर की भी ध्वनि समझ आती है। बहुत मुश्किल से ध्वनि ध्वनि भी वैसे ही है, आदेशा से, स्वर भी आदेशा आदेशा से है। इसके अब इसकी हर चीज की गहराई में जाओ तो कुछ ना कुछ मिलता है, चला जाएगा।
1: ये आपके साथ तो ऐसे लग रहा है कि दिन पर दिन निकल सकते हैं गहराइयों में जाते जाते, लेकिन पेट नहीं भरेगा हमारा। लेकिन जैसे आपने बताया कि धैर्य, संतुलन, समर्पण और विश्वास, ये सारी चीजें जो हैं किसी व्यक्ति को महान बनने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इससे पहले आपने कहा ब्लेसिंग्स, बड़ों की दुआएं, बड़ों के ब्लेसिंग्स, अपने टीचर की ब्लेसिंग्स, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है।
0: आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है भाई, आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता।
1: जी, बगैर आशीर्वाद के रूखा है जीवन। मैं
0: उनका
1: यह
0: आश्रय
1: जानना,
0: है, आश्रय है, उन्हीं का ही है।
1: जी, आशीर्वाद में ही आश्रय है। केवल एक अक्षर को लेकर के उस्ताद वासिफुद्दीन डागर जी ने हमें कितनी सारी बातों का दर्शन कराया। ये बातें दार्शनिक नहीं है, ये सत्य है दोस्तों। स से सत्य भी है, स से स्वर है, सर से स्थापना है, स्थाई है, स से समर्पण है, और स से है सुनते रहने का हमारा सिलसिला, स से सिलसिला भी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ, स से साथ जुड़े रहें, ताकि वसीफुद्दीन डागर जी के साथ हम उनकी और भी गहरी गहरी ज्ञान भरी बातों को सुनेंगे और उनसे कुछ सुनने का भी हम आग्रह करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगले एपिसोड में भी आप हमारे स से साथ रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं वापस लौटूंगा वसीफुद्दीन डागर जी के साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। हमने पहले भी समझा है संगीत का मानव जीवन में क्या रोल है, यह संगीत कैसे हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है। जैसे बादल बिना सूरज की रोशनी आकर्षक नहीं हो सकती, सृष्टि चक्र में रात और दिन अविरत होते ही रहते हैं, अर्थात दिन के होने से रात का महत्व और रात के होने से दिन का महत्व हम जान सकते हैं। वैसे ही एक इंसान हर सांस में संगीत का संपूर्ण रूप से लाभ उठा सके तो गम के पलों में भी वो आत्मविश्वास के साथ फिर से अपनी जीवन यात्रा तय कर सकता है। तो आइए ऐसे महत्वपूर्ण संगीत की भूमिका जो हमारे जीवन में हमेशा ही रहती है, इसको समझने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ, जितने सारे लिसनर है सबको मैं प्रणाम करती हूँ।
0: श्यामली जी, पिछले एपिसोड में हमने पटदीप राग के बारे में आपसे जानकारी ली।
1: हाँ जी,
0: आगे आप हमें क्या सिखाने वाले हैं?
1: आगे हम आज तो बंदिश लेकर आए हैं, तान लेकर आए हैं
0: जी,
1: वो कराना है। तो अगर लिसनर जो है बंदिश लिख लेते हैं तो अच्छा है ना
0: जी।
1: तो
0: जी,
1: मैं बोलना शुरू करती हूँ। ताल तीन ताल की है, मैंने पहले बताया कि पांच मात्रा की मुखड़ा है। मैं तोड़े संग, ये जो है पांच मात्रा की मुखड़ा है। मैं तोड़े संग ना जाऊ पियार वा ढीट लंगर वा, मैं तोरे संग ना जाऊ पियार वा ढीट लंगर वा, बस इतना तक है साई।
0: अच्छा,
1: ठीक है। अंतरा है, हमारी तुम संग ना ही बने रे, हमारी तुम संग ना ही बने रे, रात रहे तुम सौतन दिंग वा, मैं तोरे संग ना जाऊ। अभी हम क्या करते हैं, ये बंदिश को सुर में सजा देते हैं जैसे हमने किया
0: जी।
1: ठीक है।

0: ये हमने क्या किया, स्थाई अंतरा जो है बंदिश जो हमने लिखा दिया
1: जी,
0: तो आपको उसको बैठा दिया सुर में और थोड़ा सा बिस्तर भी कर दिया। अगर लिसनर तबला के साथ कर सकते हैं, गुरुजी के पास शिक्षा लेते हैं तो अच्छा है। कैसे उसको थोड़ा सा बिस्तर करना है, कैसे करना है, मेरे पास तो अभी तबला नहीं है, लेकिन तबला के साथ जैसे अच्छा लगता है
1: उससे मैं ताल बिठा के वो आराम से सीख सकते हैं।
0: जैसे हमने किया ना सुर में भी,

0: आएंगे, थोड़ा रिदिम से करना है, करने के बाद वो आसानी से उठ जाएंगे।
1: अच्छा okay? श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम सभी सुनेंगे पटदीप राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। पुनः हम लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने एक सुंदर सा मीठा सा गीत का आनंद लिया। ब्रेक से पहले हमने बंदिश सीखी।
1: हाँ जी,
0: आगे श्यामली जी हमें पटदीप राग में क्या सिखाएंगे?
1: हाँ, थोड़ा सा तान भी करना है ना, तान बिना संपूर्ण नहीं होता है। तान करते हैं अगर शास्त्रीय संगीत में द्रुत ख्याल में थोड़ा तान नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अच्छा। उसको थोड़ा बोलतान करेंगे, तान करेंगे, तब उसको संपूर्णता आते हैं। ठीक है,
0: पूरा ही मेरे को लगता है पैकेज होता है।
1: पैकेज होता है,
0: आपने सही संगीत बात है। में भी हर राग का एक पैकेज होता है। ये अगर इसमें से कुछ एक भी कमी होती है तो पूरा राग संपूर्ण नहीं होता।
1: जी जी, चलो मैं करके सुनाती हूँ।
0: हाँ जी।

0: ये तान।
1: हाँ जी, तान के साथ
0: आकार भी।
1: हाँ, तारा आकार भी किया है, बिस्तर भी, थोड़ा सा बिस्तर भी के अंतरा में बिस्तर भी किया है। ठीक है, अंतरा, स्थाई अंतरा की तान किया हमने।
0: जाते जाते मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं, सभी राग की अपनी अपनी बंदिश होती है।
1: हाँ जी।
0: तो कोई भी गुरु के पास यही बंदिश मिलेगी या अलग अलग?
1: ऐसे कोई बात नहीं, सबके गुरु के पास अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे बचपन में सीखा है, जैसे हमने गुरु के पास शिक्षा लिया है, वही बंदिश करती हूँ। बीच बीच में दूसरा भी बंदिश करती हूँ ना,
0: अलग कलेक्शन भी होगा।
1: हाँ, अलग जैसे करती हूँ ना, कभी कभी दो बंदिश करती हूँ ना। जैसे हमें अभी भी किया है, जो हमने पिछले एपिसोड में हमने गीत किया है, तो वो भी बंदिश रूप से ले सकता है। एक तल के ऊपर थे, तीन तीन तीन तीन करके 12 मात्रा में थे, तो वो बंदिश भी हो सकता है।
0: ये जरूरी नहीं है कि सभी गुरुजी के पास एक ही जैसी बंदिश हो, अलग अलग बंदिश में भी सीख सकते हैं।
1: जैसे सिखा रही हूँ, अगर गुरु के पास जैसे शिक्षा लिखता है वही सही है। जो गुरु देते हैं वही सदगुरु है, वही देते हैं।
0: जी,
1: जो जैसे सदगुरु है सच ही देते हैं, गुरु के पास वही सच मिलता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है।
0: श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: प्रदीप राकी पर बहुत सुंदर एक लता जी का कंपोजिशन है, शर्मिली फिल्म है,
0: शर्मिली
1: वो लता जी का है, मेघा छाए आधी रात।
0: ओहो,
1: अगर ये गीत नहीं करेंगे तो प्रदीप राग अधूरा हो जाते हैं। तो मैं ये करना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है
0: जी।

0: वाह बहुत सुंदर,
1: थैंक यू।
0: मैं भी बोलती हूँ मैं भी क्या करूँ क्योंकि समय तो अपने समय पर देता है।
1: बहुत प्रदीप राग की पर ये जो गीत है इतना सुंदर है, लता जी ने भी इतना अच्छा खूबी निभाए हैं।
0: जी जी, और इसके सारे शब्द भी
1: है, हमने अब बताया ना प्रकृति इसको शांत है, शांत प्रकृति का है। पिछले एपिसोड में थोड़ा चंचल था गीत जो था, तो अभी ये जो राग इतना प्रकृति शांत,
0: जी
1: शाम की राग है ना, 3 से 6 बजे अगर करते हैं प्रदीप राग प्रेजेंट करते हैं तो कितना अच्छा है ना।
0: जी जी श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, पुनः मिलेंगे हम अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अलग होता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संकल्प, अलग अलग जीवन, लेकिन ये सभी चीजों से एक गुलदस्ता बन जाता है और एक ना मिले दूसरे से। हर किसी की विशेषताएं अलग होती है, तभी वो इंसान को यूनिक बनाते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। कोई छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो जाते हैं और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उस उम्र में भी बच्चे बन करके रह जाते हैं, यानी कि मन से वो बहुत ही उमंग उत्साह से रहते हैं। तो ये भी एक जीवन का साधना है और इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी रामश्लोक भाई जी को। जैसे आप सभी को पता है, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में हम योगियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी जीवन की यात्रा को हम जानते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के एक वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय रामश्लोक भाई जी। भाई साहब, आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, ओम शांति
1: जी। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आप कब और कहाँ जन्मे थे, उस समय का माहौल क्या था, आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा हमें परिचय दें।
2: बहुत अच्छा और खुशी की बात है। जीवन जीने की कला की सब्जेक्ट है जिसको सभी की अभी जरूरत है। तो हमारा शरीर का अभी तो स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों के साथ हम बात करते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो शरीर का नाम बीके डॉक्टर राज ऋषि रामश्लोक भाई। हमारा जन्म झारखंड में हुआ, हजारीबाग। झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन झारखंड हजारीबाग, वहाँ से वहीं हम पढ़े। हम तो राजपूत फैमिली से हैं, हमारा नाम पूरा रामश्लोक सिंह। तो वहाँ हमारे परिवार से सारे बहुत रॉयल फैमिली में अपना खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों को, कई गांव में अपना रियासत था। ठाकुर ठाकुर के नाम से जानते हैं कि राजपूतों ठाकुरों की एक अपनी मुस्तैदी होती है। तो वहीं हम थे और वहाँ से फिर कमाख्या नारायण सिंह का आर्यन स्कूल में हम वहाँ से पढ़ाई किए 7 तक। उसके बाद हम धनबाद गोमो में से हायर एजुकेशन किए और वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से हम ISC का डिग्री पास करके फिर हमने सोचा सोशल सेवा किया जाए। सबके दोनों प्रकार का है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थे, धन दौलत के, हजारों चीज़ों के, गाय बैल बस हर चीज़ जो लौकिकता में होती है से संपन्न थे।
1: तो आप कितने भाई बहन थे?
2: हम लौकिक में 3 थे।
1: अच्छा।
2: हम सबसे छोटे, हमारे एक बड़े भाई थे और बड़ी बहन थी, लेकिन हम सोचे थे उनका तो मैरिज ये सब सारा हो गया और हमारा अधिक ध्यान पढ़ाई में रहता था।
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे सब ज्वाइंट फैमिली था, एक साथ 10-15-20 बच्चे एक साथ है। हमारे फादर 5 भाई थे
1: जी,
2: सब ज्वाइंट एक ही साथ रहते थे। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो उसमें रहना खाना पीना सारा एक साथ होता था, खेती बाड़ी सब चीज़ें। फिर हम पढ़ते पढ़ते पढ़ने में आज तक हम कभी 3rd डिवीज़न नहीं लाए। लाइफ में 1st 2nd ऑलवेज। हम पढ़ते कम थे लेकिन मेमोरी का एक बहुत बड़ा वरदान था। हम भगवान को मानते नहीं थे लेकिन जानते थे कि कोई शक्ति है, कोई पावर है। हनुमान जी को देखकर हम बहुत खुश होते थे। हनुमान जी की इतना ताकत कहाँ है कि एक हाथ से गदा उठाए, पहाड़ उठाए, एक पांव भी उठाए। यहाँ 2 टांग पे खड़े रहने से लोग थक जाते हैं
1: जी।
2: एक टांग में उठा कर कितनी ताकत। तो गांव में गुजरते थे तो हनुमान जी के मंदिर, तो हम वहाँ जाकर कितना टाइम तक तो हम देखते रहते थे इतनी इसकी शक्ति का। तो हनुमान जी से बहुत हमको प्रेरणा मिलती थी पढ़ने के। इसका सारा तो कोई है नहीं कि इसका कोई चीज मांगे। और तो खेती बाड़ी का भी हमको बहुत अच्छी तरह नॉलेज, कई लोगों के हमको खेत में ले जाते थे अपना अंकल वगैरह। बचपन में हमारे फादर से ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम करीब 4th-5th पढ़ते होंगे। उसके बाद तो सभी फैमिली से पढ़ाई। उसके बाद हम 1968-69 में हमने सोचा कि कौन सा ऐसे कार्य करें, तो लगा मेडिकल करें और फ्री में सबको दवाई देंगे, सब करेंगे, गाँव वालों की सेवा करेंगे, सोशल सर्विस। इसीलिए हम फिर अपना एडमिशन 1968-69 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हम वहाँ लिए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वहाँ हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ हम 4 साल के BHMS डिग्री करके, और उसी समय जब वहाँ पढ़ते थे तो हम हमेशा एक कोई चीज ढूंढने का खोज के, आई वांट टू रिसर्च, सब चीज की, हर चीज के जानने की जिज्ञासा रहती थी, चाहे राइट हो रॉन्ग हो क्या चीज, वो बाद में निर्णय करते थे। तो इसी तरह से तो सारा शहर में हम जब आए तो सारा शहर में हम घूमते रहते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो, या कहाँ कौन क्या कैसे क्या करता है। तो एक दिन एक हमारा दोस्त था, वो हमको मिले और बोला कि अरे भाई कन्याकुमारी से कुछ कन्याएं आई है, वो ज्ञान सुनाती है। तो हम बोले कन्याकुमारी तो साउथ इंडिया में है, है? तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, वहां से आकर के बिहार में ज्ञान सुनावी, इनका इतना ताकत कैसी। तो बोले चलो देखें। तो हम दो तीन दोस्तों के साथ पहुंच गए वहां सेवा केंद्र पे, वहां लिखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हमने उस भाई को ले, हम ले रहे भाई बुद्धू ये कन्याकुमारी थोड़ी है, तो ब्रह्मा कुमारी है। तो उसने बोला कि अरे भैया क्या ब्रह्मा कुमारी कन्या ये सब कन्याएं हैं।
1: अच्छा
2: हाँ, ये ज्ञान सुनाती हैं, सरस्वती हैं, कन्याएं सब हैं, इसीलिए। तो हमने अच्छा, फिर उसके बाद लोग कोर्स करने के लिए, तो हम थे हमारे साथ दूसरे दोस्त, हमारे साथ हमारे साथी हैं डॉक्टर बनारसी, तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, तो उसके लिए आए। फिर हम तो कहाँ रनर थे घूमने वाले, हम तो चले गए वहाँ से नेपाल घूमने के लिए। 5 अगस्त को एडमिशन हुआ था, 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो नेपाल हमारे से नजदीक था मुजफ्फरपुर से, रक्सौल से था। तो हम एक वीक उधर चले गए, एक वीक हम बोले बनारसी भाई आप जाके कोर्स करो। उसने 7 दिन कोर्स किया। हम जब लौट के आए बोले बनारसी भाई आपने क्या क्या बहनों ने दीदियों ने क्या सुनाया। बोला हमको समझ में नहीं आया। हम बोले अरे क्यों, तुम पढ़ा लिखा है बुद्धू थोड़े है। फिर तो बोला नहीं हमको एक बात समझ में नहीं आया। बताया क्या? बोला शिव शंकर दो हैं। हम सोचने लगे कि शिव शंकर पहले एक थे अभी दो हो गए।
1: अच्छा
2: हाँ, हम बोले कि तो भाई ये कहीं दूसरे जगह शिव शंकर दो कैसे हो गया। बोला मालूम नहीं उन्होंने कहा है। फिर बहुत सारी चीजें, खैर हम तो वेद शास्त्र के ऊपर बहुत स्टडी किया होता। हम 7वां क्लास में जो पढ़ते थे 8वां में, तो वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत हर एक चीज को पढ़ करके पूरा कर दिया, और सभी धर्मों में हम जाते रहते थे। मुस्लिम इस्लाम में जाकर के हम नमाज पढ़ना सीखा, पहला कलमा तैयद ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब हम हाई स्कूल में गए, हम क्रिश्चियनिटी क्रिश्चन स्कूल में, हमें बिशप रॉकिस में था, हम चर्च में जाने लगे, तो लोग बोले अरे तुम हिंदू बनेगा क्या, ये है मुसलमान बनेगा क्रिश्चन बनेगा सब। फिर हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम गुरुद्वारा में रहे 2 साल, वाहे गुरु एक माई जगत भी आई 3 चेले पर, हर धर्मों में सब जगह जाते सबको एक साथ। हम बोले भाई हमें कौन क्या बनेगा वो नहीं, हमको एक इंसान बनना है, इंसान तो बनने दो। बाकी दुनिया तीन इंसान है, इंसानियत नहीं है, लोग हैं। तो हमारे मोटो ही अलग था बचपन से, ये हमारा विचार ही। तो फिर वहाँ से तो उन लोगों ने कोर्स किया, हम कोर्स नहीं, हम डायरेक्ट जा करके जब पिता श्री ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाते हैं, तो हम बोले पता नहीं, हम तो नास्तिक आदमी, हम भगवान को मानते नहीं थे, कोई कुछ होता था तो हम क्वेश्चन आंसर करने लगते थे, लेकिन यहाँ कोई क्या नहीं, हम खुद समझना चाहते थे क्या। तो ब्रह्मा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम बोले ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पढ़ाई होती है। फिर एक एग्जीबिशन लगा, लोगों ने हमको एग्जीबिशन दिखाया, बोले इसको समझाना है, कौन समझाएगा, तो कुछ चुप। हम बोले हम समझा देंगे, तो हम सर समझा करके देखते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के देखते थे कौन है, हम बोले शायद इनका गुरु होगा क्या, ऐसे ताकि स्टडी नहीं किया था। फिर बहनों ने बताया कि ये शिव बाबा के माध्यम है, निराकार परमात्मा आकर साकार में कैसे करता है तू। फिर वहाँ कोर्स करने के बाद कहीं हमको फिर सुरेश हो जाएगा कि भगवान आता है, भगवान पढ़ाता है, भगवान के ढूंढने के लिए साधु संत ऋषि मुनि कितने वेद शास्त्र गीता रामायण भरा हुआ है, सारा हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति से बहता है। फिर वहाँ से माउंट आबू में हम आए, संदेशी दादी हमारी टीचर थी, संतमय दादी और संदेशी दादी, उनके साथ हम आए, और दादा आनंद किशोर यहाँ आए। तो जो गुलजार दादी में उस समय बाबा अव्यक्त उसी समय हुए थे, बाबा अव्यक्त हुए 1969 18 जनवरी, हम आए ज्ञान में 5 अगस्त 1969।
1: अच्छा
2: हाँ, तो इसी से हम 70 में तो हम पहले आ गए थे, 69 में आकर उसी समय। ये ध्यान रहता था कि हम योग कैसे लगाएं, आंखें बंद करके कैसे लगाएं, इसी से हमको को राजयोग मेडिटेशन सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम योग में बहुत रुचि रखते थे, फिजिकल योग में हम मास्टर थे, इसीलिए ये स्पिरिचुअल योग है, आध्यात्मिक है आत्मा। फिर वहाँ आत्मा और परमात्मा का लेसन दिया गया। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा जैसे दृष्टि दिया गुलजार, तो हम ऐसे शरीर से डिटैच हो गए, हमको अनुभव हुआ, हम अनुभव के आधार से चले हैं, ज्ञान सुन के सुना के नहीं, हम अनुभव हैं एक्सपीरियंस, इसलिए हम अनुभवी रथ हैं तो वहाँ करके।
1: तो जैसे आप माउंट आबू आए और आपको इस आध्यात्मिकता की अनुभूति हुई, जैसे कहते हैं कि अध्यात्म में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा चैतन्य है जो इस शरीर को चलाती है, आपने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया?
2: अनुभव एकदम डिटैच हो गए कि शरीर भले हम बैठे हैं, हम नीचे जमीन में बैठे थे पद्मासन में, लेकिन हमको दृष्टि ले रहे थे, इतना मन बुद्धि जैसे एकाग्र हुआ, जैसे लोग हठ योग में कहते हैं कि वो एकाग्रता में एकाग्र हुआ, तो लगा शरीर से हम डिटैच हो गए हैं, हम कहीं हवा में उड़ रहे। तो फिर हम 2 मिनट तक ऐसा अनुभव करते रहे, फिर हम टच किया जमीन को कि हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे हिलाया देखा तो देखा अलर्ट, फिर हम देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में। जब हम आत्म स्वरूप में थे कि आई एम डिटैच, आई एम ये प्योर एंड पावरफुल सोल, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है, उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट, जैसे कनेक्ट किया और ये डिटैच, लेकिन फिर हमको लगा कि हम कहीं उड़ तो नहीं रहे, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, फिर हम जमीन को टच किया, फिर जैसे आगे धरती पे, मुझे ओहो, तो सॉल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में तभी हमको अंतर पड़ा और तब हमारा वो जिज्ञासा बढ़ गई और उमंग उत्साही सारा सब चीजें।
1: जी, तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे धर्मों का भी स्टडी किया है आपके युवा काल में, और जब राजयोग मेडिटेशन के बारे में आपको पता चला तो आप न सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि अनुभव में आपने विश्वास रखा। तो जब ये पहली बार ये अनुभव किया, आपको लगा कि मैं इतने सालों से इतने सारे धर्मों का पढ़ाई कर रहा था और पूजा पाठ भी जो भी हर एक धर्म का होता है, फिर जब अध्यात्म में आए तो वो सभी चीजों का आपको तर्क वितर्क भी समझ में आया होगा?
2: नहीं, तर्क वितर्क नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हमको पहले से थी, खाली ये था कि हमारा था व्हाट इज ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ, इसमें हमको मालूम था, पढ़ाया था बचपन से कि एक सत्य दुनिया में एक परमात्मा सत्य है, बाकी झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, सब रट रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, इसलिए हम सभी जगह जाते थे हर धर्मों के व्हाट इज ट्रूथ, और सभी जगह एक ही चीज बताते हैं। जैसे हम मुस्लिम में, इसमें इस्लामिक में गए तो वहां भी बोला कि आदम को खुदा मत मानो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम, गॉड इज ए लाइट, वो सातवां आसमान रहने वाला है, या परवरदिगार खुदा सर्व आत्माओं का पिता है। वहां भी गए तो वही, सिख रिलीजन में गए तो वहां भी यही बताया, एक एमआई जगत व्याय, 3 चेले परवान, 1 करतार, 1 पंडार, 1 वै दीवान, कि एक परमात्मा एक है, निराकार निरंजन निरंकारी, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो 3 देवताओं की रचना करता है, 1 करतार, 1 पंडारी। अपना हिंदू रिलीजन में जो है सनातन में है, तो सनातन में यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तीसरे एक अलग शक्ति है जिसको शिव बाबा कहते हैं शिव। क्रिश्चियनिटी में गया तो वो भी बोला कि गॉड इज वन, नो सो जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट इज नॉट ए गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट गॉड इज वन। फिर उस हमने बोला गॉड क्यों कहा, व्हाई यू टेल द गॉड, उसमें भी 3 शब्द था, GOD, जी मीन्स जनरेटर, स्थापना करने वाले ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑपरेटर टू टेक केयर विष्णु, एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर विनाश शंकर, बट GOD गॉड, गॉड इज वन लाइट। तो सभी धर्मों का एक ही निचोड़ हमको मिला कि परमात्मा एक है, निराकार, ये पॉइंट ऑफ लाइट, वो ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ही इज नॉट कम इन डेथ एंड बर्थ, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, बाकी जितनी आत्माएं हम लोग दे जा रही हैं सब जन्म मरण में आते हैं, चाहे देवी देवता हैं, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, राम लक्ष्मी नारायण, या जो भी धर्म, जितने धर्म पिताएं भी हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, इब्राहिम हो, सभी हम सब चक्कर में आते रहते हैं, इसलिए सब चक्कर से छूटना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू लिबरेशन एंड फ्रूसन, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष। तो वो चीज हमको यहाँ मिल गया और बस हम बोले हमारी सारी यात्राएं पूरी हुई,
1: सर्च खत्म हो गई।
2: हाँ, वो मिल गया ना, तभी तो गीत गाते हैं पाना था, जब सारी चीजें सभी जगह एक ही जगह इशारा कर रहा है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो, यार पॉइंट ऑफ लाइट, और आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं। और कोई भी, हम इतना सारे संस्थाओं में इतना जगह गए, कहीं नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने पिताजी, यहाँ आते ही हमारा प्रश्न यही, फार्म फिलअप करवाते थे कि आपके कितने पिता हैं, तो हम लोग बोले एक ही है, हम लोग भाई ये सबको एक होते हैं, तो उसको बताया गया नहीं, सबको 2 हैं, एक है शरीर का पिता जो देह का, देहदारी का है, जो आपके जाति धर्म का है, जो जिस रिलीजन का कॉन्शियस का है, और दूसरा हम सभी आत्माओं के परमात्मा है, इसलिए सब जाते हैं टेम्पल में जाएंगे, तभी हम आतस्य पिता तमें वो बंधु सखा, एक ही गीत गाते हैं, 2 अर्थ में गॉड एंड मदर एंड फादर, हर एक जगह एक प्रार्थना सारा था, एक निराकार का है। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छा लगा, और उसके बाद
1: तो फिर आपको ये ज्ञान समझ में आया और उसमें विश्वास बैठा, फिर आपने घर में भी तो शेयरिंग किए होंगे, फिर उन्होंने आपको सहमति दी थी चीजें फॉलो करने के लिए?
2: घर में शेयरिंग बचपन से ही, हम इतना हर चीज में एक्सपर्ट थे, चाहे कुश्ती हो, कराटा हो, खेल हो, हमको क्रिकेट नहीं खेलते थे, हॉकी वाले थे सारा सब चीजें, और हमारा ये सब कुछ था ही हम लोग का DNA में, क्या राजपूत फैमिली से थे, वहाँ से होता है कि कंकर करना है, जीत करना है, हमको थोड़े मालूम है कि तो शरीर से जीतना है या किसे, तो इसीलिए घर वाले नहीं थे स्टार्टिंग में, अच्छा कहीं करेक्टर में नंबर वन, आज तक कहीं भी कुछ ये सब चीजें, आजकल कितना लोग जाके कहीं स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स ये क्या, कितना सारा तमो प्रधानता हो गया, उसमें बड़ी सात्विकता थी वैसे भी, और ये हम लोग गाँव से रहते थे, शहर में आए, शहर में वहाँ के सब वातावरण में, लेकिन किसी चीज के हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, हम संग के बल संभाल रखते थे, जैसा संग वैसा रंग, हम संग में रहते हुए हम डिटैच, कोई स्मोकिंग करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, कोई झगड़ा करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, जो शांत वाला है वो भी, दोनों में हम डिटैच कैसे रखे, उसका बैलेंस, लव का भी बैलेंस तो लव का भी बैलेंस दोनों।
1: So, आपको घर परिवार से कभी कोई विरोध नहीं हुआ?
2: नहीं, बाद में हुआ, जो फिर जब हम लोग चले और जब पक्का धारणाओं में चलने लगते हैं, खान पान की शुद्धि, तो वहाँ वाले तो सब नन भेज खाते हैं, सब खाते हैं, हमको पहले अच्छा नहीं लगता था, उल्टी हो जाती थी करते थे, लेकिन इसमें और भी स्ट्रांग हो गए, फिर प्यूरिटी के पवित्र काय की पढ़ाई, पवित्रता में होती है ब्रह्मचर्य में, तो इसीलिए लौकिक पढ़ाई भी होती है बचपन में, तो भी पवित्रता में काय बुद्धि भटकेगी नहीं, तो जो प्यूरिटी की बात आई है सब सारा सब चीज़ें, तो फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आपका शादी करना है नहीं करना है, हम लोग क्यों, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी घर परिवार में यही एक संस्था है सारे वर्ल्ड में, हमारे अब यहाँ इसमें 59 से हैं, सारी दुनिया के हम चक्कर लगाए हुए हैं, सारे विश्व में कोई भी कोना हम छोड़ा नहीं, हर साल हम 2 महीने जाते थे लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, रशिया पूरा, लेकिन हर एक जगह से एक ही चीज़ होता है कि यही हम देखते थे कि यही एक संस्था है जो ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय, ये प्यूरिटी में खान पान रहन सहन संकल्प आचार विचार मन वचन कर्म, ये चीज़ें जो है ये बड़ी यूनिक लगी और ये हमको बहुत पसंद आया, और ये हमारे जैसे एक लाइफ का एक नेचुरल नेचर बन गया, इसी से अभी हम ना 79 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी साइकिलिंग करते हैं, अभी साइकिल से चलाते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, बीमारी होती नहीं है, लोग बुलाते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया, कोई दिन 2-4 दिन रहेगा चला जाएगा, कोई बीमारी वो गेस्ट है और परमानेंट नहीं है, हम उनको परमानेंट रख देते हैं, ये हो गया वो गया, सोच सोच करके डिप्रेशन में इसमें उसमें दुखी हो करके बीमारी को बढ़ाते रहते हैं।
1: तो भाई जी, एक बात तो है कि आपका बचपन से वो चुस्ती फुर्ती बहुत स्ट्रांग है, और जैसे आपने कहा कि आप राजपूत फैमिली से है और शादी इन सभी चीजों का दबाव था, तो फिर समर्पित कैसे हो गए संस्था में आप?
2: समर्पित नहीं, जब हम हमेशा जब हमको कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो हम लौकिक घर में बहुत कम जाते थे, हम माउंट आबू आते थे, उसमें पहाड़ियां हरियाली सब, माउंट आबू तो हिल स्टेशन था, तभी कंसेशन टिकट भी मिलता था 42 रुपीज का।
1: अच्छा।
2: पहली सारा ट्रेन में इस समय हिल स्टेशन के नाम, बाद में ये सब सारा हुआ ना, तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ कोई भी सेवा मिलती थी, तो यहाँ हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि जी, वो बाबा ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि, तो वो हमारी बहुत, तो कोई भी कार्य देती थी हम थोड़े में तुरंत करके आ जाते थे, देखती रहती थी, तो दादी ने ऑफर किया कि आपको यहाँ रहना है, तो बोले नहीं दादी, हम अपना पढ़ाई पूरी करके हम डिग्री ले करके आएंगे, वैसे हम बीच रास्ते में नहीं आएंगे, इसलिए हम जाते थे पढ़ाई करके एग्जाम दे करके और सब छुट्टियों में आ जाते थे, और फिर उसके बाद आए और 1971 से 1972 से हम फिर यहाँ डेडिकेटेड, और दादी जी ने हमको एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रखा, आवास निवास में, नाउ आई एम डी 42 ईयर्स आवास निवास के, विदाउट कंप्यूटर बिना इसका रहते हम 25-30 हजार लोगों के एकोमोडेशन कैसे करता था गॉड नोज, तो भगवान को हम जो नहीं मानने वाले लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि सभी ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है, Everybody believe to God, worship to God, pray to God, but who is God? Well, I don't know. तो फिर किसका पूजा कर रहे हैं, जा मंदिर है, हम जितने ज्योतिर्लिंग सारा स्थान सब धर्मों सब जगह हम इंजॉय करते जाते थे, लेकिन सब वही ढूंढते हैं, I don't know. फिर परमात्मा आके खुद अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं निराकार हूँ, ज्योति हूँ, मेरा नाम शिव है, सदा शिव, शिव माने कल्याणकारी। उसका अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए उसका नाम चेंज नहीं होता है। बाकी हम आत्माएं बर्थ रीबर्थ जन्म मरण के चक्कर में तो हमारा नाम चेंज होता रहता है। ये सारी चीज़ें केवल फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो आज इतना वर्षों से हम उसको पालन कर रहे हैं।
1: तो फिर आप 72 में समर्पित हो गए, दादी के कहने पर आप आ गए थे, तो घर पे आपको छुट्टी मिल गई थी आसानी से?
2: घर वो तो हम हमारे पर कहा ना, लोगों को बहन जी कुछ को कहे या भाई या सुनने वाले श्रोता किसको को आप अच्छे कार्य करेंगे ना तो 10 विघ्न बाधाएं आएंगे और उल्टा काम करेंगे ना तो और भी आपको सहयोगी मिल जाएंगे। कोई स्मोकिंग करने वाला नहीं करेंगे, बोले पंडित बन गया, ड्रिंकिंग नहीं हो जाए और वो सब आएंगे, बोला हाँ चलो एक और ग्राहक बढ़ गया। तो उसी तरह से घर वाले तो थोड़ी छुट्टी दे देंगे। तो ये है, तो जब मैरिज का बात आया तो हमारे जो छोटे कजन ब्रदर्स ये सब थे, का एक जॉइंट फैमिली था, तो हमारे अंकल ने कहा कि तुम मैरिज नहीं करोगे तो ये लोग कैसे करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम जा रहे हैं माउंट आबू, हम 5 साल के बाद आएंगे, तब तक आप इंतजार करना 4-5 साल, 4 ईयर्स के बाद फिर हम आके मैरिज कर लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो जब हम 4 साल के बाद गए, यहाँ 5 साल तक तो हम कहीं गए नहीं, जैसे अपना योग में, तपस्या में, ध्यान में, सेवम बिजी थे। सब दुनिया उनको कहते थे आप लोग यहाँ आओ, परिवार वालों को, फैमिली वाले को, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं, हम अपना बिजी हैं। तो हम बोले भाई आपको टाइम नहीं तो हमें भी टाइम नहीं, हम भी अपना बिजी हैं ईश्वरीय सेवा में और ये सारी चीज़ों में। तो फिर जब हम 5 साल के बाद गए तो देखे घर में सब बच्चे दौड़ रहे, खोए रहे, हम लिए किसके बच्चे हैं, बोले वो छोटे भाई क्या है उस बहन के। हम बोले रे भाई आप लोग तो हमको ठगी कर दिया, हमने कहा था ना 4 साल इंतजार करो, अब तो 2 साल भी इंतजार नहीं किया, कहते कैसे होगा। सभी की दुनिया भाई अपनी अपनी है, सभी अपना अपना कर्म है, धर्म है, कोई किसके लिए रुकता नहीं है। खाली वो सोते वो गाड़ी आगे बढ़े, जैसे आप क्यों में जा रहे हैं, वो सोते ही गाड़ी आगे निकले तो हम साइड से निकाल लें अपना। तो उसी तरह हम जैसे इधर निकले तो हम बोले भाई आपने हमारे बात नहीं माना था, आपके बात हम क्यों सुने, हम भगवान के सुने का आपकी सुने, क्योंकि यहाँ पवित्रता ही सच्चरित्रता है। यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहन जी, जहाँ सभी जो है ना खुशी की बात सुनाते हैं, दुखी का तो बात ही नहीं है, वो तो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। इसीलिए ये चीज़ें और ये जीवन यहाँ की और ये सब बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए अभी भी आज तक अभी देख
1: जी। तो भाई जी आप तो जैसे आपने कहा कि 42 साल से आप अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का संभालते और 25-30 हज़ार लोगों का भी आप बिना कंप्यूटर का अकोमोडेशन करते हैं,
2: कागज में
1: कैसे याद रखते हैं चीजें आप?
2: यही तो लोग बहन, हर एक जगह लास्ट में काउंट सा पॉइंट आता है, डॉक्टर भी दवाई दे देगा नहीं ठीक होगा कुछ होगा, तो बोला भाई ऊपर वाले का छोड़ दो, परमात्मा के। जब जब सब ऊपर वाले ही छोड़ते हैं, करण कराउन तो ऊपर वाला, हम तो कार्य करने वाला है, हम तो करण हार है, कराउन हार है, तो कैसे मेमोरी हमारी पहले से बहुत फास्ट है। अभी भी जहाँ जहाँ गए, जैसे आपको हम पूरे 60 साल के रिकॉर्ड दे देंगे एक एक चीज की, इतना कंप्यूटर तो अभी।
1: आपको लगता है ये कि ये ध्यान के कारण आपकी मेमोरी इतनी
2: बहुत शार्प वो तो शार्प हो गया, पहले मेमोरी थी लेकिन थोड़ा, जैसे आप कोई पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी लेके काटते, एक भाई एक पेड़ काट रहा है तो और बोला अरे भाई इसका सार्फ करो तेज होगा ना फड़ा कर। तो मेडिटेशन से, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन करना होता है, मन की एकाग्रता, एक परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन बुद्धि के एकाग्र करते हैं, तो उसमें पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब पहले 2 पावर आपके पास आएगी, 2 शक्तियाँ, वो है निर्णय शक्ति और परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। 1 सेकंड में आप जज कर लेंगे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, जजमेंट, ये पावर। तो इसी से, और जैसे इसको कंसंट्रेट करेगा तो 2 शक्ति आती है, कैचिंग एंड टचिंग, परमात्मा को टच करेगा कि दिस राइट दिस रॉन्ग, देन हमारा एकाग्रता है। यहाँ मेन मेडिटेशन में कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है।
1: और कौन सी ऐसी बातें या सिद्धियां हैं जो आपने इस लंबे साल, जैसे एक लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से आप साधना कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सिद्धियां आपने प्राप्त की है राजयोग के द्वारा?
2: बहुत सारी सिद्धियां का, जैसे आप एकाग्र करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और एक ही संकल्प में कई टाइम तक, घंटों तक करेंगे और तपस्या करेंगे। अभी देखिए डेली हम 11 बजे रात को सोते हैं, 2 बजे रात को उठ जाते हैं, 2:30 बजे या 2:30 बजे से 5 बजे एकदम कंसंट्रेट होकर के एक लगन वो तपस्या में, योग में, ध्यान में, तो उसमें से सारी चीज़ें, तो उसमें से संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। आपके संकल्प में इतना पल, आज कोई चीज है तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कोई भी चीज देख करके लोग डर हो जाता है भाई, भी जिसको आप पैनिक कहते हैं कि ये बात है पैनिक होगा, घमासान करके उसका सारा पैनिक से कितना लोगों को कोविड हुआ, 50% लोग तो पैनिक से कि किया नहीं, उसको हो गया थोड़ा खांसी होता था, ये है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं, तो पैनिक से किसी चीज में उसके घबराने की इसका नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में यह है साइलेंस, शांत, वेट एंड सी, देखिए उसके बाद क्या होगा, जो होना होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने स्थिति को अपने मनसा, यहाँ इसलिए माइंड इतना परफेक्ट होता है, फिजिकल तो है, होता ही है, लेकिन फिजिकल न पावरफुल माइंड इज प्रेजेंट इन पावरफुल बॉडी। सदा खुशी में रहिए, मेन चीज जो है ना खुशी। खुशी एक ऐसी गुण है जो तीन जगह काम करता है, सभी जगह एक ही जगह काम करेगा, लेकिन खुशी जैसा खजाना नहीं। खुशी में रहिए, बांटिए, दूसरे भी खुश हैं। खुशी जैसा खुराक नहीं, जो खाते हैं खुशी खुशी खुराक, खुशी जैसी जिंदगी। खुशहाली में रहेंगे, आधा बीमारी सब ऑटोमेटिक हटेगा। और खुशी के रहने की एक ही जगह है, वो है राजयोग मेडिटेशन। तभी देखते हैं अभी भी इतने एज में 79 में हम साइकिल चलते हैं, हमारा साइकिल 35 ईयर्स का साइकिल है।

0: प्रकाश ने दी थी। जंप मार के चलते अभी दो लोग मिले भाई बहने, बोला आप लगते नहीं इतना हिस्सा, हम बोले हम सोचते नहीं कि हम लगते हैं, लोग सोच सोच करके बूढ़े हो जाते हैं और हम सोच सोच के जवान हो रहे हैं। यही राज्यों का मिली थी।
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने मतलब बात बात में इतनी बातें कह दी कि आपको इस राजयोग साधना के कारण ये शारीरिक उम्र का असर नहीं होता है।
0: बिल्कुल नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: मन की संकल्प उनसे हल्के रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और एकाग्रता की शक्ति इतनी है कि आप कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं और याद
0: नहीं उसका कचिंग और टचिंग उसका पहले आएगा, इसका रिजल्ट क्या क्या है और कैसे हमको पहले टच करता है, क्या हमारा इतना कंसंट्रेट रहता है परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से, निराकार से, ज्योति से, जो जिस धर्म वाले जिसको भी मानने चाहे वो अल्लाह कहें गॉड कहें इसका, अगर उनके साथ सही कनेक्शन है और सही पावर आ रहा है, जैसे आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया सर, चार्जिंग होकर आप ही उससे पावरफुल हो जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन आल्सो ये चार्जर है कि आत्मा की बैटरी आज डल हो गई है, सारी दुनिया भले तन है, मन है, धन है, दौलत है, बच्चे बीवी, फिर भी लोग पजल है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, लोड नहीं ले रहा है, और अगर चार्जर रहेगा आपके पावरफुल चार्जिंग रहेगा तो आप हमेशा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशहाल खुशहाली में रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच भाई जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के तहत आप अपने योगी जीवन की अनुभवों को साझा करते हुए हम सभी को एक उदाहरण दिया कि मेडिटेशन या ध्यान या राजयोग
0: सब एक परमात्मा के संतान है, आत्मा एवं भाई भाई हैं, इसीलिए हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं आप इस तरह से अपनी मनोवृत्ति को शेष बनाइए, सबके लिए आत्मिक भाव रखिए, सबके भाई भाईचारा, तो नेचुरल लगा नारा लगाने से जरूरत नहीं है कि मैं भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई फिर पीछे करो लड़ाई, इसकी जरूरत नहीं है। सबकी यही है राज्यों की पढ़ाई, ये सदा खुश रहो खुशहाली में रहो, बांटिए बहुत थैंक्स।
1: थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और ऐसे ही अनुभवों को फिर सुनेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मध्य हैं पंडित जीवराज श्री माली जी, जो जोधपुर से हमारे मध्य पधारे हैं और सोशल मीडिया पर आप उन्हें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि कितना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। आध्यात्मिकता के प्रति हम सबकी रुचि तो है, हम भक्ति भी करते हैं, कई हम पूजा भी करते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद जो पूजा सामग्री है उसे सही से विसर्जन करते हैं? तो ये सारे बातों के बारे में आज हमें पंडित जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने एनवायरमेंट के लिए कार्य शुरू किया, जो भक्ति पूजा सामग्री है उसे कैसे लोग डिस्पोज कर रहे थे गलत तरीके से, उसके सही तरीके क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कार्य शुरू किया। तो आइए स्वागत करते हैं पंडित जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: स्वागत है बहन जी, जय श्री राम, नमस्कार।
0: नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 9 वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप अपने प्रकृति के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं, जो भक्ति पूजा सामग्री है और प्रकृति, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है, आप कैसे प्रकृति को हेल्प कर रहे हैं?
1: देखिए, वैसा जोधपुर में गुरों का तालाब है जोधपुर के अंदर, तो वो करीबन 9 साल पहले मैंने देखा था, तो मछलियां, पानी कम था, मछलियां मर रही थी, इधर से गंदगी से अठा पड़ा था, लोग इस तालाब को अपना डंपिंग बना दिया था लोगों ने। जैसे आसपास वाले लोग थे वो आते थे, शौच करके जाते थे और कचरा भी घर का डाल के जाते थे, बहुत ही गंदा देखा था मैंने। फिर मेरे

0: पीते हैं, एक्वा गार्ड का पानी पीते हैं, तो उनको भी अच्छा पानी मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की कि जो निर्माल्य है, पुष्प है, माला है, तो उसके लिए मैंने अलग से वहां पर बना दिया है। फिर बाद में तस्वीरों के लिए भी मैंने अलग से व्यवस्था की है। इसका हम रिसाइकलिंग करते हैं तस्वीरों का। रिसाइकलिंग कैसे करते हैं? जैसे कि प्लास्टिक की जो मूर्तियां है, कागज के जो अभी जैसे कि पत्रिका है, पत्रिका के अंदर भगवान है, तो हम पत्रिका का भगवान है तो भगवान रास्ते में नहीं डालेंगे, पीपल में चढ़ा के जाएंगे, कहीं पेड़ के नीचे देखेंगे। तालाब के आसपास में इतनी बिखरी रहती थी, तो मेरे विचार में आया था इनका कुछ निस्तारण किया जाए। तो निस्तारण में मेरे मन में आया कि जो पत्रिका है, फोटो है, फ्रेम है, तो इसके अंदर से फोटो फ्रेम है तो उसके अंदर से फोटो निकाल दीजिए, अपना ये रिसाइकलिंग में चला जाएगा। जैसे कि हम बंगार वाले को दे सकते हैं, बंगार वाले को देंगे तो फिर बाद में आगे फैक्ट्री में जाएगा, तो पत्रिका है या किसी भी तरीके से जो फोटो है, कागज की जो चीजें है, वो अपन रिसाइकलिंग के लिए देंगे तो अपना उसके अंदर वापिस उसकी रामायण बन जाएगी, क्या मालूम भागवत बन जाएगी, क्या मालूम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताब बन जाएगी। तो इसके लिए ये पुस्तकों का, कागज का हमने ये ऐसा निस्तारण करते हैं। वापिस उसकी प्लास्टिक की जो फ्रेम रहती है, लोहे की फ्रेम रहती है, वो हम बंगार में दे देते हैं, वो भी अपना वापिस उसका भी पैसा आता है।
1: जी सर। और सर जैसे आपने कहा निस्तारण करने के लिए भी आपने जगह बनाई है, जैसे निर्माल्य की बात आपने कही, पुष्प को अलग और तस्वीरों को अलग रिसाइकलिंग करने के लिए, और जैसे लोगों की मान्यता है, आपने ये बात भी कही कि तालाब के आसपास विसर्जन करते हैं या पीपल के पेड़ हैं, तो ये लोगों की मान्यता को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं?
0: नहीं, देखिए, जल को अच्छा रखना, हमारे पास आज जल आ रहा है, बाहर से आ रहा है, गंगा जल आ रहा है, बाहर से आ रहा है, भागीरथी जो नदी है उसका पानी आ रहा है, नहर से आ रहा है पानी। अगर हमें पानी वो नहीं मिले तो इस तालाब का पानी, आने वाले भविष्य में इस तालाब का भी पानी पीने पड़ेगा हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसके लिए पानी अच्छा, हमारा जैसे अधिकार है पानी अच्छा पीने का, वैसा जलचर जीव है, जैसे वानर है, बंदर भी आते हैं वहां पर, पशु भी है, पक्षी भी है, जलचर जीव भी है, उसके अंदर आपको हजारों मछलियां है उसके अंदर, तालाब के अंदर, गुरों के तालाब के अंदर, कछुआ भी है उसके अंदर, तो उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी अच्छा पानी मिलना चाहिए, उनको खराब नहीं करना चाहिए। अभी जो निर्मल की जो चीजें है, वो पहले जैसे नारियल था, नारियल जो है ना, नारियल भी वो पानी में डालते हैं, तो पानी में डालते उसका भी निस्तारण होता है। नारियल हम पानी में नहीं डाल करके, हम इसको, हमने बनाई हुई जगह, जैसे कि नारियल कलश बनाया हुआ, विसर्जन कलश, तो उसके अंदर नारियल डाल के जाते हैं, समझदार भी लोग भी है और समझाने पे समझ भी रहे, 80% लोग हमारे तालाब के ऊपर आते हैं और वो हमारे कई अनुसार कार्य कर रहे हैं और हमें भी खुशी होती है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। नारियल को हम तोड़ करके गौशाला में देते हैं,
1: नारियल जो,
0: हाँ, गौशाला में गायों के लिए देते हैं और चींटियों को भी देते हैं। तो ये मतलब एक पानी में जाएगा, पानी के बाद में नगर निगम के डंपिंग में जाएगा, तो ये चीजें खराब होती है, डंपिंग में नहीं जाना चाहिए, ये किसी भी जीव के काम आता है तो काम आना चाहिए। नारियल जो है वो काम आता है, उसके अंदर से गिरी निकलता है, बहुत ही महंगा है, आज की तारीख में उसकी 380 रुपये किलो है नारियल, और एक नारियल की 50 रुपया कॉस्ट आती है, तो हम क्यों 50 रुपया पानी में डाल के खराब करें? हम क्यों नहीं गायों को किसी के जीव के काम आए तो वो हमारा पूजा किया हुआ, पूजा पाठ का जो किया हुआ नारियल है, तो हम अपना उसको निस्तारण के लिए दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बात मानते हैं, लेकिन जब आप पहली बार आपने किया होगा या सोचा होगा, 2016 से आप ये कार्य करते आए हैं और लगभग आपने 100 ट्रैक्टर ट्रॉली कचरा तालाब से निकलवाया था,
0: निकाला तो मैंने खुद ने,
1: वन हैंड निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपने पहली बार जब सफाई शुरू की, तो उस समय की स्थिति क्या थी और लोगों ने आपसे क्या बातचीत की थी उस समय?
0: लोग आए थे, उन्होंने कहा ये अतिक्रमण करेगा तालाब के ऊपर, इसने ये अपना ये इधर कुछ करेगा। फिर बाद में आसपास वाले लोगों ने मेरे को पूछा कि आपकी क्या मंशा है, तो मैं बोला मैं सवेरे अपना मॉर्निंग वॉक में आता हूँ, घूमने के लिए आता हूँ, तो घूमने के लिए आता हूँ, मेरा कोई अभी जैसे कोई व्यायामशाला में जाता है 2 घंटा व्यर्थ करके आता है, ठीक है, वो उसकी इच्छा है, वो कैसा क्या काम कर रहा है उसके ऊपर है, लेकिन मैंने डिफरेंट किया,

0: कि अपन व्यायाम भी हो जाए, हमारी कसरत भी हो जाए, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर काम शुरू किया। अभी हमारे पेड़ भी लगाए हुए, करीबन 350 मैंने पेड़ लगाए हुए हैं।
1: 350 पेड़ लगाए हुए आपने तालाब के
0: हाँ,
1: आसपास या?
0: तालाब के आसपास पूरे, और अपना उसके अंदर से तालाब के आसपास 350 पेड़ लगाए, उसके अंदर से अपना ऐसे ऐसे है, नीम के, बेल के, आंवले के, अर्जुन के, अशोक के, ऐसा मतलब जिसके अंदर फल और फूल लगे ऐसा हमने पेड़ लगाए हैं, आयुर्वेदिक के अनुसार लगाए हमने पेड़।
1: जी जी और जिसकी वजह से शायद ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है, जो गर्मियों के मौसम में पानी की कमी होती थी।
0: हाँ बिल्कुल बढ़ गया है। फिर हमारे इधर जो पानी की कमी थी ना,
1: जी
0: हमारा क्या है कि तालाब थोड़ा ऊपर है और ये जो जमीन नीचे है तो
1: जी
0: इसका
1: जी
0: रिसाव होकर के पानी पानी सूख जाता था। यहाँ पर एक समय ऐसा था कि जैसे कि हम ट्रैक्टर की ट्रोलियों की और ट्रैक्टर से टैंकर से डलवाते थे हम पानी इसके अंदर से।
1: जी
0: तो मेरे मन में आया कि भाई क्यों नहीं इसके पानी का भी निस्तारण किया जाए,
1: जी
0: कुछ कुछ किया जाए उसके मछलियों के लिए। टैंकर डाल से हम कितना कितना हम कर सकते हैं, 10 साल ट्रैक्टर डालेंगे, 10 साल ऐसा होगा। तो फिर मेरे विचार आया कि क्यों नहीं ट्यूबवेल खोदी जाए।
1: जी
0: तो हमने ट्यूबवेल खोदी तो उसके अंदर 700 फुट खोदी, उसके अंदर 1,20,000 रुपया लगा, लेकिन उसके
1: जी
0: अंदर पानी नहीं आया। फिर हमने सेकेंड बार में नीचे रोकड़िया बालाजी से करीबन हमारे 700 मीटर नीचे है, उधर से हमने ट्यूबवेल खोदा के पानी लिफ्ट किया तालाब के ऊपर, ट्यूबवेल खोदा करके आज
1: जी
0: हम 50, अभी जैसे सर्दी का मौसम जाने के बाद में गर्मी के मौसम आएगा उससे पहले हम सर्दियों में, अभी जैसे कि जनवरी के बाद में हम चालू कर देंगे ट्यूबवेल, तो 50,000 लीटर रोज का पानी डालेंगे उसके अंदर से।
1: क्या बात है जी जी बिल्कुल। और आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। एक बात पूछना चाहेंगे, 2018 में आप हाईकोर्ट जाकर के मूर्ति विसर्जन और पूजा सामग्री
0: हाँ
1: तालाब में
0: लोग,
1: डालने पर रोक लगवाई थी,
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल,
1: हिम्मत कहाँ से आई, हिम्मत कहाँ से आई?
0: ये अपना जैसे कि मैं सफाई कर रहा था और लोग कह रहे थे तो क्या कर लोगे। तो फिर बाद में जैसे कि हमारे जो बहुत से जन जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई आप कोर्ट में जा सकते हो, आप अपना कोर्ट में जाकर ये करो, आप PIL लगाओ, जनहित याचिका लगाओ।
1: जी
0: तो मैंने जनहित याचिका लगाई, उसके अंदर से हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसके अंदर किसी भी तरीके से मूर्ति, नारियल वगैरह किसी भी तरीके से कोई भी चीज नहीं डाल सकते हो।
1: जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि हम इसका निस्तारण कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और जैसे
0: हाँ
1: आपने गायों को खिलाने की बात कही, आज गाय कचरा खाती हैं तो उसमें प्लास्टिक की थैली भी खा लेती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये मैसेज स्प्रेड किया और लोग मान भी रहे हैं, और जो रेडियो में भी अभी इस वक्त सुन रहे हैं तो जरूर इसे वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ऐसे उम्मीद है मुझे।
0: अभी
1: तो
0: जैसे कि तालाब के ऊपर जो लोग आते थे तो उनकी आदत थी कि अपना बस खिलाया और जहां पर खाया वहां पर छोड़ के चले गए। अभी जंगल के ऊपर हमारा तालाब है ना, बहुत बड़ा तालाब है जोधपुर के शहर के अंदर, और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है यहाँ पर तालाब, वातावरण भी ठीक है। और यहाँ पर एक टाइम में जैसे कि आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठने का अड्डा था, शराबियों का अड्डा था यहाँ पर,
1: जी
0: लेकिन यहाँ पर से धार्मिक लोग आने लगे, मछलियों को दाना डालने के लिए आने लगे, गायों को दाना डालने के लिए आने लगे, पक्षियों के लिए भी, हमने पक्षियों को कुत्ते मार देते थे तो पक्षियों के लिए भी हमने जगह बनाई है।
1: ओके। जैसे कि किस प्रकार से बनाया आपने पक्षियों के लिए जगह?
0: हमने पक्षियों के लिए अपना रेलिंग जैसे होती है ना लोहे की,
1: जी
0: तो करीबन 30x75 की हमने बनाई हुई है ये अंदर दाना डालने के लिए,
1: ओके,
0: तो उसके अंदर
1: ताकि
0: से
1: कुत्ते वहां
0: हाँ
1: से
0: अभी
1: ना दिखे।
0: अभी सुरक्षित है, अभी मतलब कुत्ते वगैरह उसके अंदर नहीं जा सकते हैं।
1: जी। और आपने जो जलचर जीवों की सुरक्षा के लिए आपने CCTV कैमरा भी लगाया था, उनके
0: हाँ
1: अवैध
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पकड़
0: 2018 में
1: रोक।
0: लगाया था, तो फिर वो विजन थोड़ा उसका कम आता था उसके अंदर, जैसे कि जो कोई अगर डाल रहा है सामान तो उसके अंदर से उसका फेस वगैरह थोड़ा बरोबर नहीं दिखता था। तो अभी मैंने 2024 में अपना अच्छा कैमरे लगाए हैं और चारों ओर से कैमरे लगाए हुए हैं, जहां पर पहले मछली भी पकड़ते थे लोग तो वहां पर भी कैमरे लगाए हैं, कचरा डालते हैं तो वहां पर भी कैमरे लगाए हैं, तो हर जगह
1: तो
0: मैंने
1: परिवर्तन
0: कैमरे
1: हो रहा
0: लगाए
1: है
0: रखे हैं। हाँ
1: जी सर, मैं पूछना चाहूंगी कोई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला इससे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव देखने को मिला, हमने एक जन को हमने पकड़ा था सीसीटीवी के माध्यम से, हमारे अपना हाउसिंग बोर्ड के कोई थे व्यक्ति,
1: जी
0: तो उनके घर पे लेकर के गया था मैं अपना, ये जो यहाँ पर निर्माल्य डाल के गए थे, तो उनके घर पे लेके गया था मैंने,
1: जी
0: उनको
1: बहुत
0: वापस दिया,
1: आपने बताया जी,
0: उनको
1: बहुत
0: वापस
1: मस्त।
0: दिया, उनको वापस दे करके आया। उन्होंने पहले तो नाराजगी जाहिर की, फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग ऐसे तालाब में नहीं डालना चाहिए, उनको कहा जलचर जीव है, अपने मटके के अंदर कोई कचरा डालेगा क्या, तो वैसे की वैसे जलचर जीव है ये, उनका जलचर जीव जीने का अधिकार है, उनको पानी अच्छा मिलना चाहिए। तो वो भी समझ में आ गए, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी गलती हो गई।
1: जी तो जैसे पूजा सामग्री हो या फिर जो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम माता जी की भी आराधना करते हैं, तो हम मूर्ति घर पे लेके आते हैं, फिर विसर्जन भी करते हैं, तो
0: नहीं,
1: फिर क्या और विधि है?
0: ये गलत है।
1: ओके
0: देखो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर पे गणेश जी नहीं है, सबके घर में गणेश जी है,
1: जी
0: तो उसी गणेश जी की जैसे, देखो छोटा और बड़ा उसका कोई तुलना नहीं होती भगवान की, भगवान छोटे में विराजमान रहते हैं, बड़े में विराजमान रहते हैं। आजकल क्या लोगों का दिखावा ज्यादा हो गया है, कोई जैसे कि 2 फुट की मूर्ति लाएगा तो वो दूसरे मोहल्ले वाला अपना 6 फुट की मूर्ति लाएगा, हाँ वो 6 फुट की मूर्ति लाएगा तो वो लाएगा मैं 10 फुट की मूर्ति लाऊंगा, तो ये गलत है। उसके अंदर से जैसे कि 10 फुट की 8 फुट की मूर्तियां है, तो उसके अंदर से लकड़ी का बना ढांचा बना करके फिर उसके अंदर से पीओपी के द्वारा ये किया जाता है। तो लकड़ी पहली बात तो जैसे कि शास्त्रों में दिया गया है कि जल में विसर्जन करना चाहिए, फिर बाद में दिया हुआ कि भूमि में विसर्जन करना चाहिए, भूमि में भी गाड़ लेना चाहिए, फिर बाद में पवन है सोने में भी छोड़ सकते हैं, तो ये अपना जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी पानी में गलेगी नहीं, इतना इतने जो गाढ़ी लकड़ी रहती है वो पानी में गलेगी नहीं, जलचर जीवों को नुकसान पहुंचाएगी। पीओपी है बिल्कुल हानिकारक है जलचर जीवों के लिए, उसके ऊपर पेंट की हुई है वो भी अपना जलचर जीवों को नुकसान पहुंचाती है। तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम, हमारे सनातन श्रुति में कहती है कि हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, नुकसान करके आप अपना कोई पूजा पाठ करते हो तो वो गलत है।
1: जी ओके तो हमारे समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसे हम समझ करके पूजा अर्चना कर सकते हैं
0: हाँ
1: प्रकृति को बिना हानि पहुंचाते हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गणेश विसर्जन का जो कार्य हुआ है वो लोकमान्य तिलक ने बंबई में किया था, अंग्रेजों के शासन में उन्होंने, क्योंकि खुली राजनीतिक तरफ से कोई मीटिंग नहीं ले सकता था, तो इसके लिए उन्होंने, लोकमान्य तिलक ने अपना घर घर गणेश जी बिठाने का, अपना गांव गांव में गणेश जी बिठाने का अपना उन्होंने संकल्प लिया था, और जहां पर गणेश जी बिठाते वहां पर मीटिंग की, फिर बाद में उधर का कहते थे कि आज की मीटिंग यहाँ पर हो गई, गणेश जी बिठा दिए, दूसरे दिन विसर्जन कर दो, फिर बाद में दूसरे दिन वहां पर मीटिंग की, तीसरे दिन विसर्जन कर लो, चौथे दिन दूसरे गांव में मीटिंग की, फिर बाद में विसर्जन कर दो। तो ये हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए ये किया था, लेकिन ये अपना जो कार्य है अभी, मतलब हिंदू समाज बिखराव की ओर है।
1: ओके तो हमें सही तरीके से पूजा करनी है और प्रकृति की रक्षा करते हुए, ये आपका कहना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति की बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। देखो तालाब में भी पूजन करने आते हैं लोग, पीपल में भी पूजन करने आते हैं, भगवान जो तालाब में भी भगवान है, और पीपल के अंदर इसको अश्वत्थ कहते हैं, भगवान नारायण का रूप है पीपल, तो पीपल में भी कचरा नहीं डालना चाहिए, निर्माल्य नहीं डालना चाहिए, तालाब में भी नहीं डालना चाहिए।
1: जी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट देते हैं प्रकृति को भी और परमात्मा को भी, और इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब नहीं डालना चाहिए, उसको निस्तारण करने के सही तरीका है और हम ढूंढ भी सकते हैं। तो आपसे ये
0: बिल्कुल,
1: पूछना चाहेंगे कि जो जलीय जानवर जिनको नुकसान पहुंचा है, कुछ एग्जाम्पल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे
1: जी
0: कि अभी मर्त लोगों की तालाब के अंदर भस्मी डाल के कट्टे डाल के चले जाते थे, मर्त व्यक्ति के कपड़े डाल के चले जाते थे वहां पर तालाब के अंदर, तो तालाब के अंदर जो मर्त व्यक्ति के कपड़े डालते थे, जैसे शर्ट है तो शर्ट की बांह में मछली जो है ना फंस जाती थी और उसके अंदर उसकी जान चली जाती थी, बहुत से कछुए मर गए उसके अंदर से फंस करके
1: जी
0: शर्ट के अंदर, कोई लेडीज का जो अपना सलवार है उसके अंदर से फंस करके, उसके
1: कपड़ों
0: उसके
1: में
0: हाथ, हाँ उसके अंदर फंस करके मर गए हैं, तो हमने निकाले हैं, हमने देखे हैं, आंखों से देखे हैं, और हमारे बहुत दुख हुआ कि भाई ये कछुआ की 1000 साल की उम्र है और उसको अपना इसकी इतनी छोटी अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई है। उसका मृत्यु का कारण यही है, ये शर्ट है, ये मृत व्यक्तियों की जो भस्मी, मृत व्यक्तियों के जो कपड़े थे वो डाले, इसके लिए इसकी मौत हुई है, अन्यथा इसकी मौत नहीं होती थी।
1: जी, हम पुण्य जमा करने के चक्कर में कई बार बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और सही तरीके से नहीं करते हैं, जैसे आपने ये बात भी हमारे साथ आपने शेयर किया।
0: बिल्कुल
1: कछुए और मछली ये सब मर जाते हैं कपड़ों के अंदर फंस के,
0: बिल्कुल,
1: तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए जो
0: उन्हें देख,
1: परंपरा आ रही है?
0: हाँ
1: हाँ जी बताइए।
0: देखिए, परंपरा तो पहले तो क्या है कि जो जैसे कि पार्थिव शिवलिंग है, गणेश जी है, तो वो क्या रहते थे कि मिट्टी के बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे, जिस तालाब से लाते मिट्टी उसी तालाब में डालते थे।
1: ओके जी
0: अब क्या है कि ये जो पीओपी की आ रही है अपना ये मूर्तियां, दूसरी बात प्लास्टिक की आ रही है मूर्तियां, तीसरी बार अपना जो ये मेटल वगैरह दूसरी चीजें आ रही है, तो मेटल की तो कोई डालता नहीं है मेटल की कोई नहीं डाल के जाता है, बस ये
1: जी
0: पीओपी की डाल के जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है।
1: जी ओके
0: इसका
1: बिल्कुल
0: निस्तारण जैसे कि किया जा सकता है, जैसे कि अभी प्लास्टिक की मूर्ति लाई, तो प्लास्टिक देखो शास्त्र में लिखा गया कि मूर्ति जो लाओ तो उसके अंदर सोने की, चांदी की या धातु की, किसी प्रकार पीतल की ला दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसी लानी चाहिए या लकड़ी की बनी हुई होनी चाहिए या पत्थर की होनी चाहिए, कागज की भी बनी होनी चाहिए, भले कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी निस्तारण हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कागज की जो है ना उसको पानी में गाल करके उसको अपना 3-4 दिन अगर घर पे रखे टब के अंदर, फिर बाद में उसका जो है पानी का जो है वो आप अपना गमले में या कहीं भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तालाब में डालने से, तालाब में क्या करते हैं, फ्रेम के सहित में, पॉलिथीन के सहित में, पुषप डालने का तरीका भी इनका गलत है। पुषप डालते हैं तो अपना पॉलिथीन के अंदर डाल करके घर के अंदर जो पूजा किया, प्लास्टिक है वगैरह वगैरह जो पूजा का सामग्री पैक करके आया वो भी सब डाल के चले जाते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल। और आपने बहुत सारे उपाय ढूंढा है कि किस तरीके से हम इसका निस्तारण कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं पूजा सामग्री
0: बिल्कुल
1: की, और आपने पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी काम किया है, और
0: बिल्कुल
1: आप जैसे आपने आसपास 350 से ज्यादा पेड़ भी लगाए हैं, तो
0: बिल्कुल
1: वहां के वातावरण में क्या बदलाव हुआ और पंछियों को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हमें बताइए।
0: वहां पर एक टाइम में, गर्मी की टाइम में कोई गाय बैठने के लिए तैयार नहीं थी, कुत्ते बैठते नहीं थे, आज की तारीख में गोरैया चिड़िया जो लुप्त प्रजाति है सबसे, वो अपना गोरैया चिड़िया वहां पर आती है, कोयल बोलती है, अपना पक्षी है वो भी आते हैं, और एकदम अच्छे वातावरण में ऐसा जीता है, हमारा मन खुश हो जाता है कि हमें हमें यहाँ पर सुगंध मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल, पंछी अट्रैक्ट होके आ रहे हैं और पेड़ों पर बैठ भी रहे हैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: माहौल परिवर्तन हुआ है और सात्विक हुआ है मुझे लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो आपने पहले भी ये बात हमारे साथ शेयर की कि नारियल आप गायों को खिलाना आपने शुरू किया है,
0: बिल्कुल
1: और मूर्तियों की तस्वीरों का रिसाइकलिंग करना भी आपने शुरू किया है।
0: बिल्कुल
1: क्या ये हर मंदिर में, हर पूजा स्थल में ऐसा हम कर सकते हैं? तो किससे संपर्क करना पड़ेगा और कैसे करेंगे?
0: देखिए अपना जैसे कि कोई ये निस्तारण के लिए, देखिए नारियल तो अपना पूजा का नारियल है,
1: जी
0: तो पूजा का नारियल है, सबसे पहले तो पूजा का नारियल है, तो आप तोड़ करके खुद भी खा सकते हो। सबसे कहता हूं मैं, सभी जो भक्त हैं उनसे सबसे कहता हूं, माता जी की जो पूजा की उसका कलश जो ऊपर नारियल है वो आप तोड़ करके उसका प्रसाद बना करके खा सकते हो। कच्चा है नारियल तो उसको तोड़ करके अपना इडली बनाओ तो इडली की चटनी के बनानी है नारियल की, तो नारियल की चटनी बना के साथ में खा लो, कोरा भी खा
1: जी
0: सकते हैं, उपयोग में ले लो। नहीं कर सकते हैं तो फिर बाद में आप गायों को गौशाला में दे दो, गायों को खिला दो, सूखा भी ऐसा ही कर सकते हैं नारियल के लिए। फिर बाद
1: जी
0: में एक बात रह गई है कि वो ज्वारे है ना जो अपना माता जी के लगाते हैं अपन कुंडे
1: जी जी बिल्कुल
0: में,
1: जी
0: तो ऐसा करते हैं लोग अभी ये कुंडे को भी अपना तालाब के अंदर फेंक के चले जाते हैं कुंडे सहित, तो इसका भी हम निस्तारण करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप इसका, आप अपना, लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप सर्च करके देखो गूगल के अंदर कि जवारे कितने पावरफुल होता है, उसका जूस इतना तगड़ा रहता है, इतना पावरफुल रहता है इम्यूनिटी के लिए अपना, बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप खुद भी पी सकते हो। पहली बात तो जूस आप खुद पी लो, नहीं पियो तो आप अपना उसका जवारा का ऊपर निकाल करके गायों को खिला दो, पशु को खिला दो, फिर बाद में उसकी मिट्टी बची है तो मिट्टी को आप गमले में डाल दो, और फिर जो अपना कुंडा है मिट्टी का
1: जी
0: वो आप कुत्ते को पानी पिलाने के लिए भी रख सकते हो, फिर बाद में कुत्ते को पानी पिलाने के लिए रख सकते हो, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रख सकते हो, और ये भी नहीं कर सकते हो तो आप अपना उसको स्टोर में रख दो, अगले साल में वापस काम आएगा।
1: जी जी
0: हाँ
1: अगले साल
0: अगले साल में
1: उपयोग में
0: ले
1: लाते हैं।
0: ले सकते हो आप काम में।
1: और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई बार उम्मीद सागर तालाब की भी सफाई की है,
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो आप क्या मानते हैं कि ये मॉडल अन्य तालाबों पर भी हम लागू कर सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आगे का कार्य है कि यहाँ पर अपना कायलाना में जो जल पीते हैं उसको भी
1: जी
0: लोग अपना बहुत खराब करते हैं, और वहां पर भी मेरा लगाने का विचार है, और उम्मेद सागर में भी हमारा लगाने का विचार है आगे का।
1: जी,
0: हाँ
1: बहुत
0: ये करने काम
1: और
0: करने का विचार है, फिर बाद में हम आगे टीम बढ़ाएंगे और आगे टीम बढ़ा करके हम कार्य करेंगे।
1: जी बिल्कुल, आप टीम की बात कह रहे हैं तो मैं पूछने ही वाली थी कि आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं?
0: हमारे साथ में जैसे कि ये मैं तो करता ही हूं, साथ में अगर मेरे से कभी नहीं होता है और 5 दिन 7 दिन का काम है, और उम्मेद सागर में गया था मैं जब सफाई करने, तो वहां पर
1: जी
0: उम्मेद सागर में सफाई करने गया था मैं, एक दिन गया दूसरे दिन गया, फिर मेरे विचार आया, मैं बोला जल्दी से जल्दी करना चाहिए, फिर मैंने 2 मजदूर साथ में लेके गया,
1: जी
0: 2 मजदूर साथ में लेके गया, उनसे भी सफाई करवाई, उनको साथ में लेकर के ये काम करवाया। फिर
1: जी
0: बाद में मेरे दिमाग में आया कि 2 मजदूर से नहीं हुआ, ये जेसीबी से कर सकते हैं, यहाँ पर रास्ता है आने जाने का, हमारे गुरु के तालाब में क्या एक पैक है, अंदर जाने की जेसीबी नहीं जा सकती है, अंदर में हाथ से ही निकालना पड़ता है, आदमी हम खुद ही कर सकते हैं, उधर जेसीबी
1: जी
0: वगैरह नहीं जा सकती है। तो उम्मेद सागर के अंदर मैंने जेसीबी लेकर के जेसीबी से सफाई कराई थी, जो बड़ी बड़ी जो गणेश जी की मूर्तियां माता जी की मूर्तियां लकड़ी की थी ना, तो उसको हमने बाहर निकलवाने के लिए जेसीबी लाई थी।
1: जी
0: हाँ हमने पेमेंट किया पैसा दे करके। मैं इसमें ये एक भी इसमें एक बात जोड़ सकता हूं कि
1: जी
0: मैं जैसे सफाई कर रहा हूं, वैसे कि कोई अगर पैसा वाला व्यक्ति है उसकी सफाई करने की इच्छा है कहीं भी तालाब की, तो
1: हाँ जी
0: वो भी कर सकता है। कैसे? मजदूर लगा करके भी करा सकते हो आप सफाई, आप जेसीबी लगा करके भी करा सकते हो सफाई, पेड़ लगाना है तो पेड़ की मेंटेलिटी आप अपना रख दो कि भाई हमने करीबन 50 पेड़ लगाने थे, 50 पेड़ के अंदर अपना सप्ते में क्या चाहिए, 2 साल उसकी पालन पोषण के लिए जरूरत रहती है, तो आप टैंकर में पानी कुडवा दो, 50 पेड़ 2 साल में बड़े हो जाएंगे।
1: ओके राइट
0: हाँ पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, तालाब की भी सफाई कर सकते हो, तालाब की सफाई कैसे कि मजदूर लगा के करवा दो।
1: जी बिल्कुल, अगर पैसे हैं और आपके पास समय नहीं है या फिर आप कर नहीं पाएंगे कोई
0: हाँ
1: भी कारण के वजह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
0: ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत पुण्य का कार्य है, शास्त्रों में धर्म शास्त्रों में हमारे बार बार लिखा गया है कि तालाब के पहले हमारे गांव में तालाब खुदते थे, यहाँ पर शहरों में तालाब खुदे हैं, वहां पर शहर वाले लोगों ने भी सहयोग किया है, गांव वाले लोगों ने भी सहयोग किया है, और ऐसे
1: जी
0: ऐसे हमने देखे हैं कि आज भी बहुत सी जगह जो धार्मिक स्थल है वहां पर 4 कुंडा उसके अंदर से मिट्टी निकालने के पैसे, 4 कुंडा आप तालाब खुदाने के लिए मिट्टी डलवा दो बाहर तो आप 4 कुंडे के पैसे दे दो। वैसे वैसे गांव में भी ऐसा सिस्टम था कि आप अपना सफाई नहीं कर सकते हो तो आप खुद नहीं 4 कुंडा बाहर निकाल सकते हो मिट्टी, तो आप मजदूर लगा करके 50 कुंडा बाहर निकालो, मजदूर को पैसा दे दो, आपको फल उतना ही उतना मिल जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और जैसे आपके ये कार्य के लिए आपको जोधपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम द्वारा भी सम्मानित किया गया है, तो इस सम्मान से आपकी सेवा यात्रा को कैसे ये प्रभावित किया, क्या मोटिवेशन मिला, ये शेयर करिए हमारे साथ।
0: जैसे कि पर्यावरण के लिए काम करता हूं तो इनको लगा, जिला कलेक्टर को भी और हमारे यहाँ स्थानीय जो स्वयंसेवी संस्था है, समाज को भी जो व्यक्ति है उनको भी लगा कि भाई ये कार्य कर रहा है तो इनको ये सम्मान के लायक है, तो इसके लिए मुझे सम्मान दिया है तो वो स्वीकार किया मैंने।
1: जी बिल्कुल, और कैसे आप युवाओं को प्रेरित करेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन?
0: युवाओं को कहता हूं मैं, अभी आज सवेरे की बात है, जब 10 जन अपना 10-12 की टीम लेकर के इधर से हमारे तालाब के ऊपर से गुजर रहे थे, तो उनको मैंने उसके हाथ में मैंने बैट देखा, बैट और वो गेंद देखी, तो वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि आपको कुछ मिला क्या उसके अंदर से, कि नहीं हम तो बस हमारी स्वच्छता के लिए ऐसा ठीक है कर रहे हैं। तो आप अपना, उनको मैंने यही कहा, युवाओं से कहता हूं कि आप व्यायाम भी करो, कसरत भी करो, ये व्यायामशाला में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हर संडे आप पूरा दिन नहीं दे सकते, काम धंधे में बिजी है, पढ़ाई में बिजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते में एक बार 1 घंटा पर्यावरण के लिए दे, उससे हमारा पर्यावरण की शुद्धि होगी, जलचर जीवों की शुद्धि होगी और हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी जो आपके साथ जुड़ी हुई है। 2017 में, मतलब गर्मियों में, आपने एयर कंडीशनर लगवाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको चलाया नहीं?
0: हाँ, वो एक्चुअली मेरे घर के बाहर एसी लगाया हुआ था, तो एसी के अंदर सर्दी का मौसम आया, और सर्दी का मौसम आया तो उसके अंदर से वो गोरैया चिड़िया ने अपना बच्चे दे दिए उसके अंदर, तो फिर मैंने देखा कि क्या इसके अंदर घोंसला है, और घोंसला बना दिया, बच्चे दिया, तो हमने एसी अपना चालू नहीं किया, और एसी चालू नहीं किया, फिर बाद में वो एसी हमने हटवा दी, और उसकी जगह पे हमने करीबन मेरे घर के बाहर आज की तक 24 अपना घोंसला है, मतलब घर है चिड़ियों का, गोरे है चिड़ियों का।
1: जी, क्या
0: बिल्कुल
1: जी, तो आप सही मायने में प्रकृति को जानते हुए, भक्ति और श्रद्धा अपने अंदर रखते हुए, सही तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं हम, ये आप लोगों को सिखाते हैं। तो कई बार आपको ऑपोजिशन भी फेस करना
0: बिल्कुल,
1: पड़ा है?
0: हाँ बिल्कुल, आपको मैं क्या बताऊं, हमारा तालाब है, उसके अंदर से तालाब के पास में जो बसे हुए लोग हैं, कैचमेंट एरिया में बसे हुए, हमारे कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन उसके जो घरों के जो सोपिट है, जो लेटरिन और बाथरूम के,
1: जी
0: वो सोपिट तालाब,
1: जी ओके
0: फिर मैंने निगम और वन विभाग को मैंने कंप्लेंट की, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुआ, फिर बाद में मैंने अपना उनको सख्ती से, भाई ये कार्य करो, ये मैं इतना काम कर रहा हूं तो आप भी देखो, तो उन्होंने भी देखा कि भाई ये काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो वो सोपिट तोड़ दिए वहां पर
1: जी
0: निगम ने, तो फिर लोग आए थे मेरे पास में, उन्होंने लड़ाई झगड़ा करने, फिर बाद में उनको लोगों ने भी समझाया कि भाई ऐसा है ना कि जल छोड़ते हैं और आप इतना ये कर रहे हो, गलत है, तो सोपिट अपना नगर निगम तोड़ के गई, और आज हम वो लोग खुश है कि भाई हम यहाँ पर इतने स्वस्थ वातावरण में जी रहे हैं, इतने पेड़ लगा दिए, उनके घर के आसपास में भी पेड़
1: जी
0: लगा
1: जी
0: दिए
1: जी
0: मैंने।
1: बहुत खूब जी, बिल्कुल उसी तालाब
0: हाँ
1: में भी पूजन
0: अभी
1: सामग्री विसर्जन कर रहे हैं, उसी तालाब में भी स्वेज कनेक्शन का पानी जा रहा है, तो ये तो थोड़ा सा गलत था।
0: गलत था, फिर बाद में हमने जो तुड़वाए, तो मैंने कब तुड़वाए, मैंने देखा मेरी आंख से, फिर बाद में नगर निगम में महापौर थे घनश्याम जी ओझा, पूर्व महापौर, तो उनको मैंने शिकायत की थी, उनको मैंने कहा था ये ठीक कराओ, तो उन्होंने तत्काल अपना सीवरेज के लिए उन्होंने अपना पाइपलाइन की व्यवस्था की, फिर बाद में सीवरेज आने के बाद में हमने नगर निगम वाले को कहा कि भाई ये तोड़ो अभी ऐसा, और उसके अंदर से पत्थर भी आ गया था, फिर बाद में 7,000 मेरे घर के लगे पत्थर, और ठेकेदार ने कहा कि भाई अपना ये हमारे तो पत्थर तोड़ने का तो ठेका नहीं है, तो फिर बाद में क्या करे,
1: जी
0: तो फिर बाद में 7,000 मैंने खिसे में से मेरे मेरे जेब से दिया, और फिर बाद में वो पत्थर तुड़वा करके आगे तक सीवरेज लाइन लेके गया मैंने।
1: क्या बात है सर, आपने अपने ओर से प्रयास किया। तो
0: बिल्कुल,
1: आप अभी पूछना चाहेंगे कि आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या प्लान है और क्या करना चाहते हैं आप?
0: मेरा तो यही लक्ष्य है कि जलचर जीवों को अच्छा पानी मिले, और पशु पक्षी को अच्छा पानी मिले, और पर्यावरण स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, जल स्वच्छ रहेगा, तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो निरोगी काया सबसे पहली होनी चाहिए, तो यही हमारा लक्ष्य है, सभी का अधिकार है, गाय है, पशु है, पक्षी है, जलचर जीव है, मनुष्य है, उनका सबका जीने का अधिकार है, तो सबका अपना अपना अपने अपने जगह पे अच्छा होना चाहिए, बस मेरा नजरिया यही है।
1: हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा और सही तरीके से हम भगवान का पूजा अर्चना करें, ये
0: बिल्कुल
1: आपका कहना
0: बिल्कुल,
1: है।
0: ये मैं अपना आगे भी कार्य करने वाला हूं, जैसे कि रोड पे जो दुकानदार कचरा डालता है उसके लिए भी मैं उनको प्रेरित करने वाला हूं कि भाई मैं उन बाहर निकलूं, लेकिन अभी तालाब से बाहर निकलूं तभी ना, थोड़ा समय थोड़ा कम रहता
1: जी
0: है, सुंदरकांड का पाठ भी करना है, पूजा पाठ भी करना रहता है,
1: जी
0: तो घर बार भी चलाना रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ चलाते हुए करते हुए आप प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं आप। लोगों की दुआएं भी आप तक तो पहुंच रही है। तो रेडियो मधुबन के श्रोताओं को बाय बाय करने से पहले, अनुमति लेने से पहले, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो, या अपने आसपास की चीजों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हालांकि आपके बातों से तो उन्हें प्रेरणा जरूर मिलेगी, लेकिन विदाई लेने से पहले क्या कहना चाहेंगे?
0: बस मैं लोगों से यही कहता हूं कि घर में जो सब्जी काटते हैं तो सब्जी के साथ में सब्जी के, अभी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है जैसे कि अभी शेविंग की तो उसकी ब्लेड भी उसके अंदर डाल दी थैली के अंदर, सब्जी काट करके उसके अंदर से हरी सब्जियों के पत्ते वगैरह वगैरह भी डाल दिया दिया फिर प्लास्टिक भी डाल दिया, फिर लोहे की केल भी डाल दी, फिर वो क्या करते हैं गांठ बाल करके बाहर रोड पे डालते हैं। तो इसके लिए गाय भी खाती है, ऊंट भी खाता है, बकरी भी खाता है। पहले गांव में ऐसा माहौल नहीं था, अभी गांव में भी ऐसा ही माहौल चल रहा है। तो सबसे मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपना खाने पीने की चीज जो है वो बाल करके ही रखे, उनको जीवों को नहीं खिलाए, फिर बाद में प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का निस्तारण करें। हमने ये जो अपना विसलपुर के जो है कान जी उनसे भी संपर्क किया
1: हाँ
0: था,
1: जी
0: तो हाँ कान जी उनसे संपर्क किया था, उन्होंने मुझे फोन पर बात की थी। तो ये मैंने तालाब के ऊपर प्लास्टिक की पॉलिथीन के लिए पहले तो हम निगम में भेजते थे, अभी मेरे को मालूम पड़ गया कि इसका पैसा बटेगा, इसकी चीजें आएगी, तो इसके लिए पॉलिथीन भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, और गायों की भी बीच में नहीं आएगी तो हम पॉलिथीन इकट्ठा करके हम विसलपुर भेजेंगे, उसका रिसाइकलिंग करेंगे। और हमने कहा हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमें तो सामान बना के दे देना, हमें कुछ के दे देना। तो युवाओं से यही कहूंगा कि आप अपना पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहे, आप शरीर के प्रति जागरूक रहते ही भी जागरूक देना चाहिए। आप अपना हफ्ते में सिर्फ अपना हफ्ते में 2 घंटा दो, बस हर व्यक्ति से यही कहूंगा।
1: जी जी बिल्कुल। और आपके सोशल मीडिया पर आप वो पोस्ट भी शेयर करते हैं जो सीसीटीवी के कैमरा के अंतर्गत रिकॉर्डिंग की है कि किसने कुछ डाला, ये सब,
0: बिल्कुल
1: ताकि लोगों में जागरूकता आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डरते हैं लोग कि भाई इधर नहीं डालना है कचरा।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: ये पहल भी मतलब बहुत सराहनीय है कि किसी के फेस नहीं दिख रहा है उसमें, जो मैं देख रही थी आपके प्रोफाइल में,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अवेयर कैसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये
0: बिल्कुल
1: भी आपने जनता को बताया। ये बहुत,
0: बिल्कुल
1: आपसे बात करके बहुत सारे चीजें सीखने को मिला हमको, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के सफर।
0: धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आपके जो FM उनको भी पूरी टीम को धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, पंडित जीवराज श्री माली जी जो जोधपुर से हमारे मध्य पधारे थे, और जिन्होंने हमें प्रेरित भी किया, इसके साथ साथ सोचने के लिए मजबूर भी किया, और तरीका भी उन्होंने बताया कि कैसे हम प्रकृति की रक्षा के साथ साथ अपने भक्ति और श्रद्धा को कायम रख सकते हैं। तो आप भी ऐसे बेहतर दुनिया अगर बना रहे हैं या आप किसी को जानते हैं तो आप उनके नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कॉल करके या मैसेज करके भी बता सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
0: धन्यवाद,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़े, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी, जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इनवाइटी मेंबर हैं गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज, इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं, लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बहन।
1: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ, आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
2: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
1: जी।
2: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में, वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रगति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
1: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
2: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
1: जी,
2: आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार से
1: जी।
2: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
1: जी।
2: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
1: जी।
2: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
1: जी,
2: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
1: जी, जी।
2: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
1: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
2: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
1: जी।
2: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है, फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
1: अच्छा,
2: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
1: जी।
2: तो आधा दूध ही हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते, तो उसका शोषण नहीं करना, जो हमारे यहाँ पे कार्य करते उनका भी शोषण नहीं करना और धरती माता का भी, फिर जो आया वो प्रसाद है
1: जी।
2: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं, ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
2: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो, और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी, हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा,
2: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
2: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं ही बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाए कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस करा है, 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
2: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
2: तो पौधा अनमैच रिस्पॉन्ड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है। खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृतम माध्यम से। तो बिल्कुल बहन, मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशालाज में। तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए, ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है। 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है। यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निःशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए, आने वाला समय कृषि का है। तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे
1: जी। क्या बात है नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है
2: जी? जब से ये कार्य लिया तो दिनचर्या का आता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
2: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
2: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी।
2: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे
1: जी।
2: नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
2: तो 10 रोग है जिनों में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते हैं
1: जी।
2: स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो हमने गौ आधारित पूरी जीएमपी लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी। क्या
2: उसी का उपयोग हम करके
1: जी।
2: तो गाय का उपयोग जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं। दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
2: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाएं निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो पम में और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ अकेला, हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, ये बनाने की परंपरा
1: जी।
2: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपए बिटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच देशी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी।
2: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं। और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं, जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इम्बेलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना। इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है।
1: जी,
2: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
2: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र

0: मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहले एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: जी, नंदी गिर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी, नंदी घर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
0: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा एक नंदी निशुल्क जाता है।
1: अच्छा।
0: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
0: तो एक नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकता है और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन की तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है। हमें डबल ट्रिपल तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है किसान मित्रों। आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी, क्या बात है, तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं
0: जी।
1: कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम कर, तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके हीरोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने
1: जी,
0: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पधारिए गौशाला
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए मुस्कुराते।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक नए ट्रेड के बारे में बातें करेंगे और ये ट्रेड भी बहुत ही पॉपुलर है और आज के समय में युवाओं को काफ़ी ये ट्रेड आकर्षित कर रहा है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में। एक रचनात्मक और सुनहरा करियर आज है। आज के समय में डिजिटल युग में ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर न केवल रचनात्मकता से भरा हुआ है, बल्कि इसमें नाम, पहचान और अच्छी आय भी बहुत संभावनाएं बन गई हैं। जब भी हम कोई पोस्टर, लोगो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन या पैकेजिंग देखते हैं, उसके पीछे किसी न किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की सोच और मेहनत होती है। तो आइए आज हम लोग इसी विषय को लेकर बात करेंगे। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का मतलब केवल सुंदर चित्र बनाना नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और संदेशों का दृश्य रूप विजुअल फॉर्म में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य होता है। साथियों, तो आइए इस विषय को लेकर गहराई से बात करते हैं, कैसे कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं और कितना पैकेज मिल सकता है और कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज आपको देंगे। जी हाँ, करियर इन ग्राफिक डिज़ाइन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बातें करने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है। साथियों, ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो पेशेवर होता है, जिसके अंदर रंगों, फॉन्ट, चित्रों और लेआउट और डिज़ाइन टूल्स की मदद से किसी भी ब्रांड, उत्पाद या विचारों को आकर्षक रूप प्रस्तुत करता है। उसका नाम लोगों का ध्यान खींचवाने और सही संदेश पहुंचाने का होता है, जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है। तो साथ ही उसके साथ में अगर बात करूं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुख्य कार्य होता है, जैसे कि शुरू मैंने बताया, लोगो बनाना, पोस्टर या बैनर बनाना, सोशल मीडिया

क्रिएटिव्स जो बैनर्स होते हैं या पोस्ट होते हैं वो बनाना, वेबसाइट और एप्लीकेशन, ऐप डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स जो स्पेशल डिज़ाइंस हैं, ब्रोशर, फ्लायर और विजिटिंग कार्ड जैसी चीज़ें बनाना, पैकेजिंग डिज़ाइन करना, मैगजीन और बुक लेआउट बनाना, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुख्य कार्यों में से है। तो साथियों ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो हैं बारीकी से अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज़ का कार्ड या इनविटेशन या फ्लायर बनाना हो, बैनर बनाना हो, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। तो आज देखेंगे कि जितना ज़्यादा काम इन लोगों के पास है कि आज हर कोई अच्छा दिखना चाहता है या अपना ब्रांड को अच्छा बनाना चाहता है, तो एक डिज़ाइनर का, ग्राफिक डिज़ाइनर का वहाँ पर अहम रोल आ जाता है। साथ ही इसमें एक और बात, यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए जो कौशल है, जो स्किल्स है, वो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, है ना। सबसे पहला तो टूल के अलावा एक अच्छी सोच होना चाहिए, जैसे कि क्रिएटिविटी, नए और यूनिक आइडिया सोचने की क्षमता इस क्षेत्र में आत्मा है। अगर आप नया कुछ सोच नहीं पाते हैं तो इस क्षेत्र में आप पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा क्रियात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी फिर आता है जैसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान। अब कोई भी बंदा कंप्यूटर लेगा तो सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ के ही काम करेगा। तो जब डिज़ाइनर की बात आती है, ग्राफिक डिज़ाइनर की, तो उनके लिए कुछ टूल्स होते हैं, आजकल रेडीमेड टूल्स भी मिलने लगे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एडोब फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर ये देख लेते हैं, एडोब इन डिज़ाइन ये सॉफ्टवेयर को अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम आता है अभी के समय में। और पुराने समय में थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो कोरल ड्रा भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद अभी लेटेस्ट में अगर देखें तो कैनवा, ये भी अच्छा है शुरुआती लोगों के लिए। और इसमें आजकल बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइंस आ गए हैं, टैम्पलेट्स आ गए हैं, जिस तरह से आप जो भी चीज़ सोचेंगे उसका रेडीमेड टैम्पलेट होता है और आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन इनको अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं। तो ये जो स्किल्स हैं ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास होने चाहिए। रंगों और फॉन्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा रंग या फॉन्ट किस भावना को दर्शाता है, ये समझ आपके पास बहुत ज़रूरी है। जब आप इस कोर्सेस को करते हैं तब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट की ज़रूरत को समझना और उसे डिज़ाइन में उतारना, ये भी बहुत ज़रा यूनिक है। क्योंकि अगर कोई बंदा बताया है आपको तो आप उसे समझ लिया और तुरंत उसको तीन चार डिज़ाइन बता दिया तो उसमें से एक पसंद करना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्या बोल रहा है, किस तरह की चीज़ बता रहा है, वो अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। समय प्रबंधन, डेडलाइन पर काम पूरा करना एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की पहचान होती है। अगर आप 10 दिन में अगर किसी को डिज़ाइन देने वाले हैं तो 10 दिन में ज़रूर दीजिए। इवन मैं तो कहूँ 9वें दिन उसको बुलाकर डिज़ाइन दे ही दीजिए, ताकि एक दिन आपके पास फ्री हो और समय बचे और आप कस्टमर यानी ग्राहक का दिल जीत सके। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद हम लोग कैसे सीखे इस पर बातें करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करें इस पर बातें करेंगे, ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं इसके बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम करियर ऑप्शन जीवन कौशल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीखें, इस पर अगर बात करूं तो पहला है डिग्री डिप्लोमा कोर्स BFA अप्लाइड आर्ट्स, दूसरा है डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ये दोनों कोर्स है आप कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब, स्किल शेयर, ये सारे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल है, इन्हें भी आप सीख सकते हैं। तीसरा, स्व अभ्यास सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना नए डिज़ाइन बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर या किसी पोर्टफोलियो में डालना बहुत ज़रूरी है, किसी पोर्टल पर भी आप अपना डाल सकते हैं ताकि लोग कितना पसंद करते हैं आपके डिज़ाइन को, ये आपको नो हो जाएगा। माने आपको अपने स्किल्स के माध्यम से आपकी डिज़ाइन लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। इसीलिए भी आपको ये चीज़ें सेल्फ प्रैक्टिस में लाना चाहिए और रोज़ एक डिज़ाइन बना के पोस्ट करना चाहिए। साथियों, अब ये पूरा कार्य और कौशल आपके पास आ गया, डिग्री आपके पास है, तो आप अवसर कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलेंगे एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। तो सबसे पहला, आपको विज्ञापन एजेंसी में ज़्यादा आपको डिमांड रहती है, यहाँ पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हमेशा वैकेंसी खुली रहती है। दूसरा, मीडिया हाउस, यहाँ पर भी आजकल मीडिया हाउस में आप देखेंगे सोशल मीडिया हो गया है, टीवी में आता है और फिर फिल्मों के लिए भी, या एडवर्टाइजमेंट हर जगह होती रहती है, हर जगह की न्यूज़ मीडिया में जाती है और आजकल देखेंगे हर जगह पे बहुत सारे मीडिया वाले मीडिया हाउसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत डिमांड होती है। इसके बाद आता है आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, इसमें भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हमेशा वैकेंसीज मिलती रहती हैं। फिर आता है चौथा, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री, यहाँ पर भी बहुत डिमांड होती है ग्राफिक डिज़ाइनर की। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में भी आपकी वैकेंसीज बनी रहती है। फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है डिमांड होती है। तो ये सारे फील्ड हैं जहाँ आपको अवसर मिलता है। तो साथियों, इन अवसरों पर आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिज़ाइनिंग में रुचि रखते हैं तो अवश्य इन चीज़ों पर काम करें और आगे बढ़े। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में और एक बहुत ही सुंदर सक्सेसफुल स्टोरी भी शेयर करूंगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मंगल कामनाएं करते हैं साथियों। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना एक सुखद अनुभूति देता है, क्योंकि जिनकी रुचि होती है वो अपना पेंट ब्रश लेके काम करते रहते हैं। वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइनर को अपना कंप्यूटर ओपन किया और फिर कैनवा या फिर एडोब ऑडिशन खोल कर अपना सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर लिया। आपकी रुचि के विषय है तो आपको समय का पता नहीं चलता, थकान नहीं होती है, आराम से आप इन चीज़ों को कर पाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी राहुल की आपको बताना चाहूँगा। राहुल एक छोटे से गांव से था, उसके पास महंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए साधन भी नहीं थे, पैसे भी नहीं, लेकिन उसे बचपन से ड्राइंग और रंगों का बड़ा शौक था, रंगों से बड़ा प्यार था। उसने मोबाइल और पुराने कंप्यूटर पर यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ें देखकर की उन्होंने। शुरुआत में उसके डिज़ाइन साधारण थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज़ नए पोस्टर बनाता, सोशल मीडिया पर डालता और एक दिन एक छोटे स्टार्टअप ने उसका काम देखा और उसे पहला प्रोजेक्ट दिया। साथियों, ये एक छोटा प्रोजेक्ट, यहाँ से राहुल के जीवन में एक परिवर्तन आ गया, एक यूटर्न आ गया, क्योंकि एक छोटा स्टार्टअप वालों ने काम देखा, उन्हें बहुत पसंद आया और तुरंत राहुल को प्रोजेक्ट भी दे दिया। अब धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट उनको मिलते गए, छोटे छोटे वो करते गए और आज राहुल एक सफल फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर है जो देश विदेश के क्लाइंट्स के साथ काम करता है और अपने परिवार का सहारा बना है। उसकी कहानी बताती है कि डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी लगन और अभ्यास है। तो साथियों, इस तरह से आप भी अपने जीवन में यूट्यूब से कोर्स सीखकर भी काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आय की बात करें तो शुरुआत में आपको 15,000 से 25,000 प्रति महीना मिल सकता है और अनुभव होने के बाद आपको 50,000 से 1,00,000। और फ्रीलांसर के रूप में अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करते हैं या प्रोजेक्ट लेते हैं तो लाखों रुपए आपको मिल जाते हैं। और जैसा जैसा अनुभव और पोर्टफोलियो मजबूत होता जाएगा, आपकी पहचान और आय दोनों बढ़ती जाती है। साथियों, यहाँ पर एक और कहानी मैं बताना चाहूँगा नेहा की। नेहा एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी, पढ़ाई के साथ साथ उसने ग्राफिक डिज़ाइन का ऑनलाइन कोर्स कर लिया। कॉलेज के इवेंट्स के लिए वह पोस्टर और बैनर डिज़ाइन करने लगी और धीरे धीरे उसका काम इतना पसंद आया कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जॉब ऑफर उसको मिलने लगा। नेहा ने उस ऑफर को ठुकराया नहीं, बल्कि उसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में करना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से नेहा ने वहाँ पर ब्रांडिंग और सोशल मीडिया डिज़ाइन में अपनी जगह अलग पहचान बनाई और उनकी ये पहचान ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। और फिर आज नेहा एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है और कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका मानना है अगर आप अपने काम में दिल डालते हैं तो डिज़ाइन खुद बोलने लगते हैं। तो इस तरह से ये कहानी थी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फायदे जो है, रचनात्मक आज़ादी मिलती है, घर से काम करने का अवसर मिलता है, ग्लोबल क्लाइंट्स मिलते हैं, लगातार सीखने का मौका मिलता है, आत्मसंतोष और पहचान प्राप्त होती है। कुछ चुनौतियां यहाँ पर भी हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लगातार नए ट्रेंड सीखना होता है, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाना होता है, इसका दबाव रहता है। लेकिन जो लोग सीखने और मेहनत करने से नहीं डरते, उनके लिए चुनौतियाँ भी अवसर बन जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर उन लोगों के लिए वरदान है जो रचनात्मक सोच, नए विचार और तकनीक को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। ये केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कला और पहचान है। अगर आपके अंदर रंगों से खेलने का, कुछ नया बनने का, बनाने का और दुनिया को अपने डिज़ाइन से प्रभावित करने की इच्छा है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प है। साथियों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे एक नए ट्रेड के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
2: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
3: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
4: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर सायरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल।
2: हस्तिनापुर साम्राज्य में आज बहुत सरगर्मी है। महल के बाहर कई महिलाएं मदिरापान के विरोध में नारेबाजी कर रही थी। द्रौपदी ने रनिवास में जब आवाज सुनी तो सेविका से पूछा, सेविका पता करो बाहर किस बात को लेकर शोर मचा है। महारानी जी, ये साम्राज्य की महिलाएं हैं जो महाराज युधिष्ठिर के सामने दूध क्रीड़ा एवं मदिरापान पर रोक लगाने का सत्याग्रह करना चाहती हैं। सेविका का यह कथन सुनते ही द्रौपदी तीव्रता से राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। महारानी द्रौपदी, इस तरह कहां चलती, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को टोकते हुए कहा। महाराज, बाहर नगर की स्त्रियां द्युत क्रीड़ा एवं मदिरापान के विरोध में सत्याग्रह कर रही हैं। मैं वहीं जा रही हूं, आपका वहां क्या काम महारानी? धर्मराज, मुझसे बेहतर द्युत क्रीड़ा व मदिरापान के दोष को कौन समझ सकता है, द्रौपदी ने कहा। मगर प्रिय, अब उन बातों से क्या लाभ, अब तो महाभारत ही समाप्त हो गया। तुम्हारे खुले केश दुशासन के लहू से नहा लिए, दुर्योधन से तुम्हारे अपमान का बदला भी पूरा हुआ, हमारा राज्य हमें मिल गया, तुम पटरानी बन गई। फिर क्यों द्रौपदी, महाराज युधिष्ठिर बोले। महाराज, कुरुवंश ने द्युत क्रीड़ा और मदिरापान का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। मैं नहीं चाहती कि उस साम्राज्य में फिर से कोई नारी किसी युधिष्ठिर के मद्यपाई होने पर किसी दुर्योधन की पद्मनीयति का शिकार हो, फिर से इस साम्राज्य में कोई महाभारत हो, द्रौपदी ने व्यथित होकर कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर बोले। महाराज, मद में चूर होकर पुरुष इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अपना पौरुष दिखाने के लिए सिर्फ नारी ही दिखाई देती है, द्रौपदी ने जवाब दिया। तो तुम कहना चाहती हो कि द्युत क्रीड़ा और मद्यपान से केवल नारी के जीवन पर संकट है, महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। महाराज, ये व्यसन नारी जीवन को तो अभिशाप में बदल ही देते हैं, साथ ही मुझे चिंता उन लाखों निरीह प्राणियों की भी है जो नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने के कारण उत्पन्न महाभारत में अकारण मारे जाते हैं। बीती पर बिंदी लगाओ द्रौपदी। कैसे बिंदी लगाऊं महाराज, आखिर पटरानी हूं साम्राज्य की, प्रजा मेरे लिए संतान तुल्य है, संतान की रक्षा करना धर्म है मेरा। ये परंपराएं जो बड़े घरानों से चलन में आती हैं, वे समाज के लिए पत्थर की लकीर बन संकट का कारण बनती हैं, अतः उन्हें बंद होना ही होगा, कहते हुए द्रौपदी महल के बाहर खड़ी स्त्रियों की अगुवाई में खड़ी हो गई। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी लघु कथा घरानों की परंपरा। महाभारत का एक दृश्य उठाकर के उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे सामने रख दिया और दो ऐसे पात्रों का संवाद उन्होंने रखा जो महाभारत महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं। हम सब जानते हैं महाभारत क्यों हुआ, भले ही हम अपने घरों में ना रखते हो, मगर एक बात तो जरूर हुई है कि घर घर महाभारत पहुंच गई है, और घर घर महाभारत पहुंचने का कारण कहीं न कहीं 10 विकारों में एक विकार व्यसन भी तो है। नारी के सम्मान से खिलवाड़ होने का सबसे बड़ा बहाना यही व्यसन बनते हैं और यही महाभारत है। ये पात्र सांकेतिक हों या फिर वास्तविक, मगर अगर सीख लेने की बात है तो सीख तो ली ही जा सकती है। परंपराएं अच्छी हों, बेहतर हों, कुल का उत्थान करने वाली हों, सम्मान दिलाने वाली हों तो ठीक भी है, मगर पौरुष या मर्दान की दिखाने के लिए व्यसन का सहारा लेना, काम विकार पर गर्व करना, ये मर्दानगी नहीं हुई, क्योंकि गंदी नाली में पैदा होने वाले पुछिल्ले कीड़े भी काम विकार में लिप्त होते हैं। इसीलिए अगर डॉक्टर लता अग्रवाल जी की ये बात समझ में आई हो तो इस सत्याग्रह में जुड़ जाना चाहिए, और सत्याग्रह हमारा सिर्फ यही हो सकता है कि हम इसका परित्याग कर दें अपने लेवल पर। दूसरों को सुधारना ये तो बहुत बात की बात है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है, परंतु औरों को परिवर्तित करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव संस्कार है, और अपने स्वभाव संस्कार को बदलना, उस पर जीत पाना, किसी भी संस्कार का, किसी भी आदत लत का गुलाम न होना, यही स्वराज अधिकार पाना है, और यही स्वराज का अधिकार पांडवों ने पाया था। धर्म के मार्ग पर चले थे, श्रीमत पर चले थे, श्री श्री भगवान की। श्रीमद भागवत कहते हैं ना, भगवान के द्वारा गाई हुई अथवा दी हुई श्रीमत, इसे हमने गीता का नाम दिया। यदि कभी आप गीता पाठ करते हैं तो खुद को अर्जुन मानकर, जो ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, जिसे यह परिचय दिया जाता है कि तुम आत्मा हो, स्वयं को आत्मा मानकर के ये समझ करके गीता पढ़िएगा कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आपसे ये बात कह रहा है जो गीता में लिखी है, तब गीता की बातें बुद्धि में भी आएंगी और धारणा हो पाएगी। अन्यथा हम ये मान करके पढ़ लेते हैं तो अर्जुन के लिए कहा गया था, परंतु वो अर्जुन मैं भी हो सकता हूं ये कभी नहीं सोचते। कैसी लगी आपको डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी घरानों की परंपरा, जरूर बताइएगा। मैं अमित अगले पड़ाव पर आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे गुणंतर 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा तो सर ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, जुनून हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: श्रोताओं, आज फिर से एक बार लेकर आया हूं मैं आपका फेवरेट शो जुनून। आज आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज में वो तेजी क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं और कारण पे तो आपकी समझ अपने आप ही बन जाएगी ऐसा क्यों है मेरी आवाज इतनी ठहरी हुई और शांति के साथ मैं आज अपनी बात कह रहा हूँ। मैं आपका होस्ट हूँ और आपका दोस्त, आपका फेवरेट शो लेकर आया हूँ जुनून। मेरा नाम है शरद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। और रेडियो मधुबन माउंट आबू की वादियों में तो आपको मिलता ही है FM पे 107.8 FM पे, और इसके साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। और पिछले ही कुछ समय में हमने अन्य माध्यमों यानी कि स्पॉटिफाई पर भी इसको हम आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ आज एक बेहतरीन आवाज जिनकी आवाज में है शीतलता, है ठहराव, अनुभव और रंगमंच का अनुभव, ग्रीन रूम का अनुभव। तो ग्रीन रूम के बहुत सारे ग्रीन अनुभव, रंग बिरंगे अनुभव, उसे कहते तो ग्रीन रूम है लेकिन जब वो मंच पर आता है तो सतरंगी हो जाता है। तो वो सतरंगी रंगमंच के कलाकार, माध्यम को मजबूत बनाने वाले, उस माध्यम को और अपने रंगों से भरने वाले एक कलाकार, एक निर्देशक, एक मजबूत आवाज मेरे साथ हैं, राजकुमार रजक। आप राजस्थान के टोंक जिले में अपना रंगमंच का अनुभव ग्रामीणों के बीच, शिक्षकों के बीच, शिक्षा के बीच लंबे समय से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, और आज हम उनको लेकर आए हैं हमारे फेवरेट शो जुनून में। हमारी कोशिश होती है कि हम हर एक शो में, हर एक एपिसोड के माध्यम से, इस हमारे छोटे से प्रयास के माध्यम से एक जुनूनी से आपको हर सप्ताह मिलाएं, एक नई आवाज से आपकी मुलाकात करवाएं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही जुनूनी हैं आज, राजकुमार रजक जी। राजकुमार जी रंगमंच खास तो हैं ही, रंगमंच के निर्देशक भी हैं, रंगमंच के कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, या अपने रंगमंच के सब कुछ हैं। तो

0: और आम जनमानस में रंगमंच को लेकर बहुत सालों से एक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं दुनिया के बारे में कि उनका जुनून क्या है। जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारी, इसकी बहनें एक दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहती हैं, एक दुनिया को रहने लायक बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हमारे युवा सकारात्मक जीवन जी सकते हैं, कैसे हमारे समाज में जो गंदगी फैली हुई है, हमारे समाज में जो ऊंच नीच है, हमारे समाज में जो भेदभाव है, हमारे समाज में जो हिंसा है, उसको कैसे हम प्रेम के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही हमारे बहनों के प्रयास को देखते हुए राजकुमार भाई भी हमारे साथ हैं। वो रंगमंच के माध्यम से क्या जुनून रखते हैं, इस माध्यम को कैसे अपने जुनून के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो राजकुमार भाई, ये शुरुआत कैसे हुई और ये जुनून आपको कैसे मिला और आपका जुनून है क्या, पहले तो ये बताइए।
1: जी, पुनः बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं आप सभी को सहृदय धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और समस्त श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे या और सुनेंगे। तो जो सवाल है, बहुत ही प्यारा और नाजुक सा सवाल है, खुदबुदाने वाला सवाल भी है और टटोलने वाला सवाल भी है शरद भाई। तो मैं अपनी बात रखूं, उसके पहले मैं एक दृश्य खींचना चाहता हूं। वो ये कि देखिए, जब हम एक बीज को, किसी भी एक कल्पना कर लीजिए कि आम की गुठली को ही ले लीजिए, कि आम की गुठली को जब हम धरती में गाड़ते हैं, जमीन में रखते हैं, गाड़ते हैं उस, तो असल में जब से वो धरती के स्पर्श में आता है, तब से उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक बदलना धीरे धीरे शुरू होता है। और दोनों के मिलाप से, दोनों के मिलन से एक अलग संयोग बनता है और एक यात्रा शुरू होती है। तो आम का पेड़ और बीज दोनों के अवस्था में बहुत तफात है, पर जो कांस्टेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस ओर मैं आप सभी का इशारा चाहूंगा, सभी का ध्यान लेना चाह रहा हूं कि असल में एक यात्रा है, ये पूरी की पूरी एक यात्रा है। तो हम चीजों को मेरे संदर्भ में, मेरी बातचीत के संदर्भ में एक जर्नी के रूप में देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जुनून की खेती हुई और उसकी यात्रा कैसे रही, उसमें कैसे फेर बदल हुए। तो अमूमन बहुत ही शौकिया तरीके से ही रंगमंच में मैंने भी प्रवेश किया, और प्रवेश करने की अपनी एक यात्रा रही कि कहाँ पर नाटक होता है और कैसे होता है। मैं इलाहाबाद का, चूंकि मेरी परवरिश, मैं 12वीं तक इलाहाबाद में ही रहा हूँ, प्रयागराज में। तो उस वक्त के उम्र में, 9वीं 10वीं में मैं पढ़ रहा था, करीब 97-98 का साल रहा होगा, उस वक्त का वो मेरा जुनून बनना शुरू हुआ था कि मैं भी इलाहाबाद का एक दूसरा अमिताभ बच्चन बनूंगा। और
0: क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस बात में कई मायने हैं राजकुमार भाई। अमिताभ
1: जी
0: बच्चन तो इलाहाबाद में चुनाव जीतकर और बीच में अपनी सांसदी छोड़ के भी चले गए थे। कुछ ऐसा भी आपने
1: जी
0: तो नहीं किया इलाहाबाद के साथ।
1: नहीं, ऐसा
0: लेकिन
1: नहीं, बिल्कुल।
0: उन्होंने
1: तो
0: वहां के बहुत विराट व्यक्तित्व तो हेमवती बहुगुणा नंदन को चुनाव हराया था,
1: हराया था,
0: और वो बात
1: बिल्कुल
0: अलग है कि हम सफर ने भी उनके लिए वोट मांगे थे। लेकिन
1: बिल्कुल
0: खैर, जो
1: बिल्कुल
0: भी हुआ वो
1: बिल्कुल
0: राजनीतिक बात।
1: बिल्कुल।
0: आपने क्या किया इलाहाबाद में
1: तो
0: बताइए।
1: मेरे लिए तो
0: जी
1: वो बस एक अभिनेता की मूर्ति के रूप में ही सामने आते थे, मेरे
0: जी
1: इमेजिनेशन में, मेरी कल्पना में। अब उस वक्त की भाषा में वो जो भी था, पर वो मतलब बेहद पागलपन की स्थिति में आ गया था मैं, कि बस एक्टिंग करना ही
0: जी
1: है। और चूंकि मैं एक कामकाजी परिवार से आता हूँ, एक श्रमजीवी परिवार से आता हूँ, तो ये भी
0: जी
1: था कि हमारी लॉन्ड्री हुआ करती थी प्रेस करने की। पिताजी घाट जाते थे, कपड़े
0: जी
1: धुल के लाते थे, फिर वो प्रेस करते थे। तो भाई बहनों में मैं ही बड़ा था। तो जब मुझे किसी रंगमंच का ठिकाना मिला इलाहाबाद में, एक ग्रुप मिला, तो बड़ा ही शानदार कि अरे वाह, क्या एक्टिंग हो रही है यहाँ, तो शायद अमिताभ बच्चन बनने की पहली कक्षा यहीं से शुरू हो। तो इस तरह से वो यात्रा जो
0: जी
1: है
0: जी
1: शुरू
0: सुनकर मजा आ रहा है ना।
1: हुई।
0: देखिए
1: तो अब चूंकि समन्वय भी बैठाना है परिवार के साथ, श्रम भी करना है, तो मैं क्या करने लगा कि मैं सुबह 4-5 बजे ही उठने लग गया, और मैं सालों साल उठा हूँ, 1-2 महीने भी नहीं। मतलब सोचिए कि 9वीं 10वीं से लेके कम से कम 12वीं तक 3-4 साल मैंने लगातार ये काम किया कि सुबह उठता था और सबसे पहले, अब मैं दुकान में ही सोने लग गया था, मैं लॉन्ड्री के ही भीतर सोता था। और वहीं पर सुबह उठ के ही अपना प्रेस

0: करने में लग जाता था और करीब 6-7 बजे तक 2-3 घंटे रगड़ के प्रेस करता था और फिर स्कूल चला जाता था मैं। स्कूल से आने के बाद 2-3 बजे 1-1.5 घंटे रेस्ट करता था दोस्तों यारों के साथ, मोहल्ले में खेलना घूमना, और उसके बाद सीधे रंगमंच में। तो कोई टोकने वाला फिर नहीं था, शुरू में काफी टोका टाकी हुई थी तभी ये मैंने हथकंडा अपनाया था। तो ये है कि जो मैं यात्रा की बात कर रहा था तो वो यही था कि एक अभिनेता बनने का जुनून उस वक्त अंदर कुलबुलाहट पैदा कर दे रहा था। और एक मजेदार चीज थी, मैं जब अभी याद करता हूं उन दिनों को तो जुनून में एक बहुत खास, ऐसा लगता है कि जुनून कोई एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जुनून सुनते ही ऐसा लगता है कि एक सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था, मतलब एकदम एनर्जेटिक ना, जैसे एकदम फ्यूजन हो रहा हो। तो इस तरह ये शब्द में ही अपने आप में ऐसी ताकत है। तो ऐसा लगता था मुझे कि देखिए मैं रणनीति भी कर रहा हूँ, समन्वय भी बैठा रहा हूँ, मैं अपने मकाम को फोकस भी किए हुए हूँ और अपने व्यवहार पर संयम भी साधे हुए हूँ। मैं लोगों को सुनने की और अपनी प्रतिक्रियाओं की और चलने फिरने की सब पर मेरी एकदम जागृत नजर है। तो जब ये सारा कंपोजिशन मिल जाता है तब आप धीरे धीरे जुनूनी होना आरंभ कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका मकसद और आपकी सारी क्रियाकलाएं जब एक हो जाती हैं तो वो जुनून तरफ रुख करने लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है कि असल में एक तरह से प्रयागराज से इलाहाबाद से निकलने से पहले खुदा ना खास्ता परिस्थिति वश जुनून को कैसे संभाला जाता है, जुनून को कैसे सृजित किया जाता है, जुनून को कैसे कंटिन्यूएशन मतलब उसको गतिशीलता की ओर लिया जाता होता है। इन तीनों चरण का एक तरह से मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद में रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि जुनून की कठिन परीक्षा उसके बाद होनी थी, जो मुझे अब पता लगता है। क्योंकि आप भविष्य को केवल अंदाजा लगा लेते हैं पर चीजें कुछ और ही होती हैं बहुत बार। तो वो बहुत मजेदार है को जब जुनून को जब चुनौती मिलती है तब।
1: जी नहीं तो फिर जुनून क्या था, मैं वही जानना चाह रहा
0: तो
1: था कि
0: वही
1: हमारे छोटे
0: जुनून
1: भाई।
0: जी, तो पहला जुनून तो यही था कि रिहर्सल मतलब कि मैं एक इलाहाबाद में एक अभिनेता बनूं और सुनहरे पर्दे का एक नायक बनूं, और इलाहाबाद तक तो कम से कम यही बना रहा था। अब जब मैंने कहा कि एक यात्रा होती है और जुनून की भी अपनी एक यात्रा होती, उसके पड़ाव होते हैं और वो और भी तीखा या शार्प या बोले कि स्पष्ट होता चला जाता है। आपको बहुत बार उसकी भाषा पकड़ में नहीं आती है आपको अपने जुनून की। तो जब मेरी इस कदर जो मेरा कंट्रीब्यूशन मेरा लगाव था रंगमंच पे, और पिताजी उधर धीरे धीरे चूंकि 12वीं मैं पास कर रहा था तो पिताजी का दबाव बन रहा था कि मैं कोई दरोगा बनूं, पुलिस बनूं और उस दर की पढ़ाई लिखाई करूं, कांस्टेबल बनूं, और इस तरह का उनका विचार था या उनका योजना थी पिताजी की। पर मैंने माता जी को पिताजी से बहुत मुकाबला नहीं कर पाया, वो कई बार मतलब हिंस हो जाते थे, ठोक देते थे मतलब ना। उन्होंने तो ये भी ठोक दिया था कि मुझे अच्छे से याद है कस्टमर के सामने ही उन्होंने मुझे मारा था और ये बोला था कि तुम भगत सिंह बनोगे, ऐसे थोड़ी होता है। और फिर मेरी संगत को, शरद भाई एक बात याद आ गई है, मैं कहना चाहूंगा श्रोताओं को कि पिताजी ने तंज कसा था और वो उस तंज के पीछे बहुत बड़ी व्यवहारिकता थी भाई साहब। उन्होंने कहा था कि देखिए आप अपने संगत का मूल्यांकन करिए, नहीं तो इस दुनिया में कई बार बड़े लोगों की भी कहानियां अदृश्य हो जाती हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की भी कहानी देखिए पता नहीं चलती है, तो मैं अपने बेटे राजकुमार की कहानी को कैसे खोजता फिरूंगा। सो अपने संगत को दुरुस्त करिए, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के वाकयात
1: बहुत
0: थे,
1: बढ़िया।
0: मेरी माँ ने मेरी मदद की और भी ज्यादा। शायद अब मुझे लगता है कि पिताजी माताजी दोनों बातचीत किया करते थे पर पिताजी वो उजागर नहीं होने देते थे मुझे ना। मेरी माँ ने जब मेरी ये हालत देखी, मेरा ये झुकाव, मेरा ये रुझान देखा रंगमंच के प्रति, अभिनय के प्रति, अखबारों में नाम आ
1: जुनून
0: रहे
1: देखा
0: थे, जुनून देखा मेरा, तो मेरी माँ ने मतलब उधर ही मेरे कुछ संबंध भी बन रहे थे कि मैं कैसे पढ़ूंगा, तो कुछ मेरे सीनियर लोग भी मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि बंबई की जगह तुम कलकत्ता जाके नाटक की ही पढ़ाई पढ़ो, और क्योंकि कलकत्ता जरा सा आर्थिक रूप से वहां बहुत तुमको चुनौती नहीं मिलेगी, तो कलकत्ता जाकर पढ़ो। तो सोचिए मेरी माँ ने मुझे 500 रुपए, उस वक्त वो वर्ष रहा होगा सन 1999 का और 2000 के बीच का समय रहा था
1: बेस कारगिल लड़ रहा था आप कलकत्ता में।
0: जी, और मेरी माँ ने मुझको 500 रुपए दिए थे, और मुझे एक तरीके से उन्होंने भगाया था। चौरी चौरा एक ट्रेन है जो कानपुर से चलती है मऊ की तरफ, ये आयरनी है कि मैं चौरी चौरा एक्सप्रेस पर बैठ रहा हूँ, घर से भाग रहा हूँ
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे आजादी के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना वहां पर हुई है। जी
0: तो
1: जी
0: उस ट्रेन से ही मैं निकला हूँ पहली बार कलकत्ता के
1: मुझे
0: लिए हाँ
1: तो लगता है पैसे की जरूरत में आपने टाकोरी नहीं क्रिएट किया वहां पर। जी जी
0: ये इम्फेसाइज आज मुझे याद आया, अभी आप कहीं गए
1: जी
0: थे काकोरी से संबंधित तो वो याद आ गया मुझे।
1: जी जी
0: तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आप सभी श्रोताओं का ध्यान वापस खींचना चाहूंगा कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए, कि मैंने कहा था कि इलाहाबाद में मेरा एक रिहर्सल हो रहा था जुनून को सेने का, जुनून को पालने का, जुनून को गतिशील करने का। अब जुनून को मिलेगी चुनौती कलकत्ता में, बहुत ही
1: जी
0: गहरी तरीके से, हर तरीके से
1: जी
0: चुनौती मिलने वाली है उसको। और कलकत्ता गया मैं, नॉन बंगाली आदमी, बांग्ला बिल्कुल नहीं आती थी मुझको, और वहां जाके मैंने 2-3 महीने में बांग्ला किसी ना किसी तरह से कुछ कुछ बोलना और बड़े बड़े अक्षर लिखना कुछ शुरू किया। वहां पता चल गया था कि मेरी परीक्षा जो है वो बांग्ला मीडियम में ही होगी, एंट्रेंस की परीक्षा।
1: जी
0: तो मैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में अंततः मेरा एडमिशन हुआ, बहुत संघर्ष के बाद। मैंने खूब तैयारी
1: जी
0: की उसके लिए, मेरे पास कमरे नहीं थे, क्योंकि नाटक का विषय पढ़ने गया था तो ऑडिशन भी होना है, ऑडिशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्टिंग का रिहर्सल करना है, तो जगह नहीं होता था, तो मैं पब्लिक पार्क में करता था, बड़े बड़े फ्लैटों के बीच में एक पार्क होता था उस सोसाइटी का, तो वहां जाके रिहर्सल करता था। लोग हंसते थे, उनको लगता था परफॉर्मेंस कर रहा, कुत्ते भौंकने लगते थे, पर मैं कंटिन्यू
1: जी क्या बात है, क्या बात है। रंगमंच के संघर्ष में रेबीज आपके पीछे पड़ा हुआ था। जी
0: एडमिशन हुआ, ऑडिशन मैंने पास किया, रिटेन भी किसी तरह से पास हुआ वो भाषा की चुनौती को लिखते हुए, क्योंकि मैं बांग्ला में पहले लिखना शुरू किया बड़े बड़े अक्षर, जैसे कक्षा 1 या 2 का बच्चा लिखता है। फिर मैंने देखा कि अब समय कम बच रहा है, आधे घंटे लगभग पार कर गए और मैंने पूरी बात लिखी नहीं है, अब फ्रेम भी उस तरह से नहीं बन रहा था भाषाई रूप में। तो मैंने फिर, अंग्रेजी भी मेरी उतनी दुरुस्त नहीं थी उन दिनों, हम लोग कक्षा 6 में तो ABCD पढ़कर आए हुए थे, तो मैंने रोमन स्टाइल में लिखना शुरू किया, जैसे HUM हम, इस तरह से रोमानियल उस स्ट्रक्चर में लिखना शुरू किया। फिर अंततः मैंने हिंदी में लिख दिया था, शेक्सपियर के नाटक के बारे में कुछ लिखना था मुझे। तो खैर एडमिशन हुआ, अब यहाँ से चीजें, एडमिशन रविंद्र भारती जाने का मतलब ये था मेरा कि अब मुझे कुछ नई चीजें मिलने वाली थी, और वो मेरे लिए अकल्पनीय थी, जो जुनून को भी आकृति देने वाली थी। मुझे वहां पर बादल
1: जी क्या
0: सरकार जैसे लोगों का रंगमंच मिला, वहां प्रवीर
1: बात है,
0: गुहा जैसे लोगों का रंगमंच मिला, और मुझे जो चुनौती मिली ना वहां पर,
1: जी
0: चुनौती दार्शनिक चुनौती मिली, सैद्धांतिक चुनौती मिली, प्रैक्टिकल चुनौती नहीं, सैद्धांतिक और दार्शनिक चुनौती मिली। वो सवाल पैदा हुआ कि भाई मेरे जुनून के भीतर आखिर पुंज क्या है, वो शक्ति क्या है, वो सवाल क्या है जो मुझे इस जुनून की ओर ले जा रही है, मेरा रंगमंच क्या होगा, मेरे रंगमंच के दर्शक कौन होंगे, मेरा रंगमंच क्यों होगा, क्या केवल मात्र अभिनय कर लेना ही रंगमंच है, या केवल अभिनय कर लेना ही अभिनेता होना है, आप समझ रहे हैं श्रोताओं, मैं किधर इशारा कर रहा हूं कि एक अभिनेता का जो सामाजिक दायबद्धता है, एक अभिनेता की जो सामाजिक दृष्टि है, ये सवाल उस दिशा में खुलने लगे, ये चुनौती मिली मुझे। और इन चुनौतियों ने, वहां के रंगमंचीय एक्सपोजर ने पूरा का पूरा एक नया मीनार गढ़ना शुरू कर दिया, खोजबीन की ओर लेकर जाने लग गया, मैं अनुसंधान में जुटने लग गया कि दुनिया में आखिर रंगमंच के मायने क्या हैं, रंगमंच करने से अंततः होता क्या है, एक व्यक्ति के मन में क्या होता है और एक समाज में क्या होता है। तो इस तरह के कुछ सवाल आने लग गए और वहां से मेरा जो जुनून था, धीरे धीरे उसको अब स्पष्ट भाषा मिलनी शुरू हुई कि असल में मेरा जो जुनून है रंगमंच का, वो जुनून है कि लोगों के भीतर आत्मचेतना को विकसित किया जाए, लोगों के भीतर उस आत्मचेतना से जुड़ी हुई जो सामाजिक चेतना की दायबद्धता है, उसका जो जुड़ाव है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उस ओर देखा जाए, मूव किया जाए। तो मेरे रंगमंच का पूरा प्रयोग बदल गया, अभिनेता और अभिनय दुनिया के सृष्टि के किसी भी रंगमंच का एक अभिन्न हिस्सा है। तो मेरे रंगमंच में भी अभिनेता है, बशर्ते अब सवाल अलग है, अब सवाल है उसके दार्शनिक पृष्ठभूमि पर, उसके व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर। तो मेरा आज का जो जुनून है, और उस जुनून को अगर मैं एक भाषा में अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा तो वो ये है कि आत्म जागरण का रंगमंच कर रहा हूं, और उस आत्म जागरण से मैं ये चाहता हूं कि भारत जैसे धरा पर जब हम ये कहते हैं, या इस पूरी धरती पर जब हम ये कहते हैं अपदीपो भव, और जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो असल में मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच की जो धुरी है, इन दोनों को मिलाने की जो शक्ति है, असल में वही काम होना जरूरी है। और वहां काम होगा जब लोग आत्मिक रूप से सचेत होंगे, अपने अनुभूतियों के प्रति सचेत होंगे, अपनी अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत होंगे। तो हमारे रंगमंच का ये इस तरह से प्रक्रिया आरंभ होती है, और ये जुनून की इस हद तक हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, खासकर मैं, कि मेरी इस परियोजना का अभिनेता कैसा होगा, मेरी इस विचार का अभिनेता कैसा होगा, क्या वो केवल शब्दों का जाल करेगा या उसके कुछ सामाजिक दायबद्धताएं होंगी, वो व्यक्ति कैसा होगा, तब वहां से ये लाइन शुरू होती है जब हम उसको, उस दर्शन को सिद्धांत में, और सिद्धांत को जब एक्शन में लेकर आते हैं, तब ये चीज पकड़ में आती है कि हमें एक ऐसे अभिनेता का निर्माण करना है, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना है जो अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने भावनात्मक रूप से सर्वदा उपस्थित रहे, प्रतिक्षण प्रतिक्षण वो उपस्थित रहे, वो अनुभूति को एहसास कर पाए कि वो वर्तमान में मौजूद है ना। तो इसको अगर सहजता से और भी मैं सिंपली करने की कोशिश करूं, सिंपलीफाई, तो वो इस तरह से है कि आप देखिए, कोई किसी पर आक्रोशित क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने अनुभूति में, अपने इमोशन में इतना मुग्ध हो जाता है कि सामने वाला भी एक व्यक्ति है, या सामने भी इस सृष्टि का ही कोई अंश है, वो भी सोच समझ सकता है, कह सकता है। हम ये समझने की शक्ति खो देते हैं जब हम आक्रोशित होते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार भाई। तो ये जो जुनून है आपका, ये जुनून क्या है, वो आपने बताया कि आप स्वर जागरण की यात्रा का रंगमंच जो है वो आपका जुनून है, लेकिन ये जुनून क्या सपना देखता है, ये क्या कर रहा है, और ये जुनून फिर आगे की यात्रा में आपको कहाँ लेकर गया, और इस जुनून ने आपसे क्या क्या करवाया?
0: जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो वही इस यात्रा में, इस पड़ाव में जुनून को जब भाषा मिलना शुरू हुआ, इस तरह से इसकी प्रक्रियाएं जब खुलनी शुरू हुई, तो मैंने अपना मार्ग जो है, मतलब अमिताभ बच्चन बनने का जो सपना रहा है, जो जुनून रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है पर उसके बरक्स शायद बहुत ही ऊंचा और बहुत ही गहरा एक जुनून प्रकट हो गया है जिसमें मैं जुटा हुआ हूं। तो इस जुनून ने फिर एक और पड़ाव की ओर रुख किया, वो ये कि अगर मुझे ऐसे अभिनेताओं का निर्माण करना है तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना हो। तब फिर मैंने आखिरी 2013 में, तो उसके पहले भी मैं शिक्षा में काम कर रहा था, पर बहुत ही व्यवस्थित रूप से उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए, सामाजिक पहलुओं को समझने के लिए, शिक्षक कैसे बच्चों के साथ काम करते हैं, उसकी क्या चुनौती है, वहां पर शिक्षक बच्चों की संवेदनाओं को लेकर और अपनी संवेदनाओं को लेके, एक दूसरे की अनुभूतियों को लेकर कितना सचेत है, कितनी प्रक्रियाएं करता है, क्या करता है, तो इस तरह से मेरा साबका पढ़ना शुरू हुआ। तो रंगमंच की पृष्ठभूमि से मैंने रंगमंच को उठाया और उसको शिक्षा के रंगमंच के भीतर प्रवेश कराना आरंभ कर दिया, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा में नाट्य कला की एक भूमिका की ओर मैं बढ़ना आरंभ किया। और भी बहुत सारे लोग इसके पहले भी बढ़े हैं, शिक्षा में नाट्य कला को लेकर बहुत काम हुआ है दुनिया में, बहुत चीजें सोची समझी गई हैं, उसमें कुछ पहलू मैं अपने भी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा जुनून जो है वो अपनी जुनून वहीं का वहीं कांस्टेंट चल रहा है, उसकी रंग रूप उसकी काया बदलती जा रही है। तो अब उसकी काया, अब रंगमंच और शिक्षा दोनों मिलके मेरे रंगमंच की काया बने हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया कि नाट्य कला को जब हम शामिल करते हैं उसमें बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन के अनुभवों को लेकर आता है और वो अनुभवों को बदलने का अवसर पाता है, और अनुभवों को बदलने का जब अवसर पाता है तो वो नए अनुभवों के निर्माण के लिए प्रेरित होता है, यानी कि सृजन की दिशा में बढ़ता है। तो जब बच्चा सृजन की दिशा में बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि वो स्वजागरण की यात्रा में बढ़ेगा, उसकी चेतना जागृत होगी ना। तो अनुभव का बदलना बड़ा जरूरी है, जब तक मेरा अनुभव नहीं बदलेगा मेरे पड़ोसी के साथ तब तक मैं पड़ोसी को, मतलब अभी देखिए क्या विडंबना है कि जो पड़ोसी है वही आपका संरक्षक होना चाहिए, पर लोगों की सबसे बड़ी संकट ये हो गई है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही पड़ोसी बन पड़ा है ना। मतलब दुश्मन कहने का अभिप्राय कि मन मुटाव रहता है बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत ही व्यवस्थित शोध परक नजरिए से देखने की कोशिश की है, तब मैं ये बात कह रहा हूँ शोध प्रक्रियाओं के साथ, उसके रिजल्ट के साथ। तो जब तक अनुभव नहीं बदलेगा, जब तक अनुभव को बदलने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक स्वचेतना का विकास मेरे रंगमंच की भाषा में तनिक मुश्किल है। और इसीलिए भारतीय संवैधानिक शब्दों में अगर मैं कहूं कि बंधुता जो शब्द है, बंधुता का जो अनुभव है, बंधुता की जो अनुभूति है, वो थ्योरी से उसका काम नहीं चल सकता है। जब तक मैं शरद जी के साथ बंधुता का अनुभव नहीं करूंगा तब तक मैं मेरे किसी और व्यवहार में उसको रूपांतरित में कर ही नहीं सकता। ये हमारे मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं कि वो जो उसके अनुभव में है, जो उसके अनुभूति में है, वो उसी को ही कल्पना का आधार बनाता है और उसी पर ही वो अपने जगत का निर्माण करता है। तो रंगमंच की ये शक्ति जब शिक्षा में मिलती है, नाट्य कला की शक्ति जब शिक्षा में मिलती है, तब वहां पर बच्चे का जो व्यवहारिक अनुभव है उसको बदलने का अवसर उसको मिलता है और वो नया सृजन करता है। कहने का अभिप्राय ये है ठोस उदाहरणों में कि एक बच्चा जो है वो ये बोल रहा है कि फलाना मेरा जो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है मैं उसके घर का रोटी नहीं खाऊंगा। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके अनुभव में यही है, किन्हीं भी कारणों से उसके अनुभव में है। तो अब नाटक की और शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चे के अनुभव को रोचक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से बदलने का अवसर कैसे दे, यानी कि नाट्य कला बच्चे को दोस्ती सीखने का अवसर कैसे प्रदान कर सकते। तो मेरा जो वैश्विक दृष्टि बोलिए या मेरी जो वैश्विक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो पनपी है मेरे जुनून के साथ, वो यही कि स्वचेतना का जगत बने, लोग एक दूसरे की अनुभूति को समझ सके, सामने वाले के कष्ट को समझ सके, सामने वाले के आक्रोश पर आक्रोशित ना होकर सामने वाले आक्रोश को शीतलता देने की शक्ति उत्पन्न कर सके रंगमंच के जरिए, रंगमंच को अनुभव करने के जरिए। क्योंकि इंसानी समाज में दुनिया के किसी भी कोने का जो इंसान रहा है इतिहास में या अभी, उसके रंगमंच का एक विषय है, एक केंद्रीय विषय है। दुनिया के किसी भी कालखंड के रंगमंच का एक ही केंद्रीय विषय हो सकता है और है भी। वो ये है मानवीयता का संचार हो, जिसको
1: जी
0: अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में डीह्यूमेनाइजिंग प्रोसेस को, डीह्यूमेनाइजिंग एक्शंस को ह्यूमेनाइज करने की जरूरत। दुनिया का कोई भी नाटक किसी को कत्ल करने की प्रेरणा नहीं देता है, वो उस चक्र को समझने का अवसर देता है कि आखिर किसी के भीतर कोई द्वंद्व क्यों चल रहा है, उस द्वंद्व के मायने क्या हैं। और बहुत
1: जी
0: कम लोग हैं जो इस द्वंद्व

0: से विजय पा लेते हैं, और
1: हाँ
0: बहुत बड़ी संख्या है इस विराट सृष्टि में जो
1: जी
0: द्वंद्व के साथ रहते हैं। जब मैं द्वंद्व कह रहा
1: बिल्कुल।
0: हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं साधारण सी भाषा में, मेरे और
1: जी
0: आपके बीच में किसी चीज को पाने और खोने का द्वंद्व हो सकता है,
1: जी
0: पर वो केवल दो व्यक्ति के ही बीच में नहीं होता है, वो व्यक्ति के खुद के भीतर भी होता है। जैसे मैं
1: जी
0: शिक्षकों का उदाहरण देता हूँ बस समझने के लिए, क्योंकि शिक्षकों के साथ मेरा सबसे प्रोमिनेंट और गहरा अनुभव रहा है, अभी ताजा तरीन है इसीलिए उदाहरण आ रहा है। अब कोई भी रख सकते हैं, पर अभी मैं शिक्षक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ केवल उदाहरण को समझने। मान
1: जी
0: लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरा कर्म है मैं कर रहा हूँ। शिक्षक को अपना कर्म सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से करने की जरूरत है इस पूरे मानव सभ्यता में। खैर,
1: जी
0: तो मैं कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे शिक्षक के स्थान पर अब मुझे आरएएस की तैयारी करनी है, अब मुझे जरा प्रशासनिक व्यवस्था की ओर रुख करना है।
1: जी
0: ठीक है, तो अब शिक्षक ने कभी सोचा हुआ होगा यदि मैं शिक्षक बनूंगा तो भाई अब वो तो शिक्षक
1: जी
0: बन गए हैं अपने परिश्रम से।
1: जी
0: अब शिक्षक बनने के बाद फिर से एक यदि शुरू हो रहा है, मतलब फिर से एक इफ, अंग्रेजी का एक शब्द है आई और एफ, दोनों मिला देंगे तो इफ बोलते हैं, तो अब वो फिर से
1: जी
0: इफ शुरू हो रहा है। इफ आई विल बी अ एसडीएम इन दिस स्टेट, तो आप फिर से एक दिशा में बढ़ते हैं। तो शायद यही बहुत लोगों की, मतलब मानव की अपनी एक नियति रही है, इस नियति ने इंसान को बहुत कुछ दिया भी है, जंगल से मंगल तक का रास्ता भी इसी नियति ने ही दिया है ना, पर और भी बहुत कुछ इसके घाटे भी रहे हैं ना, इसके नुकसान भी रहे हैं, इसके फायदे भी रहे हैं। तो मैं जरा सा
1: राजकुमार
0: वो घाटा वाला जो पक्ष है।
1: पाबले, राजकुमार पाबले नेतुदा की कविता है ना कि सर्प पंख चाहता है और पक्षी धरती पे चलना चाहता है, बल लेकिन सिर्फ एक बिल्ली है जो अपने शुद्ध रूप में है, जो अपनी चमकीली आंखों से अपने कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं होना चाहती, वो जैसी है शुद्ध रूप में वैसे रहना चाहती है। तो पाबले
0: जी
1: नेरुदा अपनी कविता से
0: बिल्कुल
1: इन्हीं तरह की आकांक्षाओं और मनुष्य की आकांक्षाओं के पे इशारा कर रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं।
0: जी। तो नाटक का विषय वस्तु ही यही है, ये तंज, ये जो नहीं है, जो उपस्थित नहीं है, उसको उपस्थित कर लेने की जो जद्दोजहद है, व्यक्तिगत मेरे खुद के भीतर, या दो लोगों के मध्य, या दो समूहों के मध्य, या दो देशों के मध्य, या दो भूगोलों के मध्य, वही द्वंद्व है। और नाटक का, रंगमंच का मुख्य केंद्रीय विषय ही द्वंद्व है, और द्वंद्व में जब वो बुनता है तो वो यही बुनता है कि कैसे डिह्यूमनाइजिंग स्थिति को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसको ह्यूमनाइजेशन की ओर लिया जाया जाए। तो नाटक हमें ये नहीं सिखाता है हिंदी सिनेमा की तरह कि विलन का कत्ल कर दो, नाटक हमें ये भाषा देता है वो सुनने की जरूरत है। नाटक हमें, आप कट्टर से कट्टर नाटक ले लीजिए, मैं यूनान का एक नाटक का जिक्र करता हूँ, एंटीगनी। आप देखिए वो राजसत्ता से, वो उसकी बेटी अपने पिता से, अपने चाचा से बहस करती है, उसके बरक्स खड़ी है, उसको अपना नुकसान करना पड़ता है, पर अंततः ये इस भाषा के साथ था, इस भाषा के लिए था कि यू हैव टू चेंज टू द विलन। जो भी विलन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ही सहज है, से समझ पाते हैं कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। नायक का पर्पज ये नहीं है कि वो हिंदी सिनेमा की तरह मोगैम्बो को बम से उड़ा दे, या उसके साथ हिंसक प्रवृत्ति के साथ उसके साथ हिंसक रिस्पॉन्ड करे, प्रतिक्रिया दे। नाटक अमानवीय स्थिति को भी मानवीय तरीके से सामने वाले को मानवीय बनाने की सिफारिश करती है। अब लगता है शरद भाई और मेरे इस वक्त मधुबन रेडियो के समस्त साथियों और श्रोताओं जो मुझे सुन रहे होंगे, अब मुझे लगता है कि सच में अभिनय की जो प्रक्रिया है वो खुद को जान लेने की एक प्रक्रिया है, खुद की अनुभूतियों के प्रति सचेत हो जाने की प्रक्रिया है। रंगमंच जो है उस व्यक्ति से समाज का और समाज से व्यक्ति के बीच का जो अंतर विरोध है उसको खोज लेने का और उसके मानवीय उपायों की तरफ बढ़ने का पूरा दारोमदार है। और सबसे बड़ी दुर्घटना जो है इसमें, मेरे श्रोताओं साथियों, सबसे बड़ी दुर्घटना जो है वो ये है, वैश्विक स्तर पर है, मैं ये आलोचना और समालोचना के चक्र में इस बिंदु को नहीं रखना चाहता हूँ, शायद ये उससे भी कहीं बहुत अहम एक स्थिति है। वो स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में देखेंगे कि कलाएं हाशिए पर हैं। हाशिए पर क्यों है? बहुतेरी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, पर कम से कम एक बड़ा मुद्दा ये है जैसा मुझे लगता है
1: जी
0: कि इसमें लोगों को लगता है कि इसमें धन कमाने की, रोजगार पाने की उस तरह से प्रबल संभावना नहीं है जितनी की गणित में है, जितनी की विज्ञान में है। तो जो
1: जी
0: औपनिवेशिक जैसी कुछ शक्तियां हैं, रहती हैं, रही हैं, वो भी सीख रहे हैं, वो भी अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं, गांव
1: जी
0: में अनुभूति को ग्रहण करने की शक्ति है। और कल्पना करिए कि आप एक ऐसे बस में हैं जहां पर कोई किसी से लेना देना ही नहीं है,
1: जी
0: जहां पर कोई किसी की तरफ देख के, कोई किसी की तरफ कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। बगल का जो सहयात्री है वो बीमार है, उसको बगल वाले सीट पर बैठे एक व्यक्ति की मदद चाहिए, पर वो नहीं कर रहा। अनुभूति रहित सहयात्री है ये। तो हम चाहेंगे
1: जी
0: ऐसे देश दुनिया समाज को बनाना? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दुनिया की कोई शक्ति नहीं चाहती है इस तरह से बनाए। पर वही इफ इफ का जो संकट है उसमें ये
1: जी तो
0: हो जा रहा है। तो
1: आपका जो जुनून है उसने शिक्षा की यात्रा में आपको क्या सिखाया, और आपने अपने रंगमंच से शिक्षा को कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्या योगदान दिया आपने?
0: शिक्षा में खासकर किसी विषय को, मान लीजिए अगर हम बंधुता पढ़ा रहे हैं, मैं जिन विद्यालयों के साथ काम किया हूँ वो पब्लिक स्कूल्स हैं, मतलब राजकीय
1: जी
0: विद्यालय हैं दूर दराज के, तो
1: हाँ,
0: मान
1: जनता के
0: लीजिए
1: स्कूल है, जनता के टैक्स से चलने वाले
0: टैक्स से
1: स्कूल है,
0: चलने वाले स्कूल है, बिल्कुल बिल्कुल, और
1: और
0: उनको
1: जो अंतिम
0: जरूरत
1: व्यक्ति
0: भी
1: तक
0: है,
1: पहुंचते हैं, जो
0: बिल्कुल
1: देश के अंत्योदय में लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंत्योदय समूह है वो, बिल्कुल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है वही चीज जो मैंने अभी कही, उसी को मैं शिक्षक की दृष्टि से रखना चाहूंगा कि शिक्षकों को यहाँ तक लेकर आना, इस समझ पर और इसकी कार्यशीलता तक लेकर आना कि किसी विषय को, खासकर जिसमें मानवीय संपर्कों की बातचीत हो रही हो, उसको नाटक के जरिए कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसको नाटक के जरिए बच्चे को एक सीखने वाला व्यक्ति कैसे बनाया जा सकता है। तो शिक्षकों को हमने राज्य भर में घूम घूम के प्रशिक्षण दिया है, और सरकारों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया है, और दूसरे आपके कर्नाटका जैसे राज्यों में भी हम लोग नजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सहायता से पहुंचा हूँ, वहां भी काम किया है हम लोगों ने। और तो एक बड़ा काम है ये, शिक्षा में जीवन देने की तरह। शिक्षा मतलब देखिए, अब मैं जब शिक्षा में जीवन की बात कह रहा हूं तो मैं एक बहुत ही प्रचलित विषय का जिक्र करना चाहूंगा। आप देखिए ना, गणित को देखिए, मैं गणित से भागा हुआ छात्र हूं, और मेरे जैसे हजारों करोड़ों छात्र हैं जो गणित से भागते। आपने भी सुना होगा कि यार बच्चे गणित से जल्दी भाग, क्यों भागते हैं भाई? क्योंकि हमारा शिक्षक प्रशिक्षक उस स्थिति में तैयार ही नहीं है, वो गणित की कलाबाजी नहीं समझ रहा है, वो गणित को महज सांख्यिक गतिविधि और उसको मानसिक कुश्ती की तरह समझ रहा है। गणित में एक कला है, और उस कला को मैं कहता हूं, और आज मैं श्रोताओं से साझा करना चाहूंगा कि देखिए, जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक
1: जी
0: उसका वस्तुगत और वस्तु उस जगत के साथ उसका संबंध ना बने। उदाहरण के तौर पर जब हम कहते हैं पेड़, तो हमारे भीतर संज्ञान बैठता है कि वो एक पेड़ है। जब हम जोड़ते हैं एक को किसी वस्तु के साथ, एक बोतल है, एक व्यक्ति है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक चीज कर रहे हैं इसमें जो हमारी नजर नहीं जाती है। और मैं श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे जुनून का और मेरे बन रही पनप रही दृष्टि का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो मैं ध्यान इस ओर
1: जी
0: आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर बच्चे का जुड़ाव बनेगा कि वो एक पेड़ है, एक पेड़ के साथ जुड़ाव, आप समझ रहे हैं, आर्ट ऑफ एसोसिएशन इज अ मैथमेटिक्स। तो आर्ट ऑफ एसोसिएशन जो है ये बिल्कुल गणित के क्षेत्र से, गणित की एकेडमिया से गायब है। जब मैं ये करूंगा ना कि एक व्यक्ति है वो, तो मेरा एक जुड़ाव बनेगा, एक जुड़ाव है वो, महज एक वस्तु का नंबर नहीं है वो। और
1: जी
0: मैं ये निवेदन करूंगा कि काश हमने बचपन से लेके अभी तक गणित की कक्षाओं में जितनी बार भी एक पेड़ 10 पेड़ गिना हो हुआ है, उस तरह से अगर हमारा एसोसिएशन बना होता तो अब तक हजारों पेड़ तो ऐसे ही लग गए होते।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात
0: तो इस
1: है।
0: तरह से मैं कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा में जीवन का अभिप्राय ये है कि वो केवल बातूनी नहीं है, शिक्षा अपने आप में एक जर्नी है। बच्चा आ रहा है शिक्षक के पास, क्या दुनिया का, सृष्टि का क्या मतलब, कितना सुनहरा आविष्कार है ये कि कोई दो लोग मिल रहे हैं, और दो लोग मिल रहे हैं इस मामले में कि दोनों कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या सुनहरा, मतलब एसोसिएशन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है शरद भाई।
1: बिल्कुल सही।
0: तो शिक्षा में जीवन की बात मैं इस वजह से करना चाह रहा हूं, और मैं कोई नया बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने जुनून को उसमें कुछ मेरे अनुभवों को जोड़कर एक उसकी और परिभाषा, उसकी और एक गहन प्रक्रिया गढ़ना चाह रहा हूं। रूसो जैसे एक व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ काम किया है। भारत जैसे देश में गांधी जी का पूरा काम रहा है, वो 3 H से हम लोग उनको कहते हैं, हैंड, हार्ट और हेड, गांधी जी का पूरा प्रायोगिक काम रहा है। मैं खुद रविंद्र
1: जी
0: भारती विश्वविद्यालय से हूँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का बहुत बड़ा काम रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं हुए हैं, शायद प्रयोग हुए हैं, इसी वजह से समीकरण अभी बने हुए हैं। मानवता में अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं, और बची ही रहेंगी जब तक कलाएं रहेंगी।
1: बेहतरीन बेहतरीन। तो आपका जो जुनून है कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जैसे आपने बताया कि बंधुता का मूल्य है, रंगमंच के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है, वो शायद आपका एक जुनून है। तो इसके बारे में
0: जी
1: क्या कहेंगे?
0: जी बिल्कुल। देखिए, मूल्य जो है दीवार पे जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो एक भाषा है, एक चित्रकला है, वो इन्हीं अक्षरों की, शब्दों की
1: जी आकृति है।
0: एक आकृति है। शिक्षक में वो जागरण चाहिए, या शिक्षक को वो जागृति चाहिए, जिससे उसके सामने, उस आकृति के सामने खड़ा हुआ छात्र व्यक्ति उस आकृति को अपने भीतर प्रवेश कर ले, और वो उस आकृति के भीतर प्रवेश हो जाए। मतलब इस तरह की चाहिए। मूल्य जो है बदलते हैं हमारे समय काल के अनुसार, पर अंततः मानव का मानव होना केंद्र में ही रहेगा ना। तो स्नेह को स्नेहशीलता से ही
1: बंदर
0: पढ़ाया जा सकता है। आप देखिए,
1: बिल्कुल
0: एक एक कक्षा का उदाहरण मैं दूंगा, जहां पर डाइवर्सिटी पर किसी खास कहीं स्कूल में बात हो रही है, और वहां पर डाइवर्सिटी पढ़ाते पढ़ाते शिक्षिका कह रही हैं किन्हीं कारणों से कि मैं तो इस तरह के लोगों को पसंद ही नहीं करती, और तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। तो उस कक्षा में डाइवर्सिटी कैसे समझ में आएगी? तब रंगमंच की जरूरत है, तब ऐसे प्रक्रियाओं की जरूरत है जहां पर बच्चे और शिक्षक दोनों मिलके डाइवर्सिटी को सीख, परिभाषा सीखने की दरकार नहीं। परिभाषाएं बहुत कुछ नहीं कर पाती, अंततः परिभाषाएं ठोस हो जाती हैं, और परिभाषाएं बदलते हैं इंसान के जीवन में, परिभाषाएं बदलती ही रहती हैं। यही सत्य है,
1: जी
0: परिभाषाओं को बदलना ही। पर हम परिभाषाओं में ना फंस के बच्चे के अनुभव और उसकी अनुभूति को बदलने का कोई उपक्रम कर पा रहे हैं क्या? वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही मेरे शिक्षा और मेरे रंगमंच का केंद्रीय बिंदु है कि हम स्वचेतना के लिए बच्चों का अनुभव, शिक्षकों का अनुभव कैसे बदलें, ताकि कक्षाएं तनिक और जीवनशील हो जाएं, ताकि हमारा मानवीय अनुभव तनिक और जीवनशील हो जाए।
1: जी,
0: बिल्कुल जी।
1: तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बंधुता का मूल्य सिखाना हो या पढ़ाना हो तो कौन से नाटक के माध्यम से वो सिखाया जा सकते हैं?
0: कई सारे नाटक हैं, और नाटक को देखना, ग्रहण करना, दर्शक के रूप में पात्रों के साथ उस नाटक की विषय वस्तु के साथ यात्रा करना, आत्मसात करना, उससे भी बहुत ज्ञान मिलता है। बहुत चीजें उदाहरण स्वरूप आपको मिलते हैं, आंखों के सामने घटता हुआ दिखता है, और आप सीखते भी हैं। कई बार कुछ चीजें बाद में भी समझ में आती हैं, पर उसका अपना एक जबरदस्त प्रभाव है। दूसरा, कि बच्चे का क्या अनुभव है, मान लीजिए बंधुता जैसे विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 6 में अगर हम पढ़ा रहे हैं बंधुता को, तो शिक्षक की एक तो तैयारी होनी चाहिए कि बच्चे के आस पड़ोस में वो बंधुता जैसे विषय को खोज निकाले, बंधुता जैसे अनुभवों को वो खोज निकाले। तो बच्चे के अनुभव पर उस वक्त घटना को केंद्र में रखना और फिर आगे बातचीत करना उस घटना का नाटकीयकरण करके। तो हम बने बनाए नाटकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, जो आपके कक्षा में जो बच्चे हैं 10, 15, 20, 30, 40 जो बच्चे हैं, उन बच्चों के भी अपने अनुभव हैं बंधुता को लेकर। उन अनुभवों को केंद्र में रखिए। उदाहरण के तौर पे कि 5 साल का बच्चा आपके परिवेश में या आपके घर में होगा, आपने देखा होगा कि वो अभिनय का खेल खेलता है, वो टीचर का खेल खेलता है, वो डॉक्टर मरीज का खेल खेलता है। बचपन में खेलता है ना, आप
1: जी
0: लोगों ने देखा होगा। तो अब आप
1: जी
0: लोग उसको, अब जो जाएंगे तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि वो करता क्या है। वो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम बनाता है उसमें। जो भी 3, 4, 5 बच्चे बच्चियां जो भी मिलके खेलते हैं, खैर अभी ये बहुत दुर्लभ होने वाला दौर शुरू हुआ है, अब बच्चे मिल ही नहीं पाते हैं कॉलोनीज में, पर जहां जहां पर भी ये होता रहा, हमारा बचपन तो अभी रहा है उसमें, ये अनुभूतियां स्मृतियां मौजूद है बहुत ही प्रोमिनेंसी में। आप देखेंगे कि अधिकतर बच्चों में झगड़ा होता है कि टीचर का रोल लेंगे वो, अधिकतर बच्चों में आपसी झगड़ा हो जाता है कि वो डॉक्टर का रोल लेंगे। मतलब उस घटना में जो बड़ा किरदार है, पुलिस का किरदार है, वो लेंगे। इसके बहुत सारे मायने हैं सामाजिक स्तर पे। बच्चों के पावर के अनुभवों को देखिए कैसे वो, हम उन खेलों को बहुत महत्व नहीं देते हैं, पर वो खेल मानवीयकरण में, सामाजिककरण में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। तो अब आप लोग उसको देखिएगा, जिस परिवेश में बच्चा पल बढ़ रहा है, वो 5-6 साल के बच्चे के नाटक का विषय वस्तु भी, उसके खेल का विषय वस्तु भी वही होगा। इसका मतलब ये है कि वो एक नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया है खेल बच्चों के साथ। तो मैं
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: उदाहरण दे रहा था कि इसी खेल की क्षमता को टीचर को समझना है, और वो क्लास में बने बनाए नाटक के जरिए भी काम कर सकता है, और बच्चों के जो अपने अनुभव है बंधुता को लेकर, उनको भी वो खींच के ला सकता है। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देता हूँ कक्षा के अनुरूप और भी जरा ठोस तरीके से, कि मान लीजिए शरद भाई कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, और शरद भाई से टीचर ने कक्षा में सबसे हाथ उठाकर बोला कि तो बताइए कितने लोगों की मित्रता किस किस तरह के समूह में है, किस किस तरह के दोस्तों में है, क्या किसी दोस्त से किसी बात पर मतभेद हुआ है, झगड़ा हुआ है, झगड़ा क्यों हुआ है, क्यों मतभेद हुआ है। तो चलिए एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो 5-5 का 4 ग्रुप बना देते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये लोग बातचीत करेंगे कि इनको कब कब दोस्तों में मनमुटाव हुआ है, तो उस पर एक नाटक का दृश्य बनाएंगे। ग्रुप नंबर 2 वहां क्या हुआ है, वो भी ऐसा एक दृश्य बनाएंगे। तो आप देखिए एक कक्षा में 4 नाटकों की घटनाएं दिख रही हैं आपको। अब आप उस पर सवाल
1: जी
0: जवाब करिए, किसी पात्र को पकड़ लीजिए, उसमें सवाल जवाब करिए कि भाई आपको डिसएग्रीमेंट हो सकता है, फिर आपने उस पर हिंसक प्रहार क्यों, या आपने बातचीत से उसको सुलझाया क्यों नहीं, आपके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई कि कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है तो उसको हिंसात्मक रूप से प्रहार किया जा सकता है, उसको थप्पड़ मारा जा सकता है, उसको गिराया जा सकता है, ऐसा ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया। तो देखिए ना, नाटक से हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, व्यक्ति के स्वयं के बिताए हुए अनुभवों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अनुभव
1: जी
0: ही बदलना है ना, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो हम कक्षा में ये प्रक्रिया भी ले सकते हैं। अब देखिए इस कक्षा में बच्चे कितना रुझान से काम करेंगे। शिक्षक वहां पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक वहां पर एक सारथी की तरह खड़ा है, बंधुता सिखाने के लिए, बंधुता के
1: जी
0: मुद्दे को बंधुता से जोड़ने के लिए एक सारथी के रूप में खड़ा है। शिक्षक को एक सारथी की ही भूमिका लेनी होगी, और जब बच्चे बात नहीं माने तो वो महाभारत में जैसे अर्जुन को कृष्ण ने अपना एक रूप दिखाया था, वैसे रूप दिखाना चाहिए। पर वो रूप दिखाने का मतलब मैं मारने पीटने धमकाने की बात नहीं कह रहा हूँ, रूप दिखाने का मतलब बच्चा अगर शिक्षक की बात नहीं सुन रहा है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को समग्रता में समझना आरंभ करे। तो वो समग्रता का जो रूप है शिक्षक को वो दिखाना चाहिए, यानी कि टीचर को जब बंधुता पढ़ाना है तो केवल बंधुता उसका विषय नहीं हो, उसके दो विषय हो, एक तो बंधुता विषय हो ही, दूसरा ये विषय हो कि मुझे बंधुता पढ़ाने के लिए क्या काम करना है, बंधुता जैसे विषय पर काम होने के लिए मुझे कक्षा का प्रबंधन कैसे करना है। अगर कोई बच्चा नहीं सुनेगा तो मैं उसको समग्रता को तक कैसे लेकर आऊंगा, कैसे उसको तैयार करूंगा कि वो सुनना शुरू करे, वो हिस्सा लेना शुरू करे। तो आपको बंधुता की रट नहीं लगानी है, आपको बंधुता पर काम करने के लिए माहौल भी बनाना है, तो दोनों काम करना है आप। और अगर आप शिक्षक हैं तो एक तीसरा काम भी करना पड़ेगा, वो ये कि आपको जांचना भी पड़ेगा, आपके पास वो क्षमता भी बनानी पड़ेगी कि बंधुता पर जो काम हुआ, बंधुता पर काम होने के लिए जो कक्षा का प्रबंधन किया आपने, ये कितना कारगर रहा, आपका प्रयोग, आपकी प्रक्रिया कितनी कारगर रही, उसको भी देखने की संजय दृष्टि आपको पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। नहीं तो आप लकीर ही पीटते रहेंगे ना। तो विषय वस्तु और फिर विषय वस्तु पर काम कैसे होना है, और फिर उसका शैक्षणिक भाषा में अगर बात करूं तो असेसमेंट कैसे हो, ये तीनों का एक क्रम आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। और हो सकता है जब मैं तुरंत बोल रहा हूं तो ये नहीं कि तुरंत का तुरंत, आप एक यात्रा में शामिल होते हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं या बार बार भी मिलते हैं, जब पहली बार मिलते हैं ना तो हम केवल बात थोड़ी सुन रहे होते हैं सामने वाले की, उसको जज भी कर रहे होते हैं, उसकी बात भी सुन रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, उसके भीतर भी प्रवेश कर रहे हैं, कितना एक्टिव प्रक्रिया है वो। तो शिक्षक को इस एक्टिव प्रक्रिया के साथ प्रतिदिन कक्षा में जाना है, ऐसा नहीं कि शरद भाई 3 महीने से कक्षा 6 में आ रहे हैं तो अब वो उत्सुकता नहीं है, नहीं, 3 महीने और पहला दिन जो होने वाला है उसमें भी शिक्षक को वो उत्सुकता रखनी होगी कि आज शरद जी किस तरह से उनके सामने पेश आएंगे या वो किस तरह से पेश आएंगे। तो इतना सृजनात्मक प्रक्रिया जो है रंगमंच प्रस्तावित करती है शिक्षा के लिए, और हम लोगों ने किया है इसको, शिक्षकों ने उपयोग में लिया है। मैं आपको बताऊं, एक शिक्षक ने तो खुलेआम एक भरी प्रशासनिक सभा में उन्होंने कहा कि रंगमंच का जब से उन्होंने उपयोग करना शुरू किया है तब से उनको ये समझ में आया है कि बच्चों को डांटने से क्या होता है और बच्चों के साथ मिलकर काम करने से क्या होता है, दोनों का उनको भेद बहुत ही स्पष्टता से पता चला। और उन्होंने कहा कि मुझसे कभी 1-2 बार त्रुटियां हुई हैं, मैंने कई बार कुछ बच्चों को डांटा भी है बतौर शिक्षक, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह से सारथी के रूप में काम करने पर दोनों के पक्ष में भलाई है, बच्चे सीख रहे होते हैं और हमारे लिए भी नई चुनौतियां मिलती हैं और उससे हम सृजनात्मक तरीके को खोज रहे होते हैं। खैर, संख्या बहुत कम है पर इतना विश्वास है, क्योंकि मानव के साथ ही संभावनाएं प्रबल हैं, वो बदलता है, वो बदलेगा, वो सुबह कभी आती नहीं है, मतलब वो आते आते ही आती है असल में। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट वेट फॉर सम डे, यू कैन क्रिएट दैट डे टूडे एंड नाउ एज वेल। जी शरद भाई,
1: बहुत बढ़िया श्रोताओं के साथ आज इतनी लंबी बात, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और हम बात कर रहे थे राजकुमार भाई से। राजकुमार भाई के साथ हमने उनके जुनून के बारे में जाना, उनका जुनून रंगमंच का जुनून, और रंगमंच के जुनून के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव, जो सकारात्मक एक चित्रण उन्होंने आज रेडियो के माध्यम से, सदृश माध्यम के माध्यम से, रंगमंच जैसे दृश्य माध्यम को अपनी भाषा, अपनी वाणी और अपने शब्दों से उसका विवरण पेश किया, और बहुत सारे विवरण लम्हा लम्हा हमारे सामने सजीव होते गए, वो बनते गए, बिगड़ते गए, फिर बनते गए, फिर बिगड़ते गए। तो यही रेडियो के अदृश्य माध्यम का कमाल है कि हर श्रोता ने अपने चित्र को अपने तरीके से गढ़ा होगा, अपने रंगों से उसको सजाया होगा। इस बातचीत में समय कब गुजरा मालूम ही नहीं चला। और राजकुमार भाई, इस यात्रा में हम अगली बार कुछ और, एक बार हम चाहेंगे कि और अगली बार बातचीत करें, और अगले एपिसोड में हम चाहेंगे कि इस माध्यम में कुछ और उदाहरणों के साथ, सजीव उदाहरणों के साथ, कुछ केस स्टडीज के साथ, कुछ बदलावों के साथ और एक लंबी बातचीत करेंगे। आपका समय हम एक बार और हमारे श्रोताओं के लिए चाहेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि हम कैसे रंगमंच ने कुछ केस स्टडीज के माध्यम से शिक्षा के जगत को बदला है, और आपके जुनून में आपने क्या खोया पाया है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस जुनून के साथ

0: आपके जुनून और हमारे जुनून ने आज एक साथ इस लंबी यात्रा को किया, और कुछ समय हमने महत्वपूर्ण समय हमारे रेडियो के साथियों के लिए रेडियो मधुबन के साथ हमने दिया। और शांतिवन से मैं शरद त्रिपाठी आप सभी का को आज के लिए एक प्रणाम कहता हूँ, और कहता हूँ कि फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में ऐसे ही किसी चक्कर के साथ। नमस्कार,
1: जी,
0: शुभ रात्रि।
1: शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि।

0: गतिविधि, सामुदायिक का भागीदारी देखने को मिलता है, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनापन लगता है। पहला बार भी जाते तब भी हमें बहुत खुशी मिलता है। आज इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, आज खासकर थोड़ा आबू रोड से दूर है झामर, जो कि मुंगथला ग्राम पंचायत में है, और सबको मालूम है झामर तो कृषि में बहुत नंबर वन है, खेत में इतना सुंदर खेती करते हैं, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, सब चीज़ में उस्ताद है। और सभी अपना जो समाज गारे से आदिवासी समाज के लोग भी रहते, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हम आंगनबाड़ी में पहुंचे झामर फास्ट आंगनबाड़ी, और यहाँ का जो कार्यकर्ता महोदय श्रीमती बॉबी मैम है, तो बॉबी मैडम को भी स्वागत करते हैं। आंगनबाड़ी दीदी के लिए ताली बजा, ताली के साथ स्वागत किया जा रहा है। और हमारा बबीता मैडम, उनका साथी, सहयोगी और सहायिका आशा, सबका तरफ से आज इस कार्यक्रम को रेडी किए। सभी महिलाएं, धात्री महिलाएं भी आए हैं, कुछ किशोरी भी आए हैं, और हमें खुशी है छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी आए और गीत भी आज गाएंगे। आंगनबाड़ी का जो गीत है वो भी सुनाएंगे, लेकिन सुनते पहले पहला प्रस्तुति हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए परिचय देंगे। बचपन पढ़ाई वहाँ तक कैसे पहुँचे, कार्यकर्ता तक कितना पढ़ाई किए, उस चीज़ बताए। आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम बबी बेन, झामर फर्स्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
0: और कितना साल से?
1: साल तो हो गया 40।
0: 40 साल, अरे वाह, 40 साल कम है, 4 डिकेड, 1, 2, 3, 4,
1: कितना तो हो गए,
0: 40। और अभी आपका उम्र कितना होगा?
1: 58।
0: मैंने 18 साल उम्र में आप आंगनबाड़ी में आ गए, 40 साल का नौकरी हुआ, 18 साल जो छोकरी थी,
1: 86 में लगी थी तो कितना हुआ?
0: 86 में लगे थे तो उधर हो गया 14 साल है, और इधर आ गया 23 साल। इतना नौकरी किए देखे हुए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सभी जो हमारा धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां बच्चे आए, सभी और एक बार पुनः स्वागत करें, इतना जोर से काम ताली बजाओ। सही में इतना समय तक देखें, गांव में बहू आती है तब से वो उसका पीछे पड़ जाते हैं और बच्चा उसको स्कूल में दाखिल तक उनका दायित्व रहता है। एक आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होता है वो बच्चों को स्कूल में दाखिल तक, वो उसका दाखिल में उसको ज्वाइन करने 6 साल तक आप देखभाल करते हैं, है ना? जीरो अवस्था से लेकर,
1: जीरो से लेकर
0: क्या क्या करते बताओ?
1: धात्री महिला,
0: क्या क्या करते?
1: गर्भ महिलाओं को 3 महीने से पंजीकरण करते हैं
0: जी,
1: बस इनको टीके लगवाते हैं, टीकाकरण में आते हैं, सब जांच करते हैं, खून की सब
0: जी,
1: सब वो करते हैं।
0: अच्छा, और उनको क्या
1: सीखना उसका और देते हैं?
0: हाँ, कभी गोद भराई,
1: गोद भराई वो भी देते हैं नाले।
0: अच्छा, कितना महिलाएं आते हैं
1: आई लोग? तो रजिस्टर में नाम हो जितने निकले इतने को देते हैं।
0: अच्छा, उसको क्या ध्यान देने के लिए, जो गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान देने के लिए, जैसे भारी काम नहीं करने के लिए?
1: भारी काम नहीं करना, खान पीन में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, कोई फल फ्रूट खाने की बताते हैं।
0: वो खाने से हरी सब्जियां और कठिन काम नहीं करेंगे,
1: काम
0: नहीं और ध्यान देंगे तो
1: आई को का भी
0: क्या फायदा होगा?
1: सुरक्षित
0: बच्चा सुरक्षित होगा। और
1: गर्भवती महिला को भी फायदा ही होगा।
0: कैसे, क्या फायदा होगा?
1: खान पान का ध्यान रखेंगी, वजन उठाना के भी काम नहीं करना, तो उसका बच्चा होगा वो भी स्वस्थ होगा, उसका भी मानसिक सही होगा। और
0: ये भी होना चाहिए आंगनबाड़ी में सीख जाते हैं, और नहीं तो आजकल उसका जो आए लोग उसका मम्मी वो भी सिखाती है ऐसे करना ऐसे नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: किशोरियों
0: के लिए क्या करते हैं?
1: किशोरियों के लिए महावारी के बारे में इनको
0: साफ सफाई के लिए,
1: साफ सफाई के लिए जानकारी
0: देते हैं। तो आपका आंगनबाड़ी में आते हैं किशोरिया?
1: एक आई है
0: किशोरिया, क्या नाम है देवो उनको? ज्योत्सना, ज्योत्सना के लिए ताली। एक किशोरी आए, बाकी बहुत सारे माताएं आई लोग आए हैं, लेकिन किशोरी भी आए ज्योत्सना के लिए ताली बजाए, और बहुत अच्छा लगा। आप आशा है? हाँ, इसलिए बहुत होशियार है, बोले कैसे इतना बोल पाती है अभी पता चला है, आशा है। देखो हमारा आशा बीच में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग कर रहा, बोले ये इतना चला कैसे, तब पता चला ये आशा है। तो अभी गुप्त राज पता चल गया, बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं? आशा तो सबका आशा पूर्ण करता है, आशा पूरी माँ, आशा पूरी।

0: आशा का आशा पूरी माँ उसका भी ज़्यादा जानकारियाँ लेंगे, लेकिन पहले बबीता मैम से बात करेंगे। आपका बचपन में ऐसे आंगनबाड़ी था, आप आंगनबाड़ी में कभी गए?
1: नहीं गए हम तो।
0: तो अभी ये लोग आंगनबाड़ी में क्यों बुला रहे? आप तो कभी गए नहीं। आप तो ये बच्चों को क्यों बुला रहे?
1: जानकारी लेने के लिए, इनका जीवन का वो करने के लिए।
0: आप तो जानकारी नहीं ले, फिर आप तो आंगनबाड़ी तक तो पहुंच गए।
1: और हम तो स्कूल में जाते थे।
0: अच्छा, स्कूल में जाते थे?
1: कौन सा स्कूल में जाते थे?
0: कितने क्लास पढ़े?
1: नौवीं तक।
0: अरे वाह, उस समय नवीं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ाई की है ना, पढ़ाई में रुचि, पढ़ाई में खेलकूद भी?
1: हाँ, खेलकूद तो सब होते थे।
0: हाँ, उसमें भी गरेसे समाज में गरेसे भाषा का गीत आपको आता है?
1: गीत तो
0: नहीं आता है, लेकिन आज गीत गवाएंगे सभी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना, आंगनबाड़ी, ये जो आंगनबाड़ी बहुत सुंदर साफ सुथरा, इतना दूरस्थ जगह में है, पहाड़ी का नीचे, और वातावरण बहुत शुद्धता है, तो इसका राज क्या है? कैसे आप यहाँ तक सिलेक्शन किए? ऐसे जो मकान बनाए आप टेकरी का नीचे, कैसे बनाए? कौन पैसा दिया? और अच्छा जगह सरकार ने दिया पैसा? और जमीन?
1: जमीन भी इनको ही सरकारी।
0: सरकार का जमीन ये?
1: हाँ, तो सरकारी
0: था। सरकार का जमीन?
1: हाँ, बिला नाम की।
0: अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। आज इतना महिलाओं को बुलाए, आई लोग को, तो लोग का ध्यान कैसे आप स्वास्थ्यवान कराते हैं? किस तरह आप ध्यान देते हैं जो महिलाएं आए? हाँ। आए लोग के लिए क्या क्या सजेशन, आंगनबाड़ी में क्या क्या देते हैं?
1: आंगनबाड़ी में अभी
0: अभी नहीं, कभी जब शुरुआत में?
1: शुरुआत से तो पोषण देते हैं
0: जी,
1: पंचरी देते थे पहला तो, एक खिचड़ी डलिया बच्चों को खिलाते थे
0: जी जी,
1: और अब दे रहे हैं वो कोरोना के हिसाब से, वो चना की दाल, गेहूं और चावल।
0: अभी भी आता है सूखा सूखा
1: सूखा पोषण?
0: अच्छा,
1: जो नहीं चालू हुआ गर्म।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इतना सुंदर जानकारियां दिया, आंगनबाड़ी क्या है, कैसे है, और उनका जीवन में जो सक्सेस स्टोरी बताए। कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उस समय का पढ़ाई और आज का पढ़ाई में बहुत अंतर है। उसमें आठवीं नवीं जो पढ़ते, आज का कॉलेज का
1: स्टैंडर्ड
0: करने उतना भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस समय पढ़ाई बहुत मजबूत और पक्का होता था और शुद्धता रहता था, और वो बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ एक गीत हो जाएगा सामूहिक रूप में, क्योंकि इतना दूर से आए तो कुछ एक तो आदिवासी गीत तो मांगता है ना, तो हो जाएगा। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। ये था आंगनबाड़ी झामर फास्ट के कार्यकर्ता का साथ साथ, और जो धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे जो आए उनका आवाज होगा, लेकिन विराम का बाद।

जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज अपना आवाज ही अपना पहचान होगा। आदिवासी लोकगीत का माध्यम से कला, संस्कृति, आस्था, विश्वास को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सही में वो गीत को उजागर करने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा कोशिश करता है, एक मंच प्रदान करता है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को गीत का माध्यम से रख पाते, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई भी काम हो जो जाते हैं। तो आज इतना सामूहिक रूप में गीत गाने के लिए उपस्थित है, तो सभी को राम राम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कौन कौन आए हैं उनका आशा है, अभी आशा को भी स्वागत करता। आशा, आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना, क्योंकि आपका काम तो बहुत जमीन स्तर पर, मतलब डोर टू डोर जाना पड़ता है कि नहीं? आप कहाँ तक तो पढ़ाई की?
1: मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, अभी ओपन से 12वीं कर रही।
0: वाह, ऐसे होना चाहिए, पढ़ाई का लगन होना चाहिए, चाहे शादी होने के बाद भी पढ़ाई का कोई उम्र होता नहीं है। कभी भी चाहेंगे तो हम ओपन में भी, सरकार ने दिया है, हम बीए में भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सीमा का ये जो लक्ष्य रखा बहुत अच्छा है, और वो जो पढ़ी लिखी होगी तो हमारा जो महिलाओं को भी वो शिक्षित कर पाएगी। तो सीमा जी, आज किसको किसको बुलाए, सबका नाम थोड़ा बोलो, कौन कौन आए लोग आए?
1: सोनी भाई है और फुली भाई है।
0: हाथ उठाओ, जिसका नाम लेंगे वो हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ।
1: कौनरी भाई है, फुली बहन,
0: फुली बहन हाथ उठाओ।
1: ममता बहन है।
0: ममता बहन कहाँ? वेरी गुड, ममता बहन।
1: कमला बहन,
0: कमला बहन हाथ उठाओ। हाँ,
1: और धर्मी बहन,
0: धर्मी बहन, धर्मी बहन, कमला बहन, सभी को जो नाम लिए सभी के लिए ताली बजाओ। ताली बजाने में कम नहीं करने का, कोई टैक्स नहीं लगता है, ताली बजाने में कमी नहीं करना, कुछ हो कि नहीं ताली तो जरूर होगा सभी का, है कि नहीं? तो चलिए एक गीत हो जाएगा अपना आदिवासी गीत, ठीक है? क्योंकि हमारा जो शो है ना, प्रोग्राम, आदिवासी गीत का बिना अधूरा, सुना सुना लगता है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सीमा आशा को, कितने सुंदर रूप में और सभी कुशाई में कुछ विशेषता है। बहुत खुशी लगता है क्योंकि इस तरह आंगनबाड़ी में कोई ना कोई, जो कोई नहीं बोल पा रहा तो सीमा जी ऑलराउंडर है, वो तुरंत अपना मुँह चुप्पी तोड़ी और सबको गीत में इतना सुंदर प्रस्तुति कराई। सीमा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा भाई। आपका चुप्पी को तोड़ दिए, आप तो बोल नहीं रहे थे गीत गाओ इधर देख रहे उधर, किंतु सीमा आगे आकर अपना बात को रखी। इसलिए नाम ही जैसे है, आशा पोस्ट जैसे, और सीमा तो बेहद का सीमा, मतलब कोई सीमा नहीं उसका सब चीज में। हाँ भाई, हमको सीमित क्यों रख रहे हैं, हमको क्यों गीत नहीं दे रहे, हम तो कम नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी को, बहुत सुंदर प्रस्तुत दिए। पीछे कोई बोला और एक गीत हो जाए,
1: लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। ये था झामर फास्ट आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं का आवाज, खासकर आदिवासी लोकगीत।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। आंगनबाड़ी झमर फास्ट के आवाज आप सब सुन रहे हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए और हो जाए, पीछे से कोई बोल रहे हैं और एक लोकगीत होगा तो जरूर, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, सुनते हैं।
2: और एक गीत, आदिवासी गीत में इतना मिठास, इतना भाषना आता है, क्योंकि हमारा जो आई लोग सुन रहे, बच्चे भी सुन रहे, ऐसे जाते ना सीख जाते हो भी, है ना, घर से गीत सीखने के लिए इस तरह माहौल जो होता है सामूहिक रूप में। और आंगनबाड़ी में आए तो अपना एक तो फ्रीडम है कि नहीं, सभी को गाओ, ठीक है। और एक गीत हो जाए सीमा।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ कितना सुंदर प्रस्तुति दिए और आदिवासी गीत हो तो ऐसे सबको मनमुग्ध कर देते हैं और हमारा आई लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गांव और अंचल में और खासकर आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी तो है ही ऐसे आई लोग का घर है कहाँ कुछ असुविधा होता है या कुछ होता है तो बच्चों को भेज देते हैं और छोटे छोटे बच्चे का साथ आई लोग भी बच्चे बन जाते हैं और हमारा कार्यकर्ता और आशा और सहायिका ये लोग तो पूरा ध्यान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा आशा से कुछ प्रश्न करेंगे। आशा सीमा जी, जो गांव और अंचल में जाते हैं क्या आपको कठिनाई आती है, क्योंकि महिलाओं को अपना बनाना आपको तो बहुत चैलेंज आता होगा, कोई नया बहू गांव में आते हैं वो चीज़ जमीन स्तर पर जब जाते हैं ना तो आपको क्या क्या कठिनाई आती है और नया बहू को आप कैसे अपना बनाकर फिर आंगनबाड़ी में पूरा एक धात्री महिला तक क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, हमारा सामुदायिक में जो गतिविधि हो रही तो सबको पता हो और हमारा जो नया नए किशोरिया आज है कल तो बहू बनेगी, तो आप किस तरह जमीन स्तर पे काम करते हैं वो चीज बताओ।
1: एक घर में जाते हैं तो बोलते हैं राम राम भाई पहले तो,
0: अच्छा
1: कैसे हो कैसे नहीं है, बैठते हैं उनको पूछते हैं,
0: अच्छा
1: क्या तुम्हारे कोई घर में बहू नई आई है, बहू आई हुई है तो उनके कोई छोटे बच्चे हैं कि कोई है कि यू पूछते हैं तो बताते हैं,
0: मैंने बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सब बताते हैं आराम से, तो उनको फायदा होता है क्या बताने से? फायदा ही फायदा
1: होता है, तीन महीने से उसका पंजीकरण करवाते हैं, हर महीने जांच करते हैं
2: तो
0: कितना
1: 5,000 रुपए 5,000 प्रधानमंत्री वाले वो मिलते हैं
0: तो उनको फायदा ही है। तो श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो हमारा जो बहू है तो उनको भी फायदा मिले, पहला डिलीवरी में सरकार जो 5,000 रुपया वो क्या नकदी देते पैसा ना आता उनका अकाउंट में जाता
1: पैसा, अकाउंट में ऑनलाइन करवा।
0: अच्छा ऐसे आपका झामर फास्ट में कितना महिला को 5,000 दिलाए, कितना लोग?
1: 52।
0: अरे वाह, ताली बजाओ। आज जो इतना महिलाएं आए हैं, आई लोग आए हैं तो इसमें किसको लाभ मिला है 5,000? बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा मैडम अपना बात बता रहे थे जे किस तरह जमीन स्तर पर जो जाते हैं डोर टू डोर तो जो बहू को अपना बनाने में मैंने उसका जो डिटेल्स से डाटा लेना जरूर होता है क्योंकि उसका पूरा डिटेल्स रखना पड़ता है, क्योंकि उसका आगे उनका जो भी लाभ मिलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है फिर उसका टीकाकरण सब चीज़ देखते हैं। तो सीमा जी और क्या क्या चैलेंजेज आता है जब जो चैलेंजेज आते हैं जो घर में जाते हैं तो कभी ऐसे आपको चैलेंज आए बहुत मैंने कष्ट हुआ है भाई ये लोग गाली देते हैं ऐसे कुछ?
1: प्रेम से बोलते हैं अपन तो उनको समझाते उनको फायदा भी दिलाते तो वो क्यों बोलेंगे
0: क्यों बोलेंगे सही में आशा का काम ही तो ऐसे नाम पोस्ट का नाम जैसे आशा सबका आशा पूर्ण करते हैं, चाहे बहू हो चाहे उसका पति हो चाहे उसका ससुर हो चाहे सास हो, सबको उनका फायदा के लिए करते हैं। और सरकार का जो योजना है जैसे आपने बताया जो पहला डिलीवरी में 5,000 मिलता है तो और उनको कुछ भी तकलीफ होता है तो मूंगथला लेते हैं तो अब्रोड लेते हैं डिलीवरी का समय में, है ना? तो आपका सुपरवाइजर आंगनबाड़ी में जो सुपरवाइजर कभी कभी आते हैं, क्या नाम है सुपरवाइजर?
1: मधु
0: मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक गीत हो जाए, है ना? कोई भी गीत गाओ आराम से, आज अपना ही पूरा समय है तो चलिए श्रोता मित्र सुन रहे लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। हमारे फास्ट आंगनबाड़ी में गीत बारी बारी सुनने को मिल रहा है, तो और एक प्रस्तुति होगा वो भी सामूहिक रूप में। सीमा जी लीडर है और उनका साथी भी है सहयोग देने के लिए आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता के साथ। पुनः सबको स्वागत करते हैं, राम राम करते हैं, सुनते हैं अगला प्रस्तुति सामूहिक रूप में लोक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति, और हमें बहुत खुशी लग रहा है इस तरह गांव के जो हमारा आए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और सामुदायिक गीत और खासकर लोकगीत जो अपनापन होता है और इससे खुशी महसूस होते हैं। और अब मुझे तो समझ में नहीं आता क्या भाषा में गीत गाए, कौन सा ऊपर में गीत गाए, फिर हमारा श्रोता मित्र भी जो भी श्रोता हमारा सुन रहे हैं इस समय रेडियो कार्यक्रम में, आदिवासी गीत तो जो आदिवासी लोग को मालूम होता है, लेकिन हम कितने भी ट्राई करें तुम्हारा होनाम और गाँव रो होना बस बाप रो आय रो इतना छोटा छोटा हम सीखे, लेकिन सब चीज़ तो हमको आता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा हमारा सीमा जो मैम है, आशा है, हमारा आशा को पूर्ण करने के लिए एक गीत जो गीत गाए, जितने भी गीत गाए किस संदर्भ में किस ऊपर में आप गीत गाए, चाहे शादी में हो, चाहे विदाई का हो, चाहे त्यौहार का हो, तो किस किस ऊपर में आप गीत गाए उसका ऊपर में थोड़ा बता ना किस एक गीत का तो भावार्थ तो क्या है।
1: शादी के भी गीत गाए हैं।
0: अच्छा ठीक है, और
1: स्कूल के बारे में,
0: पढ़ाई का ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और मैंने शादी का
1: ले जाते हैं तो वो भी गीत गाए, ममेरा ले जाता क्या क्या लेके आए ममेरा माँ
0: क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या क्या देना है, वो लेना तो बहुत सब तो आजकल लेने के लिए चाहते हैं, लेकिन देना के ही नहीं चाहते। जब देंगे तो दाता बनेंगे, दात्री बनेंगे, देवता बनेंगे, लेना होगा तो चोरी जैसे, भाई भिखारी कौन लेते, भिखारी लोग लेते हैं ना भाई, हम भिखारी क्यों बनेंगे, हमेशा देने का कोशिश करें। जैसे आंगनबाड़ी देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है पंजीरी मुरमुरा सब चीज़ देते हैं, लेकिन हमें सीखना है हमेशा देने के लिए कोशिश करेंगे, लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम दाता बनेंगे और सभी राजा है, आत्मा सभी राजा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सीमा और बॉबी मैडम का साथ साथ जो भी साथी सहयोग आज इतना सुंदर में प्रस्तुति किए, सही में तारीफ का काबिल है, एक इशारा से सबको बुला दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद के लिए, ताली बजा सभी। अच्छा सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम मन की आंखों से लेकर के। और आप सब तो जानते ही हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है कि इस कार्यक्रम में हम हमारे ऐसे साथियों को, खासकर दृष्टिबाधित साथियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी योग्यता के आधार पर समाज में एक अलग मुकाम हासिल किया है। और न सिर्फ मुकाम हासिल किया है बल्कि बहुत लोगों को प्रेरित करने का भी काम किया है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में जैसे ही ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ, शेड्यूल हुआ, एक ही बात मेरे जहन में आ रही है और वहीं से मैं शुरू करूंगा कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो चलिए, पहेलियां बहुत सारी हो गई, उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा होगा, इसीलिए मैं ही बता देता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं चेतन शर्मा सर। सर, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार संदीप भाई, और रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और अभिनंदन।
0: तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे चेतन सर की जुबानी, उनकी ही कहानी कि किस तरह से वो। लेकिन चेतन सर, मैं बाकी की बातें शुरू करूं उससे पहले मेरे मन में जो बात आ रही है वही रखना चाह रहा हूं आपके सामने कि आपने अब तक अपनी मन की आंखों से क्या देखा है। सर,
1: ये अपने आप में संदीप भाई एक चुनौती है कि अब तक जो देखा है, मतलब सालों के सफर को लम्हों में उतारा जाए, वो एक बात है और अपने आप में चुनौती है, बड़ी बात है। लेकिन दो तीन चीजें जीवन के इस पड़ाव पर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे आप किसी धर्म विशेष में आस्था रखते हैं या नहीं भी रखते, तो भी एक चीज है कि तीन चीजों के चारों तरफ सब चीजें घूमती हैं। नंबर वन, बैलेंस, संतुलन, परिवर्तन और कर्म। ये ब्रह्मांड के ऐसे नियम हैं जो कि जीवन की यात्रा में अलग अलग मुकाम पे, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और कई बार उनको ऐसा होता है कि संकल्प के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। और अगर हम उस, एक तरह से कही है कि आम भाषा का शब्द चूज करूं तो मैं, अगर हम उस विकल्प के झांसे में आ गए तो संकल्प गड़बड़ा जाएगा, अलग स्थिति बन जाएगी। और अगर वो विकल्प को नहीं चुना हमने तो संकल्प के साथ आगे बढ़ना और फिर ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरा हर कुछ आपके संकल्प के साथ होता है। तो ये चीजें अभी तक समझ में आई।
0: बहुत खूब सर। हम लोग अंग्रेजी में एक लेसन पढ़ाते हैं, द रेट ट्रैप, उसमें वो चूहेदानी बेचने वाला कहता है ये संसार भी एक चूहेदानी है जो इस संसार की अनगिनत चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और एक दिन हम उसमें फंसते चले जाते हैं। मतलब अगर बहुत आसान भाषा में अगर आपकी बात को मैं समझूं तो मुझे लगता है कि ये है कि अपने लक्ष्य पर चलते जाना है, बस किसी चीज की तरफ आकर्षित हुए बगैर।
1: बिल्कुल जी, बहुत सही,
0: बहुत खूब सर। तो अब सर शुरू करते हैं आपका सफर। चेतन शर्मा सर को लोग जानना चाहते हैं कि उनके बचपन की क्या यादें हैं, वो ब्लाइंड कैसे हुए और आज किस स्थिति में हैं।
1: मैं संदीप भाई, मतलब बहुत ईश्वर ने ऐसी अनोखी और विचित्र चुनौतियों के लिए मुझे चुना और जी, मैं वो आभार प्रकट करता हूं, मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि अगर वो वैसी चुनौतियां नहीं होती तो मैं जीवन को समझ ही नहीं पाता कि कैसे होती। मैं जब करीब एक साल की एज थी मेरी, आंखों में कैंसर हुआ।
0: ओहो,

0: और पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर पाहवा, जिनके सुपुत्र भी आंखों के डॉक्टर है, अभी अमेरिका में सेटल्ड है, कुछ साल पहले उनसे भी संपर्क हुआ और मैंने उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया अपना। तो
1: जी
0: डॉक्टर पाहवा ने मेरा इलाज किया। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी
1: जी
0: कि डॉक्टर पाहवा आंखों के डॉक्टर थे, बेसिकली कैंसर के डॉक्टर नहीं थे। तो
1: अच्छा
0: उनको ये तो समझ में आ गया कि ये बच्चे को आंख में तकलीफ है, देख नहीं सकता, लेकिन बीमारी क्या है उनको भी नहीं पता। और
1: जी
0: उन्होंने हमको डिस्चार्ज किया कि भाई मेरी जो नॉलेज है उससे बियॉन्ड ये चीज है, तो अब आप किसी और को दिखाइएगा, लेकिन आंखों में ये मतलब ही विल नॉट बी एबल टू सी फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ये पक्का है।
1: जी
0: तो ठीक है, हमारे डिस्चार्ज कर दिया। उस दिन हमको ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला, जो मेरे स्वर्गीय ताऊ जी मुझे लेके गए थे, तो ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं था, तो हम लोग वहीं रुके सीतापुर में।
1: जी
0: और उसी दिन संयोगवश एक स्विट्जरलैंड से डॉक्टर आए डॉक्टर पाहवा के पास सीतापुर में, उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा केस डिस्कस किया वो स्विस डॉक्टर से कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है, उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि क्या तकलीफ है, देख नहीं पाएगा इतना तो जो डैमेज हुआ है मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ। तो वो स्विस डॉक्टर ने बोला कि भाई ये मुझे प्रोबेबली ये केस कैंसर का लगता है, आप अगर उस बच्चे को बुलवा सकते हैं तो आई वॉन्ट टू एग्जामिन हिम। तो बोला वो तो उन्होंने तो डिस्चार्ज कर दिया उनको, तो हमने तो डॉक्टर पाहवा ने एक्स्ट्रा पेन लिया कि ठीक है एक बार मैं पता करवाता हूँ। और उन्होंने उनको दौड़ाया कि भाई ये कहाँ लोकल एड्रेस है ठहरे हुए हैं, एक बार पता कीजिए। वो समय ही एकदम अलग था, तो पता किया हम लोग धर्मशाला में थे, तो कहा कि भाई आप कल हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल गए और फिर वो स्विस डॉक्टर ने देख के ये आइडेंटिफाई किया कि ये कैंसर है, अगर सर्जरी नहीं हुई तो इट विल स्प्रेड टू हिज ब्रेन और वो सर्वाइव साल 2 साल से ज्यादा नहीं कर पाए।
1: बताइए सर, क्या
0: तो
1: डेस्टिनी, मतलब क्या क्या
0: आप देखिए चमत्कार
1: कहें इसको, क्या इत्तफाक जी।
0: कि डॉक्टर पाहवा की थोड़ी सी सक्रियता ने मुझे जीवन दे दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं यही सबको बोलता हूँ कि थोड़ा सा बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी अगर हम जाए और चीजों को देखें, तो पता नहीं किस आदमी का किस सीमा तक हम भला कर सकते हैं, इसका हमें खुद अंदाजा नहीं है, तो हमको ऐसा कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे बाध्यता मेरे को हुई और इस तरह से ये जीवन में एक परिवर्तन आया।
1: जी तो सर, मतलब उसके बाद में फिर चलिए ऑपरेशन भी हो गया, इलाज हो गया, फिर उसके बाद आगे फिर एजुकेशन और वो सब कैसे पॉसिबल हुआ? और वो एक ही आपने बताया कोटा में, अंता में आप लोग थे, फिर वहां से जयपुर कैसे शिफ्ट हुए, कब हुए वो?
0: हाँ, मेरे पिताजी, मतलब ये एक कोइंसिडेंस है, इसमें कोई वो नहीं था, मेरे पिताजी यूको बैंक में प्रबंधक के पोस्ट पे थे, तो उस समय रूरल उनको प्रमोशन में पूरा करना था तो अंता थे। उसके बाद उनका जयपुर ट्रांसफर हो गया और हम लोग वहां से अंता से
1: बिल्कुल
0: जयपुर आ गए, तो इस
1: जयपुर ही
0: तरह
1: रहे, क्या
0: फिर वो जयपुर का और हमारा संबंध
1: बात,
0: जुड़ा।
1: क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: हाँ
1: आगे की कहानी क्या है?
0: जी, वो इसमें भूमिका देखिए मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है, मैं उसको उजागर करना चाह रहा हूं आगे की कहानी के माध्यम से, कि हमारे उन दिनों हम कोटा जिले में ही आता था अंता, अंता में हम लोग रहा करते थे, और जो राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय अजमेर में, वहां 10वीं क्लास में 8 विद्यार्थी अपियर हुए थे और उनमें से 6 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। ये न्यूज 1975 में छपी अखबार में।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: क्या
0: और
1: बात है,
0: वो अखबार हमारे पिताजी को किसी ने लाके दिया कि देखिए साहब
1: दिया
0: ये ऐसे स्कूल है
1: क्या
0: और
1: भाई,
0: आप
1: बच्चा ब्लाइंड तो हो गया, अब देखो आगे की राह।
0: जी, आगे की राह देखो।
1: जी
0: अगर वो मीडिया में न्यूज नहीं छपती या वो लोग हमारे जो सीनियर्स है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो शायद हमें भी उस चीज की जानकारी पता नहीं होती, कब होती कैसे होता मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस चीज की एक भूमिका थी, उसका एक रोल था। और फिर पता करके हमारे पेरेंट्स ने अजमेर में जो विशेष

0: विद्यालय आदर्श नगर में,
1: जी
0: वहां
1: जी
0: एडमिशन कराया और वहां
1: जी
0: से शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी।
1: जी
0: और ईश्वर कृपा रही, आप लोगों की दुआएं रही कि
1: जी
0: जब 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया तो पूरे राज्य में, उन दिनों ये CWSN वाली कोई अवधारणा नहीं होती थी, और
1: हाँ, अलग अलग कुछ
0: हाँ
1: नहीं था। जी जी
0: हाँ हाँ
1: जी
0: चीजें अलग ढंग से होती थी।
1: जी
0: तो पूरे राज्य में 90वां रैंक मेरा मेरिट
1: वाह वाह, बहुत खूब
0: होता था।
1: बहुत खूब बहुत
0: जी
1: खूब।
0: जी जी जी तो इस तरह से, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ग्रेजुएशन
1: जी
0: किया। वहाँ सामान्य ज्ञान और डिबेट वगैरह की प्रतियोगिताओं में भी खूब भाग लिया,
1: जी
0: और कई बार ऐसा हुआ कि पुरस्कार भी प्राप्त किए। और एक जो चीज वहां से मेरे गले उतरी और समझ में आई
1: जी
0: कि कोई भी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में साइटेड के साथ, जिन लोगों को दिखाई देता है, उनके साथ पार्टिसिपेट करके जीतने का आनंद ही कुछ और
1: मजा ही कुछ और है। जी जी
0: होता
1: जी जी वाह
0: है।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ये
1: वाह वाह,
0: गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की देन थी मुझे।
1: जी
0: और डॉक्टर लता शर्मा हमारी अंग्रेजी की हम पढ़ाया करती थी, एंड शी वॉज वेरी काइंड टू मी पर्सनली, मेरे पे बहुत स्नेह रखती थी, और बहुत एक स्वर्णिम यादें उनके स्नेह और आशीर्वाद की उस कॉलेज जीवन से जुड़ी हुई है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी बातों से भी लग रहा है कि अजमेर की यादें अभी भी बसी हुई हैं आपके जहन में।
0: जी
1: जी बहुत। तो सर, सब्जेक्ट क्या रहे ग्रेजुएशन में आपके?
0: मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हिंदी पढ़ा, साहित्य और संस्कृत पढ़ा। तो
1: अच्छा
0: दो साहित्य, और जिनको हिंदी और संस्कृत दोनों, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा कम होता था तो थोड़ा आसानी से नहीं हो पाया, लेकिन एट लास्ट हो गया। तो ये विषय हुआ करते थे मैं।
1: तो सर, ये डिबेट और गवर्नमेंट कॉलेज और ये सब करते करते फिर बैंक में कैसे पहुंच गए आप?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है कि वो समय ऐसा था कि चेतना, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। जिसने जैसा कहा, जैसा समझाया बताया, दो लोग जिधर चले उधर हमने भी सोचा, ऐसा कुछ करके चीजें होती थी। तो ये पता लगा कि भाई दृष्टिबाधित भी बैंक में जॉब पाने लगे हैं, करने लगे हैं। और प्रश्न ये था कि किसी भी तरह से ट्रेन में बैठा जाए, ट्रेन पकड़ी जाए रादर। अब खड़े होके सीट मिलती है, बैठते हैं सेकंड क्लास में, स्लीपर में है कि एसी थर्ड में, सेकंड फर्स्ट, वो बाद
1: बट
0: में
1: ट्रेन पकड़नी
0: देखेंगे।
1: है।
0: हाँ, पहले पहले ट्रेन पकड़नी है, और ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसको समाधान करना है। और उन दिनों पद्मश्री जेएल कौल साहब ने ना जो ये स्टेनोग्राफी का कोर्स है उनको उसे
1: जी
0: लॉन्च किए हुए कुछ दिन हुए थे, तो वहां एडमिशन का अवसर मिला। और उनकी कृपा रही मेरे पे कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके यहाँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो
1: जी
0: वहां ट्रेनिंग की, और बैंक में एज हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: जी
0: और ये इट यूज टू फैसिनेट मी कि यार एक बैंक में दृष्टिबाधित, आज तो शायद वो कहना चाहिए कि उतनी बड़ी बात नहीं प्रतीत होती,
1: जी
0: लेकिन उन दिनों प्रतीत हुआ करते।
1: बिल्कुल
0: तो
1: निश्चित रूप से सर।
0: हाँ, तो बैंक में जाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वहां जाके मतलब ऐसा लगा कि जैसे अपने सपनों की मंजिल मिली,
1: दुनिया ही
0: बहुत
1: बदल गई हो।
0: दुनिया ही बदल
1: जी,
0: गई।
1: ये कौन से सन की बात रही होगी आपको जो बैंक में जॉब मिली?
0: ये 25 जुलाई 1991।
1: अच्छा,
0: और
1: 1991।
0: जी
1: जी
0: जी जी और जीवन में वातानुकूलन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, इसका अनुभव मुझे पहली बार वही बैंक
1: तो सर,
0: में
1: वो दौर कैसा था? मतलब आज तो टेक्नोलॉजी के भी इतने साधन हैं, लोग इतने सारे बैंक में जा रहे हैं, अवेयरनेस भी है, बैंकिंग सिस्टम को भी अवेयरनेस है, लेकिन
0: जी
1: उस समय तो बिल्कुल एक नया नया मामला था। मतलब शॉर्ट हैंड और ये सब करके आप बैंक में पहुंच गए थे, तो
0: जी जी
1: आज भी जब लोगों से पूछा जाता है यार तुम यहाँ क्या करोगे, तो तब तो पता नहीं क्या कुछ रहा होगा। कैसे
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ
1: हैंडल किया ये सारी चीजें आपने?
0: जी जी जी एक तो सौभाग्य संदीप भाई ये रहा, ईश्वर
1: जी
0: कृपा ऐसी रही। कि इंटरव्यू स्किल्स ईश्वर के पास है, शुरू से अच्छे रहे बातचीत करने में और अपने अपने आप को प्रस्तुत कर पाने की क्षमता ईश्वर ने दी। तो इंटरव्यू में हमको स्वर्गीय पीके मेहरा जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एचआर डिपार्टमेंट में होते थे, उन्होंने इंटरव्यू किया था मुझे।
1: अच्छा।
0: और उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ अर्स्टवाइल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो अभी पीएनबी में मर्ज हो गया, उसमें पीके मेहरा साहब का बहुत बड़ा नाम।
1: अच्छा।
0: तो हुआ क्या कि उन्होंने इंटरव्यू किया और उन दिनों जनरल पिनोशे का तख्ता पलट हुआ था चिली में, और स्वर्गीय पीके मेहरा और मेरे इंटरेस्ट इस मामले में मिलते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस में उनको भी बहुत इंटरेस्ट था और मुझे भी बहुत। तो मेरी और उनकी जो बातचीत 10-15 मिनट की रही, उससे इंटरव्यू में वो बहुत उनको आनंद आया वो सुनकर।
1: या डिबेटिंग और ग्रेजुएशन काम आ गया।
0: तो इनिशियली क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो स्वर्गीय पीके मेहरा साहब का ये इंस्ट्रक्शन था कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड ही शुड नॉट फेस एनी हर्डल व्हाटसोएवर, उनका पर्सनल गोल था। तो ये सौभाग्यवश फिर ऐसा हुआ कि आरंभिक दिन आराम से बीते, टाइपिंग हम क्या करते थे वो जो जिसको लोहा कूटना बोलता, ठक ठक ठक, पुराने कोर्स में आप टाइप करने कोर्स में एंटर करो तो वहां पे आवाज सुनाई देती है, उस कुछ वो उन टाइपिंग मशीन्स पे करते थे। और इसमें यहाँ मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा उनका, जब मैंने को मेरे को 5-6 महीने हो गए और कन्फर्मेशन होने को आया तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर मैं जयपुर कर दिल्ली में ज्वाइन किया था मैंने, तो मैंने कहा दिल्ली में मेरा जीवन नहीं बीतना सर, मुझे जयपुर का हूँ, मुझे जयपुर ट्रांसफर चाहिए, तो प्लीज अगर आप मेरा रिक्वेस्ट कंसिडर कर ले तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार नॉर्मली तो हम 1.5 साल से पहले करते नहीं, पर तुम ऐसा करना परसों पता कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, बड़े आदमी है उन्होंने कह दिया, ऐसे 2 दिन में थोड़ी ट्रांसफर कोई होता है। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब उन्होंने परसों कहा था तो उसके परसों से अगले दिन मतलब 1 दिन बाद में हमारे डिपार्टमेंट ट्रांसफर लेटर ही आ गया। तो यू आर सो काइंड एंड हेल्पफुल, उन्होंने कहा हमारे बैंक में कम से कम 15-20 लोगों को अपॉइंटमेंट।
1: अच्छा।
0: हाँ जी जी
1: जी।
0: इस तरह से आरंभिक सफर में ज्वाइनिंग के समय तक तो थोड़ी समस्याएं कम रही। हाँ उसके बाद तो फिर हर स्टेज पे जो अपने आप को प्रूव करने की समस्या दृष्टिबाधितों के साथ होती है वो तो खैर ही रही, उस पे अभी अभी चर्चा करते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर जब जॉब मिली आपको, आपने ट्रेनिंग ली AICB में और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए, धीरे धीरे प्रमोशन की भी बात दिमाग में आने लगी होगी, फिर ये सब इसमें कैसे आपने अपने आप को मतलब एडजस्ट किया, अडॉप्ट किया?
0: लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में साल 6 महीना तो मैं ये बैंक की नौकरी पाके ना इतना प्रसन्न चित्त था वो दिन थे संदीप भाई जिन दिनों वो बैंक में प्रमोशन टेस्ट देने की दृष्टिबाधितों को उसमें भाग लेने तक की अनुमति नहीं होती थी,
1: बताइए
0: जी ये स्थिति थी। तो चलिए हम भी आनंद में थे, फिर सौभाग्यवश कहूं कि मेरी जीवन संगिनी मुझे मिली और ये ईश्वर की कृपा है। मैं मतलब आज इस मंच से सत्ता को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो कृपा इतनी रही कि मेरी योग्यता और क्षमता से ज्यादा और बहुत ज्यादा मुझे जीवन में मिला।
1: एंड
0: हाँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि लोग तो कहते हैं ये दृष्टिबाधित हो गए तो ऐसा बुरा लगता होगा, नहीं है, मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल कि जीवन को जैसे अब मैं समझ पाया हूँ, दृष्टिवान होके मैं नहीं समझ सकता था। तो मेरे जीवन संगिनी मिली और फिर शी स्टार्टेड टू पुश मी कि ये तो मतलब हमको आगे बढ़ना चाहिए, वो मेरे लिए टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे।
1: बताइए कितना जबरदस्त, मतलब भाई श्रोताओं सुन लो जरा, शादी करना बहुत जरूरी है जॉब के बाद में अगर आगे तरक्की चाहिए।
0: तो वो मेरे लिए कि प्रमोशन मटेरियल रिकॉर्ड करा करती टेप रिकॉर्डर से, मैं बैंक जाता और वो पीछे से अपना काम करके, वो भी डेस्क डिजाइनिंग में एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, वो सब तोड़ के, अपना करियर छोड़ के आसानी से जॉब मिल सकती थी,
1: बिल्कुल मिल सकती थी जी।
0: हाँ, लेकिन वो सब छोड़ के वो मेरी बुक्स वगैरह रिकॉर्ड करती और मेरे को पुश करती, कितना कोर्स है, कितना एग्जाम में डेट बाकी, मतलब मुझे ऐसा लगता था वो एग्जाम मेरा नहीं, उनका खुद का है,
1: उनका है। जी, जी, जी, जी, जी, जी,
0: तो वो सब किया करती। तो उससे फिर संदीप भाई ऐसा रहा कि स्टेनोटाइपिस्ट से ऑफिसर, ऑफिसर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, और वहां से चीफ मैनेजर, ऐसे चार प्रमोशन बैंक में हुए और सारे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद वो चीजें हुई। और इसी दौरान, इन चार प्रमोशन के दौरान, अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में भी जो भाग, जो साइटेड को हराने का जुनून था ना,
1: जुनून था बिल्कुल, बंद आंखों से आंख वालों को चुनौती देने का जो एक,
0: तो वो कायम रहा, अनुवाद, डिबेट, एक्सटेम्पोर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये प्रतियोगिता में अगर कम से कम बोलूं तो 30 सर्टिफिकेट तो मेरे पास होंगे। हाँ जी जी जी, तो वो मैंने हासिल किए। और फिर एक जो मकाम मैं सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ऐसा रहा कि 2013 शायद बात रही होगी, मेरे अंतरंग मित्र है वो केबीसी में गए थे हॉट सीट पे, उनका तक जा पाए
1: जी,
0: और वो एक जगह प्रश्न देने में अटक गए, आंसर
1: थे। अटक गए जी। हाँ,
0: और एक हेल्पलाइन होती थी, फोन ए फ्रेंड, अभी तो इस सीजन से बंद हो गई, 17 सीजन से, अदरवाइज वो बहुत साल थे
1: बिल्कुल।
0: तो उसमें उन्होंने तीन नाम दिए थे, मेरा और दो साइटेड थे। उन्होंने बच्चन साहब को बोला कि चेतन शर्मा को फोन लगाइए। अब एक साइटेड आदमी जिसका पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, जिसको अगर मैंने गलत बता दिया तो वो उसका नुकसान हो सकता है, एट दैट टाइम अगर वो मेरे पे भरोसा कर ले।
1: और यहाँ पर एक बात और हो रही है सर कि मतलब एक तालमेल वाली बात भी, कि साइटेड लोगों के साथ ये विश्वास कायम करना कि भाई मैं आपके लिए खड़ा हूँ
0: बिल्कुल, और आप अगर मुझे ये अवसर देते हैं तो नुकसान में नहीं रहेंगे, घाटा नहीं होगा, तकलीफ नहीं आएगी, वो विश्वास उत्पन्न होना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और आप वो उस क्लिप को सुनना कभी, कि उनका क्वेश्चन पूरा हुआ, ऑप्शन वो रीड आउट नहीं किया उससे पहले, तो मैंने आंसर
1: दे दिया,
0: आंसर बोल दिया। वो बहुत एक स्वर्णिम मकाम ऐसा फील होता है जब बैंक के करियर को याद करता हूँ, मतलब ऐसा बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हमें खुद को विश्वास है, लेकिन दूसरा विश्वास करे, वो मजेदारी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उस विश्वास पर खरे उतरना, ये और भी बड़ी बात।
0: जी जी जी, ईश्वर कृपा है, आप लोगों की दुआ।
1: जी, तो फिर सर ये जो प्रमोशन आपने लिए, ये पहली पहली बार में ही सब हो गए थे?
0: नहीं, जो पहला प्रमोशन था ना
1: जी,
0: वो क्योंकि मैंने बताया आपको कि अनुमति ही नहीं थी, ये होता था कि आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो हम बैठने की अनुमति नहीं देंगे। उसको संघर्ष करने में और उसकी अनुमति मिलने में समय लगा, और एग्जाम से एक दिन पहले पता लगा था कल आप उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज माय फेलियर, मैं नहीं कर पाया।
1: अच्छा,
0: लेकिन अगले बार का मुझे तय हो गया था कि हाँ, अब हमको अनुमति रहेगी, तो अब नहीं आ रहे। उसके बाद से फिर बिल्कुल कोई भी फेलियर नहीं रहा, चारों प्रमोशन और चारों एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने का बस एक एक ही अवसर में कर पाया, ऐसा रहा।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त। आज सर लोग जो बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, आज भी वो ये शिकायत करते हैं कि हमें मतलब जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या हम अच्छे से काम कर सके, उसके लिए हमें पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता है। क्योंकि आप इस सिस्टम में रहे, इतने लंबे समय तक रहे हैं, और हर तरह का उतार चढ़ाव आपने देखा है, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है अपने श्रोताओं के लिए कि समय समय पर आपने आपकी आवश्यकताओं के बारे में बैंक को कैसे समझाया, या फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, और या फिर जब आपने अपनी डिमांड रखी तो क्या वो आसानी से पूरी होती चली गई, या फिर उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े। और इस सब में एक महत्वपूर्ण बात यह कि समय के साथ बदलती हुई तकनीक के साथ अपने आप को समायोजित कैसे किया आपने?
0: निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये। और
1: जी,
0: चुनौती और जो अपने आप को साबित करने की चुनौती तो हर कदम पे आई है।
1: जी,
0: स्वीकार्यता होती थी कि ठीक है ये, लेकिन जिम्मेदारी देने से
1: जी
0: बचते थे, नहीं कोई समस्या ना हो जाए। फिर जब कंप्यूटरीकरण होने लगा बैंकों में, तो मैंने ये रखा कि भाई हमको भी कंप्यूटर सीखना है और हम काम करना चाहते, तो उन दिनों साइटेड लोगों के लिए भी कंप्यूटर पे काम करना एक चुनौती होती।
1: बिल्कुल।
0: तो एक स्वाभाविक डिस्करेजमेंट और उस तरह की चीजें रहती थी। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हमारे यहाँ पहला कंप्यूटर लगा बैंक में, हमारे ऑफिस में
1: जी,
0: तो उसमें ऐसा था कि पूरा वो कमरा एयर कंडीशन था, एक ही कमरे में कंप्यूटर था और सब लोग चप्पल जूते उतार के अंदर जाया करते थे। ये उस कंप्यूटर को इस लार्ड से रखा जाता था। तो मेरे को भी उत्सुकता हुई कि भाई मैं भी देखूं कंप्यूटर है क्या भला,
1: भाई हम किसी से कम नहीं
0: बिल्कुल। तो मैंने वो जो हमारे इंचार्ज थे उनको कहा कि भाई मुझे दिखाइए बताइए कैसे होता है। तो उन्होंने कीबोर्ड बताया कि ऐसे ऐसे सारी चीजें बताई। मैंने कहा सर मैं टाइप करके ट्राई करूं, हला कीजिए। तो हुआ क्या संदीप भाई कि वो मैं अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा था, पहली बार टाइपराइटर से कंप्यूटर पे शिफ्ट हुआ था।
1: अच्छा
0: जी, तो मेरा अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा, तो सी लेटर को शायद मैंने 2-3 बार दबा
1: जी।
0: ठीक, तो उन सज्जन ने कहा कि यार तुमने ये क्या किया है, तो सी 3 बार दबा दिया, अब ये तो कंप्यूटर खराब हो सकता है ऐसे।
1: बताइए मतलब वो
0: मतलब कुछ भी चले।
1: जी, कैसे चलाने का तरीका मतलब ढूंढा, मतलब भाई इसको आदमी को डीमोरलाइज कैसे करना है।
0: तो उस लेकिन वो तय किया कि मैं कुछ भी नहीं जानता सच में कि ये मतलब मॉनिटर ठीक से क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्पीकर क्या होता है। स्पीकर तो फिर भी थोड़ा आइडिया था, या रैम क्या होती है, रोम क्या, कुछ नहीं आइडिया था
1: जी,
0: कितनी रैम चाहिए कितनी रोम चाहिए कुछ नहीं। शाम को आके आसपास पता किया कि भाई तुम किसी का कोई कंप्यूटर बेचने वाला जानकार है, एक जना निकला है। मैंने कहा भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए।
1: ये कौन से साल की बात रही होगी सर?
0: 1998
1: ओके
0: जी। तो मैंने कहा मुझे कंप्यूटर चाहिए।
1: सही है जी।
0: तो बोले क्या मतलब कैसा चाहिए? मैंने कहा मैं वो नहीं समझता हूँ,
1: चाहिए बस कंप्यूटर जो भी आया दे दो तुम तो।
0: तो मुझे अच्छे से याद है 32,000 रुपीज में तो कंप्यूटर उन्होंने भिजवाया। इंटेक्स एक कंपनी होती थी, अभी तो बंद हो चुकी वो
1: जी,
0: उसका
1: जी,
0: कंप्यूटर आया। और उससे मैंने कहीं औपचारिक रूप से कंप्यूटर नहीं सीखा, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया, कुछ नहीं। सिर्फ एक मेरा दोस्त गौरव राजियाना अभी दुबई में है, वो आते थे मेरी रीडिंग करने, वो हम साइबर कैफे जाते इंटरनेट पे सर्च करके आते, फिर वापस घर आते, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते कि यार कैसे।
1: तो तब
0: कैसे
1: तक सर ये पता चल गया था आपको कि ब्लाइंड फील्ड में है कुछ लोग जो कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है, या ऐसा कुछ पता चला था?
0: हाँ, वो उसका पता ऐसे लगा था कि AICB में एक कोर्स शुरू हुआ था 3 महीने का कंप्यूटर 1998-97 के आसपास ही, तो उससे ये तो पता लग गया था। लेकिन अब 3 महीने के लिए बैंक से छुट्टी मिलना और वहां जाना वो संभव नहीं हो पा रहा था, तो हमको लगा कि ठीक है जयपुर में ही करते हैं
1: बिल्कुल।
0: हाँ, और वो हम साइबर कैफेज हुआ करते थे जहाँ इंटरनेट की सुविधा होती थी पहले, आजकल तो अब बंद ही हो गए लगभग।
1: तो हर हाथ में साइबर कैफे अब तो।
0: जी, अब तो हर फोन में साइबर कैफे है। तो वहां जाके सर्च करते, फिर उसको घर पे इम्प्लीमेंट करते, फिर कुछ गलत होता क्योंकि यूट्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखिए सोचिए। तो फिर वापस साइबर कैफे जाते, फिर उसको सर्च करते, तो वो एक बहुत पेनफुल और स्लो लर्निंग रही, बट ऐसे सीखा और कोशिश किया कि अपने आप को इंटीग्रेट करें। तो वो जो सी 3 बार टाइप हुआ ना, आई एम थैंकफुल टू दैट जेंटलमैन कि वो ऐसा नहीं बोलते तो शायद मेरे मन में उतना तीव्र भाव नहीं पैदा होता सीखने का, तो वो ऐसा कुछ हो पाया जी।
1: अच्छा, तो फिर बैंक से सर जब जब जो जो जरूरत पड़ी वो फिर पूरी होती गई आसानी से उसके बाद में?
0: नहीं, तहज नहीं था। सॉफ्टवेयर परचेज का पहले तो कंप्यूटर, ये उनको यही नहीं विश्वास था कि ये कंप्यूटर पे कुछ कर भी सकते। उनको लगता था कि जैसे सब लोगों के लग रहे हैं तो ये भी डिमांड कर रहे हैं उसके अलावा नहीं। जो धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ तो सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने का बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो, और नहीं हो पाए वो चीजें। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे चुनना था दो चीजों में कि या तो जो अपना फ्री सॉफ्टवेयर है NVDA उसकी मदद से काम किया जाए, और या फिर एक अंतहीन प्रतीक्षा की जाए कि वो जॉस खरीद के देंगे तो मैं काम। लेकिन वो होने में बैंक का जो अपना समय लगता वो सब होता,
1: वो करते जब तक नया प्रमोशन आ जाता आपका,
0: नया प्रमोशन हो जाता तब तक एक लोगों में एक इमेज बन चुकी होती,
1: इमेज बन चुकी होती,
0: और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो लगा कि जैसे भी हो मुझे मतलब कोशिश करनी है कि डिलीवर करें। अब वो जॉस के साथ होता है, खरीदे हुए सॉफ्टवेयर के साथ होता है या फ्री वाले के साथ होता है, इसकी बहुत ज्यादा चिंता मैंने नहीं की। और उसके लिए थोड़ी सी निंदा और आलोचना भी सही कि उनका ऐसा मानना था कि भाई जब तक, कुछ साथियों का ऐसा मानना था कि जॉस जब तक नहीं आए तब तक अपने को काम नहीं करना। कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ 20,000 एम्प्लॉई है 20,000 एक की भी तनख्वाह एक्स्ट्रा चल जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क तो ऐसा जी।
1: तो बैंक में रहने के दौरान सर क्या क्या काम किया आपने?
0: पहले तो इनिशियली तो प्रमोशन हुआ तो बहुत रिलेक्टेंस था कि को काम देना मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया तो दिक्कत आएगी, वो एक जो प्रेजडिस होती है वो सब चीज थी। तो MSME जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले कहते थे, MSME सेक्शन में सबसे पहले काम मुझे मिला, और जो उसके बाद कुछ सालों तक तो MSME सेक्शन में ही काम किया, जो ब्रांचेस की उनके टारगेट के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस है या नहीं है उसको मॉनिटर करना, और कुछ अगर बॉटलनेक्स है तो उनको दूर करना ऐसी, और टारगेट के अगेंस्ट उनकी क्या अचीवमेंट्स है उस चीज का ख्याल करना, वो प्रोग्रेस को अपने रीजनल हेड के सामने रखना, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी सारे ब्रांचेस से डेटा इकट्ठा करके। लेकिन वो धीरे धीरे फिर कंप्यूटर वाली बात कम्युनिकेट लोगों में माउथ पब्लिसिटी से गई, और उनको ये लगा कि इस साइड इसका उपयोग ज्यादा हो सकता है, तो फिर HR सेक्शन में काम किया, और एक हमारा TCS का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर आया था, मार्केटिंग राइट्स थे TCS के पास, HRMS करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था बैंक में, और आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार अगर इसमें हम एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं तो समय आनंद से आगे बढ़ेगा और मजा आएगा काम करने में। तो रिक्वेस्ट करके अपनी ट्रेनिंग भी उस सॉफ्टवेयर की करवाई, और फिर HRMS पे, और क्योंकि वो HR डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर था तो फिर बाय डिफॉल्ट HR डिपार्टमेंट में जाना ही था, HR डिपार्टमेंट में रहा, और उस समय मतलब बहुत अच्छा समय निकला। एंड उसके बाद कुछ समय हमारा नोएडा में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट HRDI है, तो वहां भी पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है बेसिकली, तो वहां रहे और उसके बाद वापस जयपुर।
1: तो सर कभी ऐसे भी अवसर आए जब मतलब किसी चीज के लिए बहुत बुरी तरह से लड़ना पड़ा हो, या अपने साथियों की कोई बात मनवाने के लिए थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव होना पड़ा हो, ऐसा भी कभी मौका आया?
0: पहला ऐसा मौका तो मैंने कहा ना कि जब ऑफिसर वाला जी टेस्ट का परमिशन नहीं थी, तो उस समय एक हमने वो किया कि भाई मिलना चाहिए या समानता का अधिकार का प्रश्न है, और कौन सक्षम है और कौन नहीं है ये उसकी क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होना चाहिए बजाय उसके शारीरिक स्थिति के। पहला संघर्ष का पॉइंट या फ्लैश पॉइंट तो वहां पे है। फिर क्या हुआ कि स्केल 3 तक यानी कि सीनियर मैनेजर वाले प्रमोशन है वो तो आसानी से हो जाते हैं, मैं आसानी से अपेक्षाकृत बिल्कुल आसानी से हो जाता है ऐसा नहीं
1: नहीं है बिल्कुल।
0: लेकिन स्केल 4 एंड अबव चीफ मैनेजर एंड अबव हाँ वो पार्ट होता है सीनियर मैनेजमेंट, वो प्रमोशन आसानी से क्या कहूँ बहुत कठिनाई से बहुत मुश्किल से होते हैं। मतलब अगर देश भर में हम बात करें तो शायद उंगलियों पर गिन सकते हैं 5-7-10 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे नहीं जो चीफ मैनेजर एंड अबव पे दृष्टिबाधित होने के बावजूद पहुंचे। तो वो मतलब थोड़ा जो लोग नहीं जान पा रहे थे और जो लोग उस चीज को नहीं समझते थे उन लोगों में स्वीकार्यता की समस्या रही और परेशानी रही कि कैसे यहाँ तक तो ठीक है लेकिन सीनियर मैनेजमेंट में तो कैसे, मतलब क्या कहते हैं ना कि अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना ही होता है और वो फिर करना ही पड़ा। तो वहां ज्यादा चुनौती आई, बाकी बीच का सफर उतना अपेक्षाकृत आसानी से निकल पाया।
1: जी तो आज क्या स्थिति है सर, अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप?
0: हाँ ये भी अपने आप में रुचिकर और
1: क्योंकि जाना पड़ेगा ना उस पॉइंट तक भी पहुंचना पड़ेगा हमको।
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: मैं जब 2014-15 की बात है
1: जी,
0: तब संदीप भाई एक प्रश्न ने मुझे सताना शुरू किया कि यार एजुकेशन जन्म लिया, एजुकेशन पाओ, फिर कमाने लगो, शादी हो जाए, फिर अपने जीवन भर जो पैसा कमाया वो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के इस दुनिया से चले जाओ। ये जो फॉर्मूला लाइफ है ना, ये इतने सिंपल फॉर्मूले के लिए हमको ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, वाहेगुरु, वट एवर, या आप एथिस्ट हैं तो प्रकृति, वट एवर, जो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उन्होंने इतने सिंपल उद्देश्य के लिए हमको बनाया होगा ऐसा नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या हो फिर, तो कुछ ऐसा करके जाए दैट लास्ट। अभी एक उनका स्पीच सुन रहा था मैं, बहुत पुरानी बात है, फाउंडर हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के संजय अग्रवाल साहब, वो कह रहे जी जीवन में ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए, हर आदमी को प्रयास करना चाहिए जो उसके जीवन के बियॉन्ड लास्ट करे, वो जीवन के बाद भी चले चीजें
1: जी।
0: तो ऐसा क्या, तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा संस्थान खड़ा करके जाते हैं जो हमारे बाद भी चले, कितना चलता है वो आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी, लेकिन एटलीस्ट उनको एक फाउंडेशन और एक नींव पे खड़ी, अच्छी नींव पे खड़ी एक इमारत हम जरूर देखे जा सकते हैं। अब उसको विस्तार करते हैं या नहीं कर पाते वो एक अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन हम अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से कर पाए। तो मैंने जब 9 साल बाद 2028 में रेगुलर रिटायरमेंट होता, 2019 में बैंक को लिख के दिया कि भाई मैं अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता हूँ, तो कृपया, मेरे 28 साल हो गए थे, 33 साल का 5 साल का बेनिफिट मिलके पेंशन मुझे पूरा मिलना था, तो मैंने कहा कि भाई मुझे सेवानिवृत्ति दीजिए। वहां से सेवानिवृत्ति हुई और कुछ समय कुछ और स्थानों पे अनुभव प्राप्त करके फिर मैंने 2020 में सितंबर 2020 को उद्भव विजन फाउंडेशन की स्थापना की, एक पुराना कंप्यूटर, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय और 1,00,000 रुपए की कैपिटल, ये मेरा सरमाया था उस समय शुरू करने का, और आप लोगों की दुआओं से, सहयोग से 5 साल इसको पूरे हो गए। देश भर के राजस्थान और विशेषकर नेबरिंग स्टेट्स के कुछ साथियों तक हम लोग पहुंचने में सफल रहे और उम्मीद करते हैं कि इसको फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और इस यात्रा में और इस लक्ष्य प्राप्ति में सभी श्रोताओं का, आपका और समाज के हर वर्ग का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी आशा।
1: निश्चित रूप से सर, क्यों नहीं। लेकिन
0: जी
1: सर, लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, 9 साल पहले VRS ले लेना, वो भी एक तरह से उस पोजीशन में जा करके जहां पे तो आपको केवल कमांड देनी थी, ऑर्डर्स ही पास करने थे ज्यादातर।
0: जी हाँ, वो
1: ये बड़ा मतलब
0: मतलब
1: आसान तो नहीं रहा होगा सर।
0: बहुत कठिन, बहुत कठिन कि 15 लाख रुपए का इनकम हो साल का, जो आज की आराम से 24-25 लाख का होता आज के डेट में, बल्कि ज्यादा ही।
1: ज्यादा ही होता है जी।
0: हाँ, शोफर ड्रिवन गाड़ी थी, ड्राइवर चलाते थे गाड़ी को, होम
1: जी।
0: पोस्टिंग थी, अपना स्वयं का मकान था। क्यों कोई चाहेगा कि ऐसा हो कि वो बैंक को छोड़। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वहां पे संदीप भाई सुबह 9:50-55 मैक्सिमम 10 बजे पहुंचिए और शाम को आने का कोई समय नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो हमारी लाइफ के बियॉन्ड लास्ट करे, एग्जिस्ट करे, तो मैं अगर 60 साल की एज तक बैंक में जॉब किया, वो प्रेशर्स और वो टेंशन्स और वो इतना टाइम लॉन्ग सिटिंग और वो सब किया, तो हेल्थ इस लायक नहीं बचेगी कि मैं वो अपने जीवन का मकसद पूरा कर पाऊँ। और फिर
1: बिल्कुल
0: उन्हीं दिनों मैं, एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी किताब है एक, 5 Regrets of My Life,
1: अच्छा
0: वो मैंने पढ़ने का अवसर हुआ। तो उन्होंने ये लिखा कि आईसीयू में उनकी ड्यूटी होती थी और जो पेशेंट से वो पूछती थी कि व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, पेशेंट से, तो ज्यादातर पेशेंट ये कहते थे कि मैं, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती। तो मुझे लगा यार कि आई डोंट वॉन्ट दैट रिग्रेट एट द एंड ऑफ माई लाइफ, मेरे को ये नहीं चाहिए। और एक जीवन का लक्ष्य बनाया मैंने कि क्या होना चाहिए। हर आदमी अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकता है, लेकिन मैंने जीवन का एक लक्ष्य सोचा कि यार जिस समय साइन ऑफ करने का टाइम आए, उस समय भय नहीं रहे हृदय में, ऐसा कुछ हो जाए जीवन। तो वो सब की प्राप्ति के लिए ये जरूरी था कि मैं उस बैंक के, उसको, कारोबार को छोड़ के, और जो मुझे आनंद मिलता है, जिस काम में मुझे, आई एम पैशनेट अबाउट दैट, वो मुझे मिले। और एक और चीज समझ में आई कि वो संस्कृत में कहते हैं कि दानो भोगो नाशस्ति त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति यो न भुंगते तस्य तृतीया गति भवति।
1: जी
0: धन की 3 ही गति हो सकती है
1: जी
0: कि या तो आदमी उसका दान करे या उपभोग करे, और अगर
1: जी
0: 2 गति नहीं की तो 3री गति नाश की। तो मुझे लगा यार अपने धन को जो है ना नाश होने से बचाना है। और संदीप भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपया छोड़ के जाएं, 1 छोड़ के जाएं, 100 छोड़ के जाएं, अगर वो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत
1: क्या
0: कपूत
1: धन संचय, बिल्कुल वही मैं
0: तो
1: कहने वाला था।
0: कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रियलाइजेशन हुआ और फिर उद्भव विजन फाउंडेशन शुरू कर।
1: मतलब बेसिकली जहां से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सर, आपने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया, वो बात कहीं ना कहीं मतलब ठीक है।
0: जी
1: लेकिन ये
0: बिल्कुल,
1: शौक, लेकिन पब्लिक सोच रही है सर कि ये शौक कब जागा।
0: बहुत पुराने समय से, लगभग 20-21 साल पुराने, आदरणीय पद्मश्री जेएल कौल साहब को हम देखते थे। देखिए, मेरी जो पूरा जीवन है, आज मैं जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से जो भी कर पा रहा हूँ, वो पद्मश्री या दो ही आदमियों को क्रेडिट जाता है। पहला पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर पाहवा को, जिन्होंने मेरे जीवन की रक्षा करी,
1: जी
0: और दूसरा पद्मश्री जेएल कौल साहब।
1: बेसिकली पद्मश्रियों के आसपास ही हैं आप।
0: तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके प्रयास से हम सैकड़ों लोग का परिवार पल रहा है आज, उनको एक मुकाम छोटा मोटा जैसा भी है हमको मिल पाया। तो अगर उनसे 1% उनके तो खैर हम चरणों की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उसका अगर 1% भी हम कर पाए तो ये जीवन साकार हो जाए। कुछ प्रयोग हुए जीवन में, कुछ गलतियां हुई, कुछ जोश में होश खोया, सब कुछ हुआ। और बाद में एक लक्ष्य और एक उसकी तरफ आके ईश्वर ने लगाया कि अब जो जीना मरना है वो इसी फाउंडेशन के लिए और इसी कॉज के लिए काम।
1: बेसिकली सर दो तीन बातें समझ में आ रही हैं। एक तो आपको पढ़ने का भी बड़ा शौक है, इसीलिए की बातों में कई उद्धरण नजर आ रहे हैं। और आमतौर पर हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस VRS ना,
0: जी।
1: तो आपने VRS का R हटा करके वॉलेंट्री सर्विस शुरू कर दी।
0: ये भी ठीक है।
1: तभी सर लगता है उद्भव बनाने में काफी देर हो गई।
0: बहुत देर हो गई। मतलब लोग तो कई बार ऐसा जो साथी वॉलेंटरी रिटायरमेंट या सर्विस को लेते हैं उनके मन में कई बार ये पछतावा होता है कि उन्होंने क्यों ले लिया, गलत ले लिया। मेरे मन में इस बात का पछतावा है कि मुझे कुछ साल पहले ले लेना चाहिए।
1: वाह क्या बात है।
0: क्योंकि मतलब अब जैसे डे बाय डे ये फीलिंग आ रही है कि आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि कोई भी अमृत पान करके तो हम में से कोई भी पैदा नहीं,
1: कोई भी नहीं।
0: हाँ, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई एम ए कैंसर सर्वाइवर फॉर मोर देन 55 ईयर्स। तो वो चिंता लगती है, कि कहीं देर तो नहीं हो गई। लेकिन ठीक है, अब
1: बेसिकली आंखों का कैंसर भी धातु कैंसर ही।
0: जी। तो वो चिंता रहती है, तो मुझे लगता है कि कुछ शायद जल्दी शुरू करते तो और अच्छा रहता। पर ठीक है, अगर इस ढंग से सोचे तो लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। वो है ना, मुद्दतों गुजरी गालिब मर गया लेकिन याद आता है। हर बात पे यूं कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो
1: क्या होता। वाह वाह वाह वाह। अच्छा सर ये बताइए कि ये इंटरव्यू 2025 में हो रहा है।
0: जी।
1: 25 जुलाई 1991 को आपकी ज्वाइनिंग हुई
0: जी,
1: और 25 सितंबर को आपने उद्भव की स्थापना की। तो ये 25 का क्या मामला है, कुछ राज है?
0: नहीं, ये मात्र संयोग का है। हालांकि मैं ये बता दूं कि मैं न्यूमरोलॉजी का मतलब मानने वाले से अंधविश्वास।
1: 25 सितंबर और 25 जुलाई कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। 25 का मुझे लगा कि पता नहीं आपने लकी समझा हो इसको।
0: और मतलब मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत मेरा विश्वास है और चीजों को मैं एक बार बताऊं कि आपको, एक मेरा फेलियर है जो 2020-21 के आसपास का, तो वहां पे वो जो मुझे सीरियल नंबर मिला था वो देख के ही आई वाज मतलब आप नेगेटिव बोल सकते हैं उस चीज को, लेकिन सीरियल नंबर देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये काम मेरा नहीं होगा,
1: नहीं होगा।
0: नहीं होगा। तो है, मेरा इंटरेस्ट है और वो सपोर्ट भी, जैसे मेरा फोन नंबर है वो भी 111 से खत्म होता है, मेरा अकाउंट भी, वो कुछ उस तरह के संयोग लाइफ में होते गए कि जो मुझे पसंद है वो चीजें मिलती गई होती।
1: जी बिल्कुल। तो सर जब आपने शुरू किया ये NGO तो कोविड चल रहा था उस दौरान, तो
0: जी
1: तो फिर कोविड में NGO के लिए आपने थोड़ा मतलब मन में नहीं आया कि थोड़ा इंतजार करूं, या फिर कौन सी चीज थी जिसने कहा कि नहीं यार करना तो बस अभी करना है, फिर यही समय सही समय है।
0: हाँ, तो उस समय ये बात तो सही है, कोविड ने हमारी प्रायोरिटीज और जो फंडिंग एजेंसीज जिनका मुझे अश्योरेंस था कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, उन सब की प्राथमिकताएं एकदम से बदल गई। सब कोविड विक्टिम्स को सपोर्ट करते, बाकी सारे कॉज रह गए एक तरफ। तो बहुत समस्या हुई और उसने मेरे धैर्य को और उसको पूरा टेस्ट कर लिया अच्छे से कन्विक्शन को। ये सोच
1: क्या बेटा, डगमगाता है कि नहीं डगमगाता है।
0: जी वो टेस्ट हो गया अच्छे से। तो मतलब वो कह सकते हो कि मुंडाते ही ओले पड़े, वो कुछ ऐसा हिसाब हो गया और बहुत तकलीफ हुई उसके कारण। लेकिन अभी IIT मुंबई में प्रोफेसर है डॉक्टर विनेश कथुरिया साहब, आदरणीय महेश्वरी साहब जयपुर में, और कुछ मेरे अंतरंग मित्र, उनका आशीर्वाद और सहयोग और संबल ऐसा रहा कि उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग देखेंगे आप। तो मैं तो मजाक में बोलता हूँ, मैंने कहा मैं तो आप लोगों का मजदूर हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं काम करता हूँ। तो वो बना रहा, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पे बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई।
1: तो आज सर मतलब लगभग मेरे ख्याल से 57 साल की एज में अगर आपको अब एक युवा चेतन को कुछ सलाह देनी हो तो क्या देंगे सर आप?
0: जी एक तो सलाह ये कि अपने पर्पस को जितना जल्दी हो सके आइडेंटिफाई, जितना जल्दी हो सके,
1: जितना जल्दी हो
0: क्योंकि हाँ
1: सके।
0: हाँ वो पर्पस को, लाइफ का पर्पस को आइडेंटिफाई। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शेक्सपियर ने लिखा है कि हर
1: बिल्कुल
0: चमकने वाली चीज सोना नहीं
1: चीज
0: होती।
1: सोना नहीं होती, बिल्कुल
0: तो चीजों को फेस वैल्यू पे शायद नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत, मतलब इट्स अमंग माय मिस्टेक्स, एंड मैं ओपनली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जीवन में चीजों को कई बार फेस वैल्यू पे लिया कि जैसा कहा जा रहा है उसको सच माना, और वो सच मानने से समस्या खड़ी हो।
1: खड़ी हो गई।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ समझ। और फिर क्या होता है कि किसी किसी प्रक्रिया में, किसी प्रकरण में क्या समस्या रही इसको कोई नहीं देखता,
1: नहीं
0: रिजल्ट
1: देखता,
0: क्या आ रहा
1: बिल्कुल
0: है इसको
1: उसको देखते हैं, बिल्कुल
0: देखा जाता
1: बिल्कुल।
0: है। तो चीजों को नोट टू टेक
1: ऑब्जेक्टिव
0: ऑन।
1: बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना हम लोग सर एक्चुअली हर मामले में। तो
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समस्या देती है।
1: थोड़ा सा सर संक्षेप में बात कर लें, बैंकिंग की बात हो गई, एनजीओ का जो आपका इंटरेस्ट है उसकी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स आप मानते हैं अपने लाइफ के? केबीसी की भी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से
0: जी
1: अवार्ड्स आपने जीते हैं या और क्या कुछ रहा संक्षेप में अगर बात हो जाए उस पर भी?
0: बैंकिंग में जो प्रतियोगिताएं, अंतर बैंक प्रतियोगिता, इंटर बैंक कॉम्पिटिशन जीते, वो अपनी जगह ही है। इसके अलावा राज्य स्तर पे बेस्ट एम्प्लॉय कैटेगरी में समाज कल्याण विभाग, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने एक अवार्ड दिया। फिर मुझे लिखने पढ़ने का ऐसा बहुत आनंद आता, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी और उर्दू और हिंदी तीनों ही भाषाओं को पढ़ने और कुछ हद तक लिखने का भी आनंद है। लिखने का काम पिछले 5-7 सालों से बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि समय ही नहीं होता, तो
1: जी
0: वो शायद पीछे छूट गया। लेकिन साहित्य पढ़ने का, लिखने का, और तीनों ही तरह के, हिंदी इंग्लिश और उर्दू, तीनों का ही बहुत रुचि है। और ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय है जिनको इस क्षेत्र में, जिनके साथ मैं चर्चा परिचर्चा कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, उनका मेरे को बहुत आनंद आता है।
1: बहुत खूब सर, मतलब एक तरह से आपकी हॉबीज की भी बात हो गई। सर तीन शब्द में अगर आपकी लाइफ को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे?
0: मैंने जैसा बताया था, संतुलन, परिवर्तन और कर्म, या आजकल के बच्चे लोग कर्मा बोलने लगे हैं उसको, योग भी योगा हो गया है। तो ये चीज मैंने मतलब रियलाइज की कि आप में वाणी में, कर्म में, विचार में जो भी है वो वापस आएगा ही आएगा, ये तय बात है। हमको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि अमुक आदमी के जीवन में बहुत आनंद है, बहुत अमुक आदमी ने कुछ गलत किया तो भी बहुत मजे में, बट उसके अंदर क्या है वो तो हमें नहीं पता ना। तो एक चीजें संतुलन में हो, परिवर्तन को हम स्वीकार करें, और अपने कर्म के करते समय ये चीज को ध्यान रखें कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम वो चीज को रियलाइज नहीं करें, नहीं समझे, वो एक बात दूसरी है, लेकिन वास्तविकता यूनिवर्स के नियम, द रूल्स ऑफ यूनिवर्स, वो इस पे काम करते हैं। वहां पे जो भी एनर्जी हमने क्रिएट की है वो हमको, मतलब जो आम भाषा में बोले, जो बोया है सो काटना पड़ेगा, ये निश्चित है। वो
1: निश्चित
0: फॉर
1: है,
0: द
1: बिल्कुल
0: टाइमिंग हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने अगले आदमी को बेवकूफ बना लिया, अगले आदमी को पता नहीं लगा, या वो वॉट एवर, बट जो जो बोया गया है वो तो कटेगा, ये तय बात है।
1: कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल।
0: दो तीन चीजें समझ में आई।
1: कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझ लें
0: जी
1: लेकिन मतलब स्मार्ट तो एक ही है और वो डेस्टिनी या गॉड जो भी आप कह लें।
0: यस वो शेक्सपियर ने कहा है ना, देर इज ए डिविनिटी दैट शेप्स आवर डेस्टिनी, वो चीज।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने बताया लिखने पढ़ने का शौक बेशक आजकल ना रहा हो, लेकिन आप तब तक सोचें अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां, मैं चाहूंगा कि वो श्रोता भी हमारे सुन पाएं। और तब तक मैं श्रोताओं को बता दूं कि सर ने बताया उद्भव विजन के बारे में और अपने मैरिड लाइफ के बारे में भी सर ने बताया कि कितना बड़ा उनकी जीवन संगिनी का, मैम का, उनके पीछे रोल रहा है। तो हमारा एक प्रोग्राम आता है हमराही, उसमें हम सर और मैम के साथ जरूर बात करेंगे किसी न किसी दिन। और उद्भव विजन के बारे में अभी मैंने ज्यादा बातें इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा एक और प्रोग्राम है संकल्प, उसमें हम दिल खोल करके सर से उद्भव विजन के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जी सर, तो पंक्तियां हो जाएं फिर आज आपकी ही लिखी हमारे श्रोताओं के लिए, और उसके बाद चलते चलते फिर आपका मैसेज भी हमारे श्रोताओं के लिए। जी
0: जी संदीप भाई, मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं आ रहा, एक छोटा सा शेर याद मुझे आ रहा है, वो मैं साझा कर देता हूँ। जी जी जी, अर्ज किया है कि हुए इस दिल को भी घुमा कैसे कैसे, हुए इस दिल को भी घुमा कैसे कैसे, पत्थरों में भी नजर आए खुदा कैसे कैसे।
1: वाह वाह वाह।
0: और का शेर है कि वो जो एक बस्ती बसाने को कहता था, वो जो एक बस्ती बसाने को कहता था, उजाड़े उसने मोहब्बत के जहां कैसे कैसे
1: कैसे कैसे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब सर, जबरदस्त।
0: ये शेर मुझे याद आ गया, तो
1: क्या बात है, गजब की लिखनी है सर आपकी। और हम तो यही चाहेंगे कि आपको वक्त मिले आपके इस उद्भव के शेड्यूल में और आपकी लेखनी से कुछ और शानदार शायरियां निकलती रहें। बहुत शानदार रहा सर आपके साथ आज का ये पूरा प्रोग्राम, और आपकी जर्नी को समझना, आपकी बातों को जानना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहीं ना कहीं जो आपने अपनी जिंदगी से सीखा है, आपकी जिंदगी का जो निचोड़ है, वो आपने इस एक कार्यक्रम में मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए भी रख दिया है। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर का काम हो, या फिर आपके दृष्टिबाधित होने के दौरान या अभी तक के जीवन में जो कुछ आपने सीखा हो। तो अब सर मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगे अंत में।
0: संदीप भाई, इस बहुत रुचिकर बातचीत के लिए आपका और रेडियो मधुबन का मैं पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकूं, और आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैसेज देने जैसी हैसियत तो शायद मेरी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि जीवन में गलती करके तो हर आदमी सीखता है, लेकिन समझदार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाल सके। तो प्लीज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पत्थर से आग जलाने का सिलसिला शुरू करे और फिर वो गलतियां करके सीखे और तब तक उसका जीवन खत्म हो जाए। तो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक रादर देन कमिटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम वन्स ओन मिस्टेक्स। अपने स्वयं के जीवन में गलतियां करना और उनसे सीखने की बजाय अच्छा ये है कि दूसरों ने, और बहुत किताबों में और बहुत जगह बहुत इसमें चीजें ज्ञान मिल जाएगा, तो इट्स बेटर कि दूसरों की गलतियों से सीखा जाए तो जीवन में बहुत आगे तक जाया जा सकता।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार सर आपका समय देने के लिए और दिल खोल करके अपने जीवन की बारीक से बारीक बात बताने के लिए। निश्चित रूप से हम सबको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला है आज के इस कार्यक्रम से। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी बातचीत अच्छी लगी होगी, तो फिर देर किस बात की, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 94-14-15-14-15 पर। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे किसी और शानदार, जानदार, असरदार मेहमान के साथ। धन्यवाद।
2: अभी बजे हैं रात के 9, एक मिनट का समय स्वयं को दे।

जीवन की कहानी तुमसे ही शुरू है, तुमसे ही खत्म है। मैं एक शब्द हूँ, मैं एक भावना हूँ, मैं सबके दिलों में राज करती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सरगम के साथ स्वर संगीत की धरनी है, वे आपसी तालमेल से संगीत की कहानी को आगे ले जाते हैं। ऐसे ही सा से साथी, रे से रिश्ता और प से प्यार। यह रिश्ता है प्यार का, विश्वास का, चाहे दो दोस्त हों, जीवन साथी हों, कोई भी रिश्ता हो। क्या चाहिए? अपनापन, मजबूती, इरादे पक्के और एक दूसरे की मान्यताओं को, वैल्यूज को हम माने, हम उसे एक ब्रीदिंग स्पेस दें। जीवन में जो जिस रास्ते पर चल रहा है, उसे हम उसकी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करें। लाइफ स्टोरी में हस्तक्षेप किए बिना उसे आगे जाने दें। यही है सच्चा रिश्ता। तो आज के प्रोग्राम में हम इन गीतों को सुनकर अपनी कहानी को और दूसरों की कहानी को एक नया मोड़ देंगे। सुनते हुए, मुस्कुराते हुए बने रहिए स्वर्णलता के साथ। कार्यक्रम है गुलदस्ता और आप छाए हैं दिल से रेडियो मधुबन पर।
2: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
3: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
2: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है। मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार। मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: क्यों सुने हम दिल की बातें अपनी आवाजों में, लाइफ स्टोरी में हम प्यार के रंग भरें, अपनी लाइफ स्टोरी में और अन्य किसी की भी लाइफ स्टोरी में प्यार के रंग भरने के लिए, उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें हस्तक्षेप किए बिना ही चलना होगा। अगर हस्तक्षेप करेंगे, बहुत ज़्यादा रोक टोक विरोध करेंगे, तो वह रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है। संभलने के बजाय वह और ही कहीं दूर भटक जाता है। तो इन सब भटकाव से बचने के लिए ही तो ये मीनिंगफुल गीत आपके लिए, आपकी खातिर, ओनली ऑन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। किसी की लाइफ को समझ के उसकी कहानी का एक हिस्सा बनने में भी बहुत खुशी होती है। सिर्फ सुन के उसका साथ देना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। गीत की लाइन चाहे कहीं से भी शुरू हो, उसकी सीन, पात्र और कहानी का अंदाजा हो जाता है। भीनी भीनी खुशबू और ताजगी है आज के गीतों में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप है रेडियो मधुबन पर।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लाइफ स्टोरी में, लाइफ की कहानी में पहाड़ों का भी आना होता है, पतझड़ भी आते हैं। पतझड़ में अगर हम फूल खिला दें, एक दूसरे की उतार चढ़ाव भरी कहानी में अगर हम पतझड़ में भी फूल खिलाने का प्रयास करें, तो ऐसे ही आज के हमारे गीत हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। इनको अगर आप गहराई से सुनेंगे तो आपके जीवन में ये फूल खिलाएंगे और अन्य के भी, यानी आपके जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके जीवन के सपनों को और साकार करने के लिए उनकी मुसीबतों में आप एक फूल का कार्य कर सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज के मीनिंगफुल सॉन्ग्स को अपने जीवन में शामिल कीजिए। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुलदस्ता स्वर्ण लता के साथ।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लेके चलेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जब हम कहते हैं तो एक दूसरे की कहानी को और अपनी कहानी को भी स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, शक्ति भर रहे होते हैं। वैसे हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने वैल्यूज हैं और सपने भी अपने होते हैं, पर जब साथ मिलकर चलते हैं तो हमारे सपने एक हो जाते हैं। कई बार कुछ कॉमन सपने भी देखने होते हैं, इससे मजबूती मिलती है। इंडिविजुअल तो जीना आसान है, पर मिलकर चलना उतना आसान नहीं। उसके लिए कई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। रास्ता है कॉमन सपना। हम सबका एक सपना क्या हो सकता है? उस कॉमननेस में ही यूनिटी है। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के गीत हमें इस यूनिटी की ओर ही लेकर जा रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वरलता के साथ आप हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब तक आसपास रहेंगे, जब तक आसपास रहेंगे, गीत सुनेंगे और सुनाएंगे। यही तो हमारी कहानी है रेडियो मधुबन पर। कार्यक्रम गुलदस्ता हर सप्ताह आपके लिए पेश करता है अलग अलग मूड के गीत बेस्ड ऑन वेरियस थीम्स, और इसमें कुछ न कुछ कहानी होती है, कुछ समझने की, कुछ बदलने की, कुछ अंजाम देने की, है ना। तो आज भी हम उसी सफर पर जारी हैं। दोस्तों, अक्सर दुख जो है, दुख में कोई शामिल नहीं होता, लेकिन खुशी में महफिल सजाने के लिए लोग आसपास होते हैं। तो इसी से ही हमें आंसर मिल जाता है कि हमें हमेशा कैसे रहना है, क्या दुख की बात करनी है या खुशी की बात शेयर करनी है। तो ये सारे जो गीत हैं, वो हमें अपनी कहानी और दूसरों की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं, जो हम अक्सर करते आ रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
2: रेडियो मधुबन

0: दिलकश समा है, प्यार ही प्यार है, और अपनी और आपकी जो लाइफ स्टोरी है वह और भी खूबसूरत हो जाता है जब एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार है, कदर है, सम्मान है, अपनापन है, और ये तो वैरायटी लिस्ट है इसकी, अनकही छोटी सी कहानी हम सब की। लेकिन जब हमारी आंखों में एक चमक होती है, हम अपनी आंखों से एक स्माइल करते हैं, तो वह बहुत कुछ कह जाती है। कहानी बहुत बड़ी भी हो सकती है, कहानी को समझने के लिए एक लाइन या एक सीन ही काफी है। ट्रेन में सफर करते भी किसी की जिंदगी की कहानी को हम जान लेते हैं। किसी की जिंदगी की कहानी स्कैन कर लेने का पावरफुल लेंस आंखों में होती है। रास्ते में एक व्यक्ति को जब आप ऑफिस से लौटते हुए देखते हैं, उसकी आंखें भी बहुत कहानी कहती हैं। क्या ऐसी कहानी को आप पढ़ पाते हैं? तो आइए आज हम ऐसी कहानियों को पढ़ लें और दुआओं से उनकी जिंदगी की कहानी को एक सुंदर मोड़ दें, है ना? सुनते हुए मुस्कुराते रहें और सुनिए अगला गीत।
1: मैं शिवराज सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: दूसरे के लिए ज्यादा कमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में दुआओं का एक घर बना लेना है और उस घर में इतनी ताजगी हो, जिंदा दिली हो, उस घर में इतनी खुशबू हो कि वह घर जो है हम सब के लिए एक वरदान बन जाए। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, ऐसे ही हम हर सप्ताह मिलेंगे। आज के प्रोग्राम के गीतों को आप पसंद कर रहे होंगे और जब भी हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करते हैं और किसी की लाइफ स्टोरी को सुन रहे होते हैं, तो उस समय हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि वह इंसान अपने जीवन में कामयाब हो, वह अपने सपनों को साकार कर सके और वह हमारे जीवन में भी एक अभिन्न हिस्सा बनकर रहे, ताकि हमारा आपसी तालमेल एक दूसरे के लिए सुखदायी हो। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह नए पन को लिए, नया पन भरने, सुनते हुए मुस्कुराते हुए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मध्य हैं पंडित जीवराज श्री माली जी, जो जोधपुर से हमारे मध्य पधारे हैं और सोशल मीडिया पर आप उन्हें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि कितना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। आध्यात्मिकता के प्रति हम सबकी रुचि तो है, हम भक्ति भी करते हैं, कई हम पूजा भी करते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद जो पूजा सामग्री है उसे सही से विसर्जन करते हैं? तो ये सारे बातों के बारे में आज हमें पंडित जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने एनवायरमेंट के लिए कार्य शुरू किया, जो भक्ति पूजा सामग्री है उसे कैसे लोग डिस्पोज कर रहे थे गलत तरीके से, उसके सही तरीके क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कार्य शुरू किया। तो आइए स्वागत करते हैं पंडित जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: स्वागत है बहन जी, जय श्री राम, नमस्कार।
0: नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 9 वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप अपने प्रकृति के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं, जो भक्ति पूजा सामग्री है और प्रकृति, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है, आप कैसे प्रकृति को हेल्प कर रहे हैं?
1: देखिए, वैसा जोधपुर में गुरुओं का तालाब है जोधपुर के अंदर, तो वो करीबन 9 साल पहले मैंने देखा था, तो मछलियां, पानी कम था, मछलियां मर रही थी, इधर से गंदगी से अठा पड़ा था, लोग इस तालाब को अपना डंपिंग बना दिया था लोगों ने। जैसे आसपास वाले लोग थे वो आते थे, शौच करके जाते थे और कचरा भी घर का डाल के जाते थे, बहुत ही गंदा देखा था मैंने। फिर मेरे विचार में आया कि मैं क्यों नहीं इसको थोड़ा ठीक करूं, तो मैंने ठीक करने के लिए सफाई अभियान किया, तो उसके अंदर से तस्वीरें निकली, मूर्तियां निकली, कोई छवि छल्ले में भगवान का निकला, कोई घर में चाबी टांगने का जो है उसके अंदर भी भगवान की जो फोटो थी वो भी डाली, देखी मैंने, हर जगह भगवान को देखा
0: जी।
1: तो इसके लिए मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इसको अपन ठीक कर सकते हैं। जो है पर्यावरण, जलचर जीव जल में रहते हैं, तो उनका प्रकृति के ऊपर हमारा भी भाव होना चाहिए, हमारा एक प्रेम होना चाहिए कि हम अपना पानी पीते हैं, एक्वा गार्ड का पानी पीते हैं, तो उनको भी अच्छा पानी मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की कि जो निर्माल्य है, पुष्प है, माला है, तो उसके लिए मैंने अलग से वहां पर बना दिया है। फिर बाद में तस्वीरों के लिए भी मैंने अलग से व्यवस्था की है। इसका हम रिसाइकलिंग करते हैं तस्वीरों का। रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जो मूर्तियां है, कागज की जो अभी जैसे कि पत्रिका है, पत्रिका के अंदर भगवान है, तो हम पत्रिका का भगवान है तो भगवान रास्ते में नहीं डालेंगे, पीपल में चढ़ा के जाएंगे, कहीं पेड़ के नीचे देखेंगे। तालाब के आसपास में इतनी बिखरी रहती थी, तो मेरे विचार में आया था इनका कुछ निस्तारण किया जाए। तो निस्तारण में मेरे मन में आया कि जो पत्रिका है, फोटो है, फ्रेम है, तो इसके अंदर से फोटो फ्रेम है तो उसके अंदर से फोटो निकाल दीजिए, अपना ये रिसाइकलिंग में चला जाएगा। जैसे कि हम बंगार वाले को दे सकते हैं, बंगार वाले को देंगे तो फिर बाद में आगे फैक्ट्री में जाएगा, तो पत्रिका है या किसी भी तरीके से जो फोटो है, कागज की जो चीजें है, वो अपन रिसाइकलिंग के लिए देंगे तो अपना उसके अंदर वापिस उसकी रामायण बन जाएगी, क्या मालूम भागवत बन जाएगी, क्या मालूम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताब बन जाएगी। तो इसके लिए ये पुस्तकों का, कागज का हमने ये ऐसा निस्तारण करते हैं। वापिस उसकी प्लास्टिक की जो फ्रेम रहती है, लोहे की फ्रेम रहती है, वो हम बंगार में दे देते हैं, वो भी अपना वापिस उसका भी पैसा आता है।
0: जी सर। और सर, जैसे आपने कहा निस्तारण करने के लिए भी आपने जगह बनाई है, जैसे निर्माल्य की बात आपने कही, पुष्प को अलग और तस्वीरों को अलग रिसाइकलिंग करने के लिए, और जैसे लोगों की मान्यता है, आपने ये बात भी कही कि तालाब के आसपास विसर्जन करते हैं या पीपल के पेड़ हैं, तो ये लोगों की मान्यता को हानि तो नहीं पहुंचा रहे?
1: नहीं, देखिए, जल को अच्छा रखना, हमारे पास आज जल आ रहा है, बाहर से आ रहा है, गंगा जल आ रहा है, बाहर से आ रहा है, भागीरथी जो नदी है उसका पानी आ रहा है, नहर से आ रहा है पानी। अगर हमें पानी वो नहीं मिले तो इस तालाब का पानी, आने वाले भविष्य में इस तालाब का भी पानी पीने पड़ेगा हमें।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसके लिए पानी अच्छा, हमारा जैसे अधिकार है पानी अच्छा पीने का, वैसा जलचर जीव है, जैसे वानर है, बंदर भी आते हैं वहां पर, पशु भी है, पक्षी भी है, जलचर जीव भी है, उसके अंदर आपको हजारों मछलियां है उसके अंदर, तालाब के अंदर, गुरों के तालाब के अंदर, कछुआ भी
0: जी
1: है उसके अंदर, तो उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी अच्छा पानी मिलना चाहिए, उनको खराब नहीं करना चाहिए। अभी जो निर्मल की जो चीजें है वो पहले जैसे नारियल था, नारियल जो है ना, नारियल भी
0: जी
1: वो
0: जी
1: पानी में डालते हैं, तो पानी में डालते उसका भी निस्तारण होता है। नारियल हम पानी में नहीं डाल करके हम इसको, हमने बनाई हुई जगह जैसे कि नारियल कलश बनाया हुआ, विसर्जन कलश, तो उसके अंदर नारियल
0: जी
1: डाल के जाते हैं, समझदार भी लोग भी है
0: बिल्कुल
1: और समझाने पे समझ भी रहे। 80% लोग हमारे तालाब के ऊपर आते हैं और वो हमारे कई अनुसार कार्य कर रहे हैं और हमें भी खुशी होती है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। नारियल को हम तोड़ करके

0: किसी के जीव के काम आए तो वो हमारा पूजा किया हुआ, पूजा पाठ का जो किया हुआ नारियल है, तो हम अपना
1: बिल्कुल
0: उसको निस्तारण के लिए दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बात मानते हैं, लेकिन जब आप पहली बार आपने किया होगा या सोचा होगा, 2016 से आप ये कार्य करते आए हैं,
0: बिल्कुल,
1: और लगभग आपने 100 ट्रैक्टर ट्रॉली कचरा तालाब से निकलवाया था, तो
0: निकाला मैंने
1: तब
0: खुद ने,
1: वन
0: वन
1: हैंड
0: हैंड,
1: निकाला, ये
0: हाँ
1: बहुत बड़ी बात है, तो ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपने पहली बार जब सफाई शुरू की, तब उस समय की स्थिति क्या थी और लोगों ने आपसे क्या बातचीत की थी उस समय?
0: लोग आए थे, उन्होंने कहा ये अतिक्रमण करेगा तालाब के ऊपर, इसने ये अपना ये इधर कुछ करेगा। फिर बाद में आसपास वाले लोगों ने मेरे को पूछा कि आपकी क्या मनसा है,
1: जी
0: तो मैं बोला मैं सवेरे अपना मॉर्निंग वॉक में आता हूँ, घूमने के लिए आता हूँ, तो घूमने के लिए आता हूँ। मेरा कोई अभी जैसे कोई व्यायामशाला में जाता है, 2 घंटा व्यर्थ करके आता है, ठीक है, वो उसकी इच्छा है, वो कैसा क्या काम कर रहा है उसके ऊपर है। लेकिन मैंने डिफरेंट किया कि अपन व्यायाम भी हो जाए, हमारी कसरत भी हो जाए, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर काम शुरू किया। अभी हमारे पेड़ भी लगाए हुए, करीबन 350 मैंने पेड़ लगाए हुए हैं।
1: 350 पेड़ लगाए हुए आपने तालाब के
0: हाँ,
1: आसपास या?
0: तालाब के आसपास पूरे, और अपना उसके अंदर से तालाब के आसपास 350 पेड़ लगाए, उसके अंदर से अपना ऐसे ऐसे है, नीम के, बेल के, आंवले के, अर्जुन के, अशोक के, ऐसा मतलब जिसके अंदर फल और फूल लगे, ऐसा हमने पेड़ लगाए हैं, आयुर्वेदिक के अनुसार लगाए हमने पेड़।
1: जी, और जिसकी वजह से शायद ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है, जो गर्मियों के मौसम में पानी की कमी होती थी।
0: हाँ बिल्कुल बढ़ गया है। फिर हमारे इधर जो पानी की कमी थी ना,
1: जी
0: हमारा क्या है कि तालाब थोड़ा ऊपर है और ये जो जमीन नीचे है, तो
1: जी
0: इसका
1: जी
0: रिसाव होकर के पानी पानी सूख जाता था। यहाँ पर
1: जी
0: एक समय ऐसा था कि जैसे कि हम ट्रैक्टर की ट्रॉलियों की और ट्रैक्टर से टैंकर से डलवाते थे हम पानी इसके अंदर से,
1: जी
0: तो मेरे मन में आया कि भाई क्यों नहीं इसके पानी का भी निस्तारण किया जाए, कुछ
1: जी
0: कुछ किया जाए उसके मछलियों के लिए। टैंकर डाल से हम कितना कितना हम कर सकते हैं, 10 साल ट्रैक्टर डालेंगे, 10 साल ऐसा होगा। तो फिर मेरे विचार आया कि क्यों नहीं ट्यूबवेल खोदी जाए,
1: जी
0: तो हमने ट्यूबवेल खोदी, तो उसके अंदर 700 फुट खोदी, उसके अंदर 1,20,000 रुपया लगा, लेकिन उसके
1: जी
0: अंदर पानी नहीं आया। फिर हमने सेकेंड बार में नीचे रोकड़िया बालाजी से करीबन हमारे 700 मीटर नीचे है, उधर से हमने ट्यूबवेल खोदा के पानी लिफ्ट किया तालाब के ऊपर, ट्यूबवेल खोदा करके आज
1: जी
0: हम 50, अभी जैसे सर्दी का मौसम जाने के बाद में गर्मी के मौसम आएगा, उससे पहले हम सर्दियों में अभी जैसे कि जनवरी के बाद में हम चालू कर देंगे ट्यूबवेल, तो 50,000 लीटर रोज का पानी डालेंगे उसके अंदर से।
1: क्या बात है, जी जी बिल्कुल, और आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। एक बात पूछना चाहेंगे, 2018 में आप हाईकोर्ट जाकर के मूर्ति विसर्जन और पूजा सामग्री
0: हाँ
1: तालाब में
0: लोग,
1: डालने पर रोक लगवाई थी,
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल,
1: हिम्मत कहाँ से आई, हिम्मत कहाँ से आई?
0: ये अपना जैसे कि मैं सफाई कर रहा था और लोग कह रहे थे तो क्या कर लोगे, तो फिर बाद में जैसे कि हमारे जो बहुत से जन जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई आप कोर्ट में जा सकते हो, आप अपना कोर्ट में जाकर ये करो, आप PIL लगाओ, जनहित याचिका लगाओ।
1: जी
0: तो मैंने जनहित याचिका लगाई, उसके अंदर से हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसके अंदर किसी भी तरीके से मूर्ति, नारियल वगैरह किसी भी तरीके से कोई भी चीज नहीं डाल सकते हो।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि हम इसका निस्तारण कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और जैसे
0: हाँ
1: आपने गायों को खिलाने की बात कही, आज गाय कचरा खाती हैं तो उसमें प्लास्टिक की थैली भी खा लेती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये मैसेज स्प्रेड किया और लोग मान भी रहे हैं, और जो रेडियो में भी अभी इस वक्त सुन रहे हैं तो जरूर इसे वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ऐसे उम्मीद है मुझे।
0: अभी
1: तो
0: जैसे कि तालाब के ऊपर जो लोग आते थे तो उनकी आदत थी कि अपना बस खिलाया और जहां पर खाया वहां पर छोड़ के चले गए। अभी जंगल के ऊपर हमारा तालाब है ना, बहुत बड़ा तालाब है जोधपुर के शहर के अंदर, और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है यहाँ पर तालाब, वातावरण भी ठीक है, और यहाँ पर एक टाइम में जैसे कि आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठने का अड्डा था, शराबियों का अड्डा था, यहाँ पर,
1: जी
0: लेकिन यहाँ पर से धार्मिक लोग आने लगे, मछलियों को दाना देने के लिए आने लगे, गायों

0: को दाना डालने के लिए आने लगे, पक्षियों के लिए भी हमने, पक्षियों को कुत्ते मार देते थे तो पक्षियों के लिए भी हमने जगह बनाई है।
1: जैसे कि किस प्रकार से बनाया आपने पक्षियों के लिए जगह?
0: हमने पक्षियों के लिए अपना रेलिंग जैसे होती है ना लोहे की, तो
1: जी
0: करीबन 30x75 की हमने बनाई हुई है ये अंदर दाना डालने के लिए,
1: ओके,
0: तो उसके अंदर
1: ताकि
0: से,
1: कुत्ते वहां
0: हाँ
1: से
0: अभी
1: बच।
0: अभी सुरक्षित है, अभी मतलब कुत्ते वगैरह उसके अंदर नहीं जा सकते हैं।
1: जी, और आपने जो जलचर जीवों की सुरक्षा के लिए आपने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया था, उनके
0: हाँ
1: अवैध
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पकड़ रोक
0: 2018 में
1: सके।
0: लगाया था, तो फिर वो विजन थोड़ा उसका कम आता था उसके अंदर, जैसे कि जो कोई अगर डाल रहा है सामान तो उसके अंदर से उसका फेस वगैरह थोड़ा बरोबर नहीं दिखता था। तो अभी मैंने 2024 में अपना अच्छा कैमरे लगाए हैं और चारों ओर से कैमरे लगाए हुए हैं, जहां पर पहले मछली भी पकड़ते थे लोग तो वहां पर भी कैमरे लगाए हैं, कचरा डालते हैं तो वहां पर भी कैमरे लगाए हैं, तो हर जगह
1: कितने
0: मैंने
1: परिवर्तन
0: कैमरे
1: हो रहे
0: लगाए
1: हैं
0: रखे हैं। हाँ
1: जी सर, मैं पूछना चाहूंगी कोई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला इससे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव देखने को मिला। हमने एक जन को हमने पकड़ा था सीसीटीवी के माध्यम से, हमारे अपना हाउसिंग बोर्ड के कोई थे व्यक्ति,
1: जी
0: तो उनके घर पे लेकर के गया था मैं अपना, ये जो यहाँ पर निर्माल्य डाल के गए थे तो उनके घर पे लेके गया था मैंने,
1: जी
0: उनको
1: कहाँ
0: वापस
1: कहाँ आपने
0: दिया,
1: दिखाया बताया जी,
0: उनको
1: वापस
0: वापस दिया, उनको वापस दे करके आया। उन्होंने पहले तो नाराजगी जाहिर की, फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग ऐसे तालाब में नहीं डालना चाहिए, उनको कहा जलचर जीव है, अपने मटके के अंदर कोई कचरा डालेगा क्या, तो वैसे कि वैसे जलचर जीव है ये, उनका जलचर जीव जीने का अधिकार है, उनको पानी अच्छा मिलना चाहिए, तो वो भी समझ में आ गए, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी गलती हो गई।
1: जी तो जैसे पूजा सामग्री हो, या फिर जो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम माता जी की भी आराधना करते हैं, तो हम मूर्ति घर पे लेके आते हैं, फिर विसर्जन भी करते हैं, तो
0: नहीं
1: फिर क्या और विधि है?
0: ये गलत है। देखो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर पे गणेश जी नहीं है, सबके घर में गणेश जी है,
1: जी,
0: तो उसी गणेश जी की जैसे, देखो छोटा और बड़ा उसका कोई तुलना नहीं होती भगवान की, भगवान छोटे में विराजमान रहते हैं बड़े में विराजमान रहते हैं। आजकल क्या लोगों का दिखावा ज्यादा हो गया है, कोई जैसे कि 2 फुट की मूर्ति लाएगा तो वो दूसरे मोहल्ले वाला अपना 6 फुट की मूर्ति लाएगा, हाँ वो 6 फुट की मूर्ति लाएगा तो वो कहेगा मैं 10 फुट की मूर्ति लाऊंगा, तो ये गलत है। उसके अंदर से जैसे कि 10 फुट की 8 फुट की मूर्तियां है तो उसके अंदर से लकड़ी का बना ढांचा बना करके फिर उसके अंदर से पीओपी के द्वारा ये किया जाता है, तो लकड़ी पहली बात तो जैसे कि शास्त्रों में दिया गया है कि जल में विसर्जन करना चाहिए, फिर बाद में दिया हुआ कि भूमि में विसर्जन करना चाहिए, भूमि में भी गाड़ लेना चाहिए, फिर बाद में पवन है सोने में भी छोड़ सकते हैं, तो ये अपना जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी पानी में गलेगी नहीं, इतना इतने जो गाढ़ी लकड़ी रहती है वो पानी में गलेगी नहीं, जलचर जीवों को नुकसान पहुंचाएगी, पीओपी है बिल्कुल हानिकारक है जलचर जीवों के लिए, उसके ऊपर पेंट की हुई है वो भी अपना जलचर जीवों को नुकसान पहुंचाती है, तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम, हमारे सनातन श्रुति में कहती है कि हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, नुकसान करके आप अपना कोई पूजा पाठ करते हो तो वो गलत है।
1: जी ओके, तो हमारे समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसे हम समझ करके पूजा अर्चना कर सकते हैं
0: हाँ
1: प्रकृति को बिना हानि पहुंचाते हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गणेश विसर्जन का जो कार्य हुआ है वो लोकमान्य तिलक ने बंबई में किया था, अंग्रेजों के शासन में उन्होंने, क्योंकि खुली राजनीतिक तरफ से कोई मीटिंग नहीं ले सकता था, तो इसके लिए उन्होंने, लोकमान्य तिलक ने अपना घर घर गणेश जी बिठाने का, अपना गांव गांव में गणेश जी बिठाने का अपना उन्होंने संकल्प लिया था, और जहां पर गणेश जी बिठाते वहां पर मीटिंग की, फिर बाद में उधर का कहते थे कि आज की मीटिंग यहां पर हो गई, गणेश जी बिठा दिए, दूसरे दिन विसर्जन कर दो, फिर बाद में दूसरे दिन वहां पर मीटिंग की, तीसरे दिन विसर्जन कर लो, चौथे दिन दूसरे गांव में मीटिंग की, फिर बाद में विसर्जन कर दो, तो ये हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए ये किया था, लेकिन ये अपना जो कार्य है अभी मतलब हिंदू समाज बिखराव की ओर है।
1: ओके, तो हमें सही तरीके से पूजा करनी है और प्रकृति की रक्षा करते हुए, ये आपका कहना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति की बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। देखो तालाब में भी पूजन करने आते हैं लोग, पीपल में भी पूजन करने आते हैं, भगवान जो तालाब में भी भगवान है और पीपल के अंदर, इसको अश्वत्थ कहते हैं, भगवान नारायण का रूप है पीपल, तो पीपल में भी कचरा नहीं डालना चाहिए, निर्माल्य नहीं डालना चाहिए, तालाब में भी नहीं डालना चाहिए।
1: जी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट देते हैं प्रकृति को भी और परमात्मा को भी, और इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब नहीं डालना चाहिए, उसको निस्तारण करने के सही तरीका है और हम ढूंढ भी सकते हैं। तो आपसे ये
0: बिल्कुल
1: पूछना चाहेंगे कि जो जलीय जानवर जिनको नुकसान पहुंचा है, कुछ एग्जाम्पल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल। जैसे
1: जी
0: कि अभी मृत लोगों की तालाब के अंदर भस्मी डाल के कट्टे डाल के चले जाते थे, मृत व्यक्ति के कपड़े डाल के चले जाते थे वहां पर तालाब के अंदर। तो तालाब के अंदर जो मृत व्यक्ति के कपड़े डालते थे, जैसे शर्ट है तो शर्ट की बांह में मछली जो है ना फंस जाती थी और उसके अंदर उसकी जान चली जाती थी। बहुत से कछुए मर गए उसके अंदर से फंस करके
1: जी
0: शर्ट के अंदर। कोई लेडीज का जो अपना सलवार है उसके अंदर से फंस करके उसके
1: कपड़ों
0: उसके
1: में
0: हाथ,
1: बस।
0: हाँ उसके अंदर फंस करके मर गए हैं। तो हमने निकाले हैं, हमने देखे हैं, आंखों से देखे हैं, और हमारे बहुत दुख हुआ कि भाई ये कछुआ की 1000 साल की उम्र है और उसको अपना इसकी इतनी छोटी अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई है। उसका मृत्यु का कारण यही है, ये शर्ट है, ये मृत व्यक्तियों की जो भस्मी, मृत व्यक्तियों के जो कपड़े थे वो डाले, इसके लिए इसकी मौत हुई है, अन्यथा इसकी मौत नहीं होती थी।
1: जी, हम पुण्य जमा करने के चक्कर में कई बार बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और सही तरीके से नहीं करते हैं। जैसे आपने ये बात भी हमारे साथ आपने शेयर किया,
0: बिल्कुल
1: कछुए और मछली ये सब मर जाते हैं कपड़ों के अंदर फंस के।
0: बिल्कुल
1: जी, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए जो
0: उन्हें देख,
1: परंपरा आ रही
0: हाँ
1: है? हाँ, जी बताइए।
0: देखिए परंपरा तो पहले तो क्या है कि जो जैसे कि पार्थिव शिवलिंग है, गणेश जी है, तो वो क्या रहते थे कि मिट्टी के बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे, जिस तालाब से लाते मिट्टी उसी तालाब में डालते थे।
1: ओके जी
0: अब क्या है कि ये जो पीओपी की आ रही है अपना ये मूर्तियां, दूसरी बात प्लास्टिक की आ रही है मूर्तियां, तीसरी बार अपना जो ये मेटल वगैरह दूसरी चीजें आ रही है, तो मेटल की तो कोई डालता नहीं है मेटल की कोई नहीं डाल के जाता है, बस ये
1: जी
0: पीओपी की डाल के जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है।
1: जी ओके
0: इसका
1: बिल्कुल
0: निस्तारण जैसे कि किया जा सकता है, जैसे कि अभी प्लास्टिक की मूर्ति लाई, तो प्लास्टिक देखो शास्त्र में लिखा गया कि मूर्ति जो लाओ तो उसके अंदर सोने की, चांदी की या धातु की, किसी प्रकार पीतल की ला दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसी लानी चाहिए या लकड़ी की बनी हुई होनी चाहिए या पत्थर की होनी चाहिए, कागज की भी बनी होनी चाहिए, भले कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी निस्तारण हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कागज की जो है ना उसको पानी में गाल करके उसको अपना 3 4 दिन अगर घर पे रखे टब के अंदर, फिर बाद में उसका जो है पानी का जो है वो आप अपना गमले में या कहीं भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तालाब में डालने से, तालाब में क्या करते हैं, फ्रेम के सहित में, पॉलिथीन के सहित में, पुषप डालने का तरीका भी इनका गलत है। पुषप डालते हैं तो अपना पॉलिथीन के अंदर डाल करके घर के अंदर जो पूजा किया, प्लास्टिक है वगैरह वगैरह जो पूजा का सामग्री पैक करके आया वो भी सब डाल के चले जाते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: जी, बिल्कुल। और आपने बहुत सारे उपाय ढूंढा है कि किस तरीके से हम इसका निस्तारण कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं पूजा सामग्री की, और आपने पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी काम किया है, और
0: बिल्कुल
1: आप जैसे आपने आसपास 350 से ज्यादा पेड़ भी लगाए हैं, तो
0: बिल्कुल
1: वहां के वातावरण में क्या बदलाव हुआ और पंछियों को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हमें बताइए।
0: वहां पर एक टाइम में, गर्मी की टाइम में कोई गाय बैठने के लिए तैयार नहीं थी, कुत्ते बैठते नहीं थे, आज की तारीख में गोरैया चिड़िया जो लुप्त प्रजाति है सबसे, वो अपना गोरैया चिड़िया वहां पर आती है, कोयल बोलती है, अपना पक्षी है वो भी आते हैं और एकदम अच्छे वातावरण में ऐसा जीता है, हमारा मन खुश हो जाता है कि हमें हमें यहाँ पर सुगंध मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल, पंछी अट्रैक्ट होके आ रहे हैं और पेड़ों पर बैठ भी रहे हैं। बहुत
0: बिल्कुल
1: माहौल परिवर्तन हुआ है और सात्विक हुआ है मुझे लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो आपने पहले भी ये बात हमारे साथ शेयर की कि नारियल अब गायों को खिलाना आपने शुरू किया है
0: बिल्कुल
1: और मूर्तियों की तस्वीरों का रिसाइकलिंग करना भी आपने शुरू किया है।
0: बिल्कुल
1: क्या ये हर मंदिर में, हर पूजा स्थल में ऐसा हम कर सकते हैं? तो किससे संपर्क करना पड़ेगा और कैसे करेंगे?
0: देखिए अपना जैसे कि कोई ये निस्तारण के लिए, देखिए नारियल तो अपना पूजा का नारियल है,
1: जी
0: तो पूजा का नारियल है सबसे पहले, तो पूजा का नारियल है तो आप तोड़ करके खुद भी खा सकते हो। सबसे कहता हूं मैं, सभी जो भक्त हैं उनसे सबसे कहता हूं, माता जी की जो पूजा की उसका कलश जो ऊपर नारियल है वो आप तोड़ करके उसका प्रसाद बना करके खा सकते हो। कच्चा है नारियल तो उसको तोड़ करके अपना इटली बनाओ तो इटली की चटनी के बनानी है नारियल की तो नारियल की चटनी बना के साथ में खा लो, कोरा भी खा
1: जी
0: सकते हैं, उपयोग में ले लो। नहीं कर सकते हैं तो फिर बाद में आप गायों को गौशाला में दे दो, गायों को खिला दो। सूखा भी ऐसा ही कर सकते हैं नारियल के लिए। फिर बाद
1: जी
0: में एक बात रह गई है कि वो ज्वारे है ना जो अपना माताजी के लगाते हैं अपन कुंडे
1: जी जी बिल्कुल
0: में, तो
1: जी
0: ऐसा करते हैं लोग अभी ये कुंडे को भी अपना तालाब के अंदर फेंक के चले जाते हैं कुंडे सहित, तो इसका भी हम निस्तारण करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप इसका आप अपना लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप सर्च करके देखो गूगल के अंदर कि जवारे कितने पावरफुल होता है, उसका जूस इतना तगड़ा रहता है, इतना पावरफुल रहता है इम्यूनिटी के लिए अपना, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप खुद भी पी सकते हो, पहली बात तो जूस आप खुद पी लो, नहीं पियो तो आप अपना उसका जवारा का ऊपर निकाल करके गायों को खिला दो, पशु को खिला दो, फिर बाद में उसकी मिट्टी बची है तो मिट्टी को आप गमले में डाल दो, और फिर जो अपना कुंडा है मिट्टी का
1: जी
0: वो आप कुत्ते को पानी पिलाने के लिए भी रख सकते हो, फिर बाद में कुत्ते को पानी पिलाने के लिए रख सकते हो, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रख सकते हो। और ये भी नहीं कर सकते हो तो आप अपना उसको स्टोर में रख दो, अगले साल में वापिस काम आएगा।
1: जी जी
0: हाँ
1: अगले साल
0: अगले साल में
1: जो
0: ले ले सकते हो आप काम में।
1: और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई बार उम्मीद सागर तालाब की भी सफाई की है,
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो आप क्या मानते हैं कि ये मॉडल अन्य तालाबों पर भी हम लागू कर सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आगे का कार्य है कि यहाँ पर अपना कायलाना में जो जल पीते हैं उसको भी
1: जी
0: लोग अपना बहुत खराब करते हैं, और वहां पर भी मेरा लगाने का विचार है, और उम्मेद सागर में भी हमारा लगाने का विचार है आगे का।
1: जी जी
0: हाँ
1: बहुत
0: ये करने काम
1: और
0: करने का विचार है, फिर बाद में हम आगे टीम बढ़ाएंगे और आगे टीम बढ़ा करके हम कार्य करेंगे।
1: जी बिल्कुल, आप टीम की बात कह रहे हैं तो मैं पूछने ही वाली थी कि आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं?
0: हमारे साथ में जैसे कि ये मैं तो करता ही हूं, साथ में अगर मेरे से कभी नहीं होता है और 5 दिन 7 दिन का काम है, और उम्मेद सागर में गया था मैं जब सफाई करने, तो वहां पर
1: जी
0: उम्मेद सागर में सफाई करने गया था मैं, एक दिन गया दूसरे दिन गया, फिर मेरे विचार आया, मैं बोला जल्दी से जल्दी करना चाहिए, फिर मैंने 2 मजदूर साथ में लेके गया दो मजदूर साथ में लेके गया, उनसे भी सफाई करवाई, उनको साथ में लेकर के ये काम करवाया। फिर
1: जी
0: बाद में मेरे दिमाग में आया कि 2 मजदूर से नहीं हुआ, ये जेसीबी से कर सकते हैं, यहाँ पर रास्ता है आने जाने का। हमारे गुरु के तालाब में क्या एक पैक है, अंदर जाने की जेसीबी नहीं जा सकती है, अंदर में हाथ से ही निकालना पड़ता है, आदमी हम खुद ही कर सकते हैं, उधर जेसीबी
1: जी
0: वगैरह नहीं जा सकती है। तो उम्मेद सागर के अंदर मैंने जेसीबी लेकर के जेसीबी से सफाई कराई थी, जो बड़ी बड़ी जो गणेश जी की मूर्तियां माता जी की मूर्तियां लकड़ी की थी ना, तो उसको हमने बाहर निकलवाने के लिए जेसीबी लाई थी।
1: जी
0: हाँ हमने पेमेंट किया पैसा दे करके। मैं इसमें ये एक भी इसमें एक बात जोड़ सकता हूं कि
1: जी
0: मैं जैसे सफाई कर रहा हूं, वैसे कि कोई अगर पैसा वाला व्यक्ति है उसकी सफाई करने की इच्छा है कहीं भी तालाब की, तो
1: हाँ जी हाँ
0: वो भी कर सकता है। कैसे, मजदूर लगा करके भी करा सकते हो आप सफाई, आप जेसीबी लगा करके भी करा सकते हो सफाई, पेड़ लगाना है तो पेड़ की मेंटेलिटी आप अपना रख दो कि भाई हमने करीबन 50 पेड़ लगाने थे, 50 पेड़ के अंदर अपना सप्ते में क्या चाहिए, 2 साल उसकी पालन पोषण के लिए जरूरत रहती है, तो आप टैंकर में पानी कुडवा दो, 50 पेड़ 2 साल में बड़े हो जाएंगे।
1: ओके राइट
0: हाँ पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, तालाब की भी सफाई कर सकते हो। तालाब की सफाई कैसे, कि मजदूर लगा के करवा दो।
1: जी बिल्कुल, अगर पैसे हैं और आपके पास समय नहीं है या फिर आप कर नहीं पाएंगे कोई भी कारण के वजह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
0: हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत पुण्य का कार्य है। शास्त्रों में धर्म शास्त्रों में हमारे बार बार लिखा गया है कि तालाब के पहले हमारे गांव में तालाब खुदते थे, यहाँ पर शहरों में तालाब खुदे हैं, वहां पर शहर वाले लोगों ने भी सहयोग किया है, गांव वाले लोगों ने भी सहयोग किया है, और ऐसे
1: जी
0: ऐसे हमने देखे हैं कि आज भी बहुत सी जगह जो धार्मिक स्थल है वहां पर 4 कुंडा उसके अंदर से मिट्टी निकालने के पैसे, 4 कुंडा आप तालाब खुदाने के लिए मिट्टी डलवा दो बाहर तो आप 4 कुंडे के पैसे दे दो। वैसे वैसे गांव में भी ऐसा सिस्टम था कि आप अपना सफाई नहीं कर सकते हो तो आप खुद नहीं 4 कुंडा बाहर निकाल सकते हो मिट्टी, तो आप मजदूर लगा करके 50 कुंडा बाहर निकालो, मजदूर को पैसा दे दो, आपको फल उतना ही उतना मिल जाएगा।
1: जी बिल्कुल। और जैसे आपके ये कार्य के लिए आपको जोधपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम द्वारा भी सम्मानित किया गया है, तो इस सम्मान से आपकी सेवा यात्रा को कैसे ये प्रभावित किया, क्या मोटिवेशन मिला, ये शेयर करिए हमारे साथ।
0: जैसे कि पर्यावरण के लिए काम करता हूं, तो इनको लगा जिला कलेक्टर को भी और हमारे यहाँ स्थानीय जो स्वयं सेवी संस्था है, समाज को भी जो व्यक्ति है उनको भी लगा कि भाई ये कार्य कर रहा है तो इनको ये सम्मान के लायक है, तो इसके लिए मुझे सम्मान दिया है वो स्वीकार किया मैंने।
1: जी बिल्कुल। और कैसे आप युवाओं को प्रेरित करेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन?
0: युवाओं को कहता हूं मैं, अभी आज सवेरे की बात है, जब 10 जन अपना 10-12 की टीम लेकर के इधर से हमारे तालाब के ऊपर से गुजर रहे थे, तो उनको मैंने उसके हाथ में मैंने बैट देखा, बैट और वो गेंद देखी, तो वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि आपको कुछ मिला क्या उसके अंदर से, कि नहीं हम तो बस हमारी स्वस्थता के लिए ऐसा ठीक है कर रहे हैं, तो आप अपना, उनको मैंने यही कहा, युवाओं से कहता हूं कि आप व्यायाम भी करो, कसरत भी करो, ये व्यायामशाला में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हर संडे
1: जी
0: आप पूरा दिन नहीं दे सकते, काम धंधे में बिजी है, पढ़ाई में बिजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते में एक बार 1 घंटा पर्यावरण के लिए दे, उससे हमारा पर्यावरण की शुद्धि होगी, जलचर जीवों की शुद्धि होगी और हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, 2017 में मतलब गर्मियों में आपने एयर कंडीशनर लगवाया,
0: हाँ
1: लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको चलाया नहीं?
0: हाँ वो एक्चुअली मेरे घर के बाहर एसी लगाया हुआ था, तो एसी के अंदर सर्दी का मौसम आया, और सर्दी का मौसम आया तो उसके अंदर से वो गोरैया चिड़िया ने अपना बच्चे दे दिए उसके अंदर, तो फिर मैंने देखा कि क्या इसके अंदर घोंसला है, और घोंसला बना दिया, बच्चे दिया, तो हमने एसी अपना चालू नहीं किया, और एसी चालू नहीं किया, फिर बाद में वो एसी हमने हटवा दी और उसकी जगह पे हमने करीबन मेरे घर के बाहर आज की तक 24 अपना घोंसला है, मतलब घर है चिड़ियों का, गोरे है चिड़ियों का।
1: जी क्या
0: बिल्कुल
1: जी, तो आप सही मायने में प्रकृति को जानते हुए भक्ति और श्रद्धा अपने अंदर रखते हुए सही तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं हम, ये आप लोगों को सिखाते हैं। तो कई बार आपको ऑपोजिशन भी फेस करना
0: बिल्कुल
1: पड़ा है?
0: हाँ बिल्कुल, आपको मैं क्या बताऊं, हमारा तालाब है, उसके अंदर से तालाब के पास में जो बसे हुए लोग हैं, कैचमेंट एरिया में बसे हुए हमारे कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन उसके जो घरों के जो सोपिट है, जो लेटरिंग और बाथरूम के,
1: जी
0: वो सोपिट तालाब,
1: जी ओके
0: फिर मैंने निगम और वन विभाग को मैंने कंप्लेंट की, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुआ, फिर बाद में मैंने अपना उनको सख्ती से, भाई ये कार्य करो, ये मैं इतना काम कर रहा हूं तो आप भी देखो, तो उन्होंने भी देखा कि भाई ये काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो वो सोपिट तोड़ दिए वहां पर
1: जी
0: निगम ने, तो फिर लोग आए थे मेरे पास में, उन्होंने लड़ाई झगड़ा करने, फिर बाद में उनको लोगों ने भी समझाया कि भाई ऐसा है ना कि जल छोड़ते हैं और आप इतना ये कर रहे हो, गलत है, तो सोपिट अपना नगर निगम तोड़ के गई, और आज हम वो लोग खुश है कि भाई हम यहाँ पर इतने स्वस्थ वातावरण में जी रहे हैं, इतने पेड़ लगा दिए, उनके घर के आसपास में भी पेड़
1: जी
0: लगा
1: जी
0: दिए
1: जी
0: मैंने।
1: बहुत खूब जी बिल्कुल, उसी तालाब
0: हाँ
1: में भी पूजन
0: अभी
1: सामग्री विसर्जन कर रहे हैं, उसी तालाब में भी स्वेज कनेक्शन का पानी जा रहा है, तो ये तो थोड़ा सा गलत था।
0: गलत था, फिर बाद में हमने जो तुड़वाए, तो मैंने कब तुड़वाए, मैंने मैंने देखा मेरी आंख से, फिर बाद में नगर निगम में महापौर थे घनश्याम जी ओझा, पूर्व महापौर, तो उनको मैंने शिकायत की थी, उनको मैंने कहा था ये ठीक कराओ, तो उन्होंने तत्काल अपना सीवरेज के लिए उन्होंने अपना पाइपलाइन की व्यवस्था की, फिर बाद में सीवरेज आने के बाद में हमने नगर निगम वाले को कहा कि भाई ये तोड़ो अभी ऐसा, और उसके अंदर से पत्थर भी आ गया था, फिर बाद में 7,000 मेरे घर के लगे पत्थर, ठेकेदार ने कहा कि भाई अपना ये हमारे तो पत्थर तोड़ने का तो ठेका नहीं है, तो फिर बाद में क्या करे,
1: जी
0: तो फिर बाद में 7,000 मैंने खिसे में से मेरे मेरे जेब से दिया, और फिर बाद में वो पत्थर तुड़वा करके आगे तक सीवरेज लाइन लेके गया मैंने।
1: क्या बात है सर, आपने अपने ओर से प्रयास किया। तो
0: बिल्कुल
1: आप अभी पूछना चाहेंगे कि आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या प्लान है और क्या करना चाहते हैं आप?
0: मेरा तो यही लक्ष्य है जलचर जीवों को अच्छा पानी मिले और पशु पक्षी को अच्छा पानी मिले और पर्यावरण स्वच्छ रहे। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, जल स्वच्छ रहेगा, तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो निरोगी काया सबसे पहली होनी चाहिए, तो यही हमारा लक्ष्य है। सभी का अधिकार है, गाय है, पशु है, पक्षी है, जलचर जीव है, मनुष्य है, उनका सबका जीने का अधिकार है। तो सबका अपना अपना अपने अपने जगह पे अच्छा होना चाहिए, बस मेरा नजरिया यही है।
1: बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा और सही तरीके से हम भगवान का पूजा अर्चना करें, ये
0: बिल्कुल
1: आपका कहना
0: बिल्कुल,
1: है।
0: ये मैं अपना आगे भी कार्य करने वाला हूँ, जैसे कि रोड पे जो दुकानदार कचरा डालता है उसके लिए भी मैं उनको प्रेरित करने वाला हूँ कि भाई मैं उन बाहर निकलूं, लेकिन अभी तालाब से बाहर निकलूं तभी ना, थोड़ा समय थोड़ा कम रहता
1: जी
0: है, सुंदरकांड का पाठ भी करना है, पूजा पाठ भी करना रहता है,
1: जी
0: तो घर बार भी चलाना रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ चलाते हुए करते हुए आप प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं आप। लोगों की दुआएं भी आप तक तो पहुंच रही है। तो रेडियो मधुबन के श्रोताओं को बाय बाय करने से पहले, अनुमति लेने से पहले, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो, या अपने आसपास की चीजों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हालांकि आपके बातों से तो उन्हें प्रेरणा जरूर मिलेगी, लेकिन विदाई लेने से पहले क्या कहना चाहेंगे?
0: बस मैं लोगों से यही कहता हूं कि घर में जो सब्जी काटते हैं तो सब्जी के साथ में, सब्जी के, अभी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है जैसे कि अभी शेविंग की तो उसकी ब्लेड भी उसके अंदर डाल दी थैली के अंदर, सब्जी काट करके उसके अंदर से हरी सब्जियों के पत्ते वगैरह वगैरह भी डाल दिया दिया फिर प्लास्टिक भी डाल दिया, फिर लोहे की केल भी डाल दी, फिर वो क्या करते हैं, गांठ बाल करके बाहर रोड पे डालते हैं। तो इसके लिए गाय भी खाती है, ऊंट भी खाता है, बकरी भी खाता है। पहले गांव में ऐसा मोल नहीं था, अभी गांव में भी ऐसा ही मोल चल रहा है। तो सबसे मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपना खाने पीने की चीज जो है वो बाल करके ही रखे, उनको जीवों को नहीं खिलाए, फिर बाद में प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का निस्तारण करें। हमने ये जो अपना विसलपुर के जो है कान जी, उनसे भी संपर्क किया था, तो हाँ कान जी उनसे संपर्क किया था, उन्होंने मुझे फोन पर बात की थी। तो ये मैंने तालाब के ऊपर प्लास्टिक की पॉलिथीन के लिए पहले तो हम निगम में भेजते थे, अभी मेरे को मालूम पड़ गया कि इसका पैसा बटेगा, इसकी चीजें आएगी, तो इसके लिए पॉलिथीन भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, और गायों की भी बीच में नहीं आएगी तो हम पॉलिथीन इकट्ठा करके हम विसलपुर भेजेंगे, उसका रिसाइकलिंग करेंगे। और हमने कहा हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमें तो सामान बना के दे देना, हमें कुछ के दे देना। तो युवाओं से यही कहूंगा कि आप अपना पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहे, आप शरीर के प्रति जागरूक रहते ही भी जागरूक रहना चाहिए। आप अपना हफ्ते में, सिर्फ अपना हफ्ते में 2 घंटा दो, बस हर व्यक्ति से यही कहूंगा।
1: जी जी बिल्कुल। और आपके सोशल मीडिया पर आप वो पोस्ट भी शेयर करते हैं जो सीसीटीवी के कैमरा के अंतर्गत रिकॉर्डिंग की है कि किसने कुछ डाला, ये सब,
0: बिल्कुल
1: ताकि लोगों में जागरूकता आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डरते हैं लोग कि भाई इधर नहीं डालना है कचरा।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: ये पहल भी मतलब बहुत सराहनीय है कि किसी के फेस नहीं दिख रहा है उसमें, जो मैं देख रही थी आपके प्रोफाइल में,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अवेयर कैसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये
0: बिल्कुल
1: भी आपने जनता को बता। ये बहुत,
0: बिल्कुल
1: आपसे बात करके बहुत सारे चीजें सीखने को मिला हमको, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के सफर।
0: धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आपके जो FM
1: जी
0: उनको भी, पूरी टीम को धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, पंडित जीवराज श्री माली जी जो जोधपुर से हमारे मध्य पधारे थे और जिन्होंने हमें प्रेरित भी किया, इसके साथ साथ सोचने के लिए मजबूर भी किया, और तरीका भी उन्होंने बताया कि कैसे हम प्रकृति की रक्षा के साथ साथ अपने भक्ति और श्रद्धा को कायम रख सकते हैं। तो आप भी ऐसे बेहतर दुनिया अगर बना रहे हैं या आप किसी को जानते हैं तो आप उनके नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, 9414-1415 पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कॉल करके या मैसेज करके भी बता सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
0: धन्यवाद,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़े, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी, जो कि फाउंडर हैं बंसीगिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनवाइटी मेंबर हैं, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं, लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बहन।
1: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ, आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
2: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
1: जी।
2: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में, वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रगति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
1: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
2: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
1: जी,
2: आर्थिक मानसिक शारीरिक सभी प्रकार से
1: जी,
2: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
1: जी।
2: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
1: जी।
2: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
1: जी,
2: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
1: जी, जी।
2: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
1: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
2: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
1: जी।
2: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है, फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है। 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
1: अच्छा,
2: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
1: जी।
2: तो आधा दूध ही हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते, तो उसका शोषण नहीं करना। जो हमारे यहाँ पे कार्य करते उनका भी शोषण नहीं करना और धरती माता का भी। फिर जो आया वो प्रसाद है
1: जी।
2: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं, ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
2: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो। और फिर भी हमने दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी। हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा,
2: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
2: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को, मैं ही बात बोलूंगा बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाए कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस कराए, 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
2: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
2: तो पौधा अनमैच रिस्पोंड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है। खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृतम माध्यम से। तो बिल्कुल बहन, मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशालाज में। तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए, ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है। 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है। यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नहीं, काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए, आने वाला समय कृषि का है। तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे
1: जी। क्या बात है नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है
2: जी? जब से ये कार्य लिया तो दिनचर्या का आता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
2: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
2: और गुरुजी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरुजी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लग जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी,
2: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे
1: जी।
2: नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
2: तो 10 रोग है जिन्होंने हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते हैं
1: जी।
2: स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे लोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो। हमने गौ आधारित पूरी जीएमपी लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी, क्या
2: उसी का उपयोग हम करके
1: जी।
2: तो गाय का उपयोग, जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं। दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
2: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाई निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो पम में और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ, अकेला हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, ये बनाने की परंपरा
1: जी।
2: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपए बिटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच देशी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी?
2: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं। और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं, जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इम्बेलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना। इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है।
1: जी,
2: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
2: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहले एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: जी, नंदीगिर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
2: जी, नंदीगिर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
2: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा एक नंदी निशुल्क जाता है।
1: अच्छा।
2: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
2: तो एक नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकते, और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन कि तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया, नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है, हमें 2x-3x तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। किसान मित्रों, आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी, क्या बात है। तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं
2: जी।
1: कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
2: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम कर, तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके हीरोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने
1: जी,
2: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पधारिए गौशाला
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको क्यों सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया होंगे आशा करते हैं। एक के बाद एक त्यौहार मना रहे होंगे, रक्षाबंधन गया, जन्माष्टमी गई, है कि नहीं? बहुत सारे त्यौहार गए, ये महीना तो सब त्यौहार ही त्यौहार है। और घर में सब कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा करते हैं और शुरू करते हैं। परवा पंडिताइन आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत, आपको अपना प्रोग्राम पंडिताइन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं, शराब की पार्टी। सूरज, सुरेश, रमन तीनों दोस्तों ने अलग से समीर को पार्टी करने के लिए कहा रहा। देख समीर, तेरा जन्मदिन पर शराब की बोतलें खुलेंगी, जमकर डांस होगा। सूरज के दो फलेट हैं, एक फलेट खाली पड़ा है, सूरज वही पार्टी की व्यवस्था कर देगा। दोपहरिया को 12 बजे पार्टी शुरू करेंगे और शाम तक पार्टी चलेगी। ये बात समीर को दो दिन पहले ही सुरेश ने बता दी थी। समीर ने घड़ी में देखा तो दोपहरिया के 11 बज चुके थे। समीर माँ के नज़दीक आकर कहे लगा, मैं जानता हूँ शाम को पापा मेरे लिए केक लेकर आएंगे। हर साल आप मेरा जन्मदिन मनाते आ रहे हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे दोस्त भी बड़े हो चुके हैं। माँ ने समीर को खुश रखने के लिए कहा, तुम अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हो, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे रही हूँ, दोस्तों के साथ तुम पार्टी कर सकते हो। समीर का चेहरा उतरा देख माँ ने 1,000 रुपये और देते हुए कहा, अब तो ठीक है, पूरे 2,000 रुपये तुम्हें मिल चुके हैं। समीर को याद आया सुरेश ने कहा था, पूरे 5,000 रुपये मांगना अपनी माँ से, तभी हम खुलकर पार्टी कर सकते हैं। समीर ने जिद करते हुए माँ को बताया, मुझे पूरे 5,000 रुपये चाहिए, हम सब दोस्त खुलकर एंजॉय करेंगे, खूब खाना पीना होगा। तब माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, समीर बेटा, शाम को पापा भी तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए तोहफा लाएंगे। समीर ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे 5,000 रुपये दे दो, ये बात पिताजी को मत बताना। माँ ने 5,000 रुपये देते हुए समीर से कहा, इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माँ का चेहरा थोड़ा उतर सा गया था, लेकिन समीर का ध्यान कहीं और ही था। समीर ने घड़ी में देखा तो 12 बजे वाले हैं। समीर ने बाइक निकाली, हेलमेट पहना। इतने में सुरेश का कॉल आया। सुरेश ने कहा, हाँ समीर, कहाँ पर हो? घर से 5,000 रुपये मिले कि नहीं मिले? समीर ने सुरेश को बताया, मैं पहले ठेके जाऊंगा, वहाँ से शराब की बोतलें, खाने पीने का सामान लेकर तुम्हारे पास अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ। 1 घंटे के बाद सुरेश ने सूरज से कहा, दोपहर 1 बज चुका है, समीर अभी तक नहीं आया। रमन ने कॉल मिलाया मगर समीर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। सुरेश ने घड़ी में देखा तो दोपहरिया के 2 बज गए। रमन ने सुरेश को कहा, शराब की दुकान तो पास में ही है, इतना समय समीर को कैसे लग रहा है? फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। घड़ी देखते देखते तीनों दोस्तों की शाम हो गई। तीनों आपस में बोले, समीर ने हमें धोखा दिया है। शाम के 6 बज चुके थे। समीर के तीनों दोस्त समीर के घर चल पड़े, ये पता लगाए के लिए कि समीर घर पर है कि नहीं। समीर के घर आस पड़ोसी जमा हो चुके थे, कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे, केक की तैयारी हो चुकी थी। तभी समीर की माँ ने सूरज, सुरेश, रमन तीनों दोस्तों को आते देखकर कहा, समीर शायद तुम तीनों के पास गया था पार्टी के लिए, अभी तक समीर घर नहीं आया। रमन ने बताया, आंटी जी, 12 बजे समीर का कॉल आया था, वो कह रहा था रास्ते में हूँ, फिर उसके बाद कॉल स्विच ऑफ आने लगा। ये बात सुनकर घर में एकदम सन्नाटा छा गया। फ्लैट में खड़े लोग कुछ और सोचने लगे, होता है ना भाई, इससे पहले तभी समीर दरवाजे पर आता नजर आया।
सब ने समीर को घेर लिया। समीर के पिता समीर का हाथ पकड़ के केक के पास ले आए। सब लोगों की मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुरेश ने पूछ लिया, समीर तुम घर से 12 बजे निकले थे, अब शाम के 6 बजे आए हो, 6 घंटे से कहाँ लापता थे। माँ ने भी गुस्से से पूछ लिया, मैंने दोपहर को 5,000 रुपये दिए थे, तुमने उन रुपयों का क्या किया, सबको बताओ। तब एक पड़ोसन बोली, तुम्हारा बेटा समीर अब बड़ा हो गया है, गलत जगह पैसा खर्च करके आया है, इतनी बड़ी रकम तो हमने भी अपने बच्चों को नहीं दी, समीर बिगड़ चुका है, हमें तो शक है किसी लड़की बाजी में पैसे उड़ा कर आया होगा। कुछ रिश्तेदार तो मनी मन आनंदित हुए जा रहे थे, आस पड़ोसी भी यही चाहते थे कि समीर से गलती हो, तभी दरवाजे से एक अधेड़ आदमी झांकता दिखा, फिर घर के भीतर आ गया, समीर के पास खड़ा होकर बोला, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। दोपहर 12 बजे सड़क किनारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरा दिमाग एकदम सुन हो गया, मेरा एक हाथ जेब में था, आते जाते लोग मुझे देखते फिर

रुपए उधार लिए थे कि पिताजी का अंतिम संस्कार कर दूंगा, लेकिन बस में चढ़ने से पहले ही किसी ने मेरी जेब काट ली। अबू कबाड़ी वाला भी दोबारा पैसे नहीं देगा। बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आस पड़ोसी सब जमा हो चुके हैं। मैं खाली हाथ किस मुँह से जाऊं? मैं बिलक बिलक कर रोए लगा। हम गरीबों के पास दौलत तो नहीं होती साहब, लेकिन बस एक सम्मान ही होता है। तब उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और मुझे मेरे घर ले गया। लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मेरे घर आते ही मेरा छोटा बेटा दीपू बोला, पापा तुमने रुपए लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? पड़ोसी तरह तरह की बातें बना रहे थे। तब उसने 5,000 रुपये निकाल कर मेरी बीवी कुसुम देवी को देते हुए कहा, अंकल जी को बस नहीं मिल रही थी, इसलिए अंकल जी को मैंने बाइक पर बिठा लिया और उनके रुपए रास्ते में गिर ना जाए इसलिए मैंने अपनी जेब में रख लिए थे। ई लो अंकल जी के 5,000 रुपये। तब मेरी बीवी ने कहा, इन रुपयों को तुम अपने पास रखो, जहाँ जहाँ खर्च होंगे करते चले जाना। 450 रुपये की अर्थी लेकर सजाई गई। उसने मेरे बूढ़े पिता को कंधा देते हुए शमशान तक आया। वहाँ 2,500 की लकड़ियाँ खरीदी। पंडित जी ने देसी घी मंगवाने के लिए कहा तो 2 किलो देसी घी 1,000 रुपये का मंगवाया। 5,000 रुपये में से जो रुपये बचे वो पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दिए। शाम को वो शमशान से हमारे घर आया, मोटरसाइकिल पर बैठा और कहा, कुछ दूरी पर हमारा घर है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें घर आना है। उसने अपना पता बता दिया। तब मैं इस समीर को जन्मदिन की बधाई देने चला आया। माँ की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी, मैंने कहा था समीर इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आज एक बेटे ने माँ की लाज रख ली। समीर के तीनों दोस्त आज बहुत खुश थे कि हमें समीर जैसा मित्र मिला। रिश्तेदारों के तो गाल फूल चुके थे। समीर का ये पुण्य का काम सुनकर समीर के एक दूर के रिश्तेदार ने कहा, अपनी खुशियों से बढ़कर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। फलेट में खड़े मौजूद सभी लोगों ने एक साथ कहा, समीर जैसा बेटा भगवान सबको दे। केक कटा और सब में बटा। समीर ने एक बड़े से डिब्बे में बहुत सा खाना पैक करके उन अंकल जी के हाथ में थमा दिया। अंकल जब घर पहुंचे, बच्चों से कहा, तुम सुबह से भूखे हो, लो मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ। बच्चों ने जब डिब्बे खोले तो एक डिब्बे में नोट रखे हुए थे, साथ में एक लेटर भी। लेटर में लिखा था, मैं समीर का पिता आपको 5,000 रुपये और दे रहा हूँ, इस समय तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और आपके पिता की 13वीं का पूरा खर्चा भी हम उठाएंगे। मैं आज आपको धन्यवाद दे रहा हूँ इसलिए कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा एक गुनाह करने से बच गया। वो गुनाह है कौन सा? शराब की पार्टी। उकर के तो झूमते कहीं गिरते, लेकिन कितना बड़ा पुण्य किया। तो देखिए भाइयों बहनों, कई बार हम किसी को का समझते हैं और वो का निकलता है, लेकिन आजकल ऐसे लोगों की सही में बहुत कमी भी दिखती है। ऐसे कितने लोग होंगे, हम नहीं समझते कि बहुत लोग ऐसे होंगे, लेकिन अगर ये लोग हैं इसके लिए दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत जिंदा तभी रहती है जब एक दूसरों के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं मदद की भावना रहती है। और वही काम तो वो बच्चे ने किया था। बर्थडे की जगह उसने उनके संस्कार के ऊपर लगा दिए थे वो पैसा। कहे का मतलब, अगर इंसान थोड़ा सा भी समझदार हो तो आज भी चाहे तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति फिर से अपने स्वरूप में आ जाएगी और भारत फिर से जगत गुरु बन जाएगा।
जब कर्म में परमात्मा की याद समाई होती है तो साधारण कार्य भी

ईश्वरी सेवा बन जाता है और थकावट कभी नहीं आती। बहाने आपको रोकते हैं, कोशिशें आपको आगे बढ़ाती है। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब हम पाने की इच्छा से ज़्यादा मिले हुए का धन्यवाद करने लगते हैं। खुश रहने के लिए वजह का इंतजार मत कीजिए, खुशी बांटिए और वजह खुद बन जाएगी। पैदा हुए हैं तो मन में बुद्धि में संकल्प में और बाजियों में दम होना चाहिए। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती, पर प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अस्तित्व की छाती फाड़ दें। अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे अंदर है, हम जिसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे वही उभरती और निखरती जाएगी। आशा करते हैं इन बातों से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ तो सीख रहे होंगे, कुछ तो अपने मन ही मन संकल्प कर रहे होंगे कि नहीं 5,000 तो कहीं 5 रुपया से भी किसी की मदद हो सकती है। कोई भूखा बच्चा है उसको 5-10 रुपया का एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दीजिए। कोई को हम देखते हैं स्टेशन पे कहते हैं कि 20 रुपया दे दो, एक चाय पियेंगे, सुबह से चाय नहीं पिए हैं, हम कहते जाओ चाय पी लो, पैसा हम दे देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, बहुत बड़े बड़े पैसों की ज़रूरत नहीं होती। मन में वो होना चाहिए कि वो भी तो एक आत्मा है, वो भी तो परमात्मा का बच्चा है, हमको भगवान ने दिया है तो इतना तो कर ही सकते हैं और करेंगे। तो जानते हैं आपको जितनी खुशी होगी उतनी किसी और को नहीं होगी। खुद खाने की जगह जब आप दूसरे को खिला देते हैं तो खुशी दो गुना हो जाती है। चलिए भाई यही बात पे एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहे मुस्कुराते रहे। सुनिएगा गीतवा

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई, चाय पीते पीते अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सलोनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण उन्हें अपना स्मार्टफोन से दूरी बना ली रही। फेसबुक ओपन हुआ तो देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उनकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राज शर्मा था। बला का स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। अपनी डीपी में सलोनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करे के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ पर उसने एक बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशनिंग के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो राज का मैसेज रहा। उन्हें उसे खोल कर देखा तो उसमें राज ने लिखा था थैंक यू वेरी मच। उस समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक कह रहा है, फिर भी उसने मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई करा थैंक किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए, और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राज के मैसेज नजर आए। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राज का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसके हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। उसने राज को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के लिए राज ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो बीए कर रहा है और जल्दी उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सलोनी को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जौन दिन उसकी राज से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरा बन सा है। राज उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सलोनी राज से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बात करते रहेंगे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सलोनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं काहे उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था। सलोनी ने यही बात राज से कह दी, रे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए, जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राज ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। सलोनी बड़ी मुश्किल से उससे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, राज ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा। और फिर उस सलोनी को उस जगह के बारे में बताए लगा उसे जहाँ आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर से प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत के कारण राज ने सलोनी को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहाँ पहुँच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती रह गई। वो अपनी फोटो से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सलोनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा करा। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे यार क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर राज ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नज़र नहीं आ रहा था। सलोनी के बढ़ते कदम ठिटक गए। वो पलट कर राज से पूछने ही जा रही थी कि कौन है, कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कस कर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए, और उसके हाथों को राज ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा थी। और पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए राज से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है, शबनम बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर उर्फ राज मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबेच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। छत्तीसगढ़ की सलोनी जो मुंबई से छुड़ाई गई है, ये सलोनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती है और अपनी जिंदगी गंवा लेती है। देखिए भाई, कोई भी बात बताई जाती है सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन तो हमारा लक्ष्य होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको दुनिया की उन बातों से भी अवगत कराया जाता है जो आज दुनिया में घटित हो रही है। आप अपने बच्चों को चेक करिए, अपनी बच्चियों को ज़्यादा चेक करिए। अगर छोटी हैं, जब तक कॉलेज पास नहीं कर लेती, उनको मोबाइल दीजिए, लेकिन वो का कहते हैं इंटरनेट, फेसबुक, इस सब की सुविधा मत दीजिए। गलत रास्ते पर ना चल पाए, अपने विचारों को सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टता और ईश्वरीय प्रेम के अनुभव में समाया है। किस्मत ने क्या नहीं दिया, ये सोचकर उदास मत होइए। उसने जो दिया है वो भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो, उनके दरवाजे पे खुशियाँ खुद चलकर आती हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वो स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं, और वही सबसे बड़ी दौलत है इंसान की। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए, आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी मुस्कान की वजह बनते हैं। ज़्यादा सोचोगे तो दुखी रहोगे, सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे तो सुखी रहोगे। जो अपने व्यवहार से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही लोग सच में दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होते हैं। अगर समुंदर का पानी मीठा होता तो दुनिया उसे भी बोतल में भर कर बेच दे। अगर समुंदर का पानी मीठा होता तो दुनिया उसे भी बोतल में भर कर बेच देती, लेकिन उसका खारापन ही उसकी आज़ादी है। कई बार जिंदगी में कई लोगों का नेचर थोड़ा सा कहते हैं कड़वा है, अकड़ा है, लेकिन वही उसको बचा के भी रखता है। एक बात भी नहीं, अकड़ होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, लेकिन जहाँ नम्रता है वहाँ पे दूसरों को पहचानने की नज़र भी होना चाहिए। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। आपका सकारात्मक चिंतन ही आपकी सफलता का मुख्य सूत्रधार है। कदम छोटे रखो, लेकिन दिशा हमेशा मंजिल की ओर रखो। शिकायत करने के लिए 100 कारण मिलेंगे, शिकायत करने के लिए 100 कारण मिलेंगे, लेकिन शुक्रिया करने के लिए सिर्फ एक शांत मन ही काफ़ी है। जब हम दूसरों की कमियों के बजाय उनकी विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं, तब रिश्ते मधुर और जीवन शांत बन जाता है। यही बात पर चलिए भाई एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे और बच्चे आएंगे। 12 बजे तक तो अपॉइंटमेंट फिक्स है आपका, हमारा। सुनिएगा एक गीत।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सबसे सस्ती राखी और सबसे अनमोल रिश्ता अभी अभी राखी गई है, हम सब जानते हैं, तभी ने रक्षाबंधन मनाया होगा। इस पर से बहुत सुंदर कहानी सुना रहे हैं। कहानी का सत्य घटना है। रक्षाबंधन के दिन एक बहन ने अपने भाई को सिर्फ 20 रुपये की राखी भेजी थी, लेकिन उस राखी के पीछे छिपी उसकी पीड़ा जब भाई को समझ आई तो उसने जो फैसला लिया, उसने पूरे परिवार को रिश्तों की असली कीमत समझा दी। सतारा के पास एक छोटे से गांव में पुराने घर की ओसरी पर मंदा चुपचाप बैठी थी। तन पर पुरानी और कई जगह से घिस चुकी साड़ी थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, इस बार तो मेरा भाई मुझे नहीं भूलेगा ना। रक्षाबंधन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मंदा ने घर की पुरानी पेटी खोली और उसमें से 3 रेशमी राखियां निकाली, साथ में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और 20 रुपये की एक पुरानी नोट रखी। सब कुछ एक साधारण सफेद लिफाफे में रखकर उसने बंद किया। लिफाफा बंद करते समय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरे भाई की कलाई पर मेरी राखी पहुंच जाए, बस इतना ही काफी है। उनको पता रहा कि उनके भाई की है। घर में रक्षाबंधन की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कई बड़े बड़े पार्सल रखे थे। नागपुर में रहने वाली बहन वंदना ने महंगी मिठाई और सुंदर घड़ी भेजी थी। कोल्हापुर में रहने वाली सविता ने सुंदर साड़ी और महंगी राखी भेजी थी। तभी माधव की पत्नी स्नेहा चाय लेकर आई और सहजता से बोली, माधव, बाकी दोनों बहनों की कितनी सुंदर चीजें आई हैं, लेकिन मंदा ताई का हमेशा की तरह साधारण सा लिफाफा आया है, उसमें सिर्फ राखी और 20 रुपये हैं। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वो लिफाफा धीरे से हाथ में लिया। लिफाफे पर बहन की जानी पहचानी लिखावट देखते ही उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो जानता था उन 20 रुपयों की कीमत बाकी सभी महंगी चीजों से कहीं ज्यादा थी। मंदा की शादी 10 साल पहले सांगली के पास एक परिवार में हुई थी। शुरुआत में उसका संसार ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसके ससुर के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। फिर संपत्ति को लेकर भाइयों में झगड़े हुए और मंदा के पति को घर छोड़ना पड़ा। इन सब परेशानियों के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। वो एक छोटी सी किराने की दुकान पर जो काम मिलता करे लगा, पर मंदा ने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे ओंकार को पढ़ाया, पड़ोसियों के घरों में काम किया, कभी खेतों में मजदूरी की तो कभी दूसरों के घर बर्तन साफ किए, लेकिन उसने अपने मायके वालों को अपनी परेशानी कभी नहीं बताई। उसे डर था मेरी वजह से मेरे भाई पर बोझ ना पड़ जाए। माधव को ये सब पता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काम की व्यस्तता के कारण वो भी अपनी बहन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया था। आज उन 20 रुपये की नोट ने उसे अपनी गलती का एहसास करा दिया। उसने स्नेहा की ओर देखा, स्नेहा, इस बार रक्षाबंधन हम यहाँ नहीं मनाएंगे। तो फिर, माधव बोला, इस बार हम सब मंदा के घर जाएंगे और उसे बिना बताए जाएंगे। स्नेहा कुछ पल चुप रही, लेकिन अचानक पहुंचेंगे तो हमारी खातिरदारी की चिंता करने लगेगी। माधव मुस्कुराया, वो हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेगी, इस बार हम उसके लिए कुछ करेंगे। रक्षाबंधन की सुबह माधव, स्नेहा और उनका बेटा अर्थव सतारा के उस गांव में पहुंचे। घर के सामने पहुंचकर माधव कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मंदा आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तन पर वही पुरानी साड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। भाई को सामने देखते हुए उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। दादा आप, उसकी आवाज में खुशी से ज्यादा आश्चर्य था। जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में उसके दरवाजे पर खड़ा है। माधव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हाग वेड़िया, इस बार मुझे तेरे हाथ से राखी बंधवानी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दादा, पहले बताया होता तो घर थोड़ा ठीक कर लिया होता। माधव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मुझे तेरा घर देखने नहीं बहना, तुझे देखने आना था। नेहा मंदा को बाजार ले गई, उसके लिए नई साड़ी खरीदी, ओंकार के लिए नए कपड़े लिए, घर के लिए महीने भर का राशन, दवाइयाँ, चादरें, पर्दे और जरूरी सामान खरीदा। मंदा बार बार कहती रही, भाभी इतना सब क्यों, इतना सब क्यों। स्नेहा हंसकर बोलती, चुप रह, आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। कई बरसों बाद उस घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। मंदा की आंखों में खुशी थी, लेकिन माधव ने एक बात नोटिस की। मंदा बार बार अपने सीने पर हाथ रखती और कुछ देर चुप हो जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं दादा, थोड़ी थकान है, वो मुस्कुरा दी। माधव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई, मंदा ने राखी की थाली सजाई। उसने माधव के माथे पर कुमकुम लगाया और राखी उठाई। तभी माधव बोला, रुको जरा। मंदा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्यों? माधव मुस्कराया, तेरी दोनों बहनें अभी आई नहीं हैं। मंदा को कुछ समझ नहीं आया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, दरवाजा खुला। सामने वंदना और सविता अपने परिवार के साथ खड़ी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दोनों बहनों से लिपट गई। कुछ दिन पहले माधव ने दोनों बहनों से कहा था, हम हर साल घूमने जाते हैं, इस बार कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। फिर वो मुस्कुरा कर बोला था, इस बार हमारी चार धाम की यात्रा हमारी मंदा का घर होगा। दोनों बहनों ने उसी समय हाँ कर दी थी। उन्होंने तय किया था कि मंदा की आर्थिक मदद तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले उसे ये एहसास कराएंगे कि तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। उस रात सभी पास के होटल में खाना खाने गए। मंदा बहुत कम बोल रही थी, वो बस सबको देख रही थी, कभी भाई को, कभी बहनों को, कभी अपने बेटे को, और कभी फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, वो आंसू थे इस एहसास के, मेरे अपने आज भी मेरे अपने हैं। रात को सभी घर के आंगन में गद्दे बिछा कर सो गए। बचपन की पुरानी बातें निकल आई, सब हंस रहे थे। मंदा चुपचाप माधव के कंधे पर सिर रख कर लेटी थी। दादा क्या, आज बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा मायका वापस मिल गया। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मायका कभी खत्म नहीं होता, बस हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मंदा ने आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पे संतोष था। रात काफी हो चुकी थी। अचानक माधव को महसूस हुआ कि मंदा का हाथ बहुत ठंडा हो गया। मंदा, उसने उसे हुलाया, मंदा उठना। कोई जवाब नहीं आया। सब घबरा कर उठ बैठे। दिया जलाया गया, लेकिन मंदा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पे फिर भी एक शांत संतोष भरी मुस्कान थी। तभी सबको एहसास हुआ कि वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शायद उसे दवाइयों से ज्यादा जरूरत थी अपने लोगों की, और शायद इसलिए वो उस दिन तक इंतजार करती रही थी जिस दिन उसके भाई की कलाई पर उसकी राखी बनने वाली थी, जिस दिन उसके आंगन में फिर से बहनों की हंसी गूंजने वाली थी, जिस दिन उससे एक बार फिर महसूस होना था मेरा मायका आज भी मेरे साथ है। मंदा इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई। उसके आखिरी पलों में उसके अपने लोग उसके आसपास थे। उसके सिर पर भाई का हाथ था और उसके चेहरे पर संतोष था। कभी कभी महंगी भेंट वस्तुओं से ज्यादा किसी इंसान का समय, उसका साथ और उसके ये चार शब्द अनमोल होते हैं, मैं हूं ना। इसलिए रिश्तों को सिर्फ त्योहारों पर याद मत कीजिए, किसी अपने से मिलने के लिए बहुत देर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी एक मुलाकात का इंतजार कर रहा हो और आपको इसको खबर भी ना हो। आशा करते हैं ये कहानी से आपने बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ कहीं ना कहीं। हेलो।
2: हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: कैसे हो दीदी?
1: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे दीदी। और अभी अभी जो आप बात बता रहे थे बहनों की, दीदी बहुत अच्छा लगा। हमारे भी एक थोड़ा सा जो ऐसा हो गया कि सही बात है दीदी, मायका तो मायका होता है बहनों के लिए, हमको भी भाइयों की भी बहनों की जो जाना जरूरी है, बहन के घर जाएंगे, ऐसे बात करेंगे, इसको उसको अकेला भी नहीं लगेगा
1: जी।
2: तो कभी कभी बहनों के भी घर जाना चाहिए और उसको ऐसा दिन आना चाहिए कि आप अकेले नहीं,
1: हम भी साथ में हैं।
2: तो इससे कोई ऐसा अकेला भी बन नहीं लगेगा दीदी। तो बहुत अच्छी बात आपने सबसे बात बताई दीदी
1: जी।
2: आज ऐसा है, आज कई कई लोग ऐसे है की बहनों की तरफ देखते भी नहीं है।
1: एक बार शादी कर दी तो सोचते कि हमारा जो कर्तव्य था वो पूरा हुआ, नहीं पूरा खून का रिश्ता है तो कहीं ना कहीं हर कोई अपना पन चाहता है जी।
2: जी तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट तक उसको संभालना है
1: जी।
2: तो अपने हैं और अपने नहीं है तो फिर भी रखते हैं तो अपने होते हैं।
1: बिल्कुल
2: ऐसा नहीं करना है
1: दीदी,
2: बहुत अच्छी बात बताइए। हम भी थोड़ा दिलगिर हो गए कि बात आपकी सुन के
1: जी।
2: बहुत अच्छा लगा दीदी हमको, हमारी तरफ से आपको और सभी हमारे साथियों को मित्रों को नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।
2: नमस्ते।
1: लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है, अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो। स्कूल की परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, स्कूल की परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, पर जिंदगी में परीक्षा कभी भी आ सकती है, इसलिए दुआओं का स्टॉक रखें, कहे कि आड़े वक्त में दुआएं ही काम आती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपने मन को बदलें, परिस्थितियां अपने आप बदलती हुई दिखाई देंगी। कभी अपनी जिंदगी को किसी जरूरतमंद की नजर से देखना, कभी अपनी जिंदगी को किसी जरूरतमंद की नजर से देखना, बहुत सी शिकायतें उसी पल धन्यवाद में बदल जाएगी। शिक्षक का अर्थ है, अभी अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस गया है, शिक्षक का अर्थ है सी से शिखर तक ले जाने वाला, श से क्षमा की भावना रखने वाला और क से कमजोरी दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसे शिखर यानी सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। है कि नहीं, आप भी सोच के देखिएगा। अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं। कुम्हार जानते हैं ना, जो मिट्टी का सब बर्तन बनाता है, तो अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं। कोई भी हमें बना और बिगाड़ नहीं सकता, हम बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, हम ही खुद के कुम्हार हैं। ईश्वर से बुद्धि की लगन लगाना ही ईश्वर का सहारा लेना है। किसी ने का खूब कहा है कि आनंद वहाँ नहीं मिलता जहाँ पर धन मिलता है, सच्चा आनंद तो वहाँ मिलता है जहाँ पर मन मिलता है। जीवन आसान नहीं होता लेकिन शांत मन से सब आसान लगने लगता है। कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा किया हुआ कर्म सामने आएगा। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इसकी कीमत अपनी नींद, सुकून और कभी कभी अपनों से दूर रहकर चुकानी पड़ती है। ये भी दुनिया का कड़वा सच है। दूसरों को बदलने की कोशिश में समय न गवाएं, स्वयं को स्वीकारें और दूसरों को जैसे हैं वैसे ही अपनाएं, यही सच्ची शांति है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सके उस परमात्मा का। सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे शांत मन के भीतर होती है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा होता है उसका अर्थ लंबे समय के बाद समझ में आता है। मेरे किसी भी कार्य पर शक मत किया करो। अपनी चिंताओं का बोझ अपने ऊपर लेकर घूमने की बजाय मेरे को दे दिया करो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं बैठा हूँ ना। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो और दोनों में अंतर समझो। कई बार हम जीवन के अर्थ को ही नहीं समझ पाते। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना नहीं बल्कि समझना पड़ता है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा है ये देखना ही ज्ञानी आत्मा की पहचान है। खुशी चीजों की अधिकता में नहीं संतोष की गहराई में मिलती है। आपकी असली पहचान उन शब्दों में झलकती है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में कहे जाए। मुंह पर तो सभी तारीफ कर लेते हैं। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए हुए जालों में, मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए हुए जालों में जितना इंसान उलझता है अपने बुने ख्यालों में। चिंता नहीं प्रभु चिंतन करें। जन्म के समय नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती है। ध्यान से सुनिएगा, जन्म के समय नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच के सफर को ही जीवन कहते हैं। अब जीवन के इस सत्य को जिसने समझ लिया, बाहर को कोई तकलीफ नहीं है। और अंत में यही कहेंगे, जिंदगी एक आईना है, इसमें वही दिखाई देता है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। इसलिए दिल में प्रेम, वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता रखिए, क्योंकि जो खुशी, सम्मान और अपनापन हम बांटते हैं वही कई गुना होकर एक दिन हमारे पास लौट आता है। कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा किया हुआ

कर्म सामने आएगा। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख गया उसने कम में भी भरपूर जीना सीख लिया। और अंत में यही कहेंगे, मन शांत हो तो परिस्थितियां भी आसान लगने लगती है। जीवन में हमेशा नेक कार्य करते रहे, कोई सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेंगे। हमारे मन के पास हमारी सभी समस्याओं का हल है, पर मुश्किल यही है कि हम सारी समस्याओं का हल अपने भीतर नहीं बल्कि बाहर ढूंढते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभा पंडित आइन अपनी वाणी को विराम देती है। कल 11 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

नाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा

0: यूं ही।
1: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, सबका बढ़ चढ़ कर हिस्सा देखने को मिलता है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का भागीदारी देखने को मिलता है, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनापन लगता है। पहला बार भी जाते तब भी हमें बहुत खुशी मिलता है। आज इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, आज खासकर थोड़ा आबरोड से दूर है झामर जो कि मुंगथला ग्राम पंचायत में है, और सबको मालूम है झामर तो कृषि में बहुत नंबर वन है, खेत में इतने सुंदर खेती करते हैं, चाहे आलू हो चाहे टमाटर हो चाहे बैगन हो, सब चीज़ में उस्ताद है। और सभी अपना जो समाज गारह से आदिवासी समाज के लोग भी रहते, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हम आंगनबाड़ी में पहुंचे झामर फास्ट आंगनबाड़ी। और यहाँ का जो कार्यकर्ता महोदय श्रीमती बॉबी मैम है, तो बॉबी मैडम को भी स्वागत करते हैं। आंगनबाड़ी दीदी के लिए ताली बजा, ताली के साथ स्वागत किया जा रहा है। और हमारा बबीता मैडम उनका साथी सहयोगी और सहायिका आशा सबका तरफ से आज इस कार्यक्रम को रेडी किए। सभी महिलाएं धात्री महिलाएं भी आए हैं, कुछ किशोरी भी आए हैं, और हमें खुशी है छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी आए और गीत भी आज गाएंगे आंगनबाड़ी का जो गीत है वो भी सुनाएंगे। लेकिन सुनते पहले पहला प्रस्तुति हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए परिचय देंगे। बचपन पढ़ाई वगैरह तो कैसे पहुँचे, कार्यकर्ता तक कितना पढ़ाई किए उस चीज़ बताए। आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम बबी बेन है, आंगनवाड़ी झामर फर्स्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।
0: और कितना साल से?
1: साल तो हो गया 40।
0: 40 साल, अरे वाह 40 साल कम है, 4 डिकेड, 1 2 3 4
1: इतना तो हो गए।
0: हाँ 40। और अभी आपका उम्र कितना होगा?
1: 58।
0: मैंने 18 साल उम्र में आप आंगनवाड़ी में आ गए 40 साल का नौकरी हुआ, 18 साल जो छोकरी थी।
1: हाँ 86 में लगी थी तो कितना हुआ?
0: 86 में लगे थे तो उधर हो गया 86-14 साल है, और इधर आ गया 23 साल। इतना नौकरी किए देखे हुए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सभी जो हमारा धात्री महिलाएं गर्भवती महिलाएं और किशोरियां बच्चे आए सभी और एक बार पुनः स्वागत करें, इतना जोर से काम ताली बजाओ। सही में इतना समय तक देखें, गाँव में बहू आती है तब से वो उसका पीछे पड़ जाते हैं और बच्चा उसको स्कूल में दाखिल तक उनका दायित्व रहता है। एक आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होता है वो बच्चों को स्कूल में दाखिल तक वो उसका दाखिल में उसको ज्वाइन करने

0: जितने दिख ले इतने को देते हैं।
1: अच्छा, उसको क्या ध्यान देने के लिए, जो गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान देने के लिए, जैसे भारी काम नहीं करने के लिए?
0: भारी काम नहीं करना, खान पीन में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, कोई फल फ्रूट खाने की बताते हैं।
1: वो खाने से हरी सब्जियां और कठिन काम नहीं करेंगे,
0: काम
1: नहीं और ध्यान देंगे तो आय को
0: का भी
1: क्या फायदा होगा,
0: सुरक्षित
1: बच्चा सुरक्षित होगा। और
0: गर्भवती महिला को भी फायदा ही होगा।
1: कैसे, क्या फायदा होगा?
0: खान पान का ध्यान रखेंगी, वजन उठाना का भी काम नहीं करना, तो उसका बच्चा होगा वो भी स्वस्थ होगा, उसका भी मानसिक सही होगा। और
1: ये भी होना चाहिए, आंगनबाड़ी में सीख जाते हैं, और नहीं तो आजकल उसका जो आए लोग उसका मम्मी वो भी सिखाती है ऐसे करना ऐसे नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और
0: किशोरी
1: के लिए क्या करते हैं?
0: किशोरी के लिए महावारी के बारे में इनको
1: साफ सफाई के लिए,
0: साफ सफाई के लिए जानकारी देते
1: हैं।
0: हाँ।
1: तो आपको आंगनबाड़ी में आते हैं? किशोरिया
0: एक आई है,
1: किशोरिया क्या नाम है देव उनको? ज्योत्सना, ज्योत्सना के लिए ताली। एक किशोरी आए, बाकी बहुत सारे माताएं आई लोग आए हैं, लेकिन किशोरी भी आए ज्योत्सना के लिए ताली बजाए और बहुत अच्छा लगा। आप आशा है?
0: हाँ,
1: इसलिए बहुत होशियार है। बोले बोले कैसे इतना बोल पाती है अभी पता चला है, आशा है। देखो हमारा आशा बीच में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग कर रहा, बोले ये इतना चला कैसे, तब पता चला ये आशा है। तो अभी गुप्त राज पता चल गया, बहुत अच्छा, इसे होना चाहिए है कि नहीं? आशा तो सबका आशा पूर्ण करता है, आशा पूरी माँ, आशा पूरी, आशा का आशा पूरी माँ, उसका भी ज़्यादा जानकारियाँ लेंगे। लेकिन पहले बबीता मैम से बात करेंगे। आपका बचपन में ऐसे आंगनबाड़ी था, आप आंगनबाड़ी में कभी गए?
0: नहीं गए हम तो।
1: तो अभी ये लोग आंगनबाड़ी में क्यों बुला रहे हैं, आप तो कभी गए नहीं आप तो ये बच्चों को क्यों बुला रहे
0: हैं? ये जानकारी लेने के लिए, इनको जीवन का वो करने के लिए।
1: आप तो जानकारी नहीं ले, फिर आप तो आंगनबाड़ी तक तो पहुँच गए।
0: और हम तो स्कूल में जाते थे।
1: अच्छा, स्कूल में जाते थे? कौन सा
0: स्कूल में जाते थे?
1: कितने क्लास पढ़े?
0: नौवीं तक।
1: अरे वाह, उस समय नवीं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ाई की है ना, पढ़ाई में रुचि, पढ़ाई में खेलकूद भी?
0: हाँ, खेलकूद तो सब होते थे।
1: हाँ, उसमें भी गरेसे समाज में, गरेसे हाँ। भाषा का गीत तो आपको आता है?
0: गीत तो
1: हाँ। नहीं आता है, लेकिन आज गीत गवाएंगे सभी से। ठीक
0: हाँ।
1: है, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना, आंगनबाड़ी, ये जो आंगनबाड़ी बहुत सुंदर साफ सुथरा, इतना दूरस्थ जगह में है, पहाड़ी का नीचे, और वातावरण बहुत शुद्धता है, तो इसका राज क्या है, कैसे आप यहाँ तक सिलेक्शन किए? ऐसे जो मकान बनाए आप टेकरी का नीचे, कैसे बनाए, कौन पैसा दिया, और अच्छा जगह सरकार ने दिया पैसा, और जमीन?
0: जमीन भी इनको ही सरकारी।
1: सरकार का जमीन ये?
0: हाँ, तो सरकारी
1: था। सरकार का जमीन?
0: हाँ, बीला नाम की।
1: अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। आज इतना महिलाओं को बुलाए, आई लोगों को, तो लोग का ध्यान कैसे आप स्वास्थ्यवान कराते हैं, किस तरह आप ध्यान देते हैं जो महिलाएं आए? हाँ। आए लोग के लिए क्या क्या सजेशन, आंगनबाड़ी में क्या क्या देते हैं?
0: आंगनबाड़ी में अभी
1: अभी नहीं, कभी जब शुरुआत में,
0: शुरुआत से तो पोषण देते
1: जी,
0: पंचरी देते थे पहला, तो खिचड़ी डलिया बच्चों को खिलाते थे
1: जी जी,
0: और अब दे रहे हैं वो कोरोना के हिसाब से, वो चना की दाल, गेहूं और चावल।
1: अभी भी आता है सूखा
0: सूखा
1: पोषण? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इतना सुंदर जानकारियाँ दिया, आंगनबाड़ी क्या है, कैसे है, और उनका जीवन में जो सक्सेस स्टोरी बताए। कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उस समय का पढ़ाई और आज का पढ़ाई में बहुत अंतर है। उसमें आठवीं नवीं जो पढ़ती, आज का कॉलेज
0: करने
1: उतना भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस समय पढ़ाई बहुत मजबूत और पक्का होता था और शुद्धता रहता था, और बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ एक गीत हो जाएगा सामूहिक रूप में, क्योंकि इतना दूर से आए तो कुछ एक तो आदिवासी गीत तो मांगता है ना, तो हो जाएगा। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। ये था आंगनबाड़ी झामर फास्ट के कार्यकर्ता का साथ साथ, और जो धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे जो आए उनका आवाज होगा, लेकिन विराम का बाद

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज अपना आवाज ही अपना पहचान होगा। आदिवासी लोकगीत का माध्यम से कला, संस्कृति, आस्था, विश्वास को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सही में वो गीत को उजागर करने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा कोशिश करता है, एक मंच प्रदान करता है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को गीत का माध्यम से रख पाते, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई भी काम हो जो जाते हैं। तो आज इतना सामूहिक रूप में गीत गाने के लिए उपस्थित है, तो सभी को राम राम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कौन कौन आए हैं उनका आशा है, अभी आशा को भी स्वागत करता। आशा, आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना, क्योंकि आपका काम तो बहुत जमीन स्तर पर, मैंने डोर टू डोर जाना पड़ता है कि नहीं? आप कहाँ तक पढ़ाई की?
1: मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, अभी ओपन से 12वीं कर रही
0: हूँ। ऐसे होना चाहिए, पढ़ाई का लगन होना चाहिए, चाहे शादी होने के बाद भी पढ़ाई का कोई उम्र होता नहीं है। कभी भी चाहेंगे तो हम ओपन में भी, आज सरकार ने दिया है, हम बीए में भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सीमा का ये जो लक्ष्य रखा बहुत अच्छा है, और वो जो पढ़ी लिखी होगी तो हमारा जो महिलाओं को भी वो शिक्षित कर पाएगी। तो सीमा जी, आज किसको किसको बुलाए, सबका नाम थोड़ा बोलो, कौन कौन आए लोग आए हैं?
1: सोनी बाई है और फुली बाई है।
0: हाथ उठाओ, जिसका नाम लेंगे वो हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ।
1: सोनी बाई है, फुली बहन है।
0: फुली बहन, हाथ उठाओ।
1: ममता बहन है।
0: ममता बहन कहाँ? वेरी गुड, ममता बहन।
1: कमला बहन,
0: कमला बहन हाथ उठाओ। हाँ,
1: और धर्मी बहन,
0: धर्मी बहन, धर्मी बहन, कमला बहन, सभी को जो नाम लिए सभी के लिए ताली बजाओ। ताली बजाने में कम नहीं करने का, कोई टैक्स नहीं लगता है, ताली बजाने में कमी नहीं करना, कुछ हो कि नहीं ताली तो जरूर होगा सभी का, है कि नहीं? तो चलिए एक गीत हो जाएगा अपना आदिवासी गीत, ठीक है? क्योंकि हमारा जो शो है ना, प्रोग्राम, आदिवासी गीत का बिना अधूरा सुना सुना लगता है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सीमा आशा को, कितने सुंदर रूप में और सभी कुशाई में। कुछ विशेषता है, बहुत खुशी लगता है क्योंकि इस तरह आंगनबाड़ी में कोई ना कोई, जो कोई नहीं बोल पा रहा तो सीमा जी ऑलराउंडर है, वो तुरंत अपना मुँह चुप्पी तोड़ी और सबको गीत में इतना सुंदर प्रस्तुति कराई। सीमा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा भाई। आपका चुप्पी को तोड़ दिए, आप तो बोल नहीं रहे थे गीत गाओ इधर देख रहे उधर, किंतु सीमा आगे आकर अपना बात को रखी। इसलिए नाम ही जैसे है, आशा पोस्ट जैसे, और सीमा तो बेहद का सीमा, मतलब कोई सीमा नहीं उसका सब चीज में। हाँ भाई, हमको सीमित क्यों रख रहे हैं, हमको क्यों गीत नहीं दे रहे, हम तो कम नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी को, बहुत सुंदर प्रस्तुत दिए। पीछे कोई बोला और एक गीत हो जाए,
1: लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। ये था झामर फास्ट आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं का आवाज, खासकर आदिवासी लोकगीत।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। आंगनबाड़ी झमर फास्ट के आवाज आप सब सुन रहे हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए और हो जाए, पीछे से कोई बोल रहे हैं और एक लोकगीत होगा तो जरूर, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, सुनते हैं।
2: और एक गीत, आदिवासी गीत में इतना मीठा इतना भाषण आता है, क्योंकि हमारा जो आई लोग सुन रहे, बच्चे भी सुन रहे, ऐसे जाते ना सीख जाते हो भी, है ना, घर से गीत सीखने के लिए इस तरह माहौल जो होता है सामूहिक रूप में। और आंगनबाड़ी में आए तो अपना एक तो फ्रीडम है कि नहीं, सभी को गाओ, ठीक है। और एक गीत हो जाए सीमा।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ कितना सुंदर प्रस्तुति दिए और आदिवासी गीत हो तो ऐसे सबको मनमुग्ध कर देते हैं और हमारा आई लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गांव और अंचल में और खासकर आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी तो है ही ऐसे आई लोग का घर है कहाँ कुछ असुविधा होता है या कुछ होता है तो बच्चों को भेज देते हैं और छोटे छोटे बच्चे का साथ आई लोग भी बच्चे बन जाते हैं और हमारा कार्यकर्ता और आशा और सहायिका ये लोग तो पूरा ध्यान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा आशा से कुछ प्रश्न करेंगे। आशा सीमा जी, जो गांव और अंचल में जाते हैं क्या आपको कठिनाई आती है, क्योंकि महिलाओं को अपना बनाना आपको तो बहुत चैलेंज आता होगा, कोई नया बहू गांव में आते हैं वो चीज़ जमीन स्तर पर जब जाते हैं ना तो आपको क्या क्या कठिनाई आती है और नया बहू को आप कैसे अपना बनाकर फिर आंगनबाड़ी में पूरा एक धात्री महिला तक क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, हमारा सामुदायिक में जो गतिविधि हो रही तो सबको पता हो और हमारा जो नया नए किशोरिया आज है कल तो बहू बनेगी, तो आप किस तरह जमीन स्तर पे काम करते हैं वो चीज बताओ।
1: एक घर में जाते हैं तो बोलते हैं राम राम भाई, पहले तो
0: अच्छा
1: कैसे हो कैसे नहीं है, बैठते हैं उनको पूछते हैं
0: अच्छा
1: क्या तुम्हारे कोई घर में बहू नई आई है, बहू आई हुई है तो उनके कोई छोटे बच्चे हैं कि कोई है कि यू पूछते हैं तो बताते हैं,
0: मैंने बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सब बताते आराम से बताते। तो उनको फायदा होता है क्या बताने से? फायदा ही
1: होता है। तीन महीने से उसका पंजीकरण करवाते हैं, हर महीने जांच करते हैं
2: तो कितना
0: 5,000 रुपए हाँ,
1: और 5,000 प्रधानमंत्री वाले वो मिलते हैं
0: तो उनको फायदा ही है।
1: फायदा ही है
0: तो हाँ, तो श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो हमारा जो बहू है तो उनको भी फायदा मिले। पहला डिलीवरी में सरकार जो 5,000 रुपया वो क्या नकदी देते पैसा ना आता उनका अकाउंट में जाता
1: पैसा अकाउंट में ऑनलाइन करवा।
0: अच्छा, ऐसे आपका झामर फास्ट में कितना महिला को 5,000 दिलाए, कितना लोग?
1: 52।
0: अरे वाह, ताली बजाओ। आज जो इतना महिलाएं आए हैं, आई लोग आए हैं तो इसमें किसको लाभ मिला है 5,000? बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा मैडम अपना बात बता रहे थे जे किस तरह जमीन स्तर पर जो जाते हैं डोर टू डोर, तो जो बहू को अपना बनाने में मैंने उसका जो डिटेल्स से डाटा लेना जरूर होता है क्योंकि उसका पूरा डिटेल्स रखना पड़ता है, क्योंकि उसका आगे उनका जो भी लाभ मिलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसका टीकाकरण वो सब चीज़ देखते हैं। तो सीमा जी, और क्या क्या चैलेंजेज आता है जब जो चैलेंजेज आते हैं जो घर में जाते हैं, तो कभी ऐसे आपको चैलेंज आए बहुत मैंने कष्ट हुआ है भाई ये लोग गाली देते हैं इसे कुछ?
1: प्रेम से बोलते हैं अपन तो उनको समझाते हैं, उनको फायदा भी दिलाते हैं तो वो क्यों बोलेंगे
0: क्यों बोलेंगे सही में आशा का काम ही तो ऐसे नाम पोस्ट का नाम जैसे आशा, सबका आशा पूर्ण करते हैं, चाहे बहू हो चाहे उसका पति हो चाहे उसका ससुर हो चाहे सास हो, सबको उनका फायदा के लिए करते हैं। और सरकार का जो योजना है जैसे आपने बताया जो पहला डिलीवरी में 5,000 मिलता है तो और उनको कुछ भी तकलीफ होता है तो मूंगथला लेते हैं तो अब्रोड लेते हैं डिलीवरी का समय में, है ना? तो आपका सुपरवाइजर आंगनबाड़ी में जो सुपरवाइजर कभी कभी आते हैं, क्या नाम है सुपरवाइजर?
1: मधु
0: मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक गीत हो जाए, है ना? कोई भी गीत गाओ आराम से, आज अपना ही पूरा समय है तो चलिए श्रोता मित्र सुन रहे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। हमारे फास्ट आंगनबाड़ी में गीत बारी बारी सुनने को मिल रहा है, तो और एक प्रस्तुति होगा वो भी सामूहिक रूप में। सीमा जी लीडर है और उनका साथी भी है सहयोग देने के लिए आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता के साथ। पुनः सबको स्वागत करते हैं, राम राम करते हैं, सुनते हैं अगला प्रस्तुति सामूहिक रूप में लोकगीत।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी लग रहा है इस तरह गाँव के जो हमारा आए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और सामुदायिक गीत और खासकर लोकगीत जो अपनापन होता है और इससे खुशी महसूस होते हैं। और अब मुझे तो समझ में नहीं आता क्या भाषा में गीत गाए, कौन सा ऊपर में गीत गाए। फिर हमारा श्रोता मित्र भी, जो भी श्रोता हमारा सुन रहे हैं इस समय रेडियो कार्यक्रम में, आदिवासी गीत तो जो आदिवासी लोग को मालूम होता है, लेकिन हम कितने भी ट्राई करें तुम्हारा हो नाम और गाँव रो नाम, बस बाप रो आयरो, इतना छोटा छोटा हम सीखे लेकिन सब चीज़ तो हमको आता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा हमारा सीमा जो मैम है, आशा है, हमारा आशा को पूर्ण करने के लिए एक गीत, जो गीत गाए जितने भी गीत गाए किस संदर्भ में, किस ऊपर में आप गीत गाए, चाहे शादी में हो, चाहे विदाई का हो, चाहे त्यौहार का हो, तो किस किस ऊपर में आप गीत गाए उसका ऊपर में थोड़ा बता ना कि एक गीत का जो भावार्थ क्या है।
1: शादी के भी गीत गाए हैं।
0: अच्छा ठीक है, और
1: स्कूल के बारे में,
0: पढ़ाई का ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और मैंने शादी का
2: ले जाते हैं तो वो भी गीत गाए, ममेरा ले जाता क्या क्या लेके आए ममेरा माँ।
0: क्या क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या क्या देना है, वो लेना तो बहुत सब तो आजकल लेने के लिए चाहते हैं, लेकिन देना के ही नहीं चाहते। जब देंगे तो दाता बनेंगे, दात्री बनेंगे, देवता बनेंगे, लेना होगा तो चोरी जैसे, भाई भिखारी कौन लेते, भिखारी लोग लेते ना भाई, हम भिखारी क्यों बनेंगे, हमेशा देने का कोशिश करें। जैसे आंगनबाड़ी देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, पंजीरी मुरमुरा सब चीज़ देते हैं, लेकिन हमें सीखना है हमेशा देने के लिए कोशिश करेंगे, लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम दाता बनेंगे और सभी राजा है, आत्मा सभी राजा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सीमा और बॉबी मैडम का साथ साथ जो भी साथी सहयोग आज इतना सुंदर रूप में प्रस्तुति किए, सही में तारीफ का काबिल है, एक इशारा से सबको बुला दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, ताली बजा सभी। अच्छा सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: जारा राजा अजमल जीरा कवरा माता मेणा तेरा लाल रानी ने तलरा बरतार मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जियो आज मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जियो।
2: ओहो उषा दीदी राम राम।
1: ओहो राम राम भाई राजकुमारी आओ भाई आओ राम राम। और तबियत तो बढ़िया?
2: ओ सब बढ़िया आपकी करो ठीक।
1: ओ मैं भी बढ़िया हूँ। देखो रविवार का दिन रामदेव पीर जयंती है तो थाने गणी गणी खम्मा।
2: आपने भी गणी गणी खम्मा।
1: और अपना सगला श्रोता बंधु ने रामदेव पीर जयंती री ढेर सारी शुभकामना। आप सुन रहा गावरी बाता कार्यक्रम सुनता रहो
2: मुस्कुराता रहो
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM।
1: तो अपना श्रोता बंधु देख रहा भाई कि उषा जी जी तो रोज नई नई सहेलिया ने लेन आवे पर अनी बहाने तो आप मला है ना भाई। मारे तो देखो कदी कंचन आवे तो कदी कौन आवे कदी कौन आवे। आज मैं क्यों आज तो राजून लेला लारे
2: तो यू सख्यारो साथ बुनियोडो रहना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी बहना साथ रहना चाहिए जानी।
1: हाँ, अरे बिछुड़ी सके सहेला पाची मिल गई तो एक बड़ी खुशी और कई है। तो भी भाई कदी आपा एडो समय हो कि आपा साथ में रहता थोड़ा दिन आप थोड़ी दूरी होगी पाचा मल्या तो मैं क्यों भाई राजू तू तो आई जाएगी
2: तो देखो आप बुलाए और मैं आएगी
1: बिल्कुल राजू देखो भाई रामदेव पीर जयंती है एक कई तो तैयारी कि दी जा रही कई मेला में।
2: हाँ हाँ मेला में जा रहे आनी।
1: अच्छा हाँ भाई तो पचल आ रही चाला
2: चालो।
1: और कई अबे तो आपा तो अपना गाड़ी में जावा भी पैदल तो कौन नहीं जावा।
2: पैदल तो नहीं चाली जा।
1: पैदल तो कही डेढ़ डेढ़ दो दो महीना पहले हूँ श्रद्धालु लोग जावारो चालू कर दी दो तो वे तो जहाँ जहाँ दर्शन कर कर पचा घरे भी पहुंच गया।
2: हाँ काफी जना अपने स्थान माते वापस पहुंच चुका है।
1: हाँ और घना जना तो चाल रहा है रास्ता में जो भादुड़िया की दूज का दिन जो अपना रविवार का दिन है क्योंकि भादुड़िया की दूज का दिन रामदेव पीरसा को जन्म होवे है और

0: हाँ अणिदन डाली बाई समाधि लेवे,
1: हाँ
0: और दसम का दन जो पाची दसम आई न जदी रामसा पीर समाधि ले।
1: एकदम सही बात है, आपने तो खूब खूब ध्यान है जी जी
0: देख भाई तू जोधपुर की है और मैं मेवाड़ की, मारवाड़ और मेवाड़, पर नॉलेज तो अपने एक दूसरा को राजस्थान की मिट्टी में जन्मे उड़ावा, तो नॉलेज तो होना ही चाहिए जाए, और वो नॉलेज है ही है क्योंकि राजस्थान की मिट्टी से घणो प्रेम है।
1: है, वीरारी भूमि है।
0: शहीदारी भूमि है, अणि भूमि ने तो जत्रो नमन करा वत्रो ही कम है, तो कतरे श्रद्धालु तो दूज का दिन पहुंची, कोई एकम ने भी पहुंची, कोई तो आज ही पहुंच गया जो अबे थोड़ा आराम करी, भाई चाल चालन थक जावे, छाला पड़ जावे पग में, है केड़ी स्थिति हो जावे।
1: बहुत गंभीर स्थितियां चले और भगवान साक्षात दर्शन देवे नी यानी मनोकामना पूर्ण करे। हर कोई आपरी मन्नत रे साबू भी, कोई पैदल चाले, कोई आपने ध्याने घुटनारे बल चालने जाए, कोई लेटिया लेटिया जाए, दंडवत
0: अरे
1: करता
0: हाँ
1: जाए।
0: दंडवत प्राणायाम करता सका जावे, कोई तो हाँ घुटना का बल पे, भाई तरह तरह की साधना है, आप जैसे अनवे वस्यान करो आप तो अपने सिंपल तरीका गाड़ियों जावा, और अपना तो मन बस ईश्वर के अर्पण के प्रभु अपनी मन ने हमेशा निर्मल राख जाए।
1: तो रणुजे जोधपुर दो ही जगह चालना है कि सिर्फ रणुजे
0: अरे
1: चालना
0: भाई
1: है?
0: जोधपुर भी तो क्या भूला, जोधपुर वेन पचे, क्योंकि जोधपुर में जरा तक गुरु महाराज का दर्शन नहीं करा तो रणुजा का दर्शन हो भी को नहीं, मतलब किदा नहीं किदा एक हो जावे।
1: सही
0: और
1: बात,
0: जोधपुर में तो कई पहाड़ी पे आपा चाला,
1: मसूरिया
0: मसूरिया पहाड़ी पे, और गुरुदेव
1: बालीनाथ जी महाराज।
0: बालीनाथ जी महाराज का दर्शन करा, और पचे आपा रामदेव पीरसा का दर्शन करा, रामदेव रे चाला।
1: बहुत सा भक्त पहली करे, बहुत सा भक्त बाद में करे, पर दर्शन करना बहुत जरूरी है। यानी गुरु ना जी री समाधि है, रामदेव जी रे गुरु जी री समाधि है मसूरिया पहाड़ी।
0: देख मैंने अट दो लाइना याद आ रही थारी दो।

0: जाओ फर के जोई मारो मन हर के रे हो जोई मारो मन हर के राम पीर सा तो धोली दजाय छड़े ना रामदेव पीर के तो
1: हाँ
0: एड़ा एड़ा गीत भी बने उड़ा है खेर भाई वो कहवे का अपना राजस्थान रा लोक देवता है और अपना राजस्थान रा लोक देवता री जत्री महिमा करा वत्री कम है क्योंकि ये कर्म एड़ो करेड़ा है कि दुनिया देखो कोई दंडवत प्रणाम करता जा रही कोई चालती जा रही कोई साइकिल पे बैठन जा रही कोई कस्यान पर आप आपका ऋतु साधना कर करन पहुंच रहा है तो वह रामदेव पीरसा ने याद नहीं कर रहा वहां का कर्म ने वहां का गुणा की महिमा वेरी और वहां का गुणा ने याद कर रहा और यह हर की का बस में को नहीं
1: हर की कई बस में नहीं है
0: या के भे देखो ये भी खूब भक्ता को कारज सारियो और या ने घना ही समाज वाला यहाँ ने प्रेम करे बाकी तो कतरे ही त्योहार एड़ा हो कि भाई यो समाज करे तो दूसरा समाज ठीक है वे वहां का ना आप में मस्त रहे वे, पर वे को नहीं माने पर याने तो लगभग सब समाज माने
1: सब समाज सब समुदाय
0: हाँ तो यह एक बड़ी बात है ना और नाम भी लगा है रामदेव पीर पाचे पीर
1: तो वो भजन में एक लाइन है नी पांच पांच पीर मक्का सु आया और वे वटे बर्तन भूल गया वे राम सा पीरी परीक्षा ले उन आया तो वे उड़ता उड़ता बर्तन हवा में मक्को रणुजे मंगाई लिया
0: हाँ अबे भोजन पे बैठा है तो वे कह नहीं भाई भोजन तो माँ माँ का
1: खुद का बर्तन
0: हाँ
1: में
0: खुद का
1: करा
0: बर्तन
1: ला
0: में करा नहीं तो माँ तो भोजन को नहीं करा अणी ऋतु परीक्षा ले दी और राम सा पीर कटु वहाँ का बर्तन लान माँ का पास में आ गया तो माँ ने आश्चर्य है ये तो माँ का ही है ये कटु आई गया
1: मिश्री रो
0: तो
1: लूण बनाई दियो
0: हाँ तो एड़ा एड़ा चमत्कार है आपने राजस्थान रा मायने की आपने यू लागे पर देखा तो घना जना कहीं सुने सुनो आपने थोड़ा विश्वास को नहीं पर आंखें देखा ने तो भी ना आप कैसे नकार सको
1: खूब लोगा ने परचो दियो आराम सा पीर तो
0: हाँ राम सा पीर का तो वो कहे के अतरा तो गीत भजन बने उड़ा है और लोग अपना राजस्थान रा तो जावी जे गुजरात का कतरा आवे और मध्य प्रदेश आवे महाराष्ट्र आवे कटू कटू लोग आवे भाई अरे तन कई क्यों लाखों लोगा की भीड़ पड़े और थारू बटे कई कह रही है ना कि बटे कई 1 लाख जो इकट्ठा हो जावे तो
1: 1 लाख पब्लिक अगर 24 घंटा रे मायने वटे पहुंचे दीदी तो वटे राक्षस भक्स लिया करे 1 लाख व्यक्ति माते एक री मृत्यु निश्चित है
0: हाँ तो यह सच्ची बात है
1: एकदम साची बात है
0: 1 लाख तो गणती कस्यान करे
1: लौट चलिया करे आपने इतना लोगा ने ऊपरू सब मोनिटाइज होया अगर आज री डेट में तो पहली तो लोग आंखें पता चल जाता कितनी पब्लिक आई है अब इतनी पब्लिक ने ओसिया तक इस रोक दो तिवरी तक इस रोक दो जो आजू बाजू गांव लागे नहीं वटे मियां ने रोक दिया करे
0: अच्छा अबे नहीं रोके अबे
1: पब्लिक नहीं माने
0: पब्लिक नहीं माने तो कई कर सको देखो
1: प्रशासन तो आपरी तरफ बहुत कोशिश करे भाई अगर कोई आई गयो पूरे दिन दर्शन हो गया तो रात्रि विया ने वटे विश्राम करने वास्ते मना करिया करे भाई जितो हो सके आप इन एरिया बारे निकल जाओ
0: सही बात है फिर भी नहीं माने तो पचे कई कर सको
1: आपने एक चीज बताओ रणुजे आवे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट रे मायने तिवरी
0: हाँ
1: मथानिया वगैरह आ रहा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट रे मायने तो सिर्फ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ही दूरी माते ही जैसलमेर और जोधपुर बॉर्डर अलग हो जाया करे तो वे बोले कि आप इन बॉर्डरों बारे निकल जाओ प्रशासन बहुत अलर्ट रहा करे पर पब्लिक अगर सहयोग नहीं करे तो प्रशासन भी कई कर सके
0: हाँ बच्चे तो कहीं नहीं कर सके सही बात है तो कश्यान ठा पड़े के भाई ये राक्षस भक्षण कर रहे हो
1: कुछ न कुछ हादसा हो जाए या तो पब्लिक भागम दौड़ी मचा न कोई दब जाएला एक बावड़ी है जटे कुष्ठ रोग या रो कुष्ठ मिटे उन बावड़ी में हर कोई स्नान करिया करे तो कदी बावड़ी में इंसान भंवर में फंस जावे
0: अच्छा
1: बावड़ी न महीने डूब जावे क्योंकि पब्लिक धक्का धूम ज्यादा वे नहीं अब 1 लाख पब्लिक वेला तो धक्कम
0: हाँ
1: धूम कितनी वेला वो चक्कर मायने वे बाकी भगवान तो एड़ो नहीं चाहे पर जद राक्षस रो वध करियो तो रामदेव जी जद वो व्याण कनु वचन लियो तो कभी मैं भूखो रह जाऊला तो मारी कई मारी व्यवस्था भी तो करो आप जब रामदेव जी के जिन दिन 1 लाख ऊपर पब्लिक पहुंचेला तो एक
0: एक
1: मनुष्य थारे वास्ते
0: एक को भक्त ले लीजिए
1: एक रो भक्त ले लीजिए
0: तो अनि वजो आज भी वह बात पत्थर की लकीर है
1: पत्थर की लकीर है
0: वाह भाई राजू। या तो तू अच्छी जानकारी दी थी या किवन दी थी तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पर चलो पाछा अपना सगला श्रोता बंधु ने रामदेव जयंती की ढेर सारी शुभकामना देवा और एक आछू गीत सुना दा। तो सुनता रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: गणपत राज वारी जाऊं गणपत ने।
1: कई बातें कई बातें, आज तो वाणना ली रही है गणपति जी रा।
0: कदी कदी वाणना ही लेना चाहवा ना।
1: लेना पड़े
0: बिल्कुल। तो घावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंदोरो पाछो स्वागत करा हाँ। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराते रहो।
0: तो राजू आपा देखो राम सा पीर की बात की दी, अब दूसरा ही दिन पाचे गणेश चतुर्थी है, तो पहला तो आपा गणेश चतुर्थी की भी सगला श्रोता बंधुआ ने खूब खूब आपा शुभकामना देवा हाँ, हार्दिक अभिनंदन करा हाँ। आनी त्योहार री भाई कशान मना रही तू गणेश चतुर्थी कई तैयार है की दी राम सा पीर आपा तो रणुजा जा रहा, तो आता आता गणेश चतुर्थी तो अपनी रस्ता में रह जाए।
1: रस्ता में रह जाए आया रे पचे लावा सा गणपति जी ना, व्याना बिना तो सारा काम अधूरा है। मंगल मूर्ति रूप है
0: बिल्कुल। और यो त्योहार भी 10 दिन तक धूमधाम मनावे,
1: 10 दिन धूमधाम मनावे, आनंद 14 तक।
0: हाँ आनंद 14 तक तो यो त्योहार चाले ही चाले। आने वास्ते कई बात नहीं, आप रुणीजा जा ना जावा पचे आप गणपति को मनावा। तो गणपति वे भी भाई पहला की बात मने याद आवे, घनी चीजा है यूं तो आपा केवा तो घनी चीजा है, ठीक है थोड़ो सिस्टम चेंज हो गयो, पर राजस्थान रा महीने पहला कोई हो तो छोटा छोटा टाबर 8-10 साल का, ज्यादा ज्यादा 12-13 साल का टाबर तक, वाके गणेश चतुर्थी का एक दिन पहली वाकी मम्मिया अच्छे अच्छे हाथ मांड देती, मेहंदी लगा देती, पगा के ही लगाते हाथ तो एड़ा अच्छा छोरिया के मांडे। देख भाई हर त्योहार छोरिया का, 30 त्योहार छोरिया की, पर यो त्योहार छोरा को है। ये त्योहार पे तो छोरा छापरा के वणी दिन छोरिया के नहीं मांडे, तीज पे मांडुड़ा हुए और फिर घना ही त्योहार आवे,
1: घना ही त्योहार।
0: हाँ पर गणेश चतुर्थी आवे जी का एक दो दिन पहले मम्मिया ने चाव बढ़ जाओ भाई, अब तुम्हारे छोरा का त्योहार आ रहे हो या के हाथ मांड दो, तो पगा के डोरियो करी मेहंदी लगाई और हाथ दो या अच्छा मांड दे। और दूसरा दिन ये टाबर कई करे गणेश चतुर्थी की छुट्टी होवे, सब टाबर भेला होवे, मोहल्ला का है पटबा वाला है खटा भेवे, ये दुकाना पे जावे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलता जाए, गणपति बापा मोरिया मंगल मुहूर्त मोरिया बोलता जाए और वे डांडिया बजाता जाए, कन्या जाने राजस्थान में कन्या कहवे, जो अपने बड़ी तीज का अदरत्यो आवे पहली बार शादी बेटी की हो जावे, पहली बार अदरत्यो रखे बेटी का ससुराल और बेटी का ससुरालू भी पाछो बेटी का लिया आवे, पर भाई ज्यादा क्वांटिटी की वे बेटिया वाला गया। तो मतलब पहला तो छोटा छोटा बच्चा डांडिया बजाता हा, पर अब एड़ो रिवाज आवे चालू हुए गयो डांडिया बड़ी तीज के अदरत्या पीस रख दी, तो एड़ा है कन्या के वाके जो डंडी पे
1: घुंगरू लागो,
0: हाँ के चांदी की टोपी पेरा विका ऊपर 3-3 घुघरिया लगावे, कोई कोई तो 3-3 सेरा 5 सेरा के घुघरिया आसियान डांडिया मस्त सजान पाछे पूरा पे कोर लपेटन भेजे, कही भाई डांडिया भी देखो अपने रिवाज देखो। चूरमा का लाडू भेजी वो सब वणी पीस भेज देवे बड़ी तीज पीस, पहला तो गणेश चतुर्थी पे अलग भेजता, पर अबे कही एक फास्ट जमानो कि का पास टाइम कौन है, अब तू ही नौकरी कर मुई नौकरी करूँ, न थाने टाइम है न मैंने टाइम है, तो बच्चे थोड़ा शॉर्टकट कर दी दो, तो बड़ी तीज पे सब भेज देवे। अब ये टाबर कई करे कि वे डांडिया दुकाना पे बजावे, दुकाना वाला ने ठाए क्योंकि परंपरा है अपने राजस्थान री, तो वे पैसा दे बच्चा ने,
1: तो इन सब चीजा ने पहली बुजुर्ग बहुत शुभ मानता।
0: हाँ
1: जैसे वे मतलब पुराना लोग बोले गुंगरू जित्ता बाजेला लक्ष्मी उत्ती खन खन करेला,
0: बच्चा डांडिया बजाता बोलता जाता और वाने पैसा देता, खावा को भी देता गणा जना, भूंगड़ा देता पहले तो यही ज्यादा देता, भूंगड़ा ज्यादा देता के नारियल सुखा नारियल की गिरी है, पैसा तो देता ही देता टाबर ने, तो हर एक दुकाना पे बजाता तो बच्चा के पैसा खूब भेड़ा भेज जाता, पचे सब राजी होता अरे आपने तो अतरा पैसा भेड़ा भे गया, पचे वे पैसा को प्रसाद खरीदता, पेड़ा है मावा की बर्फी है कलाकंद है मिश्री मावा है कई भी खरीदन, पचे गणपति जी का मंदिर जाता, याने गाइड करवा वाला तो बड़ा होता क्योंकि छोटा छोटा टाबर होता याने कई ठा पड़े, तो बड़ा गाइड करता, तो पचे गणपति का मंदिर ले जाता, पचे बटे प्रसाद चढ़ाता, वत्ता पैसा मलता तो सब टाबर का लिए समोसा कचोरी कई भी खरीदता, कलो बेटा मीठो ही खाओ नमकीन ही खाओ, और बालक पूरा दिन खुशी खुशी घर में तो टकता ही कोनी, अरे वाह दुकान बाकी है अरे वो ऑफिस बाकी है, ऑफिस में जाता बैंक में तक जाता टाबर,
1: पहले ही बच्चा ने बहुत शौक हो तो हर त्योहार मनाऊ ना, अबे बच्चा अपनी पढ़ाई है, मोबाइल है,
0: अबे वो सिस्टम ही नहीं, खत्म ही हो गयो। अबे कौन जावे ना, अबे तो आजकल टाबर के मेहंदी भी नहीं लगावे, छोरा के तो लगा भी कोनी,
1: छोरा तो लगवानी भी नहीं चाहे।
0: हाँ।
1: बोला क्यों, हम लड़की है क्या? पहली ना बच्चा ने शौक आ तो, अपना भाई छोटा था, मियां ने शौक आ तो।
0: पहले का बच्चा देखो कोई खिजो वाला नहीं हा। दूसरी बात यह है सरकारी स्कूल में कोई नटता को नहीं, टीचर लोग भी समझता। अबे प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गयो भाई, बच्चों को भी मेहंदी लगानी नहीं आई। अरे भाई अपने परंपरा है तो है, अपनी परंपरा तो आप ही जीवित रहा, नहीं तो कौन राखी।
1: पहले गुरुजन भी समझता का परंपरा इन वास्ते वे रोक टोक नहीं करता।
0: हाँ, रोक टोक नहीं करता, और कोई भी देखा चिड़ो दो, कोई भी नहीं चिड़ोता, क्योंकि भाई थुई रानी मुई रानी कुंड भरी पानी तो थुई लगा रखी मुई लगा रखी मेहंदी कौन किने खिजावे।
1: खाना आ रिया आपने
0: तो कौन किने टोके, मैं भी लगा रखी तू भी लगा रखी किने टोके, तो सब टाबर के लागती और सब टाबर लगाना था, और आज तो कोई लगा भी कोई नहीं। तो ये आज के बच्चा ने तो ठाई को नहीं कि गणेश चतुर्थी को त्योहार पे कई हो तो।
1: अबे तो सिर्फ बच्चा नो ध्यान है गणेश जी लाना बिठाना और डीजे बजवाना,
0: डीजे बजवाना है, गरबा करना है, ओठा है, खैर बढ़िया है, यो भी बढ़िया है, पर वो भी बढ़िया ही है ना भाई। मेहंदी देखो नहीं तो टाबर के क्या मेहंदी लागे, और मेहंदी तो शरीर ने ठंडक प्रदान करे।
1: एकदम सही बात बताई, एक आयुर्वेदिक औषधि है शरीर में ठंडक करने वास्ते।
0: और आज भी अपने राजस्थान में ही ना तो रिवाज है शादी ब्याह में तो चाहे दूल्हो वो चाहे दुल्हन वो दो यहाँ के हाथ पग मांडी मांडी मेहंदी मांडी मांडी। और अपने यो भी रिवाज है कि चलो बहन की शादी है ठीक है तो भी भाई भी मेहंदी लगवाई, सब पाचे पड़ जाए भाई तू तो भाई हो है, चल थारे भी मेहंदी मांगा,
1: भाई पापा मामा चाचा ताऊ सब मेहंदी लगवा,
0: सबके मेहंदी लगाई। हाँ तो यो भी एक अच्छा रिवाज है अपने राजस्थान में, मेहंदी को थोड़ा ज्यादा ही है। आपने तो एक एक ब्याह में 10-10, 12-12 किलो मेहंदी उपड़ती पे ही पहली पूरी वे जाती। आपने तो हर छोटा त्योहार ने भी एड आप मतलब खुशियों मनावा वो त्योहारी मोटो लाग दो,
1: मोटो लागे।
0: आज तो मोटा त्योहारी नॉर्मल वेन जा रहा ठाई नहीं पड़ रही, और पहले एक छोटो छोटो त्योहार वे तो वे पे अतरी रौनक लिया था आपा के जाने दिवाली आगी वे।
1: खूब सारी औरता साथ ते मिलने भजन करना मंगल गीत गावना।
0: बिल्कुल, अरे भजन ही करता मंगल गीती गाता लुगा 4 बजा उठ उठन गट्टी पीसती काम सब करते घर को तो भी रौनक वाकी वाह। और फिर त्योहार पे तो चीजा भी हो हाउ बनानी, दाल बाटी चूरमा है, पहला कटे घेस हा चूल्हा सलगाता चूल्हा पे सब बनाता तो भी सब बना देता, पाचा एक दूसरा का घर आता जाता, अने छोटी जो वेती बउआ लाड़िया वे बड़ा के पग लागवा जाते के गांव में कोई बहन बेटी को घर है गांव में, और मोटा कोई है अपना आकली पाकली का तो सबका घर में पगे लागवा जाता। देरणिया जेठानिया का घर में जाती, बउआ है जो भाई काकी सास चाची सास
1: सब बड़ा ने धोख देवा जाता। हाँ, था बच्चा भी जाता था।
0: हाँ,
1: और बुआ भी जाती।
0: हाँ, तो बटे मनवार करता लो बेटो भी नहीं था कहीं रोज थोड़ा ओलो, पहली तो चाय नहीं पिलाता, पहले तो छाछ के बच्चे कई बनाई रखे हो तो विमो खिलाता। पहले तो ये कहता चाय तो अंग्रेजी है, पहले चाय अतरी नहीं पीता, छाछ है दही है माखन है यो रखता। भाई अब त्योहार की तापा बाता करा वत्री कम है, पर पाची तने गणेश चतुर्थी और राम सपीर जयंती की ढेर सारी शुभकामना देवा। हाँ, और सगला श्रोता बंधु ने भी पाचे खूब अभिनंदन ये त्योहार के ढेर सारी बधाइया, और आवजे भाई राम राम राजू।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि कल हमने एक विषय लेकर बात किया था, मैं ही सफलता हूं, तो इसी विषय को लेकर आगे पार्ट टू में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी बातें और रह गई थी जो हम कल नहीं बता पाए, तो आज हम फिर से उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के हमारे खास मेहमान राजेश सर हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चलिए, मैं चाहूंगा कि सफलता मैं ही हूं ये विषय हमने कंटिन्यू करना है, तो कुछ कल की बातें जो रह गई थी आज हम फिर से उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जी।
1: जैसे आपने बताया, कल हमने जाना था कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही आनंद हूँ। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये समझा कि सफलता माना कि हम खुश रहें, आनंद में रहें, प्यार में रहें, प्यार हमको मिले, हम शांति में रहें। तो जब मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैथ में कहते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो इसका मतलब मैं ही सफलता हूँ। लेकिन इसको एक गेम से समझेंगे। जैसे हम बहुत कॉलेजेस में गए और स्टूडेंट्स को जब गेम खिलाई कि आप पेन को पास करो, उनको सिर्फ बोला कि आपको पेन को खुशी से पास करना, सिर्फ इतना ही बताया गया उनको, बोला गया। फिर उनको बोला शांति से पास करो, फिर उनको बोला इसको हंसते हंसते पास करो, तो केवल उनको बोला गया। तो जब उनसे पूछा कि जब आपको ये बोला गया कि आप खुशी से पेन पास करो, तो वो खुशी कहाँ से आई? क्योंकि जब हमने उनको पेन दिया पास करने के लिए, हमने उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, उनको कोई कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स स्कोर नहीं किए, माना उन्हें कुछ बाहरी या कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिला। लेकिन जब कहा गया खुशी से पेन पास करो, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अंदर में खुशी का भाव आ गया और खुशी से वो एक दूसरे से बात करने लगे। तो पूछा खुशी कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा अंदर से आई। जब आपको बोला शांति से पेन पास करो, तो शांति कहाँ से आई? बोले शांति अंदर से आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुशी कहाँ है, शांति कहाँ है? जब बोला प्यार से पेन पास करो, तो प्यार कहाँ से आया? अंदर से आया। इसका मतलब ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो केवल और केवल एक विचार, जब हम अपने आप को विचार देते हैं कि मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो हमारे अंदर जो है वो बाहर आ जाता, इवोक कर लेते हम उनको। जैसे अगर किसी को कहीं कुछ, मान लीजिए कोई किसी के परिवार में कुछ बुरी घटना हो जाती है और व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही टेलीफोन पे उसको मैसेज मिलता है कि आपके घर में ये हो गया, तो उसका मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। तो एक विचार उसको उदास कर देता है और एक ही विचार हमको क्या कर देता है? वो खुशी दे देता है, शांति दे देता है। लेकिन वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया, हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब हमको खुशी मिलेगी। हमने कंडीशन कर दिया, मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा तो मैं खुश होऊंगा, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन अगर, जैसे अभी हमने जाना कि मैं ही खुशी हूँ, खुशी मेरे अंदर है, लेकिन उस खुशी का हम पहले ही अंदर से आह्वान कर लें, तो क्यों नहीं अगर हम खुश होकर काम करें? जब हम खुश होकर काम करेंगे तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हम काम से एक्सपेक्ट ना करेंगे काम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपने आप को कंडीशन कर दिया, एक आधार बना दिया, एक शर्त रख दी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर लें कि खुशी तो मेरे अंदर है, प्यार मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, मुझे बाहरी चीज़ों से नहीं मिलने वाली, क्योंकि खुशी, शांति, आनंद ये मुझे स्वयं को चाहिए। ठीक है, मुझे अपने शरीर को भोजन देने के लिए या बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन देने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविकता मेरा जो जन्म हुआ है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ ही हुआ है। तो इस संकल्प के साथ कि मैं खुशी का सितारा हूँ, मैं शांति का सितारा हूँ, अगर रोज हम सुबह इसका अभ्यास कर लें, जैसे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा भी था कि रोज आप 10 बार लिखें सुबह कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले लिखें, और दिन में भी अभ्यास करें, तो कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम ये आह्वान कर लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, आनंद का सितारा हूँ, प्यार का सितारा हूँ, तो खुशी हमारे अंदर आ जाएगी। और जब वो आएगी तो फिर आप कुछ भी करें, कोई भी काम करेंगे, है ना, या कोई भी आपको कुछ किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो मैं ऑलरेडी खुश हूँ, लेकिन उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जब आप वो काम करेंगे तो क्या होगा, और ही बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी अभिलाषा ही काम होगा तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं हुए तो दुखी हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अंदर मैं पहले खुश हूँ तो फिर जो मेरी अभिलाषा होगी कि काम होगा तो ठीक है, अच्छा होगा तो बहुत, क्योंकि आप खुश हैं तो काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अगर बाय चांस आप में किसी स्किल की कमी है, अगर वो नहीं भी अच्छा होता है तो आप दुखी नहीं होंगे, उस काम को छोड़ नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप में मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे और उसको अच्छे तरीके से करना है और उसको बढ़िया तरीके से करना है। जैसे गीता में लिखा गया है, गीता के 18वें अध्याय में लिखा है कि निष्काम कर्म करो, लेकिन वो हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या विधि है, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए यही तरीका है कि पहले हम संकल्प कर लें कि मैं ही खुश हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, प्रेम का सितारा हूँ। अगर हम इस विधि से करेंगे तो हम में वो निष्काम भाव, निष्काम जैसे सेवा कहा गया है या निष्काम कार्य करने का भाव कहा गया है, उसको हम आसानी से अपने जीवन में ला सकते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
0: चलिए राजीव जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने बताया, अगर मैं ही खुश हूँ इस भाव को लेकर हम लोग कार्य करेंगे तो उसमें समझो हमें सफलता तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप खुश हैं। बाय चांस अगर नहीं मिलता है तो आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि चलो और थोड़ा सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण जिज्ञासा ये होगा कि हाँ ये सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए आप टाइम देंगे, खुशी से सीखेंगे और खुशी से आगे बल्कि करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर मार्जिन ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओ किसी काम के लिए नहीं हो रहा है तो आपको मार्जिन ये मिलता है कि आप नहीं भी काम होगा तो आप लर्निंग माइंड से आगे बढ़ेंगे, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, तो ये भाव को आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव जी। चलिए मैं चाहूँगा कि मैं ही सफलता हूँ इस विषय को आपने बहुत ही अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया है, तो इसका प्रैक्टिस भी हमने जैसे कि कल हमारे सभी विद्यार्थियों को बताया था, और कितना टाइम तक हमें यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा?
1: कहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना, हम सारे जीवन में सारी उम्र

0: करना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप कितनी लगन से, कितनी तमन्ना से, कितने विश्वास के साथ करते हैं। जितना ज़्यादा आपको विश्वास होगा, जितनी लगन होगी, जितनी प्राप्ति की इच्छा होगी, उतनी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको कम से कम कंटिन्यूसली 3 महीने तक करें। वैसे प्राप्ति आपको कईयों को, हमने देखा है कई स्टूडेंट्स को एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कईयों को 2 दिन में मिलता है, कईयों को 10 दिन में मिलता है। लेकिन जब आप इसको अभ्यास करेंगे तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं, अलग अलग व्यक्तित्व जो है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप इसको 3 मास तक करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ हो सकता है। ये एक्चुअली हम कहेंगे कि हमारे मन का भोजन है, जिसके हम कहते हैं शरीर का भोजन तो हम रोज करते हैं, दिन में 3 टाइम करते हैं, लेकिन हमारे मन को भी तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो खुशी, आनंद, प्रेम जो क्या है, ये हमारे मन का भोजन है, तो ये भी हमें भोजन रोज ही करना चाहिए।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रोज ही प्रैक्टिस करना है, रोज ही इसका प्रयोग करना है, तो आपके जीवन में ये सतत जो है निरंतर खुशी बनी रहेगी। और निरंतर खुशी में आप रहकर अगर आप काम करते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी रहेंगे। तो आशा करूंगा कि आज हमने जिस विषय को लेकर, यानी कल का विषय ही कंटिन्यू किया था, मैं ही सफलता हूँ, तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा राजेश जी एक छोटा सा मैसेज कोट करें।
0: मैसेज आज एक, मैं अगेन प्रैक्टिकली बात करूँगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हम अपने आप में संकल्प लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ, शांति का सितारा हूँ, लेकिन कई बार जैसे डेली ना कोई हमें चैलेंजेस आते हैं, रोज़ हम उठते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जीवन नाम ही चैलेंजेस को फेस करने का है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जो कि हमें इस संकल्प में टिकने नहीं देंगे। आप ये चैलेंज पाएंगे,
2: बिल्कुल
0: कि जैसे आप लिखेंगे या अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बुरे विचार हैं, या दूसरों ने आपसे बुरा व्यवहार किया या काम नहीं हुआ, है ना, तो वो आपको आपके उस संकल्प में टिकने नहीं देगा। तो उसके लिए एक विधि है कि रात को सोने से पहले आप 10 बार ये संकल्प तो करें ही करें, जो आप लेंगे, मैं शांति का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ, इसको लिखें। लेकिन साथ साथ अगर आप डायरी पे या किसी कागज़ पर जो आपके साथ आज हुआ, जो आपको कुछ चैलेंज आया या प्रॉब्लम आई या किसी ने आपको तंग किया, दुख दिया, या क्या कारण था आपकी परेशानी का, उसको आप डायरी पे लिख देंगे। जब आप डायरी पे लिखेंगे, लिखने के बाद अपने आप में उस खुशी का आह्वान करके उस आत्मा को जिसने मिसबिहेव किया या जो कारण था चिंता को, उसको माफ़ कर दीजिए, या अगर आपने गलती की तो स्वयं को माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि अगले दिन फिर आप उसी संकल्प में टिक पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगले दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आप कोशिश करेंगे उस संकल्प में टिकने की, लेकिन वो जो नेगेटिव बातें जो कल आपके साथ हुई थी वो याद आ जाएंगी। लेकिन कागज़ पे लिखेंगे तो रात को फिर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ब्रेन में नहीं जाएगा। तो ये भी मैं चाहूँगा अपने श्रोता गणों से कि इसका भी अभ्यास करें।
2: बिल्कुल,
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास को कैसे बढ़ाना है, ये सुंदर बात आपने बताया। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर। तब तक आप मैं हूँ खुशी, मैं हूँ सफलता, इसका प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न

0: इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज है 13 सितंबर 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 नवंबर 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। खजाना देने की विधि क्या है? एक सेकंड में जाना, मेरा बाबा कहा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इतने में ही खजानों के मालिक बन गए। तो बाबा कहते, सर्व खजाने हर एक के पास सदा साथ है, वह कोई कोई खजाना कम है। और फिर बाबा पूछते, क्या समय पर उसको कार्य में लाते रहते हो? कैसे कार्य में लाना है? मालिक होके ऑर्डर करो और समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों के अंदर उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हर एक को बाबा ने देखा कि चैलेंज भी अच्छा कर रहे हैं उमंग उत्साह से। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हो? सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। तो बाप दादा की बच्चों में आशा है कि हर बच्चा सफलता मूरत बने। तो बाबा कहते, अपने आप से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्व संपन्न और संपूर्ण कहां तक बने हैं? अब संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है। ये बाबा ने देखा कि बच्चों को संपूर्णता को प्राप्त करने में कुछ मार्जिन अभी भी रही हुई है। हर समय आत्माओं को इतना समीप संबंध में लाओ, लोग खुश तो होते हैं, लेकिन बाबा कहे, अब बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। चारों ओर बस ये आवाज फैले, हमारा बाबा आ गया। बाप दादा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। परिवर्तन हुआ, सर्विस का लाभ हुआ, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी तक वह बाप तक नहीं पहुंचे हैं। तो बाबा कहते, राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं, एवर रेडी है ना? बाबा कहते, ड्रामा को ऑर्डर करे के बटन दबाए, तो क्या सब तैयार है? राज्य अधिकारी भी तैयार चाहिए, रॉयल फैमिली भी, रॉयल प्रजा भी और साधारण प्रजा भी, तो सब तैयार है, एवर रेडी है। बाप दादा जानते हैं कि अभी तक रेडी है, एवर रेडी बनना पड़े। और उसके लिए बाबा स्मृति दिलाते हैं कि जो दो बातें कही थी कि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए, व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान न रहे, तो ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए। बाप दादा आज बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनके भी सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन रूप और तीन रीति से सेवा करो। तीन रूप कौन से? नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल। और तीन रीति कौन सी? तो मनसा वाचा कर्मणा। उसमें भी बाबा कहते हैं, अभी आवश्यकता है कि एक ही समय पर मनसा पावरफुल हो, वाणी में नॉलेजफुल हो और कर्मणा में, क्योंकि कर्म द्वारा ही सेवा से वह आत्मा अनुभव करे कि अपने परिवार में पहुंच गए, तो वहां चाहिए लवफुल। तो तीन रूप जो बताए, पावरफुल, नॉलेजफुल, लवफुल।
तो मनसा पावरफुल, वाणी नॉलेजफुल और कर्मणा में लवफुल। बाबा कहते हैं अभी अटेंशन देना है, इसी बात पर अटेंशन देना है, तीन रूप और तीन रीति को साथ साथ करना है। अभी अटेंशन देना है संपन्न और संपूर्ण बनने में। क्यों? कम से कम 108 की माला तो तैयार कर सको, क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वही बनेंगे ना, 108 राज्य अधिकारी, फिर 16,108 राज्य अधिकारी के साथी यानी रॉयल परिवार वाले। बाप दादा अभी समय प्रमाण, समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो, बाप समान हो। तो नवीनता यही करो कि हर एक अपने को 108 की माला के मणके बनाए, यही पुरुषार्थ करना है। जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य के संपर्क वाले बने, अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। क्योंकि बाबा कहते अचानक परिवर्तन होना है, अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसके लिए एवर रेडी दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। बाप समान बनना ही है, कोई भी बातें आए बात के बजाय बाप को आगे रखो। फिर बाबा ने हर बच्चों को संकल्प दिया कि एक मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना। दृढ़ता को साथी बनाओ, बाप को सदा सामने रखना। ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना, और ब्रह्मा बाप ने क्या किया मनसा वाचा कर्मणा वही करना है। बस एक मास निर्विघ्ना, कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी क्योंकि माया सुन रही है। तो माया अपना रूप तो दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को एक ही श्रेष्ठ संकल्प सुनाना चाहते हैं कि अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को, संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है अभी निर्विघ्न और एवर रेडी रहे 108 की माला तैयार करो। ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। सर्व शक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है। सर्वशक्तिवान बाप से मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों ने सर्व शक्तियों का खजाना कितना सहज रीति से प्राप्त किया है। कैसे? विधि है एक सेकंड में जाना मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। एक सेकंड में जाना और बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे।

वह कोई कोई खजाना है और कोई खजाना कम है। बाप दादा ने तो दिए लेकिन हर एक के पास सर्व खजाने सदा ही है और सर्व खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो, पूछते बाबा। सदा है सारे खजाने या कोई कम है? और दूसरी बात बाबा कहे, वो खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो, कैसे लाना है वो विधि भी बाबा बताते हैं। मालिक होके ऑर्डर करो तो समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के सेवा का उमंग देखा भी, सुना भी। चारों ओर अच्छे उमंग उत्साह से ये 75 वर्ष की जयंती मना रहे हैं। चारों ओर धूम मची थी 75 वर्ष की जयंती मनाने की। तो बाबा कहते, सब बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देखा भी और सुना भी। चैलेंज कर रहे हैं, अब परिवर्तन हुआ कि हुआ? चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख देख खुश होते हैं। और गीत क्या गाते हैं बाबा? गीत क्या गाते हैं? वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा, चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं उमंग उत्साह से, लेकिन साथ में बच्चों के स्वयं में सर्व धारणाओं का सफलता का स्वरूप भी देखा। सर्व धारणाओं का सफलता का स्वरूप भी देखा। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हो? पूछते बाबा, क्या आप सभी भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं? क्योंकि सारे निमित्त बने हुए बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं कि बनना है। जो भी निमित्त बच्चे हैं बाबा कहे, सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं कि बनना है। क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जो आप आधार मूर्त हो, सिर्फ थोड़े से बच्चे नहीं, सर्व बच्चों का चैलेंज है कि हम सुखमय संसार लाने के निमित्त है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधार मूर्त बन गए हैं? आधार मूर्त बन गए हैं, खुद संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं। जो बाप दादा की बच्चों में आशा है, हर बच्चा सफलता मूर्त हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़े खुशी से चैलेंज की है, परिवर्तन हुआ कि हुआ? बाबा ने यह भी देखा कि बच्चों ने चैलेंज भी की है और संकल्प भी लिया है कि अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। तो अपने से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्वसंपन्न और संपूर्ण कहां तक बने हैं? क्योंकि राज्य स्थापन होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि अब संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है, थोड़ी सी मार्जिन अभी भी बाकी है। सेवा तो की, लेकिन सेवा के रिजल्ट में आपके साथी कितने बने? सेवा के साथी कितने बने? हिसाब निकालो कि जो सुनते हैं बस समीप कितने आते हैं।

जो सुनकर जाते हैं प्रोग्राम्स में, वो समीप कितने आते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश है, लेकिन अभी सर्विस की रिजल्ट में और तीव्रता लानी है, और तीव्रता लानी है, अर्थात हर समय आत्माओं को इतना समीप संबंध में लाओ। खुश बहुत होते हैं प्रोग्राम सुन करके, देख करके खुश बहुत होते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों के कर्तव्य को जानने में बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है। तो समीप तो आए, खुश भी होते हैं, नजदीक भी आए, लेकिन बाबा कहते वर्षा तो बाबा द्वारा ही मिलना है उन आत्माओं को। तो बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। अभी बाप आया है, बाप वर्षा दे रहा है, ये बुद्धि में आए तब वर्षा लेके राज्य अधिकारी बने। चारों ओर ये आवाज फैले, जो गीत गाते हो हमारा बाबा आ गया। अब बाप दादा ये रिजल्ट देखने चाहते हैं, परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुंचे हैं। बाबा ने रिजल्ट देखी कि परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल भी मिला है, लेकिन अभी तक बाप तक नहीं पहुंचे हैं। इसका कोई प्लान बनाओ, बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो। राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं, अब परिवर्तन का बटन ड्रामा दबाए। एवर रेडी पूछते बाबा, एवर रेडी है, बटन दबाए, क्या समझते हैं, बटन दबाए, एवर रेडी है, क्योंकि सब तैयार चाहिए, राज्य अधिकारी भी, रॉयल फैमिली भी, रॉयल प्रजा भी, और साधारण प्रजा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाप दादा आज बच्चों से रिजल्ट पूछते हैं, क्या समझते हो। बाप दादा को बटन दबाने में तो देरी नहीं लगेगी, तो पहली लाइन क्या समझती है, शक्तियां क्या समझती है, पांडव क्या समझते हैं, जवाब दो। हाँ पांडव जवाब दो, दबाएं बटन, एवर रेडी है। तो किसी ने कहा बाबा आप मालिक है, आपको संकल्प आता है कि दबाए तो दबा दीजिए। बाबा कहते बाप दादा बच्चों से पूछते हैं क्यों, क्योंकि बाप को तो राज्य में आना नहीं है, ब्रह्मा बाप को आना है। तो किसी ने बाबा को कहा यहां बाप दादा से मिलते रहे ये बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते ये बात तो अच्छी है, लेकिन बाप समान बन के बाप के साथ जीवन का अनुभव करे यह भी चाहिए ना। वह है, तैयार है, सिर्फ आप नहीं, राजधानी है, पूरी राजधानी तैयार है। आप राज्य किस पर करेंगे, राजधानी तो चाहिए ना। तो किसी ने कहा बाबा सभी साथी है। तो बाबा पूछते सब तैयार है। तो किसी ने कहा बिल्कुल तैयार है। बाबा पूछते संपन्न बनने में तैयार है, अच्छा सभी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। बाप दादा जानते हैं कि अभी तक रेडी है, एवर रेडी बनना पड़े। जो बाप दादा ने दो बातें कही थी
कौन सी दो बातें? कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए, और दूसरी बात कही थी व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान न रहे। जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाए। अब बाप दादा ये रिजल्ट चाहते हैं, इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं। क्या राय देते हैं? आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनके भी सेवा करते हो एक ही समय पर तीनों रूपों और तीन रीति से सेवा करो। तीन रूपों और तीन रीति से सेवा करो। कौन से तीन रूप? बाबा कहते तीन रूप, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो और तीन रीति से सेवा करो। तो कौन सी तीन रीति? वह तीन रीति है मनसा वाचा कर्मणा। यानी एक ही समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो, पावरफुल माइंड हो। तो जो बाबा ने कहा नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, तो बाबा कहते अभी आवश्यकता है कि एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए। तो वाणी से नॉलेजफुल, और कर्मणा द्वारा, कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करे कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। तो कर्मणा में लवफुल। तो तीनों रूप और तीन रीति, मनसा पावरफुल, वाणी नॉलेजफुल और कर्मणा लवफुल। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाएं। तो बाप दादा अभी एक ही समय तीन रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। हो सकता है? हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है। अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथी बने इसमें अभी टाइम लगता है। तो बाप दादा ने देखा कि समय की चैलेंज के साथ अभी सेवा में भी ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करे। एक ही समय तीनों सेवाओं द्वारा प्राप्ति का अनुभव करे। तो सभी मिलने के लिए उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं, तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश है। अभी अटेंशन देना है किस बात पर? संपन्न और संपूर्ण बनने में, क्योंकि कम से कम 108 की माला तैयार कर सको, कर सकते हो? 108 की माला तैयार है? तैयार है, क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वही बनेंगे 108 आत्माएं। तो 108 रत्नों की लिस्ट अभी निकाल सकते हो? हाँ जी नहीं कहते हो? 108 राज्य अधिकारी, फिर 16,108 राज्य अधिकारी के साथी यानी रॉयल परिवार वाले, फिर उसके बाद है नंबरवार। तो बाप दादा अभी समय प्रमाण, समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो, बाप समान हो। तो पहली लाइन 108 नाम निकाल सकते हो? पूछते बाबा, पहली लाइन वाले 108 नाम निकाल सकते हो? हाँ या ना करो? साकार में जब ब्रह्मा बाप थे तो कई बार ट्रायल की, लेकिन फाइनल नहीं हो सकी।
लेकिन अब तो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस 75 वर्ष की जुबली में कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो नवीनता यही करो जो हर एक अपने को 108 की माला के मणके बनाए, जो गिनती में आए। हाँ, 108 की माला तो बन गई, क्योंकि जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य के संपर्क वाले बने, उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो बाप दादा का कहने का यही सार है। क्या सार है? कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जोन हेड्स, साथ में सेंटर इंचार्ज, साथ में उनके नजदीक के साथी पांडव, वह सेंटर हेड नहीं बनते लेकिन कोई ना कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए, जिनको सब विशेष आत्मा की नजर से देखते हैं, उन पांडवों को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्वपरिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसके लिए एवरेडी है जो समझते हैं कि यह कार्य तो करना ही है, अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना ही है। करना है तो हाथ उठाओ। हाथ तो इतने उठाते हैं, खुश कर देते हैं। बाबा कहते हाथ तो सभी इतने उठा देते जो बाबा को खुश कर देते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी है, लेकिन अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना बच्चे? दृढ़ता करते भी है, लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती। कौन से भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है? ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं होता तो वह नहीं होता, इस बहाने में बहुत होशियार है। तो बाबा कहते दृढ़ता इस तरह के बहानेबाजी वाली भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती। तो भी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में आपको जो भी देखे, जो भी मिले, वह यही कहे वह परिवर्तन वाह। बाप दादा को भी अच्छा लगता है जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं, उनको देखकर भी खुशी होती है और मिलन में भी बहुत खुशी होती है। तो आज क्या संकल्प किया? बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। कोई भी बात आए, कोई भी बातें आए, बात के बजाय बाप को आगे रखो, बात के बजाय बाप को आगे रखो। तो सभी दूर बैठे हुए बच्चे, नजदीक सामने बैठे हुए बच्चे, दोनों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। सामने जो बैठे उनको भी देख रहे हैं और जो दूर बैठे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं, और दोनों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चे प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं। अमृत वेले सब बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। मेजॉरिटी इतनी मीठी बातें करते हैं जो बाप की बातें सुन कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन पता है फिर क्या होता है? बाप की बातें सुनकर कुर्बान भी हो जाते, फिर क्या होता है?
जब कर्म के क्षेत्र में